0: बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, जिससे कि हमारे जानने वाले जो इस हमारे सुनने वाले जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं वो अनिल जी के साथ आध्यात्मिक तौर पर जुड़ सकें। तो अनिल जी बहुत बहुत आभार है आपका जो आप आए। अब आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें परिचय दीजिए, भला आप कौन हैं?
1: हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार आपको समीर जी। और बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि आप कौन हैं, और ये जो कौन का जो जवाब है यही स्पिरिचुअलिटी में छुपा होता है कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, हम क्यों हैं। और इसी का जवाब जब मिल जाता है लोगों को तो वो निश्चित तौर से आगे बढ़ जाता है। जहां तक मेरा सवाल है, जो मेरा परिचय है वो ये, मैं कानपुर शहर का निवासी हूँ और आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। और जहां तक भगवत भक्ति की बात है, स्पिरिचुअलिटी की बात है, तो ये संवेदनाओं का विषय है। और चूंकि मैं कलाकार हूँ तो जाहिर सी बात है कि कलाकार संवेदनशील होता है और वो आसपास जितनी भी घटनाएं घटती हैं उनके बारे में कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं कानपुर शहर में रहता हूँ, भारतीय जीवन बीमा निगम में काम करता हूँ, संगीत का विद्यार्थी हूँ, गीत वगैरह गाता हूँ, और साथ में एक अभियान चला रहा हूं अपनी तरफ से कि स्पिरिचुअलिटी, धर्म, रिलीजन और इससे जुड़ी जो विषय है, जिसमें काफी कुछ भ्रांतियां भी हैं लोगों के मन में, काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जो सही रास्ते पर नहीं जा रही, तो क्यों ना उन्हें जागृत किया जाए अपने भजनों के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से। तो वो प्रयास मैं करता रहता हूँ, मेरे लेख अखबारों में भी छपते हैं। और ये जो आपके पास आपने जो हमें बुलाया है और इसके लिए आपने जो इंटरव्यू किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मैं अपने विषय को कह पाऊंगा। बाकी तो बस ये ऐसे ही है, बस एक छोटा सा प्राणी हूँ इस धरती पर और अपना प्रयास, अपना कर्तव्य कर रहा हूँ।
0: बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी परिचय, बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत ताकतवर। आपने बहुत ही प्यारी बात कही अनिल भाई की, आप कोशिश कर रहे हैं अध्यात्म, धर्म, सनातन, इन सब चीजों के बारे में लोगों को और ज्यादा पहचान कराने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उनको जगाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं ही, मेरे दिमाग में अचानक ये सवाल कौंध गया है आपके बात करने से कि इसकी क्या आवश्यकता है अनिल भाई, जो आप कोशिश कर रहे हैं सचमुच बहुत ही ज्यादा उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन एक साधारण इंसान होने के नाते, मैं एक बिल्कुल ही साधारण सा व्यक्ति हूं, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो आपकी कोशिश है उससे, मैं स्वार्थी होके पूछूं, मुझे क्या फायदा होगा?
1: हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि ये जितने भी स्पीशीज हैं इस दुनिया में आते हैं, जीव जंतु और जितनी भी चीजें आपकी जो पूरी की पूरी सृष्टि में विद्यमान है, इसमें मानव योनि जिसको ये आदमी बोलते हैं, इंसान बोलते हैं, ये सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। और श्रेष्ठ इसलिए मानी गई है क्योंकि उसके पास दिमाग होता है और तर्क करने की क्षमता होती है, जो कि जानवरों में नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है कि जो तर्क होते हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम क्या हैं, कौन हैं, कैसे हैं। अब चूंकि हम बचपन से, जब से पैदा हुए हैं तब से हमारे माता पिता और हमारे चारों तरफ का माहौल हमें जो भी समझाता है, जो भी बताता है, हम उसी को मान लेते हैं और उसी पे आगे बढ़ जाते हैं। ये ऑलमोस्ट 99% केसेस में होता है कि जो कुछ हमें जन्म से सिखाया गया है वो हम उसी को मानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो भी हमारे कर्मकांड हैं, जो भी हमारा रिलीजन है, हम ईश्वर को किस रूप में देखते हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई जीसस कहता है, है ना। तो इस तरीके से जो जो जहां पैदा हुआ उसके हिसाब से उसको मिलता है। लेकिन आपको बताएं कि जब जब ये लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें बन गए कि उसमें कुछ धन का या कुछ प्रभाव बना ले, तो ऐसे में वो चीजें कहीं ना कहीं डिरेल्ड हो गई और पटरी से उतर गई और उसके जो विसंगतियां हैं, जो उसके विकार हैं, वो समाज में देखने को आते हैं। तो उसको ठीक करना, उसे ठीक से बताना और सही रास्ते पे लाना, ये हर बार हर समय पे होता रहा है।
0: साधुवाद, धन्यवाद कि आपने इस चीज को क्लियर किया है कि ये प्रोग्राम या आपने, आपकी जो कोशिशें हैं, आपके जो प्रयास हैं, वो भला हम साधारण मनुष्यों के लिए जरूरी क्यों हैं। तो मुझे जो समझ में आया आपकी इस व्याख्यान से, आपकी इस बातचीत से, या जो आपने अभी बताया मेरे अपने लिए, कि बहुत बहुत ज्यादातर टाइम हम कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन आपने एक बात ये भी बताई कि हम में तर्क करने की या समझने की या तर्क वितर्क करके उसको सुलझाने की क्षमता है, जो कि जानवरों में नहीं होती। तो हम आपकी बातचीत सुनकर या इस प्रोग्राम को सुनकर कुछ दृढ़ निश्चय कर सकते हैं, कुछ दृढ़ नियम कानून अपना सकते हैं, जिससे कि हम

0: डरे नहीं, कमजोर नहीं पड़े और धर्म को और आध्यात्मिकता को मतलब जो सांसारिक चीजों से है उससे न जोड़कर कुछ और ऊपर उठे, और उसके क्या फायदे होंगे वो अभी हम समझ ही लेंगे। तो जाहिर सी बात है ये प्रोग्राम जिस बारे में है, जिस बारे में हम सीखना चाहते हैं वो है आध्यात्मिकता। तो अनिल जी प्लीज अपने शब्दों में हमें समझाइए, एक साधारण व्यक्ति के लिए आध्यात्मिकता से हम क्या समझे।
1: हाँ जी, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। और ये स्पिरिचुअलिटी, मैंने बोला ना कि वो जो तर्क करने की क्षमता है आदमी के अंदर, यानी कि वो कहीं कुछ सोच सकता है, समझ सकता है। तो जाहिर सी बात है उसका जन्म हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितने लोग, क्या वजह है हम यहाँ पे क्यों आते हैं और क्या वजह होती है हम चले जाते हैं, ये लगातार प्रोसेस चल रहा है। कौन सी ऐसी शक्ति जिसने इन सब चीजों का निर्माण किया है, तो इनसे जुड़ने का, इनसे कनेक्ट करने का और इसको समझ पाने का जो हमारे अंदर जो क्षमता है वही स्पिरिचुअलिटी है। अब स्पिरिचुअलिटी में जाहिर सी बात आती है कि ये सवाल तो पैदा होता है कि ये सारे के सारे ग्रह नक्षत्र, पूरी की पूरी सृष्टि का निर्माण है ना, आकाश गंगा और हमारा पृथ्वी लोक, और इसके बाद सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, तारे भी हैं, ये पेड़ पौधे, झील, झरने, ये सब चीजें रियली हमने नहीं बनाए, ये किसने बनाए, कौन है इसका निर्माता। तो जाहिर से बात है कि सवाल पैदा होता है। फिर दूसरी बार आपको सच बताऊं तो जब इस सृष्टि के निर्माण के लिए बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, बहुत बड़े फिलोसफर्स ने इसके बारे में शोध करना शुरू किया और अलग अलग तरीके से, साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करी, और बहुत कुछ उन्होंने बताया कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, प्रोटॉन था, ये था, वो था, परमाणु थे, आपस में टकराए, ताकत के साथ तैयार, तो इस तरीके से इन चीजों का निर्माण होना शुरू हुआ। ये उनके अपने लॉजिक्स है जिन्होंने अपने हिसाब से इस चीज को ढूंढने की और देखने की कोशिश करी, लेकिन आखिर में उन्होंने ये जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी मृत्यु क्यों होती है और हम जन्म कहाँ लेते हैं, ये दो चीजें हमारे हाथ में नहीं है कि हम जन्म कहाँ लेंगे और मृत्यु हमें पता नहीं कि कब होगी, इसका आज तक जवाब नहीं मिल पाया है। साइंस और दार्शनिक इसकी जबरदस्त खोज कर रहे हैं और लगातार चलता रहेगा, यही प्रोसेस है, यही इस पूरी सृष्टि का निर्माण है कि आपको तर्क दिया है, आप तर्क करिए और देखिए कि ये पूरा निर्माण कैसे, इतनी खूबसूरत धरती, इतनी खूबसूरत दुनिया, ऐसे खूबसूरत इंसान, कितने कितने तरीके के चेहरे, कितने तरीके के लोग, कितने तरीके के पशु पक्षी, फूल, पेड़ पौधे, क्या खूबसूरती से बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो चीजें बनी हैं, इनको जानने की कोशिश करना और उससे कनेक्ट करना, जाहिर सी बात है कि पूरी प्रकृति बहुत पॉजिटिव है, इसलिए निर्माण करती है। हमेशा ध्यान रखिए समझिए कि जो पॉजिटिव व्यक्ति होगा वो निर्माण करेगा और जो डिस्ट्रक्टिव होगा वो निश्चित तौर से खत्म करेगा, जो नेगेटिव होगा वो डिस्ट्रक्शन करेगा। और इस तरीके के लोग आते रहेंगे दुनिया में, कुछ लोग पॉजिटिव होंगे, कुछ लोग नेगेटिव होंगे, और यही पॉजिटिविटी लोगों तक पहुंचाई जाए और उनको बताया जाए कि ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई, ये इसके निर्माण के पीछे कौन सा उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है और इस किस उद्देश्य से इसको बनाया गया है। तो इसको जानने की कोशिश करना, इसको समझने की कोशिश करना और मानवता के साथ, मानव लोगों के साथ अपना संबंध स्थापित करना और खूबसूरत जिंदगी बनाना, एक खूबसूरत दुनिया बनाना, ये हमारा फर्ज है, यही स्पिरिचुअलिटी है सर, और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कुछ है।
0: बहुत सुंदर, क्या बात है दोस्तों। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अनिल जी ने किस तरह से आध्यात्मिकता को यानी कि स्पिरिचुअलिटी को हमारी प्रकृति के साथ जोड़कर और इसके बनने के साथ जोड़कर समझाया है। तो बात बिल्कुल अनिल जी ने शुरू से शुरू की है कि कब, कैसे, क्यों ये प्रकृति आई और उसको किस किस तरीके से साइंटिस्ट्स ने दिया, दूसरे लोगों ने समझा, और फिर आध्यात्मिकता हमारे लिए क्यों जरूरी हो जाती है। बहुत सुंदर। तो थोड़ा सा रुकिए, विचार कीजिए जो अनिल जी ने अभी कहा है गहराई से। तब तक उन्हीं की आवाज में गाया हुआ एक बहुत ही प्यारा सा भजन हम यहां सुनते हैं। यहां पर मैं ये भी बात जरूर जरूर बता देना चाहूंगा कि अनिल गौड़ साहब हमारे आज के कलाकार के फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं। जब हमारा ये प्रोग्राम आज से 2 साल पहले शुरू हुआ था तो अनिल जी ने उस वक्त हमारा हाथ थामा था और उनकी गायकी अब आप सुनेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। चलिए इस भजन का आनंद उठाइए, मैं वापस लौटता हूं।

0: अति सुंदर, बहुत ही खूबसूरत भजन, हमेशा की तरह वही सभी हुई आवाज और वही सौंधी सौंधी खुशबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अनिल जी, आध्यात्मिकता को अगर हमने एक्सप्लेन कर दिया जैसे आपने बताया, तो एक और शब्द है जो पीछे नहीं रहता, वो भी उसके अगल बगल ही घूमता है, वो है धर्म। तो जरा सा हमें धर्म भी समझाइए। किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन टोटैलिटी में, मतलब संपूर्णता में अगर देखें तो धर्म क्या है?
1: हाँ जी, बहुत बढ़िया सवाल है आपका, और यही ये बहुत जरूरी भी है, और यही बहुत सारी बोन ऑफ कंटेंशन भी यही है, मतलब कुल मिलाकर के झगड़े की जड़ भी यही है। अब होता क्या है कि हमारी मानव प्रवृत्ति का स्वभाव होता है कि जो चीज भी हम पसंद करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, धारण करते हैं, उसी को हम श्रेष्ठ मानते हैं, और हम कोशिश यही करते हैं कि बाकी लोग भी इसको समझें और उसी को फॉलो करें। एक मानव प्रवृत्ति होती है, इसमें कोई नहीं, हमेशा चलती रहेगी। अब बात आती है कि धर्म की बात आती है, तो धर्म की व्याख्या गलत हो गई और धर्म को गलत तरीके से समझा गया। बेसिकली धर्म जो है वो कहते ना कि मानव धर्म, कि मानव धर्म क्या है, जाहिर सी बात है कि आपके अंदर जितनी भी चीजें हैं जो इस दुनिया में आपको श्रेष्ठ बनाती हैं और दूसरों से जोड़ती हैं, वो धर्म को धारण करने वाली स्थिति, यानी कि आपको क्या क्या धारण करना चाहिए। तो जैसे धर्म के लक्षण बताए गए कि जो धारण करने चाहिए, धैर्य, क्षमा, सद्बुद्धि, स्वच्छता, विद्या यानी शिक्षा, अक्रोध यानी क्रोध ना करना, इंद्रिय संयम और चोरी ना करना, ये चीजें बताई गई हैं कि इस तरीके से। और निश्चित तौर से ये जितने भी मानक हैं, अगर हम सही तरीके से पूरी ईमानदारी से इसको फॉलो करें, तो हमारे कोई भी रास्ते हो जो जिसको हम धर्म कहते हैं, बेसिकली वो धर्म नहीं है। मैंने आपको बताऊं कि मैंने एक भजन लिखा है इसके ऊपर कि धर्म को प्रतीकों से कैसे अलग देखा जाए। तो मैंने जैसे इन सारी चीजों के बारे में बताया कि ये सब चीजें जो धर्म के आते हैं, जो एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, उसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए जो मैंने भी बताया कि धैर्य, क्षमा, सद्बुद्धि, संयम, स्वच्छता, विद्या, शिक्षा, क्रोध, इंद्रिय संयम, चोरी ना करना, ये सब बहुत जरूरी है। बट इसमें दो चीजें जो ज्यादा जरूरी जो मैंने जोड़ी, आपको बताऊं, अगर ये सारी चीजें हों और उसके बाद अगर आपके अंदर करुणा और आपके अंदर प्रेम नहीं है, ध्यान रखिए समीर जी, कि करुणा और प्रेम सर्वोच्च है। अगर हम ये सारी चीजें अपने पास रखें, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, इसके बाद अगर हमारे अंदर करुणा नहीं है और प्रेम नहीं है, तो ये धर्म हमारा किसी काम का नहीं रहता है। आपके अंदर करुणा और प्रेम बहुत जरूरी है, और यही लोगों के साथ जुड़ता है। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने एक छोटा सा भजन लिखा था, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं पढ़ के बता दूं।
0: जी
1: आपको, जी जी हाँ जी। तो मैंने लिखा था कि तिलक टोपी पगड़ी क्रॉस, देखिए तिलक सनातन में आ जाता है, टोपी इस्लाम में आ जाता है, पगड़ी सिखिज्म में आ जाता है, क्रॉस आपका जो है क्रिश्चियनिटी में आ जाता है। हाँ जी हाँ। तो तिलक टोपी पगड़ी क्रॉस तो प्रतीक यार है, मतलब ये सिंबल्स हैं, है ना, तो प्रतीक यार है करुणा और प्रेम प्यारे धर्म का आधार। अगर इन सारे के सारे प्रतीकों में करुणा और प्रेम को अगर जोड़ दिया जाए, तो ये संपूर्ण हो जाता है। और करुणा और प्रेम के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि आमतौर से करुणा उसी पर्टिकुलर पंथ को मानने वाले लोगों के लिए है, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने परिवार के लिए है, नहीं, करुणा शाश्वत होती है, ये सबके लिए होती है और बराबर से होती है। उसमें जितने भी जीव जंतु, जितने भी स्पीशीज आपके पूरी दुनिया में दिख रहे हैं, सबके प्रति करुणा होनी चाहिए, मानव के लिए तो होनी चाहिए और दूसरे लोगों के लिए होनी चाहिए। और प्रेम अगर आपके अंदर, और प्रेम की जो व्याख्या है वो यही है साहब, कि प्रेम कोई लेने देने की चीज नहीं है, सिर्फ देने की चीज है। प्रेम ऐसी चीज है जिसमें कि सिर्फ सामने वाले को देने का प्रयास किया जाए, उसे कोई भी किसी भी तरीके की एक्सपेक्टेशंस ना रखी जाए, हमेशा उसका भला, उसकी शुभचिंता, यही प्रेम है। अगर ये चीजें आधार हो जाए, बन जाए, तो बहुत अच्छा है। तो तिलक टोपी पगड़ी क्रॉस तो प्रतीक यार है, करुणा और प्रेम प्यारे धर्म का आधार है, ये जनेऊ दाढ़ी बाल तो निशानी मात्र है, करुणा और प्रेम ही तो धर्म का आधार। इसके आगे लिखता हूं, जी जी, मस्जिद चुनवाई तूने, मंदिर तूने गढ़े। देखिए मस्जिद कहीं से नहीं निकली, हमारे पास पर्वत है, झील है, सागर है, ग्रह है, नक्षत्र है, आकाश गंगा, लेकिन मस्जिद नहीं निकली कहीं से। तो मस्जिद चुनवाई तूने, मंदिर तूने गढ़े, गुरुद्वारा चर्च तेरी मर्जी से है बने, आरती नमाज सुबह शाम तो तू ही करे, गुरुद्वारा माथा टेके शीश गिरजाघर नवे, ये विचार नियम तेरे सब तो कर्म कांड है, करुणा और प्रेम प्यारे धर्म का आधार। तो जितनी भी चीजें हम ये कर रहे हैं ये सब हमारे कर्म कांड है, ये हो या ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं साहब, अगर करुणा और प्रेम आपके जीवन में है तो निश्चित तौर से आप सबसे ज्यादा धार्मिक है। जन्म सबकी एक जैसी। अब देखिए होता क्या, हम एक दूसरे को छोटा बड़ा करने लगते हैं कि मेरा धर्म, मेरा पंथ, मेरा रिलीजन श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ है और इसी को सब लोगों को फॉलो करना चाहिए। इसका बहुत सारा प्रयास बहुत सारे लोगों ने अपने समय पे करते रहे और अभी भी लगे हुए हैं इस पे। मैं फिर कहता हूं कि जो आदमी जन्म लेता है उसकी उसकी प्रकृति कैसी है। जन्म सबकी एक जैसी, मृत्यु सबसे ना परे। सबके जन्म एक ही जैसे होते हैं साहब, कोई कोई बता दीजिए कि किसी का जन्म अलग तरीके से होता हो, है ना। सबका जन्म एक जैसा है और मृत्यु से सब ना परे। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने जन्म लिया वो मृत्यु जरूर प्राप्त करेगा, भले उसने बड़े प्रयास किए हों कि साहब हम अमर हो जाएं। बहुत सारे प्रयास हुए इतिहास में और आप प्राचीन सभ्यता में देख सकते हैं, लेकिन कभी नहीं हुआ। तो जन्म से, जन्म सबकी एक जैसे, मृत्यु से सब ना परे। बचपन जवानी बुढ़ापा से हम सभी बड़े, रक्त मज्जा हड्डी मांस से हम सभी बने। सांस लेते सांस छोड़ते यूं ही सब जीवन चले, मतभेद श्रेष्ठता की चिड़ी सब में रार है। देखिए सब यही बात मैं कहना चाहता हूँ, मतभेद जो है हमारा एक धर्म से दूसरे धर्म का जो मतभेद है वो श्रेष्ठता की है कि हम श्रेष्ठ है। मतभेद श्रेष्ठता की छिड़ी सब में रार है। रार मतलब झगड़ा है। करुणा और प्रेम पहले धर्म का आधार है। धर्म अपना, नियम अपना, वेशभूषा अपनी अपनी, है ना। हमने अपना धर्म बना लिया, हमने नियम बना लिया, अपनी अपनी वेशभूषा बना ली, है ना। धर्म अपना, नियम अपना, वेशभूषा अपनी अपनी, खान पान अपने अपने, चाल ढाल अपनी अपनी, मेरा मेरी तेरा तेरी, आस सबकी अपनी अपनी, सर्वश्रेष्ठ बनने की चाह सबकी अपनी अपनी। सर्वश्रेष्ठ बनने की चाह सबकी अपनी अपनी, अपनी अपनी ढपली है, अपना अपना राग है, लेकिन भाई करुणा और प्रेम प्यारे धर्म का आधार है। हर आदमी अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग सुना रहा है, लेकिन फैक्ट ये है कि करुणा और प्रेम अगर आपके यहाँ से मिसिंग है तो किसी भी तरीके का धर्म आपका नहीं चलता। एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं कि भेदभाव जो सिखाए, उसके आगे जाता हूं, भेदभाव जो सिखाए धर्म नहीं हो सकता। आपस में जो लड़ाए धर्म नहीं हो सकता। हत्या कर जीव खाए धर्म नहीं हो सकता। मार सब खुद को जियाए धर्म नहीं हो सकता। मार सब सबको मार कर खुद को जियाए धर्म नहीं हो सकता। लालच भय दुर्गुण दोनों धर्म शत्रु यार हैं। लालच और भय इन्हीं दोनों चीजों से साफ पूरी दुनिया चल रही है, या तो लालच है या भय है। तो लालच भय दुर्गुण दोनों धर्म शत्रु यार हैं। करुणा और प्रेम तेरे धर्म का आधार है। ठीक है जी
0: जी।
1: तो एक एक बात आखिरी में कहना चाहूंगा कि धर्म का आडंबर कर पैर जो पुजवाता है, सुनिएगा मेरी बात
0: जी,
1: धर्म का आडंबर कर पैर जो पुजवाता है, धर्म का चोला पहन जो सब जन ठकवाता है। धर्म का आडंबर कर पैर जो पुजवाता है, धर्म का चोला पहन जो सब जन ठकवाता है, धर्म की आड़ में जो जन जन लड़वाता है, धर्म की दुहाई देके स्वयं भू बन जाता है, जगत पिता ऐसों को करता धिक्कार है। ये जगत पिता जिनसे पूरी सृष्टि को रचाया वो तीसरी शक्ति है, वो दिखाई पड़ती है नहीं दिखाई पड़ती है, साकार है निराकार है, निर्गुण है सगुण है, इसके झगड़े में मैं नहीं पड़ता, लेकिन कोई तो है जिसने इसको निर्माण किया है। तो धर्म की दुहाई दे के स्वयं वो बन जाता है, जगत पिता ऐसे को करता धिक्कार है। करुणा और प्रेम ही प्यारे धर्म का आधार है। तो जो आपने धर्म की बात करी सर, उसके बारे में बस एक ही बात कहूंगा, समझे कितनी बात हमने कही है, जो ये बात समझने की है कि करुणा और प्रेम जिनके अंदर है वही धार्मिक है, बाकी सब तो सब नियम है, संयम है, करुणा और कर्मकांड है। ये सब आप करके कहीं ना कहीं अपने आप को मानते हैं कि आप धार्मिक हैं। धार्मिक वही है जो करुणा और प्रेम के साथ चलता है।
0: बहुत सुंदर, क्या व्याख्या है और कितनी ही बहुत ही खूबसूरत भजन, जो बहुत कुछ मुझे एक बहुत ही प्यारी सी कविता के रूप में सुनाई दिया। इस बात से अनिल जी मेरे सामान्य बुद्धि में एक सवाल उठ रहा है कि चारों तरफ हमें यही दिखाई दे रहा है कि आपने कहा ना पीछे कि कोई अपने पैर छुआ रहा है और लोगों को बांट रहा है और लोगों को समझा रहा है। हम चारों तरफ देखते हैं तो अनिल जी मुझे लगता है 90% से ज्यादा लोग वही हैं जो इनके पीछे जा रहे हैं, और आंखों पर पट्टी बांधकर जितने भी हमारे सो कॉल्ड प्रबुद्ध बाबा जी लोग बैठे हैं चारों तरफ, वो कुछ कुछ बता रहे हैं और करोड़ों की तादाद में उनके पंडालों में भीड़ लग रही है और कोई उनके खिलाफ क्या, उनकी उनकी अथॉरिटी के ऊपर एक छोटा सा सवाल उठा दे तो लोग तलवारें निकालकर मारने काटने को आ जाते हैं। कि आपने हमारे गुरु के बारे में एक ऐसा बोल कैसे दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर बहुत जबरदस्त परेशानी खड़ी हो जाती है इस बात को देख के, बहुत झटपटाहट आ जाती है कि फिर इन सब बातों की सार्थकता कहां रह जाती है अनिल जी, कि हम धर्म को समझें, आध्यात्मिक हो जाएं, क्योंकि ये जो बाबा बैठे हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने तो धर्म और आध्यात्मिकता को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, और 90% लोग उन्हीं की तरफ जा रहे हैं। तो बाकी जो बचे 10% जिन्होंने आपकी और मेरी इस प्रोग्राम की बात को समझकर आध्यात्मिकता अपनाई, उनका होगा क्या सर? 90% तो उधर चली गई है, वो 90% जनता इन 10% लोगों को तबाह कर रही है। तो फिर आध्यात्मिकता और धर्म की सार्थकता कितनी रह गई, इसके बारे में थोड़ा बताइए ना।
1: बहुत बहुत अच्छा सवाल है साहब आपका, रियली बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने। और ये सवाल का जवाब एक मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं जब कभी अपने प्रोग्राम्स करता हूँ, चाहे भजनों का प्रोग्राम करता हूँ, मैं एक ही बात बोलता हूँ कि एक ही व्यक्ति, सुनिएगा मेरी बात, एक ही व्यक्ति किसी चीज को बहुत बड़ा कर सकता है। और वो एक ही व्यक्ति, यानी आपने व्यक्ति को इतनी ताकत मिली है, सृष्टि के निर्माण ने इतनी ताकत दी है कि लगभग वो ईश्वर जैसा ही है, उसके अंदर वो ताकत सारी की सारी समाहित है। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ कि एक सोने का पर्वत है और उसमें से एक जो उसकी सोने की जो क्वालिटी है, जो उसकी कॉस्ट है, उसमें से अगर एक छोटा सा टुकड़ा भी निकलता है तो भले वो छोटा सा टुकड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसकी कॉस्ट उस पर्वत से कम नहीं आकी जा सकती, उसकी क्वालिटी उसकी कॉस्ट वैसे ही है। तो एक व्यक्ति के अंदर, तो आपने जो निराशा जाहिर करी, निराशा आमतौर से मेरे जीवन में भी आती है कि जिस तरीके से एक बहुत बड़ा समूह ऐसे लोगों को फॉलो कर रहा है, जिनको कैसे समझाया जाए। नहीं साहब, मैं फिर कहता हूं कि एक व्यक्ति पूरे दुनिया को बदल सकता है, और इसके बड़े बड़े उदाहरण है साहब। आप कबीरदास जी को ले लीजिए, बुल्ले शाह जी को ले लीजिए, आप स्वामी रैदास जी को ले लीजिए, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, नाम हुए, ये अपने समय पे बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं विवादित भी रहे, है ना। सोक्रेटिस हो गए, प्लेटो हो गए, है ना, आर्यभट्ट हो गए, जिन्होंने वास्तव में साइंस के साथ लोगों को धर्म और अध्यात्मिकता समझाने की कोशिश करी। कई बार उनका विरोध भी हुआ, लेकिन आज किताबों में उनको पढ़ा जाता है लोग। तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक व्यक्ति ही बहुत काफी है। आप 100 लोगों को बताते हैं, अगर 100 में से 2 आदमी भी आपकी बात को समझ गए ना साहब, तो निश्चित तौर से दुनिया बेहतर तरीके से चलेगी और इसको चलने में एक डिसिप्लिन मिल जाएगा। हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, हमें अपने प्रयास करते रहना चाहिए। पॉजिटिविटी ही इस दुनिया को चलाएगी, सकारात्मकता ही चलाएगी। और सकारात्मक अगर आप हैं, आप समझदार हैं कि इतना बढ़िया प्रोग्राम आपने बनाया है, ये बहुत सफल प्रयास है आपका। निश्चित तौर से आज जो सुनने वाले लोग हैं, अगर इसको समझ पाएंगे, तो इनमें से अगर 2 लोग भी सुधर गए, तो रियली बता दें आपको कि निश्चित तौर से दुनिया बहुत अच्छे से चलेगी, बहुत अच्छे से निर्माण होगा। इससे निराश होने की जरूरत नहीं है। हम जितने भी लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, जो भी सकारात्मक लोग हैं, जो इस दुनिया में सबको प्रेम और करुणा के साथ देखते हैं, निश्चित तौर से सृष्टि का हमेशा बैलेंस बना रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। हमें अपने प्रयासों को कमी नहीं करनी चाहिए। ये चीजें दिखती जरूर है, लेकिन होता वही है। और एक बात बताएं आपको सर, कि ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति पॉजिटिव है और पॉजिटिव लोगों को सुरक्षित करती है, मेरा अपना अटूट विश्वास है साहब।
0: चलिए दोस्तों, सकारात्मक रहते हुए, अपने आप को वापस से अपलिफ्ट करते हुए, विचार करते हुए, एक प्यारा सा भजन और अनिल जी की ही आवाज में हम लोग सुने, उसका आनंद लें, उसे समझें, और फिर अनिल जी के पास वापस प्रस्तुत होते हैं।

0: बिल्कुल ठीक अनिल जी, बहुत ही प्यारा सा भजन और बहुत ही प्यारी गायकी। अब बात थ्योरी से हम लोग प्रैक्टिकल पर आए थे, एक और प्रैक्टिकल बात ही पूछना चाहूंगा जिससे कि लोग बाग उस प्रैक्टिकलिटी को समझ सके, अपना सके कि आपके ऊपर ही बात लेकर आते हैं। छोड़िए ना किसी और साधु की, संत की, बड़े लोगों की बात नहीं करते, क्राइस्ट की या पैगंबर की या नहीं करते, छोड़िए ना, मैं अपनी और आपकी बात करता हूं। हम लोगों को सीखना है, ये लोग तो बड़े बड़े लोग थे जो सिखा के गए। आप अपने बारे में बताओ, आपके दैनिक आध्यात्मिक अभ्यास क्या क्या हैं, जिससे शायद हमें कुछ हिंट मिल जाए।
1: हाँ जी बिल्कुल सही है। हाँ देखिए, ये जो अभ्यास हैं बेसिकली ये अपने आप को कूल करने के लिए हैं। देखिए क्या होता है कि जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं तो आपको निश्चित तौर से आप सपोर्ट नहीं मिलता लोगों को, और विरोध ज्यादा होता है कई बार, तो उसमें एक देलक होता है, एक मन में कहीं ना कहीं दिमाग में थोड़ी सी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, शरीर में भी और विचारों में भी कहीं ना कहीं होता है इन चीजों को। तो उसको शांत करने के लिए भाई जाहिर सी बात है कि कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं, कि जैसे मेडिटेशन है, मेडिटेशन करते हैं लोग। तो भाई मेडिटेशन क्या है, सांसों को देखना, पढ़ना और अपने ब्लड प्रेशर को पूरी तरीके से कूल करना और फ्रेश कर लेना। तो जाहिर सी बात है कि हमें फ्रेश रखना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि जिस तरीके की भौतिक जीवन है, जो पूरा का पूरा सांसारिक जीवन है, इसमें बहुत सारी कठिनाइयां है। कहते हैं कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, तो रियली हर कदम एक नई जंग है। तो उस जंग से लड़ते हुए आगे बढ़ना है और अपने आप को कूल रखना। अगर आप कूल नहीं रहेंगे, आप ठंडे नहीं रहेंगे, तो जाहिर सी बात कि स्पार्क आप ही के अंदर से निकलने लगेगा, तो वो किसी और को क्या शांत करेगा। तो मेडिटेशन हो गया, और सबसे बड़ी बात अध्ययन करना। और अध्ययन करते समय इस बात को हमेशा ख्याल रखना, मैंने बार बार बोला कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कैसे हो सकता है, तो अच्छे विचारों के साथ के लोग साथ बैठना, उनके साथ बातें करना और वो मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना। ठीक है, मैं फिर कहता हूँ ध्यान लगता नहीं है साहब, मैं प्रैक्टिकलिटी की बात बता रहा हूँ। ध्यान लगाने की जितनी कोशिश आप करते हो उतना ही ध्यान इधर उधर जाता है, भटक

0: करुणा और प्रेम अगर आपके अंदर है, आपके चारों तरफ एक ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाएगा, आप अपने साथ के लोगों के साथ हमेशा बहुत ही लविंग रहते हैं, उनके बारे में चिंतन करते हैं, उनके बारे में उनकी जिंदगी में बेहतरी लाने के लगातार प्रयास करते हैं या सोचते ही हैं, तो भी आपको चारों तरफ से एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और ये जो पॉजिटिव एनर्जी है यही आपको रिफ्रेश करती है। बाकी तो ठीक है, ध्यान लगाइए, सवेरे बैठ करके योगा करिए और पूजन ध्यान भी उसमें कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है कि आप अगर आप कोई मूर्ति पूजा करते हैं या नमाज पढ़ते हैं या गुरुद्वारा जाते हैं, ये भी आपको कहीं ना कहीं शांति प्रदान करता है और आपको ईश्वर से जोड़ता है, तो वो भी करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
1: जी जी, मैं बिल्कुल ठीक समझ गया। तो ये कुछ अभ्यास हैं जिसमें से अभी जो अनिल जी ने बताया मुझे, उसमें एक चीज पकड़ में आई जिसको मैं अपना सकता हूं, अपनाने की कोशिश करता हूं और मुझे सच बताऊं दोस्तों अच्छा लगता है। अब आप तय कीजिए कि अनिल जी की बातों से कौन सा अभ्यास आप उठाना चाहते हैं, क्योंकि जैसा अनिल जी ने बताया कि सब लोग सही हैं, उचित हैं, कोई गलत नहीं है। बहुत सुंदर। चलिए तो एक ब्रेक ले लेते हैं एक बहुत ही प्यारे से भजन के नाम, जो अनिल जी ने हमारे लिए इस प्रोग्राम के लिए रिकॉर्ड किया।

0: अति सुंदर, बहुत खूबसूरत, अमेजिंगली ब्यूटिफुल। तो अनिल जी आगे बढ़े, जाहिर से बात है हमने अभी आध्यात्म की बात करी, उसके पीछे पीछे आते हुए एक शब्द धर्म की बात करी, फिर हमने प्रैक्टिसेस की बात कर ली कि दैनिक अभ्यास हम क्या कर लें। अब एक शब्द और है जो पीछे पीछे है, जिसे समझना जरूरी है, वो है प्रार्थना, प्रेयर। तो आ जाता है हमने ध्यान लगाया या प्रार्थना करी। अब मुझे इनकी या तो समानता के बारे में बताओ अनिल जी, या इनके डिफरेंसेस के बारे में, क्या ये अलग अलग हैं, और अलग अलग हैं तो कैसे?
1: हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है, रियली फिर से आपने एक बहुत बेहतरीन सवाल किया। और प्रेयर्स यानी प्रार्थना पे चीजें जो एक पूरा का पूरा कहना चाहिए पंथ है क्रिश्चियनिटी, जो प्रेयर्स पे ही पूरा डिपेंडेंट है, वो प्रार्थना के ऊपर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। उनके पास ज्यादा कर्मकांड नहीं है, लेकिन प्रार्थना को मूल रूप से गिरजाघरों में जाके करते हैं। मैं हमेशा जो मैं समझ पाया वो ये कि प्रार्थना आप अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए करते हैं। मीन्स कि जो चीजें आपके बस में हैं, जो कुछ आप स्वयं कर सकते हैं किसी की जिंदगी को बेहतर करने के लिए, उसकी लाइफ को बेहतर करने के लिए, वो तो आप करते ही हैं। लेकिन जहां पर आपके संसाधन कम पड़ जाते हैं या आप कहीं ना कहीं आपकी कैपेसिटी कमजोर हो जाती है, तो वहां पे हम प्रार्थना करते हैं। और बताऊं आपको, सच बताऊं कि जो ये तीसरी शक्ति है वो ये कहती है कि आप प्रार्थना करें। मीन्स प्रार्थना फिर से सकारात्मक ऊर्जा, जाहिर सी बात है प्रार्थना जो की जा रही है वो उसके व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, यानी उसको बेहतर करने के लिए। तो बेहतरी तो पॉजिटिविटी से ही आती है, और जब ये पॉजिटिविटी एक साथ कई लोगों से इकट्ठी होती है तो निश्चित रूप से उसका, निश्चित तौर से उसका आता है रिजल्ट, पक्की बात बता रहे हैं। कहते नहीं दुआ और बदुआ दोनों लगती है सर।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। कई बार मेरे मन में ऐसा विचार आया अनिल जी कि मैं प्रार्थना करता हूं ना भगवान की, या किसी की भी जो मैं प्रार्थना करता हूं, अपने आप को एकाग्र करता हूं, तो भटक जाता हूं और अक्सर अपने लिए मांगता रहता हूं, हे भगवान मुझे स्वस्थ कर दो, हे भगवान मेरी तकलीफें हटा दो, हे भगवान मेरे चारों तरफ सब सुख शांति ला दो, हे भगवान मेरे परिवार को। तो मतलब ये हुआ कि मैं स्वार्थी हो चला हूं, मैं बस अपने लिए मांगे जा रहा हूं। तो यहां पर आपने ये चीज साफ की कि प्रार्थना दरअसल हमें दूसरों के लिए करनी चाहिए, न कि अपने लिए। क्योंकि मुझे जो संदेश मिला वो ये कि अगर आप अगल बगल के और दूसरे लोगों को सुखी कर पाए तो वो सुख आपके पास अपने आप छलक के आ ही जाएगा, तो फिर
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: काहे को मांग के स्वार्थी बने।
1: ना, अभी आपने दूसरे के लिए प्रार्थना करी, मैंने बोला ना कि प्रार्थना दूसरों के लिए होती है, तो जब आप दूसरों के लिए कर रहे हो तो दूसरा भी तो आपके लिए कर रहा है ना, तो क्या ना रेसिप्रोकल होगी ना।
0: जी जी, आपने सही
1: जवाब किसी की जिंदगी हर बिल्कुल सीधी सी बात जी, जी।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए दोस्तों, अनिल जी की इन बिल्कुल शुद्ध बातों के साथ साथ हम अपने आप को इनके भजनों से भी दूर नहीं रखेंगे। लीजिए ना एक और भजन का आनंद उठाएं पहले।

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब जाहिर सी बात है अनिल जी, शुरू शुरू में ही आपने प्रारंभ में ही ये बात काफी अच्छे तरीके से डिटेल में हमें समझाई, लेकिन फिर भी हो सकता है सुनते सुनते हम थोड़े भटक गए, क्योंकि मैं ही भटकता हुआ महसूस कर रहा हूं, थोड़ा सा कंफ्यूज महसूस कर रहा हूं। तो मैं फिर से एक बार फोकस होना चाहता हूं, थोड़ा स्वार्थी हूं तो इसलिए फिर से आपसे पूछूंगा, तो मैं अपने आप को रिवाइज करके संभल जाऊंगा कि क्या आध्यात्मिकता को समझें, धर्म को माने, प्रार्थना करें, ध्यान लगाएं, इससे मेरे फायदे की बात कर रहा हूं, इससे मुझे क्या फायदा होने वाला है, तो क्या ये सब चीज अगर मैं करने लगूं तो मेरा टेंशन कुछ कम हो जाएगी क्या?
1: बिल्कुल साहब, बिल्कुल। आप देखिए, समझिए, टेंशन तनाव जो है ना, देखिए तनाव तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जो जीवन आपको मिला है वो निर्माण के लिए। देखिए, एक बड़े निर्माता ने आपको एक रोल दिया, ठीक है, एक बड़े निर्माता ने आपको एक रोल दिया और वो भी निर्माण का ही काम कर रहा है। एक फिल्म बना रहा हूँ मैं, डायरेक्टर हूँ या प्रोड्यूसर हूँ, मैंने फिल्म का निर्माण किया, अब मैंने आपको हीरो बना दिया। अब ये हीरो एक पूरी इमेज का निर्माण कर रहा है कि वो हीरो है, वो कमजोरों को बचाता है, महिलाओं की सुरक्षा करता है, माता पिता को प्रेम करता है, देश के लिए काम करता है, तो ये निर्माण कर रहा है। तो उस पूरी सृष्टि ने हमको निर्माण के लिए भेजा, और निर्माण में कष्ट होता है साहब।
0: क्या बात है, चलिए हंसते खेलते तनाव को स्वीकार करते हुए उससे बिना डरे एक प्यारे से भजन का आनंद उठाइए, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: बहुत ही प्यारा सा भजन। अनिल जी, बस अब चलते चलते मैं आपसे इतनी सी ही प्रार्थना करूंगा कि हम सब लोगों को 1-2-3 स्टेप बताते जाइए कि किस तरीके से हम आध्यात्मिक हो जाएं और किस तरीके से हम धर्म का पालन कर लें। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट स्टेप्स कि भाई आप ये कर लो, 1-2-3 खत्म।
1: जी जी जी जी नहीं, बहुत ही बढ़िया है। और मैंने जैसे भी बताया कि युवाओं के लिए मैं सारा काम युवाओं के लिए कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ कि जब मैं कुछ अभी तो मैं इतना नहीं पॉपुलर हो रहा हूँ या ट्रेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने जो वीडियोस हैं उसमें जब डालता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं पहले ही बोल देता हूँ कि इसको अगर युवा देख रहे हो तो मोस्ट वेलकम, अगर युवा नहीं है तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि आप चाहें तो उसको बंद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो दुनिया भर के तर्क करेगा, फालतू की बातें करेगा और आपकी वर्दी खराब करेगा, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर, एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। मैं कहीं यहाँ पे धार्मिक नहीं, इस तरीके का धार्मिक नहीं हूँ कि वो मैं एक बात सारे बच्चों से कहना चाहूंगा कि जो मैं छोटी सी टेक्नोलॉजी के, आप कोई भी चीज डिवाइस लाते हैं घर पे, टीवी लाते हैं, फ्रिज लाते हैं, वॉशिंग मशीन लाते हैं, कार लाते हैं, जो भी लाते हैं, तो उसका एक मैनुअल होता है, एक मैनुअल होता है।
0: बिल्कुल।
1: वो मैनुअल से आप ये देखते कि हाउ ये कैसे इसको हाउ टू ऑपरेट। ठीक है जी। अब मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ कि एक डिवाइस के रूप में इस दुनिया में आया जिसके पास अनंत शक्तियां हैं, जो खराब भी कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है। इस डिवाइस का जो मैनुअल है सर, वो भगवत गीता है सर। मैं फिर से रोक रके कहना चाहूंगा, भगवत गीता कहने का मतलब मैं हिंदुओं की बात, सनातन की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। भगवत गीता एक ऐसा मैनुअल है जो धार्मिक ग्रंथ में नहीं मानता है, मैं कह रहा हूँ वो धार्मिक ग्रंथ नहीं, उसमें पूजा अर्चना कर्मकांड कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा। उसमें बस यही है कि जो डिवाइस, यानी कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग आए हो, हाउ टू ऑपरेट योर सेल्फ, ये जरूर आप पढ़ दो। उसमें सिर्फ आपके जीवन को बेहतर करने के सारे नियम दिए हुए हैं और आपको सब कुछ बताया हुआ है।
0: अनिल जी, आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, लोगों से बातचीत की, अपने भजन भी आपने हमको दिए, सुने हमने, अब कविताएं भी आपने सुनाई जो आपने बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में हमारे जीवन के ऊपर लिखी और धर्म के ऊपर लिखी और किस तरह से हमें जीना चाहिए। बहुत बहुत आभार है आपका, धन्यवाद साहब।
1: थैंक यू।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन FM रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। ChatGPT पे क्या सर्च करें और क्या नहीं। आज की कहानी थोड़ी हटके है, थोड़ी करंट है, और ऑनेस्टली बहुत जरूरी है। कल शाम शायद आप में से कई लोगों ने देखा होगा एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन, जहां बात हो रही थी AI की, ChatGPT की, और हम उसे कैसे यूज कर रहे हैं। और तब मुझे लगा कि ये बात सिर्फ डिस्कशन तक नहीं रहनी चाहिए, इसे हम सबको समझना चाहिए। ChatGPT पर क्या सर्च करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं।

चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्या करें, यानी डूज। पहला, क्लियर सवाल पूछें। दोस्तों, अगर आप वेग सवाल पूछेंगे, जैसे करियर में क्या करूं, तो जवाब भी वेग मिलेगा। लेकिन अगर आप पूछते हैं, मैं लॉ बैकग्राउंड से हूं, मीडिया में आना चाहता हूं, क्या ऑप्शंस हैं, तो जवाब भी प्रिसाइस मिलेगा। सीख क्या है? जितना क्लियर सवाल उतना क्लियर जवाब। नंबर टू, सीखने के लिए यूज कीजिए चैट जीपीटी। एक शॉर्टकट मशीन नहीं है, ये एक लर्निंग पार्टनर है। अगर आप सिर्फ ये कहेंगे आंसर लिख दो, तो आप लिख तो देंगे लेकिन समझ कभी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप पूछते हैं ये कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज में समझाओ, तो आप सच में सीखेंगे। और दोस्तों, नॉलेज ही असली पावर है। नंबर थ्री, क्रिएटिव काम में यूज कीजिए। स्क्रिप्ट्स में, कैप्शंस में, आइडियाज में, चैट जीपीटी सब में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। लेकिन एक बात याद रखिए, उसे कॉपी पेस्ट मत कीजिए, उसे अपना बनाइए, अपनी आवाज दीजिए, अपना टच दीजिए, तभी वो चीज असली लगती है और आपकी लगती है। नंबर फोर, फैक्ट चेक जरूर करें। दोस्तों, चैट जीपीटी स्मार्ट है लेकिन परफेक्ट नहीं, कभी कभी गलतियां हो सकती हैं। इसलिए अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो डबल चेक जरूर करें, स्पेशली न्यूज, लीगल, मेडिकल, फाइनेंशियल चीजों के लिए। नंबर फाइव, रिस्पेक्ट के साथ यूज करें। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जिस तरह हम इंसान से बात करते हैं, वैसे ही एआई से भी करनी चाहिए। क्लियर, पोलाइट और रिस्पेक्टफुल, क्योंकि जब आप सही तरीके से बात करेंगे तो जवाब भी बेटर मिलेगा। अब बात करते हैं क्या ना करें, यानी कि डोंट्स। नंबर वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्सनल डेटा शेयर ना करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी अपना पासवर्ड, अपना ओटीपी, अपनी बैंक डिटेल्स या कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी पर शेयर न करें। टेक्नोलॉजी पावरफुल है, लेकिन हमें समझदार बनना पड़ेगा। नंबर टू, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करें। अगर चैट जीपीटी ने कुछ बोल दिया तो वो फाइनल ट्रूथ नहीं है, उसे गाइड की तरह मत देखिए, अपना जजमेंट यूज करिए। नंबर थ्री, शॉर्टकट के लिए यूज मत करें। असाइनमेंट्स, एग्जाम, काम, अगर आप सिर्फ शॉर्टकट के लिए यूज करेंगे तो शायद काम हो जाएगा लेकिन आप ग्रो कभी नहीं करेंगे। और दोस्तों, ग्रोथ ही सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर फोर, इमोशनल डिपेंडेंसी मत बनाइए। ये बहुत सटल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी लोग अपनी हर प्रॉब्लम, हर डिस्कशन एआई से पूछने लगते हैं, लेकिन याद रखिए, जिंदगी के पर्सनल डिसीजंस सिर्फ आपको लेने होते हैं, एआई गाइड कुछ नहीं कर सकता। नंबर फाइव, कंपैरिजन मत करें। एआई बेटर है, ह्यूमन स्लो है, ये सोच गलत है। एआई एक टूल है, इंसान क्रिएटर है, टूल कभी क्रिएटर से बड़ा नहीं होता। एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक लड़का था रोहन, उसने चैट जीपीटी यूज करना शुरू किया हर चीज के लिए, असाइनमेंट्स, ईमेल्स, इवन मैसेजेस टू फ्रेंड्स। धीरे धीरे उसने खुद सोचना एकदम बंद कर दिया। एक दिन उसकी टीचर ने पूछा, ये आंसर तुमने लिखा है? रोहन ने कहा, हाँ। टीचर मुस्कुराए और बोले, लिखा तुमने है या किसी और ने? उस दिन रोहन को समझ आया, यूज करना गलत नहीं है लेकिन खुद को खोना एकदम गलत है। आज की बात का सार यही है दोस्तों, चैट जीपीटी एक पावरफुल साथी है लेकिन यूज आप कंट्रोल करें, वो आपको कंट्रोल न करे। सीखने के लिए यूज कीजिए, समझने के लिए यूज कीजिए, क्रिएट करने के लिए भी यूज करिए, लेकिन सोचना कभी मत छोड़।

क्योंकि आपका दिमाग, आपकी सोच, आपकी क्रिएटिविटी, ये सब यूनिक है और इसी से आप अलग बनते हैं। इसी के साथ आज की ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी और सोचने पर आपको जरूर मजबूर करेगी। ये यहीं समाप्त नहीं होती, इसको कैरी फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। अगली कहानी तक के लिए स्मार्ट बनिए, सेफ रहिए और टेक्नोलॉजी को सिर्फ अपना दोस्त बनाइए, गुलाम नहीं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: मिडिल क्लास प्यार इतना सीधा होता है कि लड़का रोज बस स्टॉप पर खड़ा रहता है, लड़की आती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और 6 महीने बाद लड़का हिम्मत करके बोलता है, एक्सक्यूज मी, ये 522 यहीं से जाती है। प्यार नहीं हुआ, ट्रांसपोर्ट की इंक्वायरी शुरू हो गई।

सेवन डॉग्स, एक कॉर्गी और दोस्ती का सच। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी ना किसी हीरो की है ना किसी विलन की, आज की कहानी सात डॉग्स की है। हां जी, और बिलीव कीजिए ये कहानी आपको हंसाएगी भी, हैरान भी करेगी और एंड में थोड़ा सा चुप भी कर देगी। तो चलिए सीन सेट करते हैं। रात का टाइम है, चाइना का एक शहर चैंगचून। ठंडी हवा चल रही है, सड़क पर हल्का सा फॉग है और एक लंबा सुनसान हाईवे जहां एक आदमी लू नाम का अपनी कार चला रहा है। नॉर्मल ड्राइव, हल्का सा म्यूजिक, थोड़ा सा बोर्डम और फिर एकदम से उसकी हेडलाइट्स के सामने कुछ हिलता हुआ दिखता है। लू आंखें सिकोड़ता है। ये क्या है? पहले लगता है प्लास्टिक के बैग्स होंगे, फिर लगता है शायद कोई जानवर और फिर जब वो थोड़ा सा और पास आता है तो उसका दिमाग लिटरली फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसके सामने एक नहीं, दो नहीं, पूरे सात डॉग्स चल रहे थे। और सिर्फ चल नहीं रहे थे, डिसिप्लिन के साथ चल रहे थे, जैसे कोई परेड हो, जैसे कोई मिशन हो। और सबसे आगे कौन? रेडी, एक छोटा सा कॉर्गी। हाँ, वो क्यूट सा शॉर्ट लेग्स वाला थोड़ा गोल मटोल सा इंस्टाग्राम का सुपरस्टार टाइप डॉग कॉर्गी। लू के मुंह से बस एक ही बात निकली, ये तो उल्टा हो गया, लीडर तो जर्मन शेफर्ड होना चाहिए था। लेकिन नहीं, यहां तो पूरा सिस्टम ही अलग था। कॉर्गी आगे कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे कह रहा हो, लाइन में रहो सब, मैं देख रहा हूं। उसके पीछे एक हस्की, एक लैब्राडोर और एक बड़ा सा जर्मन शेफर्ड। लेकिन यहां कहानी में ट्विस्ट आता है, वो जर्मन शेफर्ड इंजर्ड था, उसका एक पैर ठीक नहीं था और वो हल्की सी लंगड़ाहट के साथ चल रहा था। और अब जो आगे होता है वो देखकर लू सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, वो अंदर से हिल जाता है। बाकी के सारे डॉग्स उस इंजर्ड डॉग के आसपास चलने लगते हैं, जैसे सिक्योरिटी कवर हो, जैसे बॉडी गार्ड्स हो। कोई आगे जाता फिर पीछे मुड़कर देखता, तू आ रहा है ना? कॉर्गी बीच बीच में रुकता और लिटरली लगता कि वो कह रहा है कि भाई स्पीड कम करो, सब साथ साथ चलेंगे। दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए, अंधेरी रात, ठंडी हवा और सुनसान हाईवे और बीच में सात डॉग्स का एक ग्रुप, एक इंजर्ड दोस्त और बाकी सब उसे छोड़ने की बजाय उसके साथ साथ चल रहे हैं। ऑनेस्टली अगर ये मूवी होती तो बैकग्राउंड में स्लो मोशन होता और म्यूजिक होता तेरा यार हूं मैं। लू ने तुरंत वीडियो रिकॉर्ड किया। अगली सुबह इंटरनेट पर धमाका, लोगों ने नाम रख दिया द सेवन डॉग्स गैंग। मीम्स बनने लगे, किसी ने लिखा ये फास्ट एंड फ्यूरियस का एनिमल वर्जन है, किसी ने बोला कॉर्गी इज द बॉस, रिस्पेक्ट, और एक बंदा तो सीरियस होकर लिख रहा था ये डॉग सीक्रेट मिशन पर है। दोस्तों इंटरनेट कभी सिंपल चीज को सिंपल रहने कहां देता है। कुछ लोगों ने फैन फिक्शन लिख दिया, एक स्टोरी में कॉर्गी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था, इमेजिन। दूसरी में ये सब डॉग्स एक माफिया गैंग से भाग रहे थे और एक वर्जन में तो जर्मन शेफर्ड उनका इंजर्ड सोल्जर था और बाकी सब उसे सेफ जगह लेके जा रहे थे। फिल्मी है ना? बिल्कुल, लेकिन एक बात तो सच है, ये डॉग्स एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे थे। दोस्तों अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, सोचिए अगर ये इंसान होते तो क्या होता। ग्रुप आउटिंग है, एक बंदा स्लो हो गया, कोई कहता भाई तू ऊबर ले ले, कोई कहता हम आगे मिलते हैं और कोई सीधा बोल देता तू प्रॉब्लम है यार। सच बोलूं, हम फास्ट दुनिया में जीते हैं जहां पेशेंस कम है और साथ चलना एक लग्जरी बन गया है लिटरली। लेकिन उस रात चैंगचुंग के हाईवे पर
सेवन डॉग्स ने हमें दोस्ती का असली मतलब सिखाया। उन्होंने दिखाया दोस्ती का मतलब स्पीड मैच करना नहीं, दोस्ती का मतलब है पेस एडजस्ट करना। अगर दोस्त स्लो हो तो आप रुकते हो, अगर दोस्त गिर गया तो आप हाथ बढ़ाते हो, और अगर दोस्त टूट रहा है तो आप उसके आसपास खड़े हो जाते हो जैसे वो डॉग्स खड़े थे। और लीडर कॉर्गी, सबसे छोटा, सबसे अनएक्सपेक्टेड, सबसे अंडरडॉग, लेकिन सबसे रिस्पॉन्सिबल। दोस्तों ये भी एक लेसन ही है, लीडर साइज से नहीं बनता, लीडर एटीट्यूड से बनता है। और वो इंजर्ड जर्मन शेफर्ड, कभी कभी स्ट्रॉन्ग लोग भी गिरते हैं, एंड इन दिस केस सबसे स्ट्रॉन्ग लोग भी। और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, शर्म की बात है जब कोई उन्हें छोड़ देता है, पीछे रहने देता है और आगे बढ़ जाता है। अब कहानी का एक और थोड़ा डार्क साइड, कुछ लोग कहते हैं ये डॉग सेफ नहीं थे, कुछ वर्जन्स कहते हैं वो खो गए थे, और कुछ कहते हैं उनका एंड अच्छा नहीं।

0: सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन दोस्तों कभी कभी एंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सफर, और उनका सफर एक मैसेज दे गया। तो आज अपने आप से एक सिंपल सा सवाल जरूर पूछेगा, आप कौन हैं? वो कॉर्गी जो सबको साथ लेकर चलता है, वो जर्मन शेफर्ड जो स्ट्रगल करता है, या वो जो किसी को बीच रास्ते में छोड़ देता है? जिंदगी लंबी रोड ट्रिप है दोस्तों, कभी स्मूथ हाईवे है कभी ब्रोकन रोड, लेकिन अगर साथ सही हो तो सफर हमेशा खूबसूरत लगता है। और अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपके स्लो होने पर रुक जाते हैं, आपका वेट करते हैं, तो ट्रस्ट में उन्हें कभी मत छोड़िए, क्योंकि आज के टाइम में ऐसे लोग नहीं मिलते, और मिलते हैं तो संभलते नहीं। इसी के साथ आज की ये थोड़ी फनी, थोड़ी फिल्मी और दिल को फिर भी छू लेने वाली कहानी यहीं समाप्त करते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की। अगली स्टोरी तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, असली दोस्ती वो नहीं जो आगे बढ़ जाए, असली दोस्ती वो है जो रुक कर कहती है चल साथ चलते हैं। नमस्कार।
1: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम चिक चिक बम।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: घर में एसी 24 डिग्री पर चला दो तो पापा तुरंत आकर 26 पर कर देते हैं। बोलते हैं, बेटा ठंड लग जाएगी। पर असली रीजन, बिजली का बिल उनके दिमाग में लाइफ टिकर की तरह चल रहा होता है। और जब लाइट चली जाती है, देखा मैंने बोला था ना ज्यादा मत चलाओ, देखा बिजली चली गई। ऐसा लगता है जैसे बिजली डिपार्टमेंट को उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी हो।
2: Mm-mm. Mm-mm. Mm-mm. Mm-mm.

हर्मिन्यूटिक सिर्फ एक वर्ड नहीं, एक सुपर पावर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नई कहानी में। आज का एपिसोड थोड़ा हटके है, थोड़ा हैवी लग सकता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ एंड तक आप हंसोगे भी, सीखोगे भी और थोड़ा स्मार्ट भी फील करोगे, क्योंकि आज का वर्ड है हर्मिन्यूटिक। सच सच बताओ, पहली बार सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ये कौन सी बीमारी है? ये किसी साइंटिस्ट का नाम है या ये किसी एलियन का पासवर्ड है? मैंने तो जब इसे पहली बार ऑनेस्टली सुना तो मुझे लगा ये यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा जाने वाला कोई सवाल है। और अगर किसी ने कैजुअली बोल दिया ये एक हर्मिन्यूटिक इशू है तो आदमी तुरंत सीरियस हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी वही सोच रहा था, अंदर से कुछ समझ नहीं आया ना। चलिए आज इस वर्ड का पोस्टमार्टम करते हैं। हर्मिन्यूटिक होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में हर्मिन्यूटिक का मतलब है सिर्फ सुनना या पढ़ना नहीं, बल्कि समझना। और सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर तक जाके समझना। मतलब वर्ड्स के पीछे क्या है, उनका टोन क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है और इंटेंशन यानी इरादा क्या है। क्योंकि दोस्तों जो कहा जाता है वो हमेशा वही नहीं होता जो मतलब होता है, और यहीं से शुरू होता है हर्मिन्यूटिक थिंकिंग। चलिए रियल एग्जाम्पल से समझते हैं जहां हम सब एक्सपर्ट्स हैं, थोड़ा सा मजा लेते हैं। एग्जाम्पल वन, माँ बोलती है बेटा मैं ठीक हूं। लिटरल मीनिंग माँ ठीक है, बट रियल मीनिंग यानी कि हर्मिन्यूटिक वर्जन, तूने 4 दिन से फोन नहीं किया, मैं याद कर रही थी, समझे? चलिए दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं, शायद थोड़ी और क्लैरिटी आए। बॉस बोलता है गुड वर्क, आप सोच रहे हैं प्रमोशन आ गया, लेकिन हर्मिन्यूटिक वर्जन कहता है कॉन्टेक्स्ट चेक करो भाई, शायद मतलब हो ठीक है लेकिन और बेटर करो, समझे या अभी भी नहीं? चलिए तीसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। गर्लफ्रेंड बोलती है मैं कुछ नहीं हूं तुम्हारी लाइफ में। लिटरल मीनिंग सेल्फ डाउट, रियल मीनिंग यानी हर्मिन्यूटिक वर्जन, तुम्हारी लाइफ में मैं ही सब कुछ हूं, समझे? और अगर आपने गलत समझ लिया तो बस हर्मिन्यूटिक फेल एंड रिलेशनशिप फेल। हम गलती कहां करते हैं दोस्तों? प्रॉब्लम सिंपल है, हम सुनते ज्यादा हैं, समझते कम हैं। हम वर्ड्स पकड़ लेते हैं लेकिन इमोशंस, पीछे के इमोशंस, उन्हें मिस कर देते हैं। कोई गुस्सा करता है, हम बोल देते हैं एटीट्यूड है, लेकिन हो सकता है कि वो हर्ट हो। कोई चुप रहता है तो हम बोल देते हैं एरोगेंट है, लेकिन हो सकता है कि वो स्ट्रगल कर रहा हो। दोस्तों अगर हम सब थोड़ा सा हर्मिन्यूटिक यूज कर लें तो आधी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाएंगी। अब थोड़ा सा फैमिली एंगल से देखते हैं। सोचिए अगर बॉलीवुड में हर्मिन्यूटिक होता, हीरो बोलता मैं तुमसे नफरत करता हूं, हीरोइन तुरंत समझ जाती इसका मतलब है वो मुझसे प्यार करता है, और 3 घंटे की मूवी 10 मिनट में खत्म हो जाती। नो सॉन्ग्स, नो ड्रामा, नो क्लाइमेक्स, कितनी बोरिंग हो जाती ना लाइफ। सोच के देखिए, हर्मिन्यूटिक सिर्फ फनी एग्जांपल्स तक लिमिटेड नहीं है, ये एक पावरफुल तरीका है सोचने का, समझने का और जीने का। जब आप किसी बात को समझने की कोशिश करते हो तो आप जज नहीं करते, आप कनेक्ट करते हो, और ये डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। जज करना इजी है, समझना एफर्ट लेता है, और आजकल लोग एफर्ट ही नहीं लेना चाहते, इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती हैं, रिलेशनशिप्स वीक हो रही हैं, और लोग कहते हैं लोग बदल गए। नहीं दोस्तों, मॉडर्न दुनिया और हर्मिन्यूटिक्स की क्राइसिस। आजकल व्हाट्सएप मैसेज आता है ओके, हम सोचते हैं बस एक ओके, और सामने वाला सोचता रहता है गुस्सा है, एटीट्यूड है, मैंने क्या गलती की और क्या नहीं। दोस्तों ओके का भी हर्मिन्यूटिक होता है, कभी मतलब होता है ठीक है, कभी मतलब होता है बात मत करो, और कभी मतलब होता है मैं बिजी हूं,
और कभी होता है मैं गुस्सा हूं लेकिन डायरेक्टली नहीं बोलूंगा। एआई और हर्मनेटिक, थोड़ा स्मार्ट बन जाओ। आजकल हम सब एआई भी यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी, गूगल और क्या क्या नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यही है, हम जो पढ़ते हैं उसे फाइनल ट्रूथ मान लेते हैं, लेकिन हर्मनेटिक कहता है कॉन्टेक्स्ट को समझो, सोर्स को समझो,

हेट मत होना दोस्तों, डिफरेंस समझे। वर्ड सेम, मीनिंग अलग, यही है हर्मेनिटिक। और आज की सबसे बड़ी बात, जिंदगी सिंपल हो सकती है मेरे दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। सिर्फ रिएक्ट ना करें, रिफ्लेक्ट करें। सिर्फ सुने नहीं, उसे फील करें, सोचें और समझें। लोग क्या कह रहे हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्यों कह रहे हैं। तो अंत में नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले तू मुझे समझता ही नहीं है, आप सीधा बोलना मैं तो हर्मेनिटिक लेवल पे समझ रहा हूँ। वो कंफ्यूज हो जाएगा और आप इंटेलिजेंट लगोगे। विन विन सिचुएशन। आज का वर्ड थोड़ा टफ जरूर था दोस्तों, लेकिन उसका मैसेज बहुत सिंपल और बहुत जरूरी। समझना सीखो लोगों को, सिचुएशंस को, और सबसे इम्पोर्टेंट खुद को। क्योंकि जब आप समझने लगते हो तब जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगती, क्लियर लगती है। इसी के साथ आज का ये फन, फनी, थोड़ा इंटेलेक्चुअल और थोड़ा दिल से जुड़ा हुआ एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगली स्टोरी तक सिर्फ सुनिए नहीं, समझने की आदत डालिए। क्योंकि याद रखिए, जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स वर्ड से नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग से होती है। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारी हंसने का समय।
1: देसी मिडिल क्लास लग्जरी। इंडियन मिडिल क्लास के पास सब कुछ होता है, बस उसे यूज करने की परमिशन नहीं होती। ड्राइंग रूम का सोफा सिर्फ गेस्ट्स के लिए, नया डिनर सेट सिर्फ खास मौके के लिए। और वो खास मौका कब आता है? जब डिनर सेट का डिजाइन आउटडेटेड हो जाता है। हम लोग चीजें फ्यूचर के लिए संभाल के रखते हैं भाई, और फ्यूचर आता है डीक्लटर करने। What?

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। और दोस्तों, आज का रंग कला और पेंटिंग की सतरंगी दुनिया का है और हमेशा की तरह आपका दोस्त आलोक कुमार आपसे मुखातिब है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिनका जीवन स्वयं एक रंगों से सजा कैनवास है, समर्पण, सौंदर्य बोध और सृजनशीलता से भरा हुआ। हमारी आज की अतिथि हैं डॉक्टर अर्चना कुलश्रेष्ठ जी, एक प्रख्यात चित्रकार, शिक्षाविद और कला साधिका। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से पीएचडी की, स्वर्ण पदक से सम्मानित रही और 4 दशकों से अधिक समय तक कला, शिक्षण, शोध और सृजन का शानदार सफर तय किया। देश विदेश में 50 से अधिक प्रदर्शनियां, अनेक राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार और कला के क्षेत्र में आज भी उनका योगदान उतना ही जीवंत है जितना कि उनके चित्रों के रंग। तो आइए अर्चना जी से जानते हैं कला, सौंदर्य और जीवन के उन रंगों के बारे में जो उनके ब्रश से निकलकर समाज तक पहुंचते हैं। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद
0: अर्चना जी। शुरुआत आपके बचपन से करते हैं क्योंकि बचपन के बारे में बातचीत करना हर किसी को अच्छा लगता है। क्या बचपन से ही आपको कला और चित्र

0: इस सफर में कौन कौन सी बातें आपको सबसे अधिक संतोष देती हैं?
1: देखिए, एक लेक्चरर का, एक व्याख्याता का सबसे बड़ा जो सेटिस्फेक्शन होता है, संतोष होता है, वो ये होता है कि उसके जो विद्यार्थी है वो उसको, उनको पसंद करें और उनको समझें, उनकी पढ़ाई शिक्षा को वो ग्रहण करें, तो उनको आनंद आए। तो मेरा जो सेटिस्फेक्शन है वो यही है कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे को बहुत पसंद करते थे और अभी वो सब भी बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों से रिटायर भी हो गए, तो वो लोग आज तक भी मुझे याद करते, तो मेरे को इस बात का बहुत संतोष होता है कि मैंने अपने फील्ड में बहुत अच्छी तरीके से काम किया है, जिससे कि वो भी उससे फायदा उठा सके, लाभ उठा सके। तो ये संतोष सबसे बड़ा संतोष है एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर।
0: जी जी बिल्कुल, शिक्षक का संतोष ही ये होता है कि उसके
1: विद्यार्थी याद करें,
0: बिल्कुल याद करें, बिल्कुल। एक शिक्षक से लेकर प्राचार्य और फिर डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स तक की इस यात्रा में आपको किन किन चुनौतियों और उपलब्धियों का सामना करना पड़ा, कुछ इसके बारे में हमारे साथ साझा कीजिए।
1: चुनौतियां तो बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि शिक्षक तो जो है उसको कोई चुनौती इतनी, बस एक ही चुनौती होती है कि उसके बच्चे उसका पढ़ाया हुआ जो भी है वो उसको समझ सकें और उसको अपने जीवन में ला सकें। लेकिन प्राचार्य की पोस्ट पे आते ही आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं, छात्रों का असंतोष, और छात्रों का ही नहीं, वहां के जो आपके व्याख्याता है उनका असंतोष, और उसके बाद में जो है वो जो वो पियोंस वगैरह सबका, मतलब बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है सबको संतुष्ट करना, और वो भी ऐसे इसको कॉलेज में जहाँ 8000 छात्र गांव से आते हैं सीधे हड़ौती में, तो वो सिर्फ आपको वो आपके हड़ताल, चाकू, छुरे सब तरीके से साम दाम दंड भेद, और उनकी राजनीतिक यात्रा जो वो जो नेता बनते हैं वो वहीं से शुरुआत होती है, तो उसको फेस करना आपको आना चाहिए और उनको संतुष्ट करना आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप चिल्ला के करें, आप उनको समझा सकते हैं, और इसमें मैं समझती हूँ कि मेरा थोड़ा महारत था कि मैं उनको बड़े प्यार से बिठा करके सब समझा करके और सॉर्ट आउट कर लेती थी, और यहाँ तक कि मेरे कलीग्स को भी, तो किसी ना किसी तरीके से, तो ये एक ईश्वर प्रदत्त मेरे में कुछ ऐसा वो है कि मैं किसी को भी आराम से समझा लेती हूँ, वरना इतना मुश्किल होता था कि वो वहां पे आपकी तोड़ फोड़ चाकू छुरे आपके उस पे से उठा लेते, और प्रिंसिपल को तो वो उठा करके भी ले गए कई तरीके से, लेकिन मैं उसके अंदर बहुत सफल रही और उनको मैंने अपना बना करके और बहुत अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे हमारे हमारे को इस वैल्यूज में क्यों रख दिया, हम इसकी हमारे को इसमें क्यों डाल दिया आपने, इसमें बहुत काम है, फैकल्टीज वगैरह जो हम उनको यूज करते कई कई अपने कार्यक्रमों में कि आपको ये संभालना है, आपको ये संभालना है, आपको, तो कई तरह की उनकी वो होती है व्याख्याताओं की भी, और स्टूडेंट्स की तो बहुत होती है, पानी नहीं है, ये नहीं है, फर्नीचर नहीं है, फलाना नहीं है, मतलब किसी भी बात को लेके उनको राजनीति मतलब करनी है तोड़फोड़ और हड़ताल, और राजनीति का यहीं से उनका पहली सीढ़ी चढ़ते हैं वो, तो वो बहुत जोर शोर से करते हैं, उसको सहन करना बड़ा मुश्किल होता है, वो भी फिर एक लेडी को, वो भी बॉयज कॉलेज के अंदर, लेकिन मैं पढ़ी भी बॉयज कॉलेज में हूँ और मैं उनको समझती भी हूँ, तो मैंने बड़ी अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक इसको चुनौती को स्वीकार किया। और उपलब्धियों की बात यह है कि उन वो जो बच्चे थे और जो अभी भी हमारे यहाँ के कई सारे जो राजनेता हैं अभी, जैसे बिरला जी हैं और चांदी धारीवाल हैं और ये सब हमारे यहाँ ही पढ़े हुए हैं, तो ये लोग जो है इनकी जब वो देखते हूँ मैं उपलब्धियां, और कई लोग रिटायर हो रहे हैं प्रिंसिपल से और कई लोग किसी आरएएस आईएएस में जा रहे हैं, तो वो सब उपलब्धियां हैं मेरे लिए कि मैं उनके साथ में रह करके उनको संतुष्ट कर सके और अच्छी तरीके से प्रशासन संभाल सके, क्योंकि ये प्रशासनिक वो दिक्कतें हैं जो चुनौतियां और उपलब्धियां दोनों बन के सामने आती हैं। और डीन का जहां तक सवाल है, डीन में यूनिवर्सिटी में थी, कोटा यूनिवर्सिटी में, और पूरी फैकल्टी आर्ट्स फैकल्टी उसकी मैं डीन थी, तो किसी भी तरीके की कोई भी समस्या किसी भी सब्जेक्ट में होती तो मैं हर एक की बीओएस में मतलब बोर्ड ऑफ स्टडीज की उसमें बैठती थी बैठक में और उनको सॉल्व करती थी और फिर आती थी, और कितनी हजारों लाखों डिग्रियां आर्ट्स जो फैकल्टी है सबसे बड़ी है, लेकिन उसको भी मैंने बड़ी अच्छी तरीके से चुनौती ली और उसको फिर सब उसको स्वीकारा भी और फिर उसके अंदर

0: जो भी मेरे को उपलब्धि मिली वो भी मेरे सामने अभी भी खड़ी है, अभी भी लोग याद करते हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल कॉलेज हो या कुछ भी हो, वो सब लोग मेरे से आज भी जुड़े हुए हैं, तो ये उपलब्धियां हैं।
1: बहुत सुंदरता से आपने बताया और आई कैन अंडरस्टैंड कि कोटा का नाम भी कई तरह से फेमस भी और कई तरह से इनफेमस भी है।
0: हाँ
1: ये
0: बिल्कुल, जब तक वहां पे ये हब नहीं बना था इसका कोचिंग वाला,
1: कोचिंग
0: उससे
1: कोचिंग
0: पहले
1: वाला
0: सारे बदमाश ही थे, सारे इंडस्ट्रियल
1: वही
0: एरिया
1: वही
0: था वो,
1: वही वही वही
0: तो
1: मैं कह
0: वहां
1: रहा
0: पे तो
1: था।
0: चाकू चूरों से पहले बात ही नहीं होती थी। और
1: बिल्कुल
0: जब भी
1: बिल्कुल
0: इतने
1: बिल्कुल
0: बड़े कॉलेज में कुछ होता है तो मुझे बुलाते थे घर से, क्योंकि वो
1: बिल्कुल
0: मेरी बात मानते थे तो यही एक सफलता उपलब्धि है।
1: जेके की फैक्ट्री बंद करवा दी थी इन
0: बंद हुई
1: लोगों ने
0: उसके
1: वहां पे,
0: बाद में
1: नॉर्मल
0: कोचिंग,
1: उसके
0: बिल्कुल
1: बाद
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कोचिंग
0: बिल्कुल।
1: शुरुआत। वो
0: हाँ
1: मुझे आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको कितनी डिफिकल्टी, और ये शांतिलाल धारीवाल और ये जो वहीं के वहीं से वहीं
0: वहीं
1: की
0: के
1: तो
0: हैं,
1: पैदाइश है,
0: बिल्कुल
1: वहीं की
0: वहीं के
1: पैदाइश,
0: हैं।
1: वहीं
0: ओम
1: की
0: बिरला भी
1: पैदाइश
0: हमारे कॉमर्स कॉलेज में निकले,
1: कॉमर्स
0: और मैं
1: कॉलेज
0: लास्ट में जब रिटायर हुई तो कॉमर्स कॉलेज से ही हुई थी, तो
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: सारे लोग निकले हैं, मैं नाम नहीं बता सकती हूँ। भुवनेश
1: हाँ
0: चतुर्वेदी, ये वो जो सेंटर मिनिस्टर वगैरह सब रहे,
1: हाँ
0: तो ये
1: हाँ
0: सारे कोटा के ही
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने
0: हाँ
1: भी अपने स्कूल की पढ़ाई कोटा में की है, इसलिए कोटा से मेरे को काफी ही एफिनिटी है।
0: हाँ जी
1: चलिए
0: हाँ
1: आगे बढ़ते हैं।

0: आपके निर्देशन में कई शोधार्थियों ने पीएचडी पूरी की, तो एक गाइड के रूप में, शोध मार्गदर्शक के रूप में आपकी सबसे बड़ी क्या जिम्मेवारी लगती है?
1: एक्चुअली क्या है कि आजकल जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, शोधकर्ता है, बच्चे हैं, वो सिर्फ गूगल से लेकर के और इधर से उधर से लेकर के अपना काम करते हैं, वो कभी भी रिसर्च नहीं करते। मतलब जो चीज है उसी को हमने दोबारा सर्च करना है, तो वहां जाके आप ऑथेंटिक देखो तो सही, उसको समझो सही, पहली बात तो ये। लेकिन दूसरी बात ये है कि जब वो लिखते हैं तो उसको कॉपी भी एज इट इज करते हैं, मतलब जो गूगल पे लिखा हुआ है वही लैंग्वेज यूज करते हैं। तीसरी बात है कि अशुद्धियां करते हैं, हिंदी में भी अशुद्धियां करते हैं। तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उनको गाइड करें कि भाई आप मौके पे जाके देखो। जैसे मेरा भी फील्ड वर्क था, मैंने पूरा राजस्थान घूमा है, एक एक जिला, गांव, ढाणी, मतलब सब पे, और एक एक हवेली उसकी, मतलब कितना वाइड मतलब काम था। फिर भी क्योंकि हमारे गाइड ऐसे थे कि वो कहते नहीं जाकर क्या हो, मुझे बताओ कितनी दूर था, क्या था। पर आजकल ऐसे स्टूडेंट्स नहीं है, वो उठाएंगे किसी भी किताब को और बस उससे लिख देंगे। आप अगर जाओगे वहां पे तो वो चीज मिलेगी भी नहीं वहां पे। बल्कि मेरे जो एग्जामिनर आए थे आरपीएससी में, उन्होंने एक मारवाड म्यूरल्स पे किताब लिखी थी, उसको लेके मैं घूमी, और बाद में जब वो मेरे एग्जामिनर बन के मतलब वहां पे आए उसमें आरपीएससी में, तो पहले मेरे घर आए, फिर उनको पता लगा कल मैं बैठी, तो वापिस गए। और जैसे ही मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ वापिस मेरे पास आया, तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपकी किताब को लेके मैंने बहुत पैसा गवाया, घूमा, कहीं पे कुछ नहीं था। फिर उन्होंने डिलीट भी की, वो भी मेरे गुरु के उसमें करी, तो मैंने उनसे भी कहा, तो उन्होंने कहा ऐसे तो ऐसे ही नहीं होनी चाहिए। मेरा जो रिसर्च स्कॉलर है उनको मैं कहती हूँ पूरा अपना काम स्वयं जाकर के देखो, उसको समझो वो है भी कि नहीं है, तो कुछ भी लिख दोगे आप और कुछ भी मैं देख लूंगा ऐसा नहीं होगा। रिसर्च मतलब कि वो चीज होनी चाहिए, उसको आप वापस सर्च कर रहे हो, देख रहे हो। दूसरा आपकी अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, आपको सेंटेंस फ्रेमिंग बना आनी चाहिए। आप खुद जब सर्च करोगे तो आपका जब एग्जाम वाइवा होगा तो आपको याद आएगा, अगर आपने कॉपी किया होगा तो आपको कुछ भी याद नहीं आने वाला। फिर वो टाइपिंग में मिस्टेक्स होती है, उसको भी वो लोग नहीं देख पाते, मतलब उसको भी उसमें भी जो गलतियां रह जाती है वैसी रह जाती है, तो फिर क्या रिसर्च करना है। तो मेरा बेसिक फंडा यही है कि आप पहले अपने आप सारा सर्च करो, उसके बाद अपने सेंटेंस को देखो, फ्रेमिंग्स को देखो, क्या कर रहा है, कैसी है, ठीक है कि नहीं है। फिर टंकण में जो मतलब टाइपिंग में जो होती है उसको भी आपको देखना पड़ता है एक बार कि भाई सही है कि नहीं है। तो ये सारा मेरा फोकस उस पर रहता था और वो खुद से अपना काम करें इस बात पे, यही यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी लगती है मुझे।
0: सही बात है।

0: चलिए अब थोड़ा सा अपन रुख बदलते हैं। अब आम श्रोताओं के लिए अगर आप सरल भाषा में बताना चाहें कि स्केचिंग, ड्राइंग और पेंटिंग में क्या मूलभूत अंतर है, क्या फर्क है?
1: बिल्कुल, स्केचिंग जो है, एक्चुअली स्केचिंग हम तब करते हैं कि जब हम किसी जगह पर कुछ चीज बनाने जाते हैं वहां पे, तो उसका आप या तो फोटोग्राफ लेके, तो फोटोग्राफ लेना उतना आर्टिस्टिक भी नहीं होता है क्योंकि उसको आप वैसा के वैसा ट्रांसफर करना मुश्किल होता है। पर आपको अगर आपको अपने ऊपर कमांड है, आपने स्टडी किया है ह्यूमन बॉडी का या पर्सपेक्टिव का, किसी सीन का, मतलब सीस्केप, लैंडस्केप या कोई भी चीज का, तो आप रैपिड स्केच करते हैं। रैपिड मतलब बहुत जल्दी, क्योंकि आप जब जिस जगह चाहेंगे वहां घंटों तो बैठ नहीं सकते, और आपको वो दृश्य आपको अपनी स्केच फाइल में लाना है, उसके बाद डेवलप करना है, तो आप रैपिड स्केच करेंगे। और उसका एक तरीका होता है कि आप कभी भी रबर यूज नहीं करेंगे, और बार बार आप लाइन खींच सकते हो, उसमें से फाइनल लाइन आप घर में से निकाल सकते हो। तो रैपिड स्केच इस काम में आता है कि आप अपनी जो पेंटिंग बना रहे हैं उससे पहले जिस जगह का आप दृश्य बनाना चाहते हैं उसके कुछ स्केचेस फास्ट एकदम जल्दी जल्दी करके और घर पे ले आए, और फिर स्टूडियो में बैठ के उसको डेवलप करें। तो ये स्केचिंग है। पर स्केचिंग में आपको पहले बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है हर चीज के लिए। पर्सपेक्टिव आना चाहिए, नापना आना चाहिए, अगर ह्यूमन बॉडी बना रहे हो तो हर चीज की आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप रैपिड स्केच खींच पाते हो, डॉट डॉट करके नहीं। और ड्राइंग एंड पेंटिंग जो है वो आप घर पे ला करके उसकी ड्राइंग फाइन ड्राइंग्स बनाइए और फिर उसमें पेंटिंग कीजिए, ये है।
0: ओके, तो स्केचिंग में इसका मतलब है ह्यूमन एनाटॉमी, अगर मतलब किसी का पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो उसकी जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए।
1: थोड़ा सा तो जानकारी हो, तभी आप चार लाइनें खींचोगे तो भी आप बाद में उसमें से निकालोगे। जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप चार लाइन भी कैसे खींचोगे? फाइन लाइंस बाद में निकाल लो आप ड्राइंग करते टाइम, लेकिन थोड़ी सी आपको पहले अभ्यास करना पड़ेगा। और हमारे सबसे पहले स्केचिंग के लिए ही लेके जाते हैं बाहर,
0: अच्छा,
1: बच्चों
0: अच्छा।
1: को, जिससे कि आपकी आदत पड़े बार बार, क्योंकि सब्जी मंडी में जा रहे हैं तो आप वहाँ पे एकदम से कैच करते नहीं है, उनके जितने पोस्चर से बदलते रहते हैं, आप नृत्य में देखने जा रहे हैं तो उनके बदलते रहते हैं, कुछ भी बात अगर आप किसी को भी स्केच कर रहे हैं तो वो बदलेंगे, पर आपके लिए वो थोड़ी ना रुकेंगे स्टेज पर।
0: तो आप पेंटिंग की कई विधाएं होती है जो हम लोग लेमैन थोड़ा बहुत जानते हैं, वाटर कलर है, ऑयल पेंटिंग है, एक्रेलिक है, म्यूरल है, कुछ बताइए ये क्या क्या है और अलग अलग क्यों है और इनमें क्या समानता है, और आपको कौन सी विधा सबसे अधिक प्रिय है और क्यों है वो?
1: हाँ जी बिल्कुल, वाटर कलर के बारे में सबसे पहले आपने पूछा है, तो वाटर कलर एक बहुत डिफिकल्ट विधा है।

लोग बस सोचते हैं कि ये बहुत सरल है, क्योंकि वाटर कलर में हम लोग जब ट्रांसपेरेंट कलर को यूज करते हैं शीट पे या किसी पे भी, तो व्हाइट की जगह हम व्हाइट छोड़ते हैं, उसके बाद हम बहुत लाइट कलर से शुरू करके डार्क कलर की तरफ जाते हैं। और अगर आपने गलती से पहले गलत जगह पर डार्क लगा दिया तो फिर तो आप उसको ठीक कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट कलर है और उसको नीचे जो शेड है वो आपके ऊपर आएगा ही आएगा। तो आपको बहुत संभल के काम करना पड़ता है, पहले लाइट कलर लगाओ, फिर दूसरी टोन, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे करके आपको करना पड़ता है। और पहले से आपको ध्यान रखना पड़ता है हाईलाइट कहाँ छोड़नी है। ये तो वाटर कलर की बात, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है। ऑयल पेंटिंग थोड़ी इजी होती है, इजी इसलिए होती है कि ऑयल पेंटिंग सूखती देर में है, और आपने अगर गलत भी लगा दिया, वैसे तो इसको आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये डार्क टू लाइट होती है, वो लाइट टू डार्क होती है, ये डार्क टू लाइट होती है। क्योंकि अगर आपने डार्क के ऊपर थोड़े हल्का फिर हल्का फिर हल्का लगाया, कुछ नहीं होगा, ब्राइटनेस रहेगी, शेड्स भी बदलेंगे। लेकिन अगर आपने व्हाइट के ऊपर डार्क लगा दिया कोई कलर, ब्लू ब्लू भी तो भी चल जाएगा, जैसे ब्लैक लगा दिया, ब्राउन लगा दिया या मिक्स कलर लगा दिया, तो ब्राउन हो जाएंगे, चौकिश हो जाएंगे, उनमें कोई चमक नहीं रहेगी और वो बिल्कुल डार्क जैसे हो जाएंगे। तो उसका एक अलग तरीके का है, पर उसमें फायदा ये है कि अगर आपसे गलती लग गई तो आप तुरंत प्रभाव से उसको पहुंच सकते हो कपड़े से या किसी से भी, तो फिर वो सूख जाएगा, तो उसके ऊपर दोबारा आप कलर लगा सकते हो। तो थोड़ी इजी रहती है पोर्ट्रेट्स वगैरह में, इसमें उसमें जब अपन यूज करते हैं, तो ऑयल पेंटिंग को हम थोड़ा सा पहुंच भी सकते हैं, सुखा भी सकते हैं थोड़ा सा, अगर आपके पास टाइम है तो आप एक दो दिन बाद में वापस शुरू कर सकते हो। तो ये एक है ऑयल पेंटिंग का, ये बिल्कुल रिवर्स है वाटर कलर से, डार्क टू लाइट और वो लाइट टू डार्क। और इधर एक्रेलिक है, एक्रेलिक ओपेक कलर होता है, ओपेक मतलब थिक, जिसमें से नीचे ट्रांसपेरेंस नहीं होती, नहीं होती, ट्रांसपेरेंट नहीं होते। तो वो एक्रेलिक कलर को आपको लगाने से पहले, वो सूखते बहुत जल्दी हैं और वैसे बहुत इजी होते हैं वो लगाने, लेकिन उसमें आपको फाइनली पहले एक लेआउट बना लेना चाहिए कि ये कलर मैं यहाँ लगाऊंगा, ये यहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा, फिर आप उसको बड़ा कर दो, उस उन कलर्स को आप फैला दो, क्योंकि उसमें भी आपको फ्रेशनेस तभी दिखेगी।

जब आपके फ्रेश कलर होंगे, मिक्स करोगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, वो मिक्स करने जैसे होते नहीं। बहुत कम जगह पे आप लेयर वगैरह करके यूज कर सकते हो या टेक्सचर दे सकते हो, लेकिन वो बहुत जल्दी सूखने वाले कलर हैं, तो आपको पहले से डिसाइड कर लेना है कौन से एरिया में क्या कलर लगाना है। म्यूरल का जहां तक सवाल है, म्यूरल पेंटिंग्स में तो मेरी रिसर्च ही है, तो उसके लिए डिफिकल्ट बहुत है, क्योंकि पहले आपको वॉल बनाने को, दो तरह के होते हैं म्यूरल्स, एक सैको और एक ब्यूनो। तो जो ब्यूनो होते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, जिसमें दीवार को भी तैयार करना पड़ता है आपको, भूसा और ये सब चीजें लगा लगू करके, कई सारी चीजें उसमें अंदर डाल के, और फिर उसको गीले गीले के ऊपर ही एक खाका बनाना पड़ता है, और उसके अंदर रंग भरने पड़ते हैं, और वो सारा एब्जॉर्व कर लेती है, उसके बाद वो बाहर नहीं निकलते। तो उसमें भी आपको बहुत तरीके से काम करना पड़ेगा, और ज्यादातर मिट्टी के खनिज रंग ये सब यूज होते हैं, या फिर कोई अपने धातु वातु से बने हुए, जैसे तांबे पे हरा रंग आ जाता है, अपन कुछ खटाई लगा दो ये सब, तो उस तरह के रंग इन पे यूज होते हैं। और उसके बाद इनको नारियल की पोटली से ऐसे टप टप टप टप करना पड़ता है, जिससे वो अंदर तक घुस जाए और चिकनी एक लेयर आ जाए तो वो निकलेगी। तो ये डिफिकल्ट है, काफी लंबा प्रोसेस है। और दूसरा सेको जो है वो बिल्कुल आपके ओपेक कलर, जैसे एक्रेलिक है, ऐसे आप किसी भी वॉल के ऊपर सूखे कलर्स ऊपर से लगा सकते हो, पर वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, मतलब ज्यादा देर तक नहीं रहते, वो निकल जाते हैं। लेकिन जो सेको है वो उसमें चले जाते हैं। और हमारे यहाँ जितने भी अजंता के और ये जो मिनिएचर बनाते हैं, उसमें थोड़ा उन्होंने कभी दीवारों पे भी बनाया, वो सारे ब्यूनो टेक्निक से बनाया। तो ब्यूनो टेक्निक ज्यादा अच्छी होती है और अंदर तक चली जाती है, और पता ही नहीं लगता है, वो दीवार के अंदर ही एक अपना वो ले लेती है अस्तित्व। तो ये है इसकी म्यूरल की बात। अब इसमें से मेरे को कौन सी शैली विशेष प्रिय है, तो मैंने ज्यादातर काम तो उसमें किया है ऑयल में, क्योंकि वो थोड़ा इजी रहता है, और मैं पोर्ट्रेट्स और लाइफ ज्यादा बनाती हूँ, तो उसमें कई बार उसको बनाऊंगी तो थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, तो ऑयल में बड़े फ्रीली आप कर सकते हो काम, बस इतना ध्यान रखना है कि डार्क पे लाइट नहीं लगनी चाहिए। तो ज्यादा काम मैंने उस पर किया है, वैसे मैंने सब में किया है, वाटर कलर में भी किया है, एक्रेलिक में भी किया है, और मैंने कोलाज भी किए हैं। मैं किसी भी शैली को कभी छोड़ती नहीं, मेरे को सब सीखने का शौक है, पर मैं ज्यादा काम मैंने ऑयल पेंटिंग पे किया हुआ और एक्रेलिक में।

0: अर्चना जी बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी ब्यूटीफुली आपने ये सब चीजें एक्सप्लेन की। हालांकि एज ए लेमैन ये बहुत कुछ चीजें मेरी आधी समझ में आई आधी नहीं आई, लेकिन सुन के बहुत अच्छा लगा और थोड़ा बहुत जानकारी भी हो गई इस आपके इस एक्सप्लेनेशन से। बहुत बहुत सुंदर, बहुत
1: अब मेरा एक भाग्य कि आपको थोड़ा बता सकी।
0: नहीं नहीं ये बहुत ही टेक्निकल सा काम है। वैसे आप थोड़ा राजस्थान की लोक कला की तरफ आते हैं, कला की दृष्टि से राजस्थान की लोक कला और परंपरागत चित्र शैली जैसे किशनगढ़, फड़, पिछवाई, इसको आप कैसे देखती है?
1: एक्चुअली लोक कला है वो तो मॉडर्निटी है और दूसरी जो करते हैं ये लोग फेस्टिवल पे वो भी सब वही है। लेकिन आपने पूछा है कि किशनगढ़, तो किशनगढ़ शैली जो है उसमें सबसे ज्यादा अगर पॉपुलर है तो एक बनी ठनी नाम की एक पेंटिंग है
0: बनी ठनी,
1: जो कि वहाँ के राजा सावंत सिंह के टाइम में वो गायिका थी और कवित्री थी, वो बहुत सुंदर थी और उन्हीं को मॉडल रख करके और उन्होंने इस बनी ठनी को बनवाया था। तो उसका एक अलग ही अपना, अच्छा किशनगढ़ का जो काम है ना वो थोड़ा, जितने भी काम है बूंदी की शैली, किशनगढ़ की शैली, उदयपुर की, बीकानेर की, जोधपुर की, सब में थोड़ा सा फर्क है। तो जो किशनगढ़ का जो काम है उसमें तो थोड़ा येलोइश लेते हैं वो लोग स्किन के कलर में, और अच्छा। जो बूंदी का है उसमें थोड़ा रेडिश लेते हैं, ऐसे सबकी थोड़ी थोड़ी, ये जो होती है बहुत डेलिकेट होती है, आंखें इनकी बिल्कुल कान तक होती है, नाक बहुत छोटी जैसी होती है, बहुत खूबसूरत होती है, और अच्छा। वो जो बूंदी की है वो थोड़ी सी मतलब स्टाउट सी होती है, थोड़ी गुलाबी से रंग की होती है, वो सब वहाँ के जो मतलब वहाँ के जितने भी इंसान है ना क्षेत्र वाइज अलग अलग होते हैं। आप देखो जोधपुर के बहुत बड़े होंगे, बीकानेर के लंबे होंगे, मेवाड़ के ठीकने होंगे, उसी के अनुसार उन्होंने अपनी ये पेंटिंग्स बनाई है। लेकिन इसमें किशनगढ़ की शैली पे जो बड़ी ठनी बनी है उसकी तो तुलना जो वो जो उन्होंने बनाया था, क्या नाम है हमारे बहुत बड़े कौन से कलाकार हैं, उन्हें ये ध्यान नहीं आ रहा मुझे उनका नाम, बहुत विंसी, लियोनार्डो विंसी, विंसी से मिलती जुलती है। तो और बाकी की ये जो आप फड़ और पिछवाई की बात कर रहे हैं तो फड़ एक कपड़े पे बनाई जाती है, पिछवाई भी, तो ये ज्यादातर मंदिरों में मूर्तियों के पीछे लगाते हैं और उसमें कोई कथा या कहानी होती है अगर आप उसको देखो ध्यान से, तो वो उसी के लिए ही लगाई जाती है, उसमें पूरा चित्रण होता है उसके, जिसके भी बारे में वो बना रहे हैं, चाहे वो किसी राजा के हो, चाहे वो किसी देवता के हो, चाहे वो कोई किसी के भी हो, तो वो उसकी कृष्ण के भी हो और वो रामदेवरा में भी उनके पे भी कथाएं हैं बहुत सारी, कई सारी चीजें, वो सारी फड़ जो है वो कोई कहानी कहती है, मतलब उसमें कई सारे दृश्य होते हैं एक ही फड़ में, और वो पीछे लगाने का, दीवार पे लगाने का है उसका, तो वो भी बहुत अच्छी है। मतलब कलाएं तो सभी बहुत अच्छी है, मांडने भी बहुत अच्छे हैं, अगर आप देखोगे ना पुराने मतलब इसके, चाहे हड़ौती के हों, चाहे उदयपुर के हों, चाहे कहीं के भी, मांडने भी इतने खूबसूरत हैं, और उन्होंने उसको भी एक अलग शैली, जो उनके दिमाग एक्चुअली जो दिख रहा है वो जरूरी नहीं है, जो आपको महसूस हो रहा है, जो आपकी मस्तिष्क पे आपके वो इम्प्रेशन छोड़ रहा है उसको लेकर के उन्होंने बनाए, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और आज की आधुनिक शैली से मिलते भी बहुत है। वो लोग तो जान के करते हैं आज, वो अपने आप करते थे स्वतः, तो ये है।
0: बहुत बहुत सुंदर।

0: तो अब थोड़ा सा बेसिक्स पे आते हैं। एक अच्छा चित्रकार बनने के लिए किन गुणों का या एट्रीब्यूट्स की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, इसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों।
1: एक अच्छा चित्रकार होने के लिए सबसे बड़ी बात तो उसकी दृष्टि, उसका
0: जी
1: परसेप्शन, वो क्या देख रहा है, अवलोकन। और उसके बाद में आपको उसको, वो जो सृजन करता है उसकी सारी टेक्निक्स, वो सारी चीजें उसको बनानी आनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि वो एज इट इज कॉपी नहीं, उसके अंदर उसका अपना खुद का जो भाव और जो उसने ग्रहण किया है वो उसके अंदर आर्टिस्टिक रूप में आना चाहिए। मतलब नकल करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप अपने आप स्वतः काम करोगे दिल से, तो आपका अपना एक शैली खुद ही डेवलप हो जाएगी। जैसे हम साइन करते हैं तो अपने आप ही शुरू हो जाते हैं वो अलग। आप कितना भी कोशिश करो तो सबकी अलग पहचान है, तो अपनी एक अलग पहचान और सृजन शक्ति और ये मतलब देखना, गहरी दृष्टि से उसको देखना, उसकी चीजों को महसूस करना, ये चीजें। और फिर अपना मेहनत भी चाहिए उसके लिए, ये नहीं कि जल्दी जल्दी करा और निकल गए।
0: हाँ सही बात,
1: बड़े
0: सही
1: पेशेंस चाहिए उसके लिए, धैर्य चाहिए उसके लिए। तो
0: बात।
1: ये सब चित्रकार के गुणों का मैं वर्णन कर सकती हूँ कि ये होना जरूरी है। और ये एक तरीके से साधना है, तो ये एक मेडिटेशन भी है जो आपको खुश रखेगी, आप खुद से बनाओगे तब। जी
0: नहीं, आपने अभी बता ही दिया, ऑब्जर्वेशन अवलोकन बहुत जरूरी है। ऐसा कुछ अनुभव हमारे साथ साझा कर सकती है जब आपकी गहरी दृष्टि या आपकी ऑब्जर्वेशन ने एक बहुत ही ऑर्डनरी साधारण से दृश्य को एक अच्छी कलाकृति में बदल दिया, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ?
1: मेरा एक ब्लैक एंड व्हाइट का एक सीरीज थी पूरी, जिसको कि
0: अच्छा
1: बड़े बड़े चित्रकारों ने और कलाकारों ने भी सराहा है। उसका काफी पेंटिंग का निकला भी है पेपर्स वगैरह में हर जगह से। तो वो
0: जी
1: मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को एक्चुअली, मैं बहुत फास्ट काम करने वाली हूँ, मुझसे धैर्य से धीरे धीरे वाले जो क्राफ्टमैनशिप है ना, वो मुझे वो एक अलग चीज होती है। और फाइन आर्ट्स और अपना एक अलग आपका काम होता है। तो मैंने जब स्केचिंग करती थी तो मुझे बोरियत बहुत लगती थी, तो मैंने
0: अच्छा,
1: काजल उठाया जो कि काजल बनता है ये इसमें लघु
0: आंखों में
1: चित्र
0: लगाने
1: में
0: वाला।
1: जिसमें लगाते
0: अच्छा
1: हैं। हाँ, उसी को ही,
0: अच्छा
1: उसी को
0: वो
1: उठा के पाउडर बना के बाजार में भी मिलता है। तो मैं अपनी स्केच फाइल ले जाती थी और जो भी मैं दृश्य देखती थी ना, उसको मतलब वैसे नहीं करती थी जैसा कि आप फाइन लाइन से कर रहे हैं ये वो। एक एक आपकी दिमाग पे जो छाप पड़ती है उससे आप उसको फाइन फटाफट फटाफट, पूरी फाइल मेरी उसी से भरी हुई थी। और वो मुझे इतना एप्रिशिएशन मिला उसके अंदर, क्योंकि उसमें आपको एक फीलिंग आती है कि ये गांव की का दृश्य है, कि ये किसी हवेली का है, कि किसी गढ़ का है, कि ये क्या है। तो वो बहुत सबको बहुत अच्छा लगा और उतना उसके तारीफ हुई। और वो पूरी सीरीज बिक गई थी, कोरिया के कुछ लोग आए हुए थे, तो वो पूरी ब्लैक एंड व्हाइट की सीरीज मेरी चली गई, क्योंकि उसके अंदर आभास था, उसके अंदर यहाँ का राजस्थान का एक वो जीवंत होकर के दिखता था वो। लेकिन वो प्रॉपर ऐसे नहीं कि आपने इतनी ऐसे ऐसे करके बना रखा है लाइन ड्रेस, वो चला ही जाएगा। आप देखो राजस्थान में धूल बहुत होती है और गड़बड़ सब जो उससे ढके रहते हैं, तो आपको एक इम्प्रेशन आता है। और वो इम्प्रेशन अगर आपने ले लिया, खाली दीवार के ही मैंने खिड़कियां वगैरह बनाई है उसको भी उसी से ही किया। तो वो मैंने, मेरे को एक शो करना था, मेरी डेट फिक्स थी अहमदाबाद में, तो मैं उसको ले गई फाड़ करके, दो दो पैसे की तो शीट थी है उसकी, और तो फ्रेम करा के लगाई। वो इतनी पसंद की गई, और बाद
0: अच्छा
1: में जब मैं आईफेक्स में मेरा शो था तब मैंने लगाई थी, तो वहां पे सकरात का दिन था, तो उस समय सारे जो बड़े आर्टिस्ट हैं वो वहां आते हैं, उनका एक डिनर होता है तो सीनियर आर्टिस्ट। तो उन्होंने जब मेरी दोनों पेंटिंग्स देखी, दूसरी भी लगा रखी थी आई की, तो उन्होंने कहा अरे तुम ये क्यों कर रहे हो, ये काम तुम्हारा कितना अच्छा है। तो वो सहज काम, मतलब जो मेरे स्केचिंग के तरीके से यूज हो रहा था, उसको बहुत एप्रिसिएशन मिला, क्योंकि उसमें एक अलग झलक थी और उसके अंदर वो आभास भी था जो मैं बना रही थी। तो ये एक साधारण सी चीज को देख के, दीवार को देख के, उसकी जाली को देख करके, ऐसे मैंने बहुत सारे बनाए चीजें और उसकी बहुत तारीफ भी हुई। तो मैं समझती हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा रहा। और इसको आप मतलब मैं अनुभवी कहूंगी अपना कि ये अनुभव मेरा बहुत अच्छा था। और गहरी दृष्टि तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को जो दिखाई दिया मैंने उसको एज इट इज उतार दिया, और वो भी किसी अलग शैली में अलग तरीके से।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।

0: हाँ, एक प्रश्न मैं पूछता हूं कि जो युवा आज
1: हाँ
0: कला
1: जी
0: के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उन्हें कुछ आप सुझाव देना चाहेंगी, कोई गाइड करना चाहेंगी?
1: हाँ, एक्चुअली क्या है कि अभी एआई के द्वारा इतनी चीजें बन रही हैं, मतलब
0: जी
1: एज इट इज जो जो चाहते हैं वो बना देते हैं, पर आप डिजिटल काम भी कर रहे हो तो भी उसमें उस अगर आपका कुछ का खुद का कुछ है तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो कैरियर में। लेकिन अगर आप एआई को रख करके और किसी भी चीज को वैसा के वैसा वो बना देना, एक किसी पर्टिकुलर उसको दबा के, ऐप को दबा के या किसी चीज को दबा के, तो फिर आपका क्या कैरियर बनेगा? सिर्फ आप कमा सकते हो, वो भी लोग बाग इतनी जल्दी बोर हो जाएंगे उससे, क्योंकि उसमें कोई नॉवल्टी इतनी ज्यादा नहीं रहेगी जब तक कि आप उसमें टेक्निक्स और दूसरी चीजों का प्रयोग नहीं करोगे। तो मैं तो यही कहती हूँ कि भाई डिजिटल आप करो, क्योंकि आज की परिवर्तन तो बिल्कुल ऐसा सत्य है कि जिसको आप नहीं हटा सकते, लेकिन उसमें थोड़ा अपना भी डालो तो हो सकता है कि आप कुछ, मतलब जो भाव और उसके जो अंदर जो भी आप खुद करते हो, उसमें जो कोमलता और वो क्रिएट करते हो, तो वो अपना जो तुम्हारा उसमें जाता है वही आपको सक्सेस दिलाएगा, अदरवाइज कोई कैरियर नहीं।
0: अब थोड़ा सा आपके व्यक्तिगत जीवन तक आते हैं। कोई इस पूरी जीवन यात्रा में, कला की यात्रा में, व्यक्तिगत यात्रा में कोई ऐसा इंटरेस्टिंग एनिक्डोट या कोई ऐसी घटना जो आज भी आपके स्मृति में जीवंत है, आप अगर हमसे
1: हाँ
0: शेयर करना चाहें तो बहुत अच्छा लगेगा।
1: नहीं, मैंने आपको एक तो कांति बाई का उदाहरण बताया, इतने बड़े आर्टिस्ट जिनके सामने मैं मतलब खड़ी भी नहीं हो सकती, तो उनसे मैंने दो तीन बातें पूछी और उन्होंने इतनी अच्छी बात बताई मुझे। एक्चुअली हम लोग क्या होता है, ईगो के कारण वही है हमारे में अहम होता है, हमको पता ही नहीं होता है और हम जो है वो सोचने लग जाते हैं कि भी ऐसे कैसे, नहीं मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। तो उन्होंने मुझे बहुत शांति से, आनंदमयी माँ के वो भक्त थे, बनाते थे, उनको बना भी रहे थे और उनके वो भी थे, तो उन्होंने कहा कि अर्चना, मैंने उनको कहा कि भाई ये फलाना जो है ना वो ऐसे आ जाता है और ये करता है वो करता है और मैं उनको मना नहीं कर सकती। तो उन्होंने मुझे सिंपली कहा कि नहीं, तुम उनको मना इसलिए नहीं कर सकती कि तुम्हारी इमेज उनके उसमें खराब नहीं हो जाए। तो मैंने उनको कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, तो मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, एक तो ये है, दूसरा मैंने माँ के लिए भी बोला था कि मैं उनको इतना प्यार करती हूँ और फिर वो मेरे से रोती है करती है, तो उन्होंने कहा तुम्हारा मैं आ गया ना इसलिए, तुम बचपन में वो तुम्हें मारती, तुम पल्ला पकड़ती थी, मतलब दो तीन ऐसी गहरी बातें बताई उन्होंने जिन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। और मुझे समझ में आया कि सच बात है कि हम किसी को उसको बुरा लगे इसलिए नहीं, हमको कोई बुरा नहीं समझे इसलिए हम उससे ऐसी बात नहीं करते। तो एक तो ये मेरे कभी मेरे स्मृति पटल से जाएगा नहीं, गांधी भाई के दो तीन सवाल को। दूसरा, एक वशिष्ठ साहब हुआ करते थे हमारे जब मैं लेक्चरर थी भवानी मंडी में, तो वो

0: उन्होंने बहुत कम वहां पे थे, तो मैंने दो ग्रुप्स बनाए थे। मैंने कहा कुछ लोग पहले काम करेंगे, फिर वो छुट्टी पे से आ जाएंगे तो दूसरे करें। तो वो बशीर साहब बड़े अच्छे वर्कर थे, बहुत अच्छे। और मेरे स्टूडेंट्स भी जो अच्छे होते हैं उनको मैं अच्छा ही करती हूँ, चाहे उनका कुछ भी हो स्वभाव या कुछ भी करें। तो वो बशीर साहब कहने लगे मैं तो अंबानी, मेरी बड़ी पहचान है और आप कर लो जो करना है, मैं तो घर में रहूंगा, आप दूसरे वाले कैसे जाएं। तो मैंने उनके खिलाफ एक्शन लिया, एक्सप्लेनेशन कॉल करा मतलब उनका। तो उन्होंने मेरे को बहुत, मैं ये हूं, मैं ये करा दूं वो करा दूं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब उनकी ACR भरी गई, कुछ भी मैंने उनका आपको कर लो जो, तो उसमें मैंने उनको जो दिया ना एक्सीलेंट, तो वो इतने ज्यादा वो हो गए कि मैं तो सोचता था कि आप मेरी बहुत बुरी करोगे, ये करोगे। तो मेरा कहना यही है कि हमेशा जो डिजर्विंग है व्यक्ति, वो चाहे कुछ भी करे व्यवहार आपके साथ, लेकिन आपको ऑनेस्टली जो डिजर्व कर रहा है वो बहुत अच्छे वर्क करते हैं। तो उनको मैंने एक्सीलेंट दिया, ऐसे ही मैंने एक और को दिया तो वो अभी प्रिंसिपल होकर रिटायर हुए। तो मैं हर एक से बस यही कहना चाहती हूँ कि मैंने ये जो सीखा है ये भी किसी से सीखा है कि आप अपनी पर्सनल लड़ाई के लिए किसी और का कैरियर या उसका कोई भविष्य नहीं बिगाड़े। और फिर वो तो बेचारे एक साल तक मेरे से यही कहते रहे, मैं तो सोचा नहीं था, मैंने तो आपको गलत समझ लिया। तो सब वो भी मुझे याद रहता है किस्सा। और स्टूडेंट्स के बारे में भी मैंने कभी ऐसा नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी मेरी स्मृति में चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि जिसने मेरे को थोड़ा सा शायद एक कदम ऊपर आना सिखाए। तो ये मेरे को याद है।
1: और ये ACR वाली बात तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो
0: नहीं, वो तो बिगाड़ के ही रखते हैं। मैंने मेरी एहसास देखी है ना बाद में, तो चिढ़ जाते हैं तो बहुत बिगाड़ते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि नहीं, जो व्यक्ति जैसा है वो अलग बात है कि उसने क्या किया, वो व्यवहार अलग, पर उसने काम किया था बहुत अच्छा, तो उसको आपको सराहना ही पड़ेगा और जो डिजर्विंग है उसको देना चाहिए।
1: बहुत सुंदर। आप थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में, परिवार का कितना सहयोग रखा?
0: हाँ जी, एक्चुअली क्या था कि मैं जब 11th क्लास में थी तो मेरे फादर जो है उनकी का देहावसान हो गया, और उन्होंने मुझे कहा कि भाई तू बिना पढ़े लिखे इतना जब टॉप टॉप करती सारे स्कूल में, तो तू पढ़ा कर क्योंकि तेरे को ही संभालना है मेरे जाने के बाद। उन्हें पता था कि मैं जाऊंगा, उनको भी किडनी की प्रॉब्लम थी। तो मेरे परिवार में मेरे जो संघर्ष थे वो 11th क्लास के बाद से शुरू हो गए थे, और उन संघर्षों से लड़कर के ही मैं इतनी मजबूत बनी। जिसने कभी पानी नहीं पिया अपने घर में गिलास उठा के, वो सारे काम कर रहे थे, बर्तन माज रहे थे, झाड़ू पोछे कर रहे थे, निवाड़ की खाट बुन रहे थे, गद्दे भरवा के ला रहे थे, और किसी तरह की कोई शर्म नहीं थी। तो मुझे समझ में आया कि आदमी को मजबूत जब बनना होता है ना, तो उसको हर तरीके के संघर्ष से लड़ाई करनी आनी चाहिए। तो ये मेरे को ऐसा लगा कि मुझे मजबूती जो मिली आज, जो मैं इतनी सबसे लड़ सकती हूँ परिस्थितियों में, वो सिर्फ उसी के कारण है कि जब से वो गए तो मैंने ये सोचा कि भाई मेरे को तो अब करना ही है, क्योंकि मुझे वो सौंप के गए ये काम कि तुम्हें ये सब करना है, मम्मी को रखना है, अपने भाइयों का देखना है, सब कुछ करना है। तो उस संघर्ष में मैंने बहुत आनंद भी लिया और सीखा भी बहुत।
1: बहुत इसने मजबूत बना दिया आपको,
0: बिल्कुल मजबूत बनाया, बिल्कुल हर परिस्थिति से लड़ना सिखा दिया।
1: तो कला यात्रा को अगर 3 शब्दों में व्यक्त करना चाहें तो कौन से वो 3 शब्द होंगे?
0: 3 शब्द मुझे तो वही लगता है कि अवलोकन, एक तो आपको देखना अच्छी तरह गहराई से आना चाहिए, आपको किसी भी चीज को परखना आना चाहिए। उसके बाद थोड़ा आपको कल्पना में भी उसको ले जा सकते हैं, एज इट इज ही बनाना, वो तो वैसे भी बहुत सुंदर बनाई हुई है, कैमरा भी दे देता है आपको। और लेकिन आप उसमें अपना थोड़ा सा अपने खुद का पुट डालते हैं कल्पना का और उसका
1: जी।
0: तो बहुत अच्छा लगता है। सृजन के लिए आपको सशक्त सारी जो सृजन की प्रक्रिया है उनको सीख करके और उनको अप्लाई करना चाहिए, ये 3 चीज है।
1: तो डॉक्टर अर्चना जी, आपने जिस आत्मीयता से अपने अनुभव, विचार और जीवन की झलकियां हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आपकी बातें साबित करती हैं कि कला सिर्फ रंगों और रेखाओं का संयोजन नहीं बल्कि जीवन का गहरा दर्शन है। हमारी शुभकामनाएं आपके सृजन और प्रेरणा की यह यात्रा यूं ही रंगों से भरी रहे। श्रोताओं, मुझे विश्वास है आज की बातचीत आपको भी अपनी रचनात्मकता को नया आयाम देने की प्रेरणा देगी। अर्चना जी, आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे कार्यक्रम में आप आए, इसके लिए तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं।
0: और मैं भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मैं अपनी कुछ बातें सब श्रोताओं को सुना करके बता सकती, जो कि मैं महसूस तो करती हूँ पर कहने का कहीं मौका इतना मिलता नहीं।
1: तो श्रोताओं, इसी सुंदर भावना के साथ मैं आलोक कुमार आपसे लेता हूँ विदा। फिर मिलेंगे एक नए अतिथि, नई प्रेरणा और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं।
2: जिंदगी के रंग हजार।
3: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।
2: छोटी सी हमारी कायनात बन गई।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
5: ये वीर गाथा है भारत माँ की मिट्टी के सपूत
6: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की। उन्हें सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में असाधारण शौर्य और पराक्रम दिखाने के लिए मरणोपरांत सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
5: ये वो बहादुर सैनिक थे जिनकी बहादुरी की चर्चा दुश्मन के गलियारों में भी बड़े सम्मान से होती थी।
6: तो आइए सुनते हैं मित्रों कार्यक्रम
5: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
7: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी, जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पुणे में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे।

0: अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
1: माँ।
2: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
1: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
2: हाँ।
1: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
2: बेटा, एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
1: जी।
2: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
1: जानता हूँ माँ।
2: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
1: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
2: जाओ बेटा।
0: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था। जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया, और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
3: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण, पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
4: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे, कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
3: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
4: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
5: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
4: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो।
6: यस सर।
4: नाथ सिंह निशाना साधो।
5: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
4: फायर।
5: सर
4: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
6: जी।
4: फायर।
5: सर सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
4: हाँ लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
5: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीरगति पाई।

हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है। क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, तो पाकिस्तान में है और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, त्यों त्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा,

विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था। अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो। उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर दो टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम। सलाम सलाम।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: ओले बोले।
2: अरे ये क्या, बच्चे कहाँ चले गए?
3: बच्चे
2: आए भी हैं या नहीं आए? एक काम करता हूँ, बाहर चलकर देखता हूँ। अरे अरे अरे अरे अरे बच्चों, तुम यहाँ छुपे थे? तुम यहाँ छुपे बैठे हो हैं? आपने मुझे पकड़ लिया। लेकिन ये तो बताओ, क्या मैं चोर हूँ? चलो ठीक है ठीक है ठीक है, अब छोड़ो तो भाई, अब बैठ तो जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तुम्हारी बात मान ली। आज मेरे अक्षर हैं ओ और ओ। ओ ओ
4: ओ ओ,
2: एक बार फिर ओ ओ
4: ओ ओ।
2: शाबाश। तो आज की मेरी कहानी का नाम है ओले बोले के औजार। ओले बोले के
4: औजार।
2: शाबाश। ओ से ओले बोले और ओ से औजार। ओले बोले के औजार। शाबाश। तो बच्चों, एक था व्यापारी। कौन था?
4: व्यापारी।
2: अच्छा ये बताओ, व्यापारी होता कौन है?
5: वो सामान बेचता है।
2: सामान बेचता है,
6: जो चीजें बेचता है।
2: चीजें बेचता है, तरह तरह की चीजें।
7: वो साड़ी बेचता है।
2: साड़ी बेचता है।
8: वो लड्डू बेचता है।
2: लड्डू बेचता है।
9: वो खाना भी बेचता है।
2: खाना बेचता है।
10: वो लोहा बेचता है।
2: लोहा बेचता है।
11: वो बर्तन बेचता है।
2: बर्तन बेचता है। हाँ बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जो व्यापार करता है उसे कहते हैं हम व्यापारी। क्या कहते हैं?
4: व्यापारी।
2: शाबाश। तो बच्चों, एक था व्यापारी, उसका नाम था ओले बोले। क्या नाम था?
4: ओले बोले।
2: वो बहुत सारी चीजें बेचता था, जैसे कपड़ा, बर्तन, औजार। ओ से ओले बोले और ओ से औजार। अच्छा औजार पता है ना क्या होता है? बताओ बताओ।
6: प्लास,
2: कीले,
6: पेचकस,
2: आरी,
6: हथौड़ी।
2: हथौड़ी, अरे वाह क्या बात है भाई, हमारे बच्चे तो बड़े होशियार हैं। सही कहा तुमने। हाँ इसके अलावा वो और भी कुछ बेचता था, बताऊं क्या क्या?
6: क्या भैया?
2: वो ओखली बेचता, और वो भी दो दो मूसल के साथ।
6: ये ओखली क्या होता है?
2: ओखली बेटा जिसमें मसाला कूटते हैं। हाँ ऐसे धम
4: धम
2: धम धम धम। हाँ
6: धम धम।
2: तो बच्चों वो ओखली बेचता दो दो मूसल के साथ, और हाँ साथ में लाल गुलाबी लहंगा भी बेचता था, जिसके साथ चार चूड़ियां भी होती।
7: बिल्कुल मुफ्त।
2: बिल्कुल वो
7: गोलगप्पे के साथ पानी।
2: तो बच्चों बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक। अच्छा अब मैं आगे कहानी
4: सुनाऊं?
2: हाँ तो सुनो कहानी। एक बार बच्चों हुआ ये कि ओले बोले की दुकान पर एक औरत आई। शाबाश। ओ से औरत। तो बच्चों वो औरत ओले बोले से बोली,
12: अरे ओले बोले भैया, एक ओढ़नी दिखा दो जिसमें मोर बने हो।
6: भैया
4: ओ से ओढ़नी।
2: ओ से ओढ़नी। ओ से ओले बोले। हाँ तो ओले बोले ने उस औरत से कहा,
12: हाँ हाँ बहन जी, हाँ अभी दिखाता हूँ, ये देखिए, ये लाल, ये हरी, ये पीली, और ये लो एक और, ये है नीली।
2: तो ओ से ओढ़नी, ओ से ओखली, ओ से ओले बोले, और ओ से
4: औरत,
2: औरत, और ओ से और। तो बच्चों आगे सुनो क्या हुआ। तभी वहां पर एक बूढ़े बाबा आए और बोले,
13: अरे बेटा बेटा।
12: हाँ बाबा कहिए।
13: बेटा क्या यहाँ मेरी दवा मिलेगी?
2: तब ओले बोले ने कहा, अरे बाबा मैं औषधि नहीं बेचता। औषधि यानी
4: दवाई।
2: दवाई। वाह क्या बात है, इसी बात पर हो जाए ताली जोरदार भाई। ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम सब बहुत ही होशियार हो, बहुत ही प्यारे हो, और बहुत ही समझदार भी हो। अब आगे सुनाओ कहानी।
4: हाँ भैया।
2: तो सुनो कहानी। तो बच्चों ओले बोले ने कहा,
12: बाबा जी ये दवा वहाँ सामने वाली दुकान पर मिलेगी। हाँ वहाँ जाइए आप।
13: अच्छा बेटा,
7: मैं केमिस्ट से ले लूंगा।
12: केमिस्ट से ले लूंगा। वाह क्या बात है, केमिस्ट कौन होता है बताओ? जो दवाई बेचता है, जो दवाइयाँ बेचता है। हाँ पता फिर क्या हुआ?
4: क्या हुआ?
12: तभी वहाँ पर दो आदमी आए। पता उनके नाम क्या थे? उनके नाम थे ओंकार और ओम। ओंकार और ओम। ओ से
4: ओंकार।
12: शाबाश। ओ से ओंकार, ओ से ओम और ओ से और ओंकार और ओम। अच्छा पता है वो दोनों क्या करने लगे? वो दोनों औने पौने पैसे देकर सारा सामान मांगने लगे। ओ से ओम।
7: वो चोरी कर रहे थे।
12: हाँ चोरी समझ लो, चोरी और सीना चोरी। ओ से ओम, ओ से ओंकार और ओ से औने पौने। औने पौने यानी उल्टे सीधे। ठीक है बच्चों? तो कभी वो कहते
13: ओले बोले हमें 2 रुपए में ओखली दे दो,
12: और वो भी दो दो मूसल के साथ। हा?
4: हाँ,
13: हाँ, 1 रुपए में हथौड़ी दे दो, जल्दी करो जल्दी करो। हाँ,
7: 1 रुपए में साड़ी दे दो।
12: हाँ,
7: 1 रुपए में बर्तन दे दो,
12: बर्तन दे दो।
7: 1 रुपए में कुल्हाड़ी दे दो,
12: 1 रुपए में कुल्हाड़ी। फिर पता क्या हुआ?
7: क्या हुआ भैया?
12: हाँ वही तो बताने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। वो एक एक कर सारे औजार निकलवाते और कहते
13: ये सामान तो बेकार है। अरे बिल्कुल बेकार है भैया, तुम्हारे पास सारी चीजें बेकार है, कोई भी ढंग की नहीं है यहाँ पर। हाँ
7: ये तो बहुत बुरी बात है,
12: बहुत बुरी बात है,
6: बहुत बुरी बात है,
0: बुरी बात है।
12: तंग करना उससे भी बुरी बात है।
7: वो अच्छा नहीं कर रहे,
12: बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे।
7: क्या हुआ भैया?
12: बताता हूँ। फिर उनमें झगड़ा होने लगा, मार पिटाई शुरू हो गई। ओहो
7: से ओहो।
12: ओ से ओहो। शाबाश। तो उनमें बच्चों खूब धक्का मुक्की हुई।
13: अरे क्या कर रहे हो? अरे ये ले, और ले, अरे क्यों मार रहे हो? अरे
12: बच्चों उनमें इतनी धक्का मुक्की हुई कि तभी ओले बोले, ओंकार और ओम तीनों औंधे मुंह गिरे जमीन पर धड़ाम।
7: बहुत चोटे लगी।
12: हाँ बहुत चोटे भी लगी होंगी।
6: और उनको बहुत दर्द हुआ,
12: बहुत दर्द हुआ,
7: फट गया,
6: वो घायल हो गए,
12: घायल हो गए। बिल्कुल सही।
6: और भैया औंधे।
12: हाँ तो उसके बाद बच्चों हुआ ये कि वो जो औरत ओढ़नी लेने आई थी ना,
6: हाँ भैया,
12: वो वहीं पर खड़ी थी और ये झगड़ा देखकर उसने तुरंत
7: पुलिस को फोन कर दिया।
12: हाँ बिल्कुल सही, उसने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस आई तो पुलिस को देखकर ओम और ओंकार डरकर सरपट भागे, लेकिन पुलिस की आंखों से ओझल नहीं हो पाए। आखिरकार पुलिस ने उन्हें पकड़ ही लिया। तो बच्चों ओ से ओझल, ओ से ओढ़नी, ओ से ओम, ओ से ओंकार और ओ से ओले बोले, ओ से औरत, ओ से औजार और ओ से औंधे। हाँ बच्चों बात दरअसल ये थी कि ओले बोले इतने अच्छे औजार बेचता था कि ओम और ओंकार उन्हें लेना तो चाहते थे पर पैसे देना नहीं चाहते थे।
7: ये तो बहुत बुरी बात है,
12: बहुत बुरी बात है, सच
6: ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं।
7: हमें पैसे देकर चीज खरीदनी चाहिए।
12: बिल्कुल सही, बिल्कुल
6: हमें ईमानदार होना चाहिए।
12: बिल्कुल सही, ईमानदार होना चाहिए।
7: और चोरी कभी नहीं करनी चाहिए,
12: नहीं करनी चाहिए,
6: बुरी बात होती है,
12: बहुत बुरी बात होती है। शाबाश। तो बच्चों अब हुआ ये कि ओम और ओंकार को पुलिस ने पकड़ लिया और ओले बोले अपने औजार फिर से बेचने लगा और बाकी चीजें भी आराम से बेचने लगा।
7: और हथौड़े और कील और पेचकस और औजार बेचने लगा,
12: औजार बेचने लगा,
7: और पेच ओढ़नी और चूड़ी,
12: ओढ़नी और चूड़ी
7: और साड़ी भी,
12: साड़ी भी,
7: बर्तन और पेच भी,
12: पेचकस भी, कपड़े
7: और आरी,
12: आरी। शाबाश। हाँ तो बच्चों उसके बाद ओले बोले ने उस औरत का धन्यवाद किया और कहा
13: बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, जो आपने मुझे आज बचा लिया।
12: अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था।
13: रुकिए रुकिए, आप ये खुरपी लीजिए मेरी तरफ से।
12: अरे मगर चलो ठीक है, मुझे खुरपी लेनी भी थी। धन्यवाद ओले बोले, धन्यवाद।
2: तो बच्चों, ओ से ओले बोले और ओ से औजार। ओ औ,

0: तभी वहाँ दो आदमी आए, ओंकार और ओम था नाम। औने पौने पैसे देकर मांग रहे सारा सामान।
1: ला दे ओखली, दे मुसल, सारे औजार दे।
2: अरे इतना घटिया सामान कौन देगा तुझे इसके दाम?
0: कभी वो मांगे ओखली मूसल, एक एक करके सारे औजार। बार बार देखे और बोले, ये सामान है बेकार।
3: खूब हुई धक्का मुक्की और ओले बोले गिरा धड़ा।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्याभील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज।
1: कितना हल्का कितना भारी,
2: कितना हल्का कितना भारी।
3: अरे भाई, आज तो तुम लोग बहुत जल्दी आ गए।
4: हमें आज कहानी भी तो सुननी है।
5: भैया, आज दीदी क्यों नहीं आई?
3: हाँ, ये बात है।
6: अनंत, लो मैं भी आ गई। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो बच्चों?
3: बढ़िया हो ना?
6: तो अनंत, आज तुमने बच्चों को बताया कि हम इन्हें कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं?
3: बस वही तो बताने वाला था बच्चों। आज हम सुनाएंगे एक घोड़े की कहानी।
4: घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है ना।
3: हाँ।
4: मैं एक बार घोड़े पे बैठा भी था।
6: अच्छा? अच्छा, बस एक ऐसा ही घोड़ा था जैजू और मन्नू के पास।
7: जैजू मन्नू कौन थे
3: बच्चों? जैजू और मन्नू बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे थे। और उनके पास था एक घोड़ा।
4: घोड़ा बहुत तेज दौड़ता था।
6: बहुत तेज।
3: अरे वो तो बहुत ही ताकतवर भी था और बहुत ही ज्यादा हट्टा कट्टा घोड़ा था। और पता है वो 700 किलोग्राम भार उठा सकता था।
7: 700 किलोग्राम?
3: हाँ, और वो भी बड़े आराम से।
4: 700 किलोग्राम?
3: हाँ।
4: इतना ज्यादा उठा लेता था वो घोड़ा?
3: हाँ श्रेया, अरे वो तो बहुत ताकतवर था,
6: लेकिन वो थोड़ा आलसी भी था। आलसी?
3: हाँ बच्चों, काम करने का उसका मन ही नहीं करता था। वो तो बस सोता रहता था घोड़े बेचकर।
4: पर वो तो खुद ही एक घोड़ा था।
3: लेकिन बच्चों, ये तो कहावत है ना, घोड़े बेच के सोना है।
4: फिर क्या हुआ?
6: फिर एक बार जैजू और मन्नू अपना मकान बदल रहे थे। वो घर का सारा सामान घोड़ा गाड़ी में लादने लगे।
3: और फिर जैजू और मन्नू के पिताजी ने कहा, हाँ,
8: सबसे पहले इस पानी की टंकी को रख देता हूँ घोड़ा गाड़ी पर।
3: फिर जैजू और मन्नू की मम्मी बोली,
9: ये रहे 5 बोरी गेहूँ, इन्हें भी रख देती हूँ।
10: अरे अरे भाई, ये 3 मेज तो रह गए। अरे पापा।
8: अरे बेटा, ले आ ले आ।
3: और घोड़ा कहने लगा,
10: अरे इतना भार, अरे मैं कैसे उठाऊं,
8: पहले ही बहुत थक गया हूँ।
6: अरे रुको रुको, 4 कुर्सियाँ भी बाकी हैं। और उसके बाद जैजू और मन्नू ने 4 कुर्सियाँ, 1 अलमारी, 2 गद्दे, 3 बोरी चावल और रखे।
3: तब घोड़ा बोला,
10: अरे इतना भार।
6: अरे रुको रुको रुको, अभी तो और भी सामान है। और तब जैजू और मन्नू ने एक बांस की सीढ़ी, कुछ और बर्तन भी रख दिए।
3: और बच्चों, घोड़ा बोला,
10: अरे अरे अब मैं और नहीं उठा सकता इतना भार। अरे इतना सारा सामान, आज तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरे सिर में तो बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे
4: घोड़ा बोला, मेरे पैर में भी दर्द हो रहा है। फिर क्या हुआ?
6: और तब जैजू और मन्नू के पापा ने उनसे कहा,
8: जैजू मन्नू।
10: जी पिताजी।
11: जी पिताजी।
8: भाई, लगता है घोड़े की तबीयत ठीक नहीं है। अरे वो 700 किलोग्राम से ज्यादा भार नहीं उठा सकता।
4: वो बहुत भारी हो गया था
12: क्या? वो 1000 किलोग्राम हो गया था।
6: अरे रुको रुको, पहले तो जैजू और मन्नू के पापा ने उन्हें सामान के बारे में बताया, वजन के बारे में जानकारी दी, और फिर जैजू और मन्नू सामान का भार जोड़ने लगे।
3: हाँ बच्चों, तुम भी जैजू और मन्नू का साथ दो और उनके साथ मिलकर सामान का भार जोड़ो।
7: ठीक है।
3: तो एक गेहूं की बोरी का वजन है 100 किलोग्राम।
7: सौ किलोग्राम?
3: हाँ। और एक चावल की बोरी और एक अलमारी मिलाकर हुई 105 किलोग्राम।
11: 105 किलोग्राम।
6: तो बच्चों बताओ कुल कितना भार हुआ, 100 और 105 किलोग्राम?
11: 205।
3: 205 क्या?
11: ग्राम।
3: सिर्फ ग्राम?
11: किलोग्राम।
3: शाबाश, ये हुई ना बात, 205 किलोग्राम। हाँ, तो अब बारी आती है कुर्सी की। एक कुर्सी का भार है 5 किलोग्राम। कितने किलोग्राम है?
11: 5 किलोग्राम।
3: और पहले जो भार था वो था 205 किलोग्राम। तो अब हमने इसमें 5 किलोग्राम और जोड़े तो कितना भार हो गया?
11: 210 किलोग्राम।
3: शाबाश, इसी बात पे हो जाए ताली। हाँ, तो भाई अब बारी आती है पानी की टंकी की। और जानते हो पानी की टंकी का भार कितना है?
11: कितना है?
3: 50 किलोग्राम।
11: 50 किलोग्राम।
3: हाँ, तो अब बताओ कुल मिलाकर कितने किलोग्राम हुए? अभी तक भार था 210 किलोग्राम, उसमें हमने पानी की टंकी का भार जोड़ दिया यानी कि 50 किलोग्राम जोड़ दिया, तो कुल मिलाकर कितने किलोग्राम भार हो गया?
11: 235 किलोग्राम।
3: अरे नहीं बचवा, 235 नहीं, 210 किलोग्राम और 50 किलोग्राम पानी की टंकी का भार मिलाया तो कुल मिला के कितना भार हो गया?
11: 260 किलोग्राम।
3: शाबाश, इसी बात पर बजाओ ताली। तो 260 किलोग्राम के बाद आया 10 किलोग्राम का मेज।
11: 270 ग्राम।
3: सिर्फ ग्राम?
11: किलोग्राम।
3: शाबाश, ये हुई ना बात, किलोग्राम।
6: और अब बारी आती है गद्दे की।
3: भाई एक गद्दा है 20 किलोग्राम का।
11: 290 किलोग्राम।
3: क्या बात है भाई, बच्चे वैसे बहुत होशियार हो गए हैं।
6: बहुत होशियार।
3: अब बारी आती है बांस की सीढ़ी की, जिसका भार है 10 किलोग्राम।
6: तो बच्चों अब बताओ कुल कितना भार हुआ,
3: यानी 290 किलोग्राम पहले और अब 10 किलोग्राम मिलके हो गया 300 किलोग्राम। अच्छा बर्तन तो रह गए है ना?
11: हाँ।
3: तो बर्तन हुए 10 किलोग्राम के।
11: 300 किलोग्राम।
3: हाँ, 310 किलोग्राम।
6: वाह वाह वाह वाह। तो भाई ये तो सब बच्चों ने मिलकर बता दिया।
3: क्या बात है, क्या ताली।
6: तो बच्चों अब ये बताओ 310 किलोग्राम 700 किलोग्राम से कम हुआ या ज्यादा?
3: बच्चों जैजू और मन्नू ने कहा,
10: अरे घोड़े भाई ये तो बस 310 किलोग्राम है, तुम तो 700 किलोग्राम भार उठा सकते हो।
3: घोड़ा शर्माने लगा और बोला,
10: अरे अरे मेरी तबीयत तो एकदम ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे कुछ नहीं हुआ।
12: मेरा तो सर दर्द भी नहीं हो रहा,
5: मेरे को टांग भी नहीं दर्द।
10: अरे अरे ये तो बहुत ही हल्का है, अरे मैं अभी ले चलता हूँ। जयजू और मनु, अरे तुम भी बैठ जाओ घोड़ा गाड़ी पर, बैठ जाओ शाबाश। और हाँ सुनो सुनो, अरे पापा को भी तो बिठाओ। हाँ
5: मम्मी को भी तो बिठाओ।
10: अरे हाँ, अरे बुलाओ भाई मम्मी को भी बुलाओ, जल्दी बुलाओ। अब मैं सर पर दौड़ लगाता हूँ।
6: अरे अनंत रुको रुको रुको भाई, यही रोक दो अपनी घोड़ा गाड़ी को। कुछ और भी बाकी है।
3: अरे आकृति क्या बाकी है भाई?
6: आज का सवाल।
3: सही याद दिलाया तुमने। तो बच्चों आज का सवाल है 310 किलोग्राम 700 किलोग्राम से कितना कम है, यानी कितने किलोग्राम कम है। सवाल एक बार फिर सुन लो, 310 किलोग्राम 700 किलोग्राम से कितने किलोग्राम कम है। तो घर जाकर सोचो और पता लगाओ, लेकिन जाने से पहले बजाओ ताली।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। और मैं हूँ आप सभी के बीच में आपकी रेडियो साथी आरजे भावना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हमेशा आप सभी के बीच में हाजिर होती हूँ लेकर समुदाय के चर्चा में एक नया विषय। और आज भी एक नए विषय के साथ में मैं आरजे भावना हाजिर हूँ आप सभी के बीच में लेकर ये बहुत ही खास और बेहतरीन जानकारी जो है नशा मुक्ति भारत अभियान पर। और आज के इस चर्चा के विषय में चर्चा में शामिल होने हमारे साथ मौजूद हैं ब्रह्म कुमारी से ज्योति बहन। ज्योति बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। कृपया अपना परिचय दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय झाबुआ से मैं ब्रह्मा कुमारी ज्योति बहन, जो कि विगत 25 वर्षों से झाबुआ आदिवासी क्षेत्र में आध्यात्मिकता के द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हूं।
0: दोस्तों, तो आपने जाना ज्योति बहन का परिचय। इन्होंने अपने बारे में बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण जानकारियां दी। और अब हम चर्चा के विषय पर आते हैं। तो ज्योति बहन, आप ये बताइए कि नशा मुक्ति भारत अभियान के लिए क्या कहना चाहेंगी हमारे श्रोताओं से?
1: आज का हमारा विषय है, जो कि भारत सरकार और ब्रह्मा कुमारी के MOU से एक बहुत सुंदर अभियान चल रहा है, नशा मुक्त भारत अभियान। इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि जो झाबुआ जिला है, हम सभी को ज्ञात है कि इस झाबुआ जिले में नशा बहुत मात्रा में फैला हुआ है। हम ये कहेंगे कि सुबह की शुरुआत और पूरे दिन का अंत अर्थात रात तक अधिकतर मनुष्यात्माएं शराब में डूबी हुई रहती हैं, तंबाकू पाउच का सेवन करती हैं। और इस गिरफ्त में आज के छोटे छोटे बच्चे भी अछूते नहीं रहे हैं, वो भी इस गिरफ्त में आते जा रहे हैं। सर्वप्रथम हमें ये जानना है कि हम सभी परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान हैं और परमात्मा ने हम सभी को एक बहुत सुंदर उपहार दिया है और वो उपहार है हमारा शरीर। वैज्ञानिकों ने हमारे शरीर का आकलन करके इसकी कीमत लगाई है, जो है 220 करोड़ रुपए। आपको एक उदाहरण से समझाते हैं कि आज यदि हम एक 10 लाख की मारुति कार खरीदते हैं तो भी हम उसका कितना रखरखाव करते हैं। उसमें पेट्रोल डालना है तो पेट्रोल ही डालते हैं, समय प्रति समय उसकी सर्विसिंग कराते हैं। ऐसे नहीं कि आज हमारे पास पेट्रोल नहीं है तो हमने डीजल डाल दिया, नहीं, हम उस गाड़ी का बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन परमात्मा इतना दयालु है, इतना कृपालु है और उन्होंने हमें 220 करोड़ रुपए का ये शरीर दिया है। आज मनुष्य आत्मा ने उसकी क्या हालत बना ली है। आज का मानव अपने शरीर के अंदर शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, गुटखा आदि डालकर अपने शरीर को डस्टबिन अर्थात कचरे का डब्बा बनाते जा रहा है। आज हम परमात्मा के

0: भोग अर्थात नैवेद्य कभी नहीं लगाते हैं। परमात्मा के सामने भी हम बहुत सुंदर चीजों का भोग रखते हैं और हम परमपिता परमात्मा को रोज याद करने वाले अपने घर में हमने उनकी तस्वीरें लगा रखी हैं, लेकिन हम अपने शरीर में कितना गंदगी डाल रहे हैं और उसके कारण जो है शरीर इतना कमजोर होता जा रहा है।
1: जी बहन जी, मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगी आपसे कि ठीक है नशे की वस्तुएं हैं, लेकिन इंसान नशे का शिकार होता ही क्यों है, या फिर अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, कृपया इसके बारे में बताइए।
0: अब हमें ये जानना होगा कि व्यक्ति नशे का शिकार क्यों होता है। आज तक हमने जितना भी सर्वे किया या जो जो नशीली चीजों का सेवन करते हैं उनसे यदि हम पूछते हैं तो उनका एक ही उत्तर होता है कि दीदी हम बहुत छोटे थे और हमारे दोस्तों ने हमें ऑफर किया कि पाउच खा लो या तंबाकू खा लो या थोड़ी सी शराब पी लो या गांजा ले लो, और हम उन्हें ना नहीं कह सके। और एक बार हमने बाल्यावस्था में ही उस चीज को लेना शुरू किया और धीरे धीरे हम जो है उसके आदि बन गए हैं।
1: जी जी मैम, बहुत ही बढ़िया आपने जानकारी दी। अब एक और सवाल था हमारे मन में कि आखिर ये नशा किन किन चीजों से हो सकता है या फिर किन किन चीजों से होता है, कृपया इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: तो नशा सिर्फ शराब बीड़ी सिगरेट तंबाकू का ही नहीं है। आज एक और नशा इस समाज को अपनी गिरफ्त में लेते जा रहा है और वो नशा है मोबाइल का भी नशा। आज यदि हम देखते हैं कि कई घर परिवारों में सुनने के लिए मिलता है दीदी बच्चा खाना नहीं खाता है, और उसको जैसे हम मोबाइल दे देते हैं वो आराम से जो है मोबाइल देखता जाता है और भोजन करता जाता है। बच्चा रो रहा है, हमने उसको मोबाइल दे दिया, तो क्या

0: लेकिन उसने अगले दिन 9 सिगरेट पी, उसने 1 सिगरेट कम पी है, तो हमें उसको प्रोत्साहित करना है। शाबाश, वेरी गुड, आज आपने बहुत अच्छा किया, आपने 1 सिगरेट को कम किया। इससे उसके अंदर उमंग उत्साह आएगा कि ये मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे फिर इस नशे को छोड़ने का प्रयास करेगा और उसमें सफलता मिलेगी। तीसरा, नशे को दूर करने के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ, जो कि यहाँ ब्रह्मा कुमारी से भी हम निशुल्क ही प्रदाय करते हैं, जिसमें सिगरेट, तंबाकू और शराब को छोड़ने के लिए होम्योपैथिक दवाई देते हैं। और चौथा प्रकार है, कुछ घरेलू उपाय भी हैं, छोटे छोटे नुस्खे बनाकर उसका प्रतिदिन कई दिनों तक नियमित सेवन करने से भी हम नशे को पूर्णतया छोड़कर एक बहुत सुंदर शांतिमय जीवन बना सकते हैं। जो व्यसन का आदि व्यक्ति, उसको आत्मिक स्नेह की बहुत आवश्यकता है, लेकिन जैसे वो मेडिटेशन करता है तो उसको आत्मिक स्नेह के साथ साथ परमात्मा के प्रति भी वो आकर्षित होने लगता है। और जो जो मनुष्य आत्मा नशे का आदि व्यक्ति परमात्मा की ओर आकर्षित होता है, तो धीरे धीरे उसका जो ये नशा है वो छूटने लगता है, उससे एक रूहानी नशा, एक आध्यात्मिक नशा चढ़ने लगता है कि मुझे श्रेष्ठ कर्म करना है, अपने जीवन को श्रेष्ठ जीवन बनाना है, श्रेष्ठ कर्म करना है।
1: जी मैम, आपने अभी अभी कुछ घरेलू नुस्खे के बारे में बताया, तो हम जानना चाहेंगे और साथ ही जो हमारे श्रोता सुन रहे होंगे वो सभी भी जानना चाहेंगे कि आखिर कौन से वो घरेलू नुस्खे हैं जिसका इस्तेमाल करके हम नशे से दूर हो सकते हैं या फिर नशे को खुद से दूर किया जा सकता है। तो प्लीज मैम, वो घरेलू नुस्खे के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: हाँ, नशे को छोड़ने के लिए हम सौंफ, मिश्री, अजवाइन, तिल्ली, इन चारों को बराबर मात्रा में लेकर के अच्छा मिक्सर में पीस के उसका चूर्ण बना के और उसका दिन भर में 4 या 5 बार उसका सेवन करें, तो जो बार बार जो व्यक्ति का मन करता है मुझे गुटखा खाना है, पाउच खाना है या शराब पीना है, तो वो जो है धीरे धीरे उसका जो है मन उधर से हटने लगता है। दूसरा, एक अदरक का टुकड़ा, अदरक को छील कर उसका ऐसा स्लाइस बना करके भी व्यक्ति मुंह में रख करके उसको चूसता रहे, चबाता रहे और उसका रस अंदर लेता रहे, तो भी जो है पीने की या जो गुटखा खाने की वो धीरे धीरे तमन्ना जो है वो कम होने लगती है।
1: जी मैम, आपने बहुत ही बढ़िया और अहम जानकारी दी हमारे श्रोताओं को नशे को लेकर, और साथ ही हमारे झाबुआ जिले के जो श्रोता सुन रहे होंगे वो शायद इसे समझ भी रहे होंगे कि नशा कितना खतरनाक है और हमारे दैनिक जीवन में, हमारे शरीर पर और आर्थिक जीवन में उसका क्या क्या नुकसान हो रहा है। तो इसे वो सुनेंगे, समझेंगे और साथ ही हम आशा करते हैं कि वो नशे से आज ही दूरी बनाना शुरू करेंगे। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे श्रोताओं को इतनी अहम जानकारियां प्रदान की, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो दोस्तों, आज आपने जाना नशे से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसी परेशानियों से अगर आपको सामना नहीं करना है तो कृपया नशे से दूरी बनाएं। नशा कोई अच्छी चीज नहीं है, नशा एक बहुत ही गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है और वो बीमारी हमारी जान भी ले सकती है। इसलिए कृपया नशे से दूरी बनाएं और जितना हो सके खुद को इससे दूर रखें और भी लोगों को समझाएं कि नशा न करें। नशा मुक्त रहेंगे तभी तो स्वस्थ जीवन जिएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील्ड 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपनी बातें। नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और किसान साथियों कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे और तैयारी अब करने लगे होंगे कि आगामी फसल की तैयारी हम किस तरीके से कर सकते हैं। और बड़ी खुशी होती है जब हमारे कार्यक्रम को सुनकर हमारे किसान साथी हमसे बात करते हैं और हमें फोन लगाते हैं। हम इसी कार्यक्रम को लेकर हम समय समय पर बातचीत करते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथियों की आय में वृद्धि हो सके, कैसे हो सकते, और इस पर हम विस्तृत चर्चा भी करते हैं। हमने वैज्ञानिकों से भी आपकी बात कराई है कि किस तरीके से हमारे किसान साथियों की

आमदनी में वृद्धि हो सके। आज हम देख रहे हैं कि महंगाई इतनी बढ़ती चली जा रही है, लागत इतनी लगती चली जा रही है और हमारे किसान आज वहीं के वहीं हैं। हमें अब जागरूक होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यदि अपने आय में वृद्धि करना है, आपको समृद्ध रहना है, तो हमें इन छोटी छोटी बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर झाबुआ जिले की बात करें तो हमने डॉक्टर जो तोमर साहब हैं उनसे जब बात की है तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि यहाँ के किसान सिर्फ समस्या ये आती है कि किसान बहुत ज़्यादा परिश्रमी है, मेहनती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन समस्या ये है कि वो जागरूक यहाँ के किसान नहीं है। अब हमें जागरूक होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपको लगता है कि हमें खेती किसानी में समस्या आ रही है या फिर समस्या आपको अपनी जब आप बोनी करते हैं या फिर फसल लगाते हैं या फिर आपको नई किस्मों का चयन करना है तो भी समस्या आती है। बहुत सारे मन में सवाल चलते हैं लेकिन वो किससे पूछें, ये समस्या आती है। बड़ा अच्छा लगता है जब हम ये बताते हैं कि आपके शहर में झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM खुल गया है। आप इसके माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं। हमने बहुत सारे गांव में भ्रमण किया है, किसानों का यही कहना है कि हम झाबुआ में जो बीज लेने जाते हैं वो महंगा पड़ता है, अन्य जगह नहीं पड़ता है। तो इसकी भी हम आपको प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। जब हमने डॉक्टर तोमर साहब से बात की तो उनका ये कहना है कि किसान जागरूक नहीं है, हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। प्रमाणित बीज का अगर चयन करना है तो आप कृषि विस्तार जो अधिकारी रहते हैं या कृषि विश्वविद्यालय रहते हैं या फिर KVK है, रिसर्च सेंटर है या फिर कृषि विभाग है, वहाँ पर संबंधित अधिकारियों के पास जाकर हम अपनी बात को रख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि हमें बीजों का चयन करना है, हम किस तरीके से अपने बीजों का चयन कर सकते हैं। खासतौर पर अब अगर बात की जाए तो हम सोचते थे, समझते थे कि यहाँ पर सिर्फ तीन ये बीज लगाए जाते हैं, तीन प्रकार के, वो भी क्या होता है कि मूंगफली तो बहुत ही कम लोग लगाते हैं, हमारे किसान साथी सोयाबीन लगाते हैं, मक्का उगाते हैं और साथ साथ में कपास की खेती करते हैं। लेकिन जब हमने डॉक्टर तोमर साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर खेती बहुत सारे किसान करते हैं, चाहे वो धान की हो चाहे मूंगफली की हो, लगाते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में इसको बोया जाता है। क्यों बोया जाता है? क्योंकि उनको पता नहीं रहता है, उनको ये समझ नहीं आती हम किस तरीके से लगाए जाए। नई चीज़ हम कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं और आपको हर समय समय पर ये जानकारी उपलब्ध भी कराते हैं कि हमारे किसान साथी आगामी समय में किस तरीके से तैयारी करें। हमें बहुत ज़्यादा चिंता रहती है अपने किसान साथियों की, क्योंकि बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, परिश्रम यदि करते हैं तो उसका लाभ भी हमारे किसान साथियों को मिलना चाहिए। तो हम रेडियो के माध्यम से बता देना चाहते हैं, जिन किसान साथियों के पास पानी के संसाधन कम हैं वो कम पानी वाली फसलों का चयन कर सकता है, साथ साथ में आप बोइएगा, मिश्रित खेती करिएगा, जो उन्होंने बताया है कि आप मिश्रित खेती कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात आती है कि पानी का मौसम आने वाला है, लगभग हमारे किसान साथी बीजों का चयन करके रख लें कि हमें बीज कौन सा अपने खेतों में लगाना है। जिन किसान साथियों ने बीज ले लिया है वो खाद बीज की सब व्यवस्था करके रख दें, अपने खेतों की जो गहरी जुताई है वो भी हमारे लगभग सभी किसानों ने कर ली है, जो किसान रह गए हैं वो अपने खेत की गहरी जुताई कर लें, साथ साथ में गोबर की खाद उसमें डाल दें। और दूसरी बात, यदि आपको लगता है कि हमारे खेत समतली नहीं है तो उसको समतली भी कर सकते हैं और ये उपयुक्त समय है जब हमारे किसान साथी तैयारी करके रखें। हम आपके साथ हैं, हम समय समय पर सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे, वो छोटी छोटी बात आपको बताएंगे जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहती हैं। आज के हमारे कार्यक्रम खेतीबाड़ी में हमने सोचा कि नए खेती के बारे में, नई प्रजाति के बारे में हमारे किसान साथियों को जानकारी होनी चाहिए और जिन किसान साथी जो इस तरीके की धान की खेती करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, कौन कौन से बीज हमें अपने खेतों में लगाना चाहिए, कौन किस
बीजों की पैदावार अच्छी है, कितने किस्में अपने धान की होती हैं, कैसे लगाई जाती है, इस पर भी हमें बात करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आज हम देख रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और हमारे किसान साथी भी सोचते हैं कि ऐसे में हमारे किसान साथी नई पद्धति और आधुनिक पद्धति और वैज्ञानिक पद्धति से खेती करके अपनी आय को बढ़ा सकें। हम डॉक्टर जो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं उनकी बातचीत हम सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे और आज हम बेहद खास कार्यक्रम में आज आपको मौसम की भी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। ये जानकारी आपको झाबुआ जिले की होगी और इस जानकारी को उपलब्ध कराने में हमारा सहयोग कर रहे हैं क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र झाबुआ और यह जानकारी राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय से आपको उपलब्ध कराई जा रही है। विगत 5 दिनों का अधिकतम व न्यूनतम तापमान 39.2 से 40.8 व 26.2 से 28.4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना बताई जा रही है। आसमान में मध्यम से मध्यम घने बादल रहने व पिछले 5 दिनों में वर्षा दर्ज नहीं हुई है एवं 1 जून से अब तक कुल वर्षा अभी तक दर्ज नहीं हुई है। आने वाले 5 दिनों के दौरान आसमान में मध्यम घने बादल छाए रहने की संभावना है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे किसान साथी क्या करें कि जो किसान साथी ग्रीष्मकालीन मूंग की पककर तैयार फसल की कटाई कर लें, खलियान में वर्षा के बचाव के उपाय सहित धूप से सुखाकर गहाई कर लें यानी उगाई कर लें उसकी। आगामी दिनों वर्षा की संभावना को देखते हुए गोबर की खाद व बर्मी कंपोस्ट की खेत में अपने डाल दें। खेत में बचे फसल अवशेष यानी नरवाई को जलाए नहीं, गहरी जुताई व खेत में कर लें, साथ साथ में मिट्टी भी मिलाएं। पककर तैयार ग्रीष्मकालीन फसलों की शीघ्रता से कटाई कर लेनी चाहिए और उसकी खेतों की साफ सफाई हमें कर लेनी चाहिए। खरीफ फसलों की तैयारी के लिए खेत तैयार करें, स्वयं के तैयार बीज की सफाई कर लें, उसके अंकुरण प्रतिशत की जांच भी कर लें और अंकुरण प्रतिशत 27% से कम होने पर नए बीज की व्यवस्था भी कर लें हमारे किसान साथी। खरीफ फसलों की खेती हेतु आवश्यक बीजों की व्यवस्था भी अभी से करके रखें और साथ साथ में खाद की भी व्यवस्था करके रखें। अब कुछ जानकारी जो कृषि विभाग से दी जा रही है वो परामर्श है, जो पककर अपनी ग्रीष्मकालीन मूंग तैयार है उसको कटाई कर लें, खलियान में वर्षा से बचाव हेतु हमें धूप में सुखाकर गहाई इसकी करनी चाहिए, साथ साथ में जो फल वृक्ष हैं खासतौर पर आम में फलत बाग की सिंचाई 7 से 10 दिन के अंतराल में कर लेनी चाहिए, पूर्व में कलकायन हेतु काटे गए बेर के पुराने व देसी पेड़ से निकाली गई शाखाएं में से 3 से 4 शाखाओं को छोड़कर शेष शाखाओं को काटकर अलग कर दें, नया बगीचा लगाने हेतु आप उचित दूरी किए गए गड्ढे शीघ्रता से खोद लें, उसमें बालू मिट्टी और गोबर या बर्मी कंपोस्ट की खाद उसमें भर दें। अब अगर सब्जियों की बात आती है तो सब्जी में जो कीट व्याधियां लगती हैं खासतौर पर भिंडी आदि सब्जियों में रस चूसक कीट व वायरस का प्रकोप देखा जाता है, उसके रोग के नियंत्रण के लिए हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए यानी परामर्श लेनी चाहिए, हमारे कृषि विभाग के जो अधिकारी रहते हैं उनसे परामर्श लेनी चाहिए, उनसे परामर्श लेकर हमें दवा छिड़कनी चाहिए। खासतौर पर मिर्च टमाटर बैंगन आदि में जो प्रकोप देखा जा रहा है, फल छेदक प्रकोप इल्ली को प्रकोप देखा जा रहा है, उसमें एमाडेटेक्टिन और बेंजोएट दवा 10 मिलीलीटर पंप का छिड़काव करें। कद्दूबर की शब्दों में रेड पंपकिन बीटल के रोकथाम हेतु प्रोफेनोफस दवा 3.0 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करें। साथ साथ में ग्रीष्मकालीन सब्जियों में जैसे मिर्च टमाटर बैंगन भिंडी
ग्वारफली, पालक आदि की 7 से 10 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहें। सब्जियों में अनुशंसित उर्वरक की मात्रा उसमें देते रहें। ग्रीष्मकालीन सब्जियों में जैसे मिर्च, टमाटर, बैंगन, पालक, गोभी वर्गीय, कद्दू वर्गीय, खरबूज, तरबूज आदि की समय पर तुड़ाई कर उसमें बाजार में बेचते। साथ साथ में प्याज की खुदाई कर लें, धूप में सुखाकर भंडारित इसको कर लें। अदरक व हल्दी की खेती हेतु प्रभंग की बुवाई कर लें और बुवाई पूर्व प्रभंग डाइथेन M45 या कार्बोडाइजिम की घोल बनाकर 20 से 30 मिनट डुबोकर उसको रख दें। बरसात की सब्जियों का रोपने के लिए इसकी तैयारी कर लें। पशुओं की अगर बात करें तो पशुओं एवं पक्षियों को तेज धूप व गर्म हवा से बचाव करें। साथ साथ में पशुओं को दिन में 3 बार ठंडा व स्वच्छ पानी पिलाएं एवं लू के लक्षण दिखने पर नमक व शक्कर का मिश्रित घोल भी पिलाएं। ग्रीष्मकालीन हरे चारे हेतु ज्वार की जरी का समय पर कटाई करें, पशुओं को खिलाएं। दुधारू पशुओं को हरा चारा 25 किलोग्राम प्रति पशु प्रतिदिन व संतुलित आहार एवं मिनरल की आपूर्ति हेतु 50 ग्राम प्रति पशु प्रतिदिन मिनरल मिक्सचर की खुराक आवश्यक है। ये जानकारी मौसम विभाग द्वारा दी जा रही थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें जो जानकारी आप भेजते रहते हैं और समय समय पर बताते रहते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमने जैसे बताया था कि आज हम बात करने जा रहे हैं धान की उन्नत किस्मों के बारे में, बीजों का चयन किस तरीके से करना चाहिए, बीज हमें किस तरीके से लगाने चाहिए, सारी बातें होगी। लेकिन साथियों हम लेते हैं यहाँ पर संगीतमय विराम, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके आरजी मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टेंटा व्हील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो अपनी बात है।

ఆదవాదనర దపడాలే దాదవాదనర దపడాలే.

0: भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान भाइयों बहनों, धान हमारे देश की प्रमुख खाद्य फसलों में से एक है। अगर इसकी खेती आप अपनाना चाहते हैं तो जरूरी है कि इसकी नर्सरी आप बेहतर तरीके से तैयार करें, तभी आपको इसका अच्छा उत्पादन हासिल हो पाएगा। और इसकी नर्सरी आप किस प्रकार तैयार कर सकते हैं, कौन कौन सी इसकी उन्नत किस्में हैं जिनका आप चुनाव कर सकते हैं, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वाईएस शिवे। डॉक्टर शिवे, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम खेत खलिहान में। आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे जो किसान धान की खेती से जुड़ना चाहते हैं और वो उन्हें ध्यान की नर्सरी तैयार करनी है, तो सबसे पहले ये बता दें कि नर्सरी तैयार करने के लिए उचित समय क्या है, साथ ही साथ जगह का या फिर कहें कि मिट्टी का चुनाव वो किस प्रकार करें, बताएं इसके बारे में।
2: किसान भाई और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, धान जो है हमारे देश की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है और खरीफ के मौसम में सभी प्रदेशों में उगाई जाती है। इसका जो है क्षेत्रफल लगभग, जैसा आप जानते हैं, 80-85% धान की पैदावार जो है खरीफ के मौसम में की जाती है। और इस समय आपने जो है रबी की सारी फसलें काट ली हैं, उनकी थ्रेसिंग कर ली है और उनको अपने घर में भंडारित कर लिया है या बाजार में बेच दिया है। अब इसके बाद में बात आती है कि धान की नर्सरी किस तरीके से तैयार करें और कहाँ करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है धान की नर्सरी उगाने के लिए उसका खेत का चुनाव करना बहुत जरूरी है। खेत का चुनाव ऐसे स्थान पर करना चाहिए जहाँ पे पानी का स्रोत हो। तो सबसे पहले इस चीज का सुनिश्चित करना है, क्योंकि गर्मी के मौसम में धान की नर्सरी उगाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। जहाँ पानी का स्रोत पास हो वहीं नर्सरी उगानी चाहिए। अब इसके बाद बात आती है कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। मिट्टी के लिए ये जरूरी है कि मिट्टी जहाँ उपजाऊ अच्छी उर्वरता वाली मिट्टी होनी चाहिए और उसमें जो है हमारा ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट अच्छा होना चाहिए। यदि ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट अच्छा नहीं है तो उसमें जो है हम गोबर की गली सड़ी खाद जरूर डालें, जिससे कि उसमें जो है पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है और उसके साथ साथ जो है हमारी जो हमारे पोषक तत्व जो हैं वो भी अच्छे ढंग से नर्सरी को मिलते हैं, धान की नर्सरी को मिलते हैं। तो सबसे पहला जरूरी जो काम है वो स्थान का चुनाव करना है। और स्थान का चुनाव करने के बाद में अब बात आती है कि नर्सरी कब लगा सकते हैं, सही समय क्या है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तरी भारत में हमारे लगभग सभी प्रदेशों में धान को उगाया जाता है और देश के सभी भागों में लगभग खरीफ में उगाया जाता है। तो इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय है नर्सरी उगाने का। लेकिन ये बात ध्यान रखने की होती है कि नर्सरी की उम्र जो हम ट्रांसप्लांट करते हैं, मुख्य खेत के अंदर जो है रोपित करते हैं, तो उसकी जो है 20 से 25 दिन की नर्सरी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा उम्र की नर्सरी नहीं होनी चाहिए ताकि हमको उससे अच्छे से अच्छा लाभ प्राप्त हो। जैसे कि कुछ किस्में कम अवधि वाली हैं तो उनके लिए उगाने का समय जो है थोड़ा लेट भी उगा सकते हैं, और मध्यम अवधि की किस्में हैं उनको थोड़ा लेट उगा सकते हैं। लेकिन जो लंबी अवधि की किस्में हैं उनको जो है मई के लास्ट में आप नर्सरी उगाने के लिए मई के आखिरी सप्ताह से लेकर 10-15 जून तक जो है आप नर्सरी लगा सकते हैं, ताकि आपकी नर्सरी की उम्र जो है 20 से 25 दिन के बाद में मुख्य खेत के अंदर जो है रोपित की जा सके। तो इस तरीके से जो है नर्सरी का लगाने का समय विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न दशाओं में अलग अलग होता है और किस्मों की अवधि के ऊपर भी निर्भर करता है।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर शिवे, आपने बताया कि किस्मों का काफी महत्व होता है जब हम समय की बात करते हैं, तो कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जिनका चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं अगर उन्हें नर्सरी तैयार करनी है तो।
2: किसान बहनों और भाइयों, किसी भी फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए जरूरी होता है कि किस्मों का सही चुनाव किया जाए अपने क्षेत्र विशेष के लिए। तो धान के लिए भी ये जरूरी है कि आप अच्छी किस्मों का, जो अनुमोदित किस्में हैं आपके क्षेत्र के लिए, उन्हीं का चुनाव करें। और यदि आप धान की खेती जो है विभिन्न परिस्थितियों में करना चाहते हैं, कोई जल्दी लगाना चाहता है, कोई लेट से लगाना चाहता है, और कोई लंबी अवधि की किस्मों की कास्ट करना चाहता है, कोई जो है हाइब्रिड किस्म हाइब्रिड धान की खेती करना चाहता है, और बहुत से किसान भाई बहन जो हैं हमारे यहाँ जो बासमती की किस्में हैं उनको उगाना चाहते हैं, तो उन्हीं को जो है चुने जिनके लिए आप विशेषकर उसकी खेती करना चाहते हैं और किस उद्देश्य के लिए खेती कर रहे हैं। मुख्य रूप से जो है धान की किस्मों को तीन भागों में बांटा गया है, लंबी अवधि की किस्में और मध्यम अवधि की किस्में और कम अवधि की किस्में। कम अवधि की किस्में जो हैं वो लगभग हमारी 110 से 115 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। जो मध्यम अवधि की किस्में हैं वो लगभग 120 से 125 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। जो लंबी अवधि की किस्में हैं वो लगभग 130 से 150 और 160 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। तो किस्मों का चुनाव जो है अपनी परिस्थितियों के अनुसार करना है, अपने क्षेत्र के लिए करना है। और इसके साथ साथ यदि आप कम अवधि की किस्मों का चुनाव करना चाहते हैं तो उनको इस प्रकार से चुने, उनमें से प्रमुख किस्में इस प्रकार से हैं, जैसे कि आगेती किस्में 110 से 115 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं, पीएनआर 381, पीएनआर 162, साकेत 4, नरेंद्र धान 97, सहभागी धान संपदा। ये कुछ किस्में हैं जो कम अवधि की हैं, लगभग 110 से 115 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। लेकिन फिर मैं आपको दोहराना चाहूँगा कि आप अपने क्षेत्र के लिए जो अनुमोदित किस्में हैं उन्हीं को चुनें। इसके बाद आती है कि जो मध्यम अवधि की किस्में हैं जो लगभग 120 से 125 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं, उनमें कुछ प्रमुख किस्मों जो हैं वो इस प्रकार से हैं, सरजू 52, पनधान 10, पनधान 12, पनधान 16, पनधान 18, पनधान 19, आईआर 64, कोंट डोरा, सनालू, गोंत्रा, विधान वन, खांडागिरी, महामाया एवं नवीन। ये आदि किस्में ऐसी हैं जो लगभग 120 से 125 दिन में तक के तैयार हो जाती हैं। अब इसके बाद जो हैं जो लंबी अवधि की किस्में हैं वो इस प्रकार से हैं, उनमें से आप अपने अनुमोदित क्षेत्र के लिए चुनाव कर सकते हैं। जो लगभग 130 से 140 दिन में पक के तैयार होती हैं, पूसा 44 जो है लगभग पंजाब में काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में उगाई जाती है और बहुत ही अच्छी किस्म है। इसकी पैदावार जो है लगभग 7 से 8 टन प्रति हेक्टेयर है। पीआर 106, मालवीय 36, नरेंद्र 359, मैसूरी लहलाट, नरेंद्र 8002, पूजा, प्रतीक्षा, रानी धान, रंजीत, सांभा, मसूरी एवं स्वर्णा सबवन। स्वर्णा सबवन ऐसी किस्में हैं कि ये लंबी अवधि की है और जहाँ पर ज़्यादा पानी होता है, बाढ़ वगैरह आती है, वहाँ पे भी ये बहुत अच्छी पैदावार देती है। इसके साथ साथ जो है कुछ किसान भाई जो है संकर किस्मों की खेती करना चाहते हैं, तो जो संकर किस्में हैं उनकी विशेषता ये है कि आपको उनका बीज हमेशा साफ ही लेना पड़ेगा, हर साल बीज खरीदना पड़ेगा और किसी प्रमाणित संस्था से आपको बीज को लेना है, अपने घर का बीज उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो किसी प्रमाणित संस्था से बीज को लेकर चुनाव कर सकते हैं। जो संकर किस्में हैं धान की वो इस प्रकार से हैं, पंच संकर धान 1, पंच संकर धान 3, KRH2, PSD3, GK5003, प्रोएग्रो 64-44, प्रोएग्रो 62-01, प्रोएग्रो 62-19, DRH3, इंदिरा सोना, रुचि, नरेंद्र शंकर धान 2, PHB 71, PRH 10। PRH 10 जो है ये हमारी पूसा संस्थान से निकाली गई है और ये पहली ऐसी हाइब्रिड है जो सुगंधित भी है और अधिक पैदावार देती है। तो इन जो भी मैंने ये संकर किस्में बताई हैं अपने आप अनुमोदित क्षेत्र के लिए चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद आती है बहुत से किसान जो हैं बासमती धान की खेती करना चाहते हैं, तो बासमती की बहुत सारी किस्में हमारे पूसा संस्थान से निकाली गई हैं, उनका चुनाव कर सकते हैं। और ये किस्में इस प्रकार से हैं, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती नंबर 1, पूसा बासमती 6 जिसको हम पूसा 1401 के नाम से भी जानते हैं, पूसा और पूसा बासमती 1121। इसका दाना जो है बहुत लंबा होता है और बहुत अच्छी किस्म है और इसका जो है बाजार में भाव भी अच्छा मिलता है। इसके साथ साथ जो है उन्नत पूसा बासमती 1 जिसको हम पूसा बासमती 1460 के नाम से भी जानते हैं, इसके साथ साथ जो है पूसा बासमती 1728, पूसा बासमती 1718, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1609। ये ऐसी किस्में हैं जो पूसा संस्थान से निकाली गई हैं, इनका चुनाव कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है हमारी जैसे हरियाणा बासमती नंबर 1 है और इसके साथ साथ से करनाल के यहाँ करनाल से भी निकाली गई हैं जो बासमती टाइप की हैं, उनका चुनाव कर सकते हैं।
1: जी।
2: अब इसके बाद अब बात आती है कुछ ऐसी किस्में हैं जो सुगंधित हैं, अधिक पैदावार देती हैं, लेकिन वो बासमती की कैटेगरी में नहीं आती हैं, तो उनमें से भी चुनाव कर सकते हैं। वे किस्में इस प्रकार से हैं, पूसा 1612, पूसा सुगंध 5, पूसा सुगंध 1, पूसा सुगंध 2, और इसके साथ साथ जो है पूसा 1592 और पूसा राइस हाइब्रिड 10, इसको भी सुगंध के उसमें चुन सकते हैं। अब बहुत से किसान भाई बहन जो हैं ऊसर भूमि में खेती करना चाहते हैं धान की, तो उसके लिए जो है सामान्य किस्मों को नहीं लगाना चाहिए, बल्कि जो ऊसर भूमि के लिए अनुमोदित की गई हैं उनमें से ही चुनना चाहिए। जैसे कि ऊसर धान 1, इसके बाद आता है नरेंद्र ऊसर धान 2, नरेंद्र ऊसर धान 3, IR8 झोना ऊसर धान 1, CSR 10 और CSR 30, ये दोनों किस्में जो हैं हमारे CSSR करनाल से निकाली गई हैं और बड़ी अच्छी किस्में हैं जो लवणता के ऊपर ही काम करते हैं, तो इनमें से कोई भी किस्म का चुनाव कर सकते हैं आप। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा किसान भाई और बहनों, अपने क्षेत्र के लिए जो अच्छी अनुमोदित किस्में हैं उसकी जानकारी आप कृषि विज्ञान केंद्र से ले सकते हैं, कृषि विभाग से ले सकते हैं, और इसके साथ जो कृषि विश्वविद्यालय ICAR का कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो किस्मों का चुनाव जो है आप अपने अच्छे ढंग से करें, और उसके साथ साथ जो है बीज जो है किसी प्रमाणित संस्था से लें, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय बीज निगम है, या हमारा स्टेट सीड फार्म कॉरपोरेशन है, या हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है यहाँ से भी हमारा बीज मिलता है, तो या कृषि विश्वविद्यालय जो भी आपके क्षेत्र में या आपके प्रदेश में है वहाँ से चुने और बीज जो है प्रमाणित संस्था से ही प्राप्त करें।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर शिवे, तो देखिए किसान भाइयों बहनों, ये थी कुछ धान की प्रमुख उन्नत किस्में जिनका चुनाव आप कर सकते हैं। लेकिन बार बार हमारे कृषि विशेषज्ञ ये भी सलाह दे रहे हैं कि अपने क्षेत्र के अनुसार ही जो अनुमोदित किस्में हैं उन्हीं का चुनाव करें, और उनके बीज आप कहां से ले सकते हैं इसके बारे में भी अभी आपको जानकारी मिल गई है। अब बारी आती है कि बीजोपचार किस प्रकार किया जाए, खेत की तैयारी किस प्रकार की जाए, इन सब के बारे में आपको जानकारी देंगे।
3: लेकिन इस छोटे से विराम के बाद आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडा भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बातें।

0: रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपनो रेडियो आपनी बातें।
1: आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं धान की नर्सरी की तैयारी के बारे में और साथ ही साथ कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जिनका चुनाव आप कर सकते हैं धान की खेती के लिए। तो आइए आज के हमारे कार्यक्रम की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शिवा, अब बारी आती है बीजोपचार की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होता है खेती किसानी में। तो कैसे करें बीजोपचार धान के बीजों का, इसके बारे में बताएं।
2: बीज का उपचार जो है बहुत जरूरी होता है धान की नर्सरी लगाने के लिए। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा, यदि आप अपने घर का धान यूज कर रहे हैं नर्सरी उगाने के लिए, उसका जो है आप नमक के घोल में 10% नमक के घोल में अर्थात 10 लीटर पानी में 1 किलो नमक डालकर उससे उपचारित करें। उससे उपचारित करना यूँ जरूरी हो जाता है, यदि आपके कुछ दाने खाली होते हैं तो जो खाली दाने होंगे नमक के घोल में ऊपर तैरने शुरू हो जाएंगे, जो भरे हुए दाने हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। तो सबसे पहले जो है नमक के घोल से उपचारित करें, जो खाली दाने हैं उनको निकाल दें और जो साफ दाने हैं उनको जो है आप फिर 2-3 बार स्वच्छ पानी से धोएं नमक के घोल के उपचारण के बाद में। फिर उसके बाद जो है आप बीज को उपचारित करने के लिए प्रति किलोग्राम बीज के लिए धान का 2 ग्राम जो है हम किसी कवकनाशी दवा का इस्तेमाल करें, जैसे कि कार्बन डाइजाइम है या बावस्टीन है, तो इनमें से कोई सी भी मिल जाए। और इसके साथ साथ जो है 0.25 ग्राम हमारी जीवाणुनाशी, जैसे कि हमारा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है या एग्रोमाइसिन है, ऐसी दवा लें। तो प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इन दोनों दवाइयों को मिलाएं और मिलाने के बाद में पानी में घोल दें और जितना बीज की ज़रूरत होती है उस हिसाब से दवा को पानी के अंदर मिला दें और इसको जो है पूरी रात भिगो कर रखेंगे और सुबह फिर निकाल के इसको फर्श पे फैला देंगे और फर्श में फैलाने के बाद में तब थोड़ा सूख जाएगा, फिर इसको जो है किसी बोरे के अंदर भर के रख देंगे और हल्का हल्का पानी डालेंगे। तो इस तरीके से बीज का उपचार करना जरूरी है। इसके साथ साथ जो है हमको ये भी ध्यान रखना है, यदि हम किसी प्रमाणी संस्था से बीज ले रहे हैं तो वो भी जो है बीज के साथ साथ कभी कभी दवा अंदर डाल देते हैं, यदि वो दवा नहीं डाल रहे हैं तो अपने बाजार से दवा को खरीदना है और बीज को किसी भी कवकनाशी तथा जीवाणुनाशी से इस्तेमाल करके उसका बीजोपचार करना बहुत जरूरी है रोपाई से पहले।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर श्रीवे, बीजोपचार तो आपने बता दिया कि किस प्रकार कर सकते हैं हमारे किसान। अब आपसे जानना चाहेंगे कि बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए और अगर खेत में वो बीज डाल रहे हैं तो उसका तरीका क्या है।
2: हमारे उत्तरी भारत में जो है और दक्षिण भारत में भी 2-3 तरीके से नर्सरी उगाई जाती है, लेकिन उन सब में प्रमुख रूप से जो हमारी गीली क्यारी विधि है इससे जो अच्छी पैदावार लेने के लिए नर्सरी तैयार करते हैं तो अच्छी नर्सरी होती है, अच्छी नर्सरी हमको मिलती है। सूखी क्यारी विधि से भी उगा सकते हैं, डेपोक मेथड से भी उगा सकते हैं, लेकिन मैं विस्तार से चर्चा यहाँ भीगी क्यारी विधि जो है उसकी करना चाहूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो है खेत को, जो भी आपने खेत चुना है पानी का जो स्रोत है उसके पास में 2-3 बार जुताई कर लें, समतल कर लें। उसके अंदर जो है हम ऐसा बताते हैं कि नर्सरी 1 हेक्टेयर की जो नर्सरी में हमें रोपित करने के लिए नर्सरी उगाते हैं उसके लिए लगभग 700-800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। तो 700-800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 1 टन गली सड़ी गोबर की खाद डालें और इसके साथ साथ जो है हम 10 से 12 किलोग्राम यूरिया और 12 से 15 किलोग्राम सिंगल फॉस्फेट और 4 से 5 किलोग्राम जो है हम म्यूरेट ऑफ पोटास और 2 से 2.5 किलोग्राम जो है जिंक सल्फेट, इन सबको जो है हम खेत के अंदर डालें जहां पर नर्सरी उगा रहे हैं। अब इन सबको डालने के बाद में पानी भर के 2-3 बार जुताई कर दें। जुताई करने के बाद में हम पानी भर के जुताई करते हैं, पानी भर के जुताई करने के 2 फायदे हैं। एक तो क्योंकि हमारी लेव बन जाती है, लेव का मतलब पडल हो जाती है, तो हमारे जो हैं पानी जो नीचे बहने की क्षमता है वो कम हो जाती है, क्योंकि हमारे जो क्ले पार्टिकल्स हैं वो कणों में भर जाते हैं सैंड सिल्ट में और पानी का निक्षालन कम होता है। तो इस तरीके से हम पानी भरने के बाद में फिर जब पानी थोड़ा सूख जाता है तो आवश्यकता अनुसार जो है हम 1.5 मीटर से 1.5 मीटर क्यारियाँ चौड़ी बनाते हैं, लंबाई जो है हम लगभग 10 मीटर रखते हैं, लेकिन इसको आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं लंबाई को, चौड़ाई जो है 1.5 मीटर से 1.5 मीटर के बीच में ही होनी चाहिए। अब जब आपने क्यारियां बना ली हैं, पानी कम हो गया है, तो जो हमारा जमा हुआ बीज है, जो आपने बीज उपचारित किया था, उसको जो है बीज को डालें, और बीज को इस तरीके से डालें, बीज की मात्रा जो लगभग हम हमारी डालने की जरूरत पड़ती है मोटे अनाज वाली किस्मों के लिए 25 किलोग्राम जो प्रति हेक्टर के हिसाब से बीज की जरूरत पड़ती है, जो हम 700 से 800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में उगाते हैं। और इसके साथ साथ जो महीन किस्में हैं, जैसे कि हमारी बासमती टाइप की है, उनकी 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से, और जो हाइब्रिड है उसकी लगभग जो है हम 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से बीज को डालते हैं। तो बीज को डालने के सही समय जो है शाम के वक्त, जब हमारा हवा वगैरह ना चल रही हो, तो उस समय डालना चाहिए खेत के अंदर जो उपचारित बीज है। और बीज को डालने के बाद में, अच्छे ढंग से डालने के बाद में, ऊपर से जो है आप किसी पुआल वगैरह, जैसे कि हमारा गेहूं का बचा हुआ पुआल है, या हमारा किसी और दूसरी फसल का बचा हुआ गन्ने की पत्तियां हैं, उनको डाल दें, ताकि हमारे जो चिड़िया दानों को चुगती हैं उनको न चुगें, और उसके साथ साथ जो है हमारा ऊपर से जो है नमी का संरक्षण भी हो जाए। जब इस तरीके से हम बीज को डालते हैं तो हमारा बीज का जमा बचा होता है और हमको अच्छी नर्सरी मिलती है।
1: जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई कि विधि क्या है हमारे जो बीज लगाने की। अब आपसे जानना चाहेंगे पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में, नर्सरी में पोषक तत्व प्रबंधन किस प्रकार करें ताकि जो पौध है वो स्वस्थ हासिल हो पाए।
2: जी, पोषक तत्व प्रबंधन धान की नर्सरी के अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ पौधा हमको तभी मिलेगी जब हम अच्छे ढंग से पोषक तत्व प्रबंधन करेंगे। धान की नर्सरी उगाने के लिए वैसे तो हम बताते हैं मृदा परीक्षण के आधार पर पोषक तत्वों का प्रबंधन करना चाहिए। यदि आपने किसी कारणवश मृदा परीक्षण नहीं कराया है, तो जो हम खेत का चुनाव करते हैं 700 से 800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, उसमें जो है लगभग हमको 1000 किलोग्राम जो हमारी गोबर की गली छड़ी खाद है उसको डालते हैं, और इसके साथ साथ जो है 10 से 12 किलोग्राम जो है हम यूरिया डालते हैं, और 12 से 15 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, और 5 से 6 किलोग्राम जो है हम म्यूरेट ऑफ पोटास, 2 से 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट डालनी चाहिए। इनको जो है जब हम आखिरी पडलिंग करते हैं, आखिरी जुताई करते हैं पानी भरने के खेत में, पानी भरे हुए खेत में, उस समय डालना चाहिए ताकि मिट्टी के अंदर अच्छे ढंग से मिल जाए, और उसके बाद में ही जो है हमको नर्सरी का बीज डालना चाहिए। तो इस तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन करना है। और कभी कभी जो है नर्सरी के अंदर लगाने के बाद में हरिमाहीनता की समस्या आ जाती है। हरिमाहीनता जो है नर्सरी के अंदर जो है वो लौह तत्व की कमी की वजह से आती है। तो यदि ऐसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, आपकी नर्सरी जो है 10 से 12 दिन की हो गई है, तो फेरस सल्फेट का 1% घोल जो है उसका पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं, और घोल की मात्रा जो है वो लगभग 60 लीटर की जरूरत पड़ती है, 60 से 65 लीटर प्रति हमको 700 से 800 मीटर वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए। तो इस तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन धान की नर्सरी में कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, तो देखिए किसान भाइयों बहनों, पोषक तत्व प्रबंधन बहुत ही जरूरी कदम होता है अगर आपको अपनी जो पौध है उसको स्वस्थ बनाए रखना है उसके लिए। डॉक्टर शिव, आपसे जानना चाहेंगे खरपतवार नियंत्रण के बारे में, अगर नर्सरी में खरपतवार हो जाती है तो उससे हमारी जो पौध है उसकी गुणवत्ता पर काफी असर पड़ता है, तो कैसे इनकी रोकथाम की जाए?
2: जहाँ पे हम धान की नर्सरी लगाते हैं वहाँ पे खरपतवार नियंत्रण का करना बहुत जरूरी होता है खेत के अंदर। तो जब हमारी 10 से 12 दिन की नर्सरी

0: करें।
1: किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में जब हम धान की नर्सरी उगाते हैं उस समय पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है धान की नर्सरी के अंदर, क्योंकि हमारा तापक्रम बहुत होता है और तापक्रम ज़्यादा होने से वाष्पोत्सर्जन भी हमारा ज़्यादा होता है। तो धान की नर्सरी हम जब लगाते हैं जब हल्का हल्का पानी होना चाहिए खेत के अंदर, और फिर बाद में जो है हमको उसमें खेत में पानी नहीं भरा होना चाहिए बल्कि नमी मेंटेन करनी है हमको जब तक उसका अच्छे ढंग से जमाव नहीं होता है। जब उसका जमाव हो जाता है तब हमको हल्का हल्का पानी रखना चाहिए और पानी की कमी नहीं आनी चाहिए। और इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं, यदि पानी की कम उपलब्धता है तो फव्वारे से भी हम पानी दे सकते हैं नर्सरी के जहाँ जिस क्षेत्र में हम नर्सरी उगा रहे हैं। लेकिन यदि आप पानी जो है किसी पानी के स्रोत से दे रहे हैं, जैसे कि हमारा हाइड्रेंट है या हमारा जो ट्यूबवेल है या हमारा पंप सेट है या हमारा कैनाल का वाटर है, तो इस बात का ध्यान रखें कि पानी लगाते समय नर्सरी पानी के अंदर डूबनी नहीं चाहिए बल्कि जो है हल्का हल्का पानी हो, तो इस तरीके से प्रबंधन रखना है। और पानी की कमी भी नहीं आनी चाहिए, इतना कम भी पानी लेने लगाना है तो पानी का प्रबंधन जो है गर्मी के दिनों में नर्सरी उगाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है अच्छी नर्सरी प्राप्त करने के लिए। विशेषकर यदि हमारी हरिमाहीनता की समस्या आती है, लौह तत्व की कमी आती है, तो वो आयरन तत्व की कमी से की वजह एक ये भी होता है कि खेत के अंदर पानी न रहना, तो इस चीज़ का प्रबंधन आपको जरूरी करना है। पानी हल्का हल्का रखना है, समय समय पर पानी देते रहना है।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर शिवे, आपने धान की नर्सरी तैयार करने के लिए और साथ ही साथ किस्मों के चुनाव के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां जो है हमारे दर्शकों के साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
3: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और ये जानकारी पाकर हमारे किसान साथियों की बात में बिल्कुल अब समझ गए होंगे कि अब हमें क्या करना है, कौन सा कदम अपनाना है। खासतौर पर हम कार्यक्रम के माध्यम से मित्रों बताते चले आ रहे हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। तो यही कारण है जो अपने किसान साथी अपने जीवन में अपनी खेती में अपना कर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। हमें एक फसल पर आश्रित नहीं रहना है, हमें मिश्रित फसल की ओर देखना होगा कि कौन से फसल हम अपने खेतों में लगा सकते हैं जिसमें लागत कम लगती है मुनाफा अधिक होता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई सी भी फसल उगाते हैं या लगाते हैं, नई बीजों का चयन करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें घाटा खाएंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं कि यदि आपको लगता है कि हमें अब नई प्रजाति के नई किस्में अपने खेतों में लगाना है, तो आपको बता देना चाहते हैं कि आप झाबुआ के जो KVK है रिसर्च सेंटर है वहां पर जाकर संपर्क डॉक्टर तोमर साहब से भी कर सकते हैं और साथ साथ में हमारे जो भी वैज्ञानिक हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। त्रिपाठी जी भी हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। कृषि विभाग की अगर बात करें तो कृषि विभाग में जाकर संबंधित अधिकारी के पास आप बात कर सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। यदि आपको उन तक पहुंचने में दिक्कत होती है तो रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM के माध्यम से आप अपनी बात को रख सकते हैं। यह आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। तो हमें आशा है कि हमने आज इस कार्यक्रम में जाना कि धान की खेती हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसमें बीजों का चयन हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसमें लगाने की विधि क्या क्या होती है, कैसे हम इसको लगा सकते हैं, कौन सा ऐसा समय है जिसको हम लगाने के उपयुक्त होता है, साथ साथ में कि हम किस तरीके से पौध को लगा सकते हैं, क्यारी बना सकते हैं अभी से, चूंकि बहुत उपयुक्त समय है। अभी हमारे किसान साथी अपनी जो पौध रहती है नर्सरी है उसको तैयार कर सकते हैं जहाँ पर पानी की समस्या ना हो, वहाँ पर हमारे किसान साथी धान की खेती कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत उपयुक्त समय है। दूसरी बात ये आती है कि एक बार फिर से पुनः हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं जिन किसान साथियों के खेत उबड़ खाबड़ हैं या ऊंची नीची जमीन है, वहाँ पर किसान साथी समतलीकरण करा सकते हैं, मेड़बंधान कर सकते हैं, पानी को रोकने की उत्तम व्यवस्था कर सकते हैं। खासतौर पर जब हम देखते हैं कि तालाब हुआ करते थे, बावरी हुआ करती थी, कुआं हुआ करते थे, आज वो समाप्ति की ओर जा रहे हैं, तो ऐसे में हमें ध्यान देने की बातें हैं और मेड़बंधान करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पानी को रोकने के लिए हमें प्रयास करना

चाहिए, तभी हमारा जो वाटर लेवल है वो बढ़ाया जा सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे किसान साथियों को समझनी होगी, सोचनी होगी और अपने जीवन में अपनानी होगी। अब हमें दूसरे शहरों में जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि झाबुआ जिले में इतनी सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, इतने सारे वैज्ञानिक हैं, कृषि विभाग है, अन्य समस्या जो आती है, आपको लगता है कि हमें समस्या बहुत ज़्यादा होती है, तो आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, यहाँ पर आप आइएगा, अपनी बात को रखिएगा। हमें खुशी होती है कि बहुत सारे किसान चलकर यहाँ पर आते हैं, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कराते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है वास्तव में, वाह। तो साथियों, हम एक बार फिर से आग्रह करेंगे, ये आपका रेडियो स्टेशन है, आपके लिए ही खोला गया है और आपकी बात को रखने के लिए ये आपके लिए चलाया जा रहा है। तो हमें आशा है कि ये कार्यक्रम को सुनकर हमारे किसान साथी कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। हाँ, किसान साथियों की बात बिल्कुल अच्छी लगती है। अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर। नंबर है हमारा 94-25-41-36-03, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। साथियों, हमारा वक्त हो चुका है कार्यक्रम से जाने का, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं जिंदगी के रंग गीतों के संग और मैं हूं आपकी आरजे, आपके तरानों की हमसफर आरजे तनुषा। आज कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाएंगी बट महसूस की जाएंगी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जयपुर की एक एकदम बिंदास बट डिसिप्लिन्ड और डिटर्मिन्ड पर्सनालिटी, मिसेस खुशबू पारेख। एक नॉटी बच्ची, एक एवरेज स्टूडेंट, बट फिर हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल और केबिन क्रू तक का सफर। आज एक एंटरप्रेन्योर और एक प्राउड मदर। हम दिल से स्वागत करते हैं और बहुत एक्साइटेडली स्वागत करते हैं खुशबू पारेख जी का, और जानते हैं उनके बारे में थोड़ा सा और जिंदगी के रंग गीतों के संग पर। वेलकम खुशबू पारेख जी।
2: थैंक यू सो मच।
3: खुशबू जी, हम आपकी शुरुआत से शुरू करते हैं, जैसे कि हम हमारे सारे गेस्ट को बचपन में ले जाते हैं। तो बचपन की मेमोरीज से आपने हमें बताया कि आप बहुत नॉटी थीं, बहुत मस्तीखोर थीं और एवरेज स्टूडेंट थी, बट आप अपनी लाइफ फुल ऑन जीती थीं, मतलब यू बिलीव्ड इन लिविंग लाइफ टू द फुल। तो आज इतने सालों बाद अगर हम आपसे पूछें, अगर आप छोटी खुशबू से मिलें तो उससे क्या कहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे, और आपको क्या लगता है कि जो बच्ची कभी इतनी बबली थी, इतनी एफिवेसेंट थी, वो सडनली लाइफ में इतनी डिसिप्लिन्ड और यू नो एक सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर बन जाएगी, वो किस तरह का एक फीलिंग है? अगर आज आप अपने बचपन के बारे में सोचते हैं तो कैसी फीलिंग्स आपके अंदर आती हैं और उस छोटी खुशबू से आप क्या कहेंगे?
2: अगर मैं मेरे बचपन की बात करूं तो मेरा बचपन बहुत ही अच्छा था, और आजकल का बचपन थोड़ा अलग होता है, आजकल के बच्चे थोड़े अलग वे में बड़े होते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपने अपना अगर बचपन जी लिया तो सब कुछ ही जी लिया। तो बचपन एक चीज ऐसी है जिसको हम कितने भी बड़े हो जाए उम्र में हम मिस करते ही हैं। कुछ ना कुछ पल, कुछ यादें हमारी जुड़ी होती हैं बचपन से। अब आज माहौल इतना सेफ नहीं है, माँ बाप भी डरते हैं बच्चों को बाहर खुले में भेजने से, पार्क में खेलने से रोकते हैं, पढ़ाई का प्रेशर इतना है कि सब डरे डरे रहते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप बिंदास अपनी लाइफ जिए, अपना बचपन जिए, जितना आप इंजॉय कर सकें उतना करें। और रही बात डिसिप्लिन की और इन सब चीजों की, तो वो टाइम के साथ आ ही जाता है एक एज के बाद।
3: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि सच में आजकल बच्चे बहुत अलग तरह से पल रहे हैं, वो उनकी गलती नहीं है, एक्चुअली एनवायरमेंट ही ऐसा है। तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं हाइपर हो गए हैं, डरते हैं, बट खैर आई विश हम दोबारा उन टाइम्स में जा सके जिसमें आप और मैं बड़े हुए थे। वो बहुत ही सुंदर टाइम्स थे और उसी तरह से शायद एक स्पेस हमारे बच्चों को, आज के बच्चों को, कुछ उस तरह से नहीं बट कुछ तो एक एक एक एक उनको स्पेस मिल सके कि वो उस तरह से ब्लूम कर सके जिस तरह से हमने अपना बचपन जिया, और बिंदास होके अपना बचपन जिए, क्योंकि आगे तो लाइफ में क्या है हमें पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने हमें अपने फादर के बारे में बताया कि किस तरह से आपके फादर ने आपकी मेंटालिटी को, आपकी पर्सनालिटी को बहुत डीपली इन्फ्लुएंस और शेप किया, और वो एक बहुत ही डिसिप्लिनेरियन पर्सन थे। तो जब आप खुद एक मदरहुड में एंटर किए, जब आप खुद आपका यू नो यू गॉट योर चाइल्ड इन दिस वर्ल्ड, तो आपने क्या कॉन्शियस चॉइसेस ली कि मैं ये कुछ चॉइसेस हैं या कुछ क्वालिटीज हैं जो मैं अपने बच्चे में उतारना चाहती हूँ? और क्या आपको लगता है कि डिसिप्लिन सच में सिखाया जा सकता है, कि आप लीड बाय डिसिप्लिन, लीड बाय एग्जांपल करें सिखाने की कोशिश करने की बजाय? आपका क्या थॉट है इस पे?
2: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये चीज ऐसी है कि आप सिखा नहीं सकते हैं, और आजकल के बच्चे आपकी सोच से बहुत ज्यादा परे हैं, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, हमारी तरह नहीं है। हम जैसे हुआ करते थे, हमें बोल दिया जाता था कि बैठ जाओ तो बैठ जाते थे, उठ जाओ तो उठ जाते थे, पर आजकल के बच्चों को मैनेज करना, उनको सिखाना, ये बहुत ही एक ट्रिकी हो गया है बहुत ज्यादा। और मेरे फादर की अगर मैं बात करूं तो उनको हमने देख देख के ही सीखा है, वो कितने डिसिप्लिन रहे हैं। वो गवर्नमेंट जॉब में थे और उनका टाइम मैनेजमेंट, उनका शेड्यूल वगैरह बहुत ही फिक्स रहता था। वो टाइम के बहुत पंचुअल हुआ करते थे। इवन आज भी वो रिटायर्ड हो चुके हैं, इस चीज में वो काफी पंचुअल है टाइम को लेके, कि अगर 6 बजे की मीटिंग है या 6 बजे किसी से मिलना है तो ही मेक श्योर कि ही इज बिफोर टाइम। तो ये चीजें मैं चाहती हूँ कि अपन अपने बच्चों को सिखाएं, उनमें डालें, पर ये चीजें आपको खुद करके उनको दिखानी पड़ेगी, वो अपने आप नहीं सीखेंगे। आप खुद एक डिसिप्लिन लाइफ जिए, आप खुद अपना एक टाइम टेबल बनाए, सही टाइम पे उठे, सही टाइम पे सोए, सही टाइम पे खाए, तो एक बच्चे का जो माइंडसेट होता है उसी तरीके से वो उसको अडॉप्ट कर लेता है और उसी के साथ वो बड़ा हुआ होता है। अभी अगर हम एग्जाम्पल ले आज के बच्चों का, एक बच्चा है जो फिक्स टाइम पे उठ रहा है, फिक्स टाइम पे खा रहा है, फिक्स टाइम पे सो रहा है, वो बहुत ही खुश मिजाज होगा और अच्छे से खेलेगा, अच्छे से हर चीज को कंप्लीट करेगा, उसका माइंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। दूसरी साइड जो बच्चा है जिसका टाइम शेड्यूल बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, वो कभी भी उठ रहा है, कभी भी सो रहा है, कभी भी खा रहा है, तो वो चिड़चिड़ापन आपको अपने आप दिखेगा। तो ये डिफरेंस होते हैं जो हमको बहुत ही अर्ली स्टेज पे डेवलप करना बहुत जरूरी है, खासकर बच्चों में। और ये मतलब टॉडलर एज से ही, आप मान लीजिए तब से ही हमें शुरुआत करनी चाहिए इन चीजों की।
3: बिल्कुल नहीं। और आप, अगर मैं आपसे एक इंस्टेंस पूछूं, मतलब या कोई एक इंस्टेंस या कुछ इंस्टेंसेस बचपन के जिसने कहीं ना कहीं एक इंडेलिबल इम्प्रिंट छोड़ा आपके अंदर, एक छाप छोड़ी कि मेरे फादर ऐसा कर रहे हैं तो मुझे ऐसा करना चाहिए, कोई एक ऐसा वाकया बचपन का जिसने आपको सच में शेप किया हो, वो क्या होगा?
2: वो ऐसा था कि वो अपनी जॉब के लिए काफी पजेसिव थे, वो टाइम नहीं देखते थे कभी भी कि अभी 7 बज गए तो मुझे घर जाना है, या मेरी फैमिली कमिटमेंट्स है, या मुझे मेरे बच्चे वेट कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा अपने प्रोफेशन को अहमियत दी और पूरे दिल से और लगन से और ऑनेस्टी से उन्होंने काम किया। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो कभी भी अपना वर्कलोड घर लेके नहीं आते थे, उन्होंने हमेशा एक बैलेंस्ड लाइफ जी। और हमें भी यही सिखाया कि आप प्रोफेशनल लाइफ अलग रखें, पर्सनल अलग रखें, इनको मिक्स ना करें। आप कभी भी ऑफिस से या काम से घर जाते हैं तो आपके बच्चे वेट कर रहे होते हैं कि अब हमारे पेरेंट्स आएंगे, हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, हमारे साथ खेलेंगे। और अगर आप वही वर्कलोड लेके घर जाते हैं और वही टेंशन में चेहरा लेके जाते हैं, तो आपके बच्चे वो चीज, आपके एक्सप्रेशंस काफी तरीके से समझते हैं काफी हद तक, कि मेरी मम्मा खुश नहीं है या मेरे पापा खुश नहीं है, दे आर अपसेट विद समथिंग, तो दे ऑब्जर्व ऑल दिस। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम वो जो वर्कलोड है वो हम उसको ऑफिस में ही छोड़ के आए, वहीं उसको हमारा डे एंड उसी के साथ करें, और घर जाएं तो घर की तरह, घर के माहौल में मिक्स होने की और खुशियों को बांटने की कोशिश करें।
3: बिल्कुल, बहुत ही सही बात आपने हमारे साथ साझा की कि सच है कि काम सबको होता है, काम बहुत इम्पोर्टेंट है, काम को प्रायोरिटी देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपके फादर करते थे, बट एक कटआउट जोन क्रिएट करना बहुत जरूरी है कि ये मेरा प्रोफेशनल डोमेन है और ये मेरा प्राइवेट डोमेन है, और इनके बीच में एक कट जोन है जहां पे आई डोंट कैरी थिंग्स इंटरमीडियरी, बिकॉज अगर वो होने लग जाता है तो फैमिली भी सफर करती है और वर्क प्लेस तो खैर सफर करेगी ही, बिकॉज आप फैमिली में भी खुश नहीं रह पाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरती से आपने हमारे साथ ये बात साझा की, तो इन्हीं गहरे एहसासों के साथ, इन्हीं गहरी बातों के साथ हम सुनेंगे हमारा आज का पहला गीत और थोड़ी खुशियां स्प्रेड करेंगे। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिलवाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मतवाले।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक मैम जी. आपने हमें बताया कि होटल मैनेजमेंट आपका पहला चॉइस नहीं था, कहीं ना कहीं आप कुछ और करना चाहते थे जीवन में, बट आपने ये फील्ड चूज की और आप इसमें आगे बढ़े और ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का आगे का पूरी एक आगे का जो पूरा सफर होता है उसका एक फाउंडेशन बन गया. तो क्या आप मानती हैं कि कभी कभी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती हैं हमारी चॉइसेस? जो रास्ता हम मजबूरी में लेते हैं वही हमारी असली पहचान, हमारी असली कॉलिंग, असली डेस्टिनी होती है. और हमारे लिसनर्स के लिए जो आज हमें सुन रहे हैं, हमारे श्रोता, और कहीं ना कहीं अपने करंट फेज में परेशान है, शायद उन्होंने भी कोई ऐसे डिसीजन लिए हैं जो उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं थी, तो वो किस तरह से उसे डील कर सकते हैं, उसमें कैसे पैशन ढूंढ सकते हैं और कैसे उस रास्ते को अपनी नियति मान के अडॉप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो ये एक्सेप्टेंस की जर्नी आपकी कैसी रही ये बताएं हमें.
1: देखिए, पहले तो मतलब पहली बात तो ऐसा नहीं है कि मैंने किसी मजबूरी में वो कोर्स चुना. मजबूरी ऐसे थी कि मेरे एकेडमिक मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे कि मुझे साइंस या कोई और कॉलेज में एडमिशन मिल सके. और उस वक्त क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है फ्यूचर में. और ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे ये भी नहीं पता था कि होटल मैनेजमेंट कोर्स में होता क्या क्या है. अगर इसके बारे में सुनते हैं और एक साधारण आदमी से पूछते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होटल मैनेजमेंट कोर्स, तो वो यही सोचेगा कि होटल के बारे में होता होगा, कैसे सर्विंग होती है, कैसे खाना पकाया जाता है, कैसे क्लीनिंग होती है, वगैरह वगैरह. पर जब मैं कोर्स में थी, हमारा 4 साल का कोर्स था, और इस कोर्स में मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ी है, स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ी है, अकाउंट्स भी पढ़ी है, एनवायरमेंटल साइंस भी पढ़ी है, तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं. इट इज नॉट ओनली अबाउट होटल, इट इज नॉट ओनली अबाउट क्लीनिंग और सर्विंग अ पर्सन, इट इज बेसिक अवेयरनेस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. और इस कोर्स ने मुझे इतना मोल्ड किया, इतना ग्रूम किया, इतने बेसिक एटिकेट्स सिखाए जो शायद मैं किसी और कोर्स में नहीं सीख पाती. और

0: जब डेवलप होता है तो अपने आप जुनून आ ही जाता है. फिर आपको उसको करने की एक चाह रहती है कि मुझे इसमें बेस्ट देना है, मुझे इसका बेस्ट करना है. तो दैट इज व्हाट इज पैशन ऑल अबाउट. ये चीज मतलब आपको कोई सिखाता नहीं है या कोई ऐसे कोई जादू नहीं हुआ कि मुझे एहसास हुआ कि ये इंडस्ट्री मेरे लिए बेस्ट है या ऐसे कुछ. पर हाँ, कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा डेवलप हुआ जब मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया. तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप किसी चीज की तह तक जाते हैं, कोई चीज अगर आप हाथ में लेते हैं तो आप उसको समझे, जाने, अच्छी तरह उसको कंप्लीट करें. और फिर अगर आपको लगता है कि हाँ दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी और ये मेरे लिए नहीं बना है, देन ओनली यू टेक सम स्ट्रॉन्ग डिसीजन फॉर योरसेल्फ.
1: जी जी बिल्कुल. और कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि जिस चॉइस में आप हैं, जिस फेज में आप हैं, वो आपकी फर्स्ट चॉइस नहीं है, बट कहीं ना कहीं उसमें भी ढूंढने की कोशिश करें, उसकी तह तक जाए, शायद वही आपका कॉलिंग है, वही आपकी डेस्टिनी है. और उसमें अगर आप तह तक जाएं, जैसे कि खुशबू जी ने बताया कि वो जब उन्होंने ये कोर्स शुरू किया और उसे पढ़ना शुरू किया तो सेमेस्टर बाय सेमेस्टर उनका इंटरेस्ट बढ़ता गया एंड पैशन अपने आप डेवलप और जेनरेट होता गया. तो हो सकता है आपकी भी कॉलिंग इसी तरह से हो मेरे श्रोताओं. चलिए आगे चलते हैं. आपने ITC ग्रैंड सेंट्रल जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, ब्रांड्स के साथ काम किया और आप एक बहुत केयरफ्री इंडिविजुअल थे जैसे आपने हमें बताया. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरली आपको बहुत पॉलिश होना पड़ा होगा, बहुत चीजें चेंज करनी पड़ी होंगी. वो सफर, वो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी आपकी कैसी थी और क्या आपको वो पहला दिन याद है कि जब आपने ये सोचा हो कि अब नहीं, बस नाउ आई नीड टू लेवल अप, अब मुझे ये करना है, अब देयर हैज टू बी अ कट टू एंड वर्जन टू ऑफ खुशबू. ऐसा कोई एक एक्सपीरियंस आया हो या कोई एक ऐसा वाक्या हो जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें?
0: देखिए, ऐसा है कि जब आप थ्योरिकल पार्ट पढ़ते हैं जो मैंने कॉलेज में पढ़ा, और उसके बाद जब मेरी फर्स्ट जॉब जो ITC के साथ थी बॉम्बे, तो थ्योरिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में डेफिनेटली फर्क होता है. ये आप भी अग्री करते होंगे इस चीज को. तो जब आप प्रैक्टिकली कुछ चीजें फेस करते हैं तो आप अपने आप उन चीजों के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करते जाते हैं. अगर आपके मन में सीरियसनेस है काम को लेके कि मुझे करना है, मुझे बेस्ट देना है और मुझे अच्छा करना है, तो हमारी जो इंडस्ट्री रही, हमारी जो जॉब रही, वो इस तरीके से रही कि हम जितना कस्टमर डीलिंग और गेस्ट डीलिंग जितना हम करते हैं उतना ज्यादा हम सीखते चले जाते हैं. हालांकि कॉलेज में हमें केस स्टडीज बताई जाती थी, पर वो केस स्टडीज और एक आपके सामने जीता जागता इंसान खड़ा है और उसके साथ कोई इश्यू हो रहा है और आप उसको रिजॉल्व कर रहे हैं, और कई बारी आप नाइट शिफ्ट में हैं, आप अकेले हैं, आपके मैनेजर्स नहीं है. मैनेजर्स जनरली डे शिफ्ट करते हैं, तो नाइट में आप अकेले डिसीजन मेकर हैं और आपको डिसीजन लेना है एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप इतने बड़े ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं जहां पे आप गलती की गुंजाइश नहीं कर सकते हैं, आपको गेस्ट को भी खुश रखना और उसका स्टे कंफर्टेबल हो, ये सारी चीजें आपको पूरी तरीके से आपको डिसाइड करनी है आप अकेले. तो वो चीजें अपने आप, वो प्रेशर वो सिखा देता है सिचुएशन के हिसाब से. और धीरे धीरे ये चीजें अपने आप आ जाती है एक्सपीरियंस करके. तो वही चीज मेरे साथ भी हुई. कुछ शुरुआत में गलतियां भी हुई, ऐसी बात नहीं.
1: कोई एक ऐसी गलती जो हमारे साथ शेयर करना चाहें, कोई खूबसूरत गलती, कोई फनी गलती?
0: गलती देखिए ऐसी थी कि जब आप होटल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आपका जो गवर्नमेंट ID होता है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. वो चेक इन पे आपको लेना ही लेना होता है कस्टमर से. और VIP अराइवल था उस वक्त होटल में और उनसे मैंने उनका ID नहीं लिया. और बाद में वो चले गए कहीं मीटिंग के लिए और हमको मौका नहीं मिला कि हम उनसे ID कलेक्ट कर सके. तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने उनका ID नहीं लिया चेक इन के वक्त. तो ये हो जाता है, इट्स ओके नॉट, मतलब इसी से हम सीखते हैं.
1: जी हाँ बिल्कुल. चलिए, इसी खूबसूरत गलती, इसी खूबसूरत सोच, इसी खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हम सुनेंगे हमारा अगला गीत, एक रास्ता है।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक खुशबू जी.
1: जी,
0: आपके एक कलीग ने आपको बहुत कैजुअली कहा था कि आप एविएशन क्यों नहीं ट्राई करते, और इस सेंटेंस ने कहीं ना कहीं आपका एक पूरा डायरेक्शन बदल दिया, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात है. तो कैसा था ये पूरा इंसिडेंट, अगर आप हमारे साथ साझा करें कैसे हुआ ये पूरा इंसिडेंट शेप, और कैसे आपका ये डायरेक्शन बदला? और दूसरा पार्ट ऑफ माय क्वेश्चन इज कि कैसे कोई इंसान कई बार अपनी फील्ड से बिल्कुल यू टर्न ले लेता है किसी की कही हुई बात पे, किसी कुछ हुए हुए इंसिडेंट्स पे, कुछ यूनिवर्स के साइंस पे. तो कैसे इंसान ये समझे कि ये एक हवा की बात है, एक हवा में हुई हुई एक यू नो एक लहर है, या ये सच में एक डेस्टिनी का सिग्नल है, सच में एक यूनिवर्सल साइन है? तो अगर इसके बारे में हमारे साथ शेयर करें.
1: जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक यूनिवर्स का साइन ही था, क्योंकि कई बार ये ऐसा होता है, हम दोस्तों के साथ ग्रुप में होते हैं या कहीं पे हम बैठे होते हैं, कैजुअली बात कर रहे होते हैं, और कोई कुछ एक ऐसी बात कर जाता है जो आपके दिमाग से जाती नहीं है. आप बार बार बार बार उसी के बारे में सोचते हैं, और आप ये भी सोचते हैं कि लेट्स गिव अ ट्राई. तो यही चीज मेरे दिमाग में क्लिक करी थी. और ऐसा नहीं है कि मैंने इसके बारे में इतना सोचा कि हाँ मुझे अपनी जॉब छोड़ के अब इसकी तैयारी करनी है या मुझे इसमें ही जाना है. मैंने बहुत ही कैजुअल एक्सपीरियंस दी इसके लिए, और मेरा वेट काफी ज्यादा था उस दौरान. आई वॉज 85 kgs, एंड मुझे पता था कि मैं एयरलाइन के लिए अभी फिट नहीं हूँ, मुझे वेट लॉस करना पड़ेगा. तो मैंने मेरा पहला टारगेट जो बनाया वो वेट लॉस बनाया. इसीलिए नहीं बनाया कि मुझे एयरलाइन में जाना था, पर मैंने ऐसे ही ये एक मुझे एक मोटिवेशन, एक किक मिला कि मुझे वेट लॉस करना चाहिए. So let's do weight loss first, let's do this journey and then we will think about other things later on. अगर weight loss होता है नहीं होता है वो भी तो एक चीज होती है, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि मैंने डाइटिंग करके या भूखे रह के मैंने वेट लॉस किया. मैंने बहुत ही हेल्दी तरीके से अपने जॉब के साथ साथ 6 महीने के अंदर अंदर मैंने 25 kgs वेट लॉस किया. और फिर मैंने एयरलाइंस के लिए अप्लाई किया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया. हालांकि उस वक्त मैं 1-8 kilo ज्यादा ही थी जितनी उनकी रिक्वायरमेंट थी, पर फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया भगवान की दुआ से. तो फिर 10 साल मैंने जॉब की एयरलाइंस इंडस्ट्री में, एविएशन इंडस्ट्री में, और पता नहीं चला कब टाइम निकल गया.
0: जी, टाइम भी बिल्कुल फ्लाई कर गया आपकी तरह. बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर आपके एक्सपीरियंसेस रहे. कहीं ना कहीं मैं ये जान पा रही हूँ कि भगवान का आपके ऊपर जरूर आशीर्वाद रहा, एक ब्लेसिंग रही, एक हाथ रहा, और आपको उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया अपने गोल्स और अपने प्लान्स और अपने डिजाइन्स के साथ. आपने बताया 25 kgs आपने 6 months में लूज किया, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है और बहुत डिफिकल्ट होता है. जो उस जर्नी को अंडरटेक करता है सिर्फ वही जानता है. तो हमारे बहुत सारे श्रोतागण हैं जो आज हमारे अपने खुद के वेट इश्यूज से सफर करते हैं. कोई ओबेस है, कोई बॉर्डरलाइन यू नो डायबिटिक है, या कोई अंडरवेट है. तो अगर ऐसे हमारे श्रोताओं के लिए आप कोई एक मैसेज देना चाहें, क्योंकि ना आई एम श्योर आपकी भी जर्नी बहुत डिफिकल्ट रही होगी, बहुत बार आपने गिव अप किया होगा, बहुत सारे ऐसे यू नो एक्सपीरियंसेस रहे होंगे जो आप जानते हैं, जो लोग आपको जिन्होंने आपको देखा उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो नहीं जानते, बट आप जानते हैं. तो अगर आप एक बहुत पर्सनल टेक या एक पर्सनल एडवाइस हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहें, जो सेल्फ डाउट में है अभी भी कि पहला स्टेप कैसे लें, तो वो क्या होगा?
1: जी, पहला स्टेप तो आपका ये होना चाहिए कि एक प्रॉपर रूटीन बनाएं आप अपना, एक प्रॉपर फिक्स शेड्यूल रखें. आपका वर्कआउट का टाइम भी फिक्स होना चाहिए, और उसको आप कंसिस्टेंसी रखें उसमें. डेली आप एक एक्सरसाइज का रूटीन बनाएं, और आपकी खाने का, आपके डाइट का, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी बॉडी को मिलनी चाहिए. मैं ये जितने भी डाइट चार्ट्स आते हैं, कीटो और जो जिसमें कहा जाता है कि आप इतने घंटे फास्टिंग कीजिए और इतने घंटे खाइए, मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती इन सब चीजों में. साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आप अगर भूखे रहेंगे तो आप कभी भी वेट लॉस नहीं कर पाएंगे एक हेल्दी तरीके से. और आप जिंदगी भर तो ऐसा है नहीं कि आप सैलेड्स और इनपे जी सकते हैं. आप प्रॉपर खाना, हम इंडियंस हैं तो डेफिनेटली वी आर फूडीज, हमको चाट भी खाना है, हमको डेजर्ट भी खाने हैं, हमको केक भी खाना है, हमको गुलाब जामुन भी खाना है. तो उसी हिसाब से आप हर चीज खाइए पर पोर्शन कंट्रोल कीजिए. अब आपको पूरा गुलाब जामुन खाने की जरूरत नहीं है आपकी क्रेविंग्स को मिटाने के लिए. आप एक टुकड़ा भी खा सकते हैं प्रसाद के समझ के या प्रसाद समझ के. और कोई भी चीज आप खाएं, सब खाइए. मैं तो ये मैंने भी सब खाया था, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने छोड़ा था. पर हाँ, कंट्रोल में अगर आप पोषण कंट्रोल करते हैं और हमेशा रात का डिनर जो है वो आप बिल्कुल लाइट लीजिए. आप रात को हैवी खाएंगे तो आपकी आपका जो बेली फैट है वो कभी नहीं जाएगा. आपको रात को हमेशा लाइट ही खाना है. आप एक ग्लास दूध पी के भी सो सकते हैं, वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा रहता है. ऐसा नहीं है कि आप भूखे हैं या आपके पेट को जरूरत है. हम हमेशा हमारी जरूरत से ज्यादा ही पेट में डालते हैं, इतनी तो हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है. तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे अपनी लाइफ में अप्लाई करनी पड़ती है. और ये डिफिकल्ट होती है एक रूटीन बनाना. और आप हमेशा देख के खाएं कि मैं क्या खा रही हूँ, ये मेरे पेट में जा रहा है, इसकी कैलोरी कंटेंट आपके दिमाग में कैलकुलेट हो जानी चाहिए आपके मुंह में जाने से पहले. तो आप उसको डेफिनेटली अवॉइड करेंगे.
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सहज और बहुत ही सटीक तरीके से आप हमारे सारे सवालों के जवाब देते जा रहे हैं. इससे मुझे समझ आता है कि आप कितने बैलेंस्ड एक पर्सनालिटी हैं और आपकी सहजता बहुत सुंदर है. इन्हीं सुंदर विचारों के साथ हम सुनेंगे हमारा अगला गीत, आने वाला पल जाने वाला है.

0: आपकी जो ब्रांड है पॉटरी की, बेंटोनाइट पॉटरी, ये शुरू करना, इसको लॉन्च करना, ये आपका प्रोसेस कैसा रहा? इसका बीज कब डला? किस तरह से आपने इसको एक डिजाइन और एक ड्रीम को एक रियलिटी का शेप दिया? और क्या ये बिजनेस डिसीजन था या अगेन ये आपके जीवन के पैटर्न की तरह एक क्रिएटिव कॉलिंग रहा आपके लिए? और अगर आप इस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड, नेचुरली आपके आपका बच्चा, आपके यू नो योर सन विल कैरी दिस फॉरवर्ड, तो आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? उनको क्या आप बोलेंगे कि आप यही करो, या आप उनको एक खुली स्पेस देंगे टू टेक हिज डिसीजंस और अपनी क्रिएटिव कॉलिंग फॉलो करने देंगे? किस तरह से आप इसको, इस लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं?
1: शुरुआत से ही और आई थिंक हम लेडीज में ये एक कमजोरी होती है कि हमारा जो प्यार है क्रॉकरी के लिए वो कुछ अलग ही लेवल का होता है.
0: बिल्कुल.
1: आज भी अगर आप मार्केट जाते हैं, हो सकता है आपके घर में सेम टाइप का कप सेट होगा या सेम टाइप का डिनर सेट होगा और आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी, फिर भी अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ये सोचेंगे कि चलो ले लेते हैं.
0: बिल्कुल.
1: तो वही एक प्यार था, वही एक चीज थी जो मेरे अंदर भी थी आम लेडीज की तरह, जो मैं इसको अपने प्रोफेशन में उतारना चाहती थी. इसीलिए मैंने बेंटोनाइट पॉटरी का बिजनेस सोचा. दिस इज बेसिकली अ एक्सपोर्ट बिजनेस और हर तरीके का सेरेमिक प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं और इसमें जो जयपुर की कला है ब्लू पॉटरी वो भी शामिल है. ये कला ऐसी है जो अब लुप्त होती जा रही है. इसके जो कारीगर है वो पुराने कारीगर हैं और उनके जो परिवार के जो नई जनरेशन है, जो यूथ है, वो इस काम को सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है. तो इस कला को जिंदा रखने के लिए, इसको आगे तक ले जाने के लिए मेरा ये डिसीजन था कि इसको अपन अच्छे लेवल पे लेके जाए ताकि इसकी डिमांड बढ़े. डिमांड बढ़ेगी तो सप्लायर्स भी बढ़ेंगे, सप्लाई भी बढ़ेगी. वो एक बहुत मेजर पार्ट है इस कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए. दूसरी चीज मैं लेडीज को ये कहना चाहूंगी कि जो मदर्स हैं स्पेशली, कि आपका जो करियर है उसको आपको गिव अप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. पर जो भी आप गैप लेते हैं अपने लाइफ में बेबी के बाद, एक साल दो साल आपकी जॉब से जो भी आप गैप लेते हैं,
2: आप जिस दिन जिस चीज को जहाँ पे सोच लेते हैं वही उसी दिन से आप सवेरा समझिए. ऐसा नहीं है कि हम लेट हो गए या हम अब कुछ नहीं कर सकते, हम बच्चे में फंस गए या हम घर परिवार में उलझ के रह गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. आप किसी भी एज में आप अपने पैशन को या अपने शौक को या आपकी कोई कला को या कोई और चीज भी आप करना चाहते हैं तो आप बच्चे के साथ भी बिल्कुल कर सकते हैं. दूसरी एडवाइस मैं ये देना चाहूंगी कि जब भी आप बेबी प्लान करते हैं और आप वर्किंग हैं तो आप अपनी कुछ सेविंग जरूर रखिए. साल दो साल तीन साल तक की ऐसी सेविंग रखिए कि अगर आप जॉबलेस भी हैं तो भी आप अपना और अपने बच्चे का खर्चा आराम से उठा पाए, आप किसी पे बर्डन ना बने. हालांकि आपके हस्बैंड डेफिनेटली बहुत सपोर्टिव होंगे, आपकी फैमिली सपोर्टिव होगी, पर एक इंडिविजुअल इंसान की, आपकी पहचान की बात करें तो आपके पास ये सेविंग होना बहुत जरूरी है ताकि शायद आपको कभी एहसास हो कि मुझे मेरा एक बिजनेस स्टार्ट करना है या मुझे एक छोटा सा स्टार्टअप करना है. आजकल तो ऑनलाइन काफी सारी चीजें हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक बैकअप की जरूरत पड़ती है. वो एक आपके पास हो और है तो बहुत ही अच्छी बात है. और इस मदरहुड जर्नी को आप जितना एंजॉय करें उतना आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे पलक झपकते ही कब बड़े हो जाते हैं एहसास भी नहीं होता है. कल वो अगर आपकी गोदी में थे और आज वो चलने लगे हैं, फिर आप तरसेंगे कि वो हमारी गोदी में वापस कब आएंगे.
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. इसी से मेरा आखिरी सवाल आज का, जो मैं सिर्फ वुमेन फोर्स जो है हमारी, जो महिला गण हमें सुन रही हैं, हमारी आदत होती है एज वुमेन अपने आप को गिल्ट ट्रिप में डालने की. अगर हम काम और करियर साथ में करते हैं, घर और करियर साथ में लेके चलते हैं, तो हम बार बार अपने आप को उस गिल्ट ट्रिप में डालते हैं. तो आपके लिए ये जो पूरा प्रोसेस था जहां पे आपने शादी, फिर मदरहुड एंड करियर पॉज, इन सब यू नो फेजेस को आपने जिया,
2: तो आप इसे सैक्रिफाइस कहते हैं या इसे एवोल्यूशन कहते हैं? और जो लोग, जो औरतें काम करती हैं, वो कैसे अपने आप को गिल्ट फ्री होके एक करियर पॉज ले सकती हैं और गिल्ट फ्री होके ही अपने करियर को वापस टेक ऑन कर सकती हैं जब उनके बच्चे एक सर्टेन एज पे आ जाए? उस पूरे असमंजस को, उस पूरे उधेड़ बुन को दिमाग के, कैसे एक महिला अपने आप को बैलेंस कर सकेगी, जैसे आपने अपने आप को किया कहीं ना कहीं?
3: सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई आपकी पीठ थपथपाए या ना थपाए, आप खुद इसको थपथपाए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड करेंगे, आप खुद ये नहीं सोचेंगे कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ और मेरे से बेस्ट कोई नहीं कर सकता है, मैं बहुत अच्छा मैनेज कर रही हूँ, मैं काम भी मैनेज कर रही हूँ, मैं घर भी कर रही हूँ, मैं बच्चा भी कर रही हूँ, मेरे से ज्यादा सुपीरियर कोई हो ही नहीं सकता है, कोई इससे अच्छा मैनेज ही नहीं कर सकता है, तो वो चीज आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। भले ही दूसरे कितना भी क्रिटिसाइज करें, कुछ भी बोलें, पर आप अपने आप में, अपने आप को एक प्राउड फील कराएं कि
2: हाँ
3: आई एम दी बेस्ट एंड नोबडी कैन डू बेटर देन मी। दिस एटीट्यूड इफ यू हैव, देन यू कैन विन द वर्ल्ड डेफिनेटली।
2: वेरी गुड, वेरी ट्रू। बहुत जरूरी है अपने आप को थपथपाना और अपने आप को ही एक कॉन्फिडेंस देना, क्योंकि दुनिया शायद नहीं करेगी, वो आपके एफर्ट्स को ग्रांटेड लेती हैं कि हाँ ठीक है ना, कर रहे हैं, बट अगर आप खुद खुद की पहचान को समझते हैं और उसे थपथपाते हैं जब समय आए, जब जरूरत है, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं उस विश्वास के साथ और उस भरोसे के साथ जो खुद पे आता है। तो बहुत खूबसूरत बातचीत रही, आपका नाम खुशबू है और उसी तरह आपने बहुत सारी खुशबू हमारे साथ शेयर करी, आपके जीवन की, आपके एक्सपीरियंस की। बहुत बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी आज हमारे साथ
3: थैंक यू
2: जुड़ने के लिए।
3: सो मच, थैंक यू सो मच।
2: स्ट्रेट लाइन से ज्यादा कभी कभी बहुत जरूरी होता है करेज, हिम्मत। तो दोस्तों याद रखिए कि लाइफ में बेस्ट होना जरूरी नहीं है, स्कूल में टॉपर होना जरूरी नहीं है और एक परफेक्ट प्लान होना भी जरूरी नहीं है। बस नेक्स्ट स्टेप लेने का जो हौसला है, जो विजन है और जो ड्रीम करने की एक कैपेबिलिटी है, वो बहुत जरूरी है और वो जीवन में आपको बहुत आगे ले जा सकती है। आप सुन रहे थे जिंदगी के रंग गीतों के संग। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे तनुषा, आपके तरानों की हम सफर। फिर मिलेंगे एक नए सफर के साथ, एक नए रंग के साथ। नमस्कार।
4: हूँ से आरजे भावना, आप पर हंगला भाइयों नु घरु घरु स्वागत करिए से आपरा झाबुआ ना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो 10 केबल 90.8।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांट्या भी रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम
1: से आरजे भावना आपण हंगळा भाईयोनु घरु घरु स्वागत करिये से आपरा झाबुआना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्याविल 90.8

0: गई।
1: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। और दोस्तों, आज का रंग कला और पेंटिंग की सतरंगी दुनिया का है और हमेशा की तरह आपका दोस्त आलोक कुमार आपसे मुखातिब है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिनका जीवन स्वयं एक रंगों से सजा कैनवास है। समर्पण, सौंदर्य बोध और सृजनशीलता से भरा हुआ हमारी आज की अतिथि हैं डॉक्टर अर्चना कुलश्रेष्ठ जी, एक प्रख्यात चित्रकार, शिक्षाविद और कला साधिका। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से पीएचडी की, स्वर्ण पदक से सम्मानित रही और 4 दशकों से अधिक समय तक कला, शिक्षण, शोध और सृजन का शानदार सफर तय किया। देश विदेश में 50 से अधिक प्रदर्शनियां, अनेक राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार और कला के क्षेत्र में आज भी उनका योगदान उतना ही जीवंत है जितना कि उनके चित्रों के रंग। तो आइए अर्चना जी से जानते हैं कला, सौंदर्य और जीवन के उन रंगों के बारे में जो उनके ब्रश से निकलकर समाज तक पहुंचते हैं। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद
0: अर्चना जी। शुरुआत आपके बचपन से करते हैं क्योंकि बचपन के बारे में बातचीत करना हर किसी को अच्छा लगता है। क्या बचपन से ही आपको कला और चित्रकला में रुचि थी?
1: हाँ जी, बहुत ज्यादा रुचि थी। बचपन से ही मैं पेंटिंग्स बनाया करती थी, मूर्तियां बनाते थे हम लोग, और मेरे पास संगीत भी था, मैं संगीत भी सीखती थी, नृत्य भी सीखती थी। तो सारी कलाओं से ही मैं जुड़ी हुई थी और मुझे बहुत पसंद है ये सब चीजें। और मैंने साइंस नहीं लिया, कला ही ली, कला को ही चुना अपना विषय, इसलिए कि मेरा इसमें बहुत ज्यादा बचपन से इंटरेस्ट था। कविताएं भी करती थी मैं।
0: अरे वाह, तो आप तो पूर्ण रूपेण एक तरह से कला के लिए समर्पित थी, बहुत ही अच्छा लगा जान के। आपकी शिक्षा और ड्राइंग पेंटिंग में स्वर्ण पदक भी प्राप्त करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
1: एक्चुअली मैंने कभी ये प्रेरणा तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मेरे फादर से मिली। वही कहते थे तू बिना पढ़े लिखे ही इतने अच्छे नंबर लाती है, टॉप करती है साइंस आर्ट्स दोनों फैकल्टीज में, तो पढ़ेगी तो कितना अच्छा होगा। और उसके बाद ही उनकी डेथ हो गई जब मैं 11th क्लास में पढ़ती थी। तो वो एक प्रेरणा भी थी और मेरी आवश्यकता भी थी। तो मैंने खूब मेहनत करी और स्वर्ण पदक मुझे उदयपुर यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुआ। उदयपुर यूनिवर्सिटी से मैंने किया था हमें, क्योंकि यहाँ जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में था ही नहीं।
0: और पीएचडी के लिए आपने किस विषय पर शोध किया और उस विषय का चुनाव कैसे किया?
1: मैं जब भी सफर करती थी तो मुझे यहाँ की हवेलियों पे, मंदिरों में, बावड़ियों में, हर जगह पे भित्ति पे चित्र दिखाई देते थे और वो मेरे साथ साथ दौड़ते रहते थे। तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी कि इतना काम यहाँ पे हुआ है। एक्चुअली 16वीं शताब्दी से चित्र बन रहे हैं भित्तियों पे और उसका जो इतिहास है वो आज तक किसी ने अभी ऐसा लिखा नहीं था। तो मुझे लगता था कि मैं इसी के ऊपर शोध करूं। और दूसरी, उसका ऐतिहासिक महत्व, तो मेरा पीएचडी का जो सब्जेक्ट का टाइटल था वो राजस्थान के भित्ति चित्र और उनका ऐतिहासिक महत्व। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी बाद में विषय खुला और मेरे को कोई गाइड नहीं मिले, तो मैंने इतिहास के ही एक विद्वान जो कि टॉप 10 में आते हैं इंडिया के, उनसे उनको अपना गाइड बनाया और वो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट रहा और बहुत अच्छी तरीके से मैं उस पर काम कर पाई उनके साथ में।

0: भित्ति चित्र पे आपने पीएचडी की है, ये तो बहुत बढ़िया, बहुत ही जोरदार बात है। और राजस्थान में तो जगह जगह भित्ति चित्र
1: जगह
0: हर
1: जगह
0: जगह है, जगह जगह। और
1: बिल्कुल
0: बावड़ियों का
1: बिल्कुल,
0: आपने जिक्र किया, बावड़ी
1: हाँ जी
0: भी
1: हाँ जी,
0: राजस्थान में बहुत है क्योंकि यह पानी की कमी
1: बहुत
0: रहती है।
1: बिल्कुल,
0: एक यहाँ
1: आपको
0: चांद
1: हर
0: बावड़ी
1: जगह
0: है,
1: चित्र मिलेंगे यहाँ पे। हाँ
0: बिल्कुल एक चांद बावड़ी है, वो भी मैंने भी देखी है, बड़ी जोरदार है, कहते हैं
1: बिल्कुल,
0: बहुत बहुत फेमस है। अब थोड़ी सी आपकी शिक्षण की तरफ अपन रुख करते हैं।
1: हाँ
0: आपने
1: जी
0: लंबे समय तक राजस्थान के कई कॉलेजों में ड्राइंग और पेंटिंग विभाग का नेतृत्व किया, इस सफर में
1: जी
0: कौन-कौन सी बातें आपको सबसे अधिक संतोष देती हैं?
1: देखिए, एक लेक्चरर का, एक व्याख्याता का सबसे बड़ा जो सेटिस्फेक्शन होता है, संतोष होता है, वो ये होता है कि उसके जो विद्यार्थी है वो उसको, उनको पसंद करें और उनको समझें, उनकी पढ़ाई पढ़ा पढ़ाई हुई शिक्षा को वो ग्रहण करें, तो उनको आनंद आए। तो मेरा जो सेटिस्फेक्शन है वो यही है कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे को बहुत पसंद करते थे, और अभी वो सब भी बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों से रिटायर भी हो गए हैं, तो वो लोग आज तक भी मुझे याद करते, तो मेरे को इस बात का बहुत संतोष होता है कि मैंने अपने फील्ड में बहुत अच्छी तरीके से काम किया है, जिससे कि वो भी उससे फायदा उठा सके, लाभ उठा सके। तो ये संतोष सबसे बड़ा संतोष है एज ए
0: बहुत
1: टीचर,
0: बढ़िया,
1: एज ए लेक्चरर।
0: जी जी बिल्कुल। शिक्षक का संतोष ही ये होता है कि उसके जो
1: विद्यार्थी उनको
0: विद्यार्थी
1: याद
0: हैं वो
1: करें।
0: बिल्कुल याद करें, बिल्कुल। एक शिक्षक से लेकर प्राचार्य और फिर डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स तक की इस यात्रा में आपको किन-किन चुनौतियों और उपलब्धियों का सामना करना पड़ा, कुछ इसके बारे में हमारे साथ साझा कीजिए।
1: चुनौतियां तो बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि शिक्षक तो जो है उसको कोई चुनौती इतनी, बस एक ही चुनौती होती है कि उसके बच्चे उसका पढ़ाया हुआ जो भी है वो उसको समझ सकें और उसको अपने जीवन में ला सकें। लेकिन प्राचार्य के पोस्ट पे आते ही आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं, छात्रों का असंतोष, और छात्रों का ही नहीं, वहाँ के जो आपके व्याख्याता है उनका असंतोष, और उसके बाद में जो है वो जो वो होते हैं पियोन्स वगैरह सबका, मतलब बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है सबको संतुष्ट करना, और वो भी ऐसे इस कॉलेज में जहाँ 8,000 छात्र गांव से आते हैं सीधे हड़ौती में, तो वो सिर्फ आपको वो आपके हड़ताल, चाकू, छुरे सब तरीके से, साम दाम दंड भेद, और उनकी राजनीतिक यात्रा जो वो दो जो नेता बनते हैं वो वहीं से ही शुरुआत होती है, तो उसको फेस करना आपको आना चाहिए और उनको संतुष्ट करना आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप चिल्ला के करें, आप उनको समझा सकते हैं, और इसमें मैं समझती हूँ कि मेरा थोड़ा महारत था कि मैं उनको बड़े प्यार से बिठा करके सब समझा करके और सॉर्ट आउट कर लेती थी, और यहाँ तक कि मेरे कलीग्स को भी, तो किसी ना किसी तरीके से, तो ये एक ईश्वर प्रदत्त मेरे में कुछ ऐसा वो है कि मैं किसी को भी आराम से समझा लेती हूँ, वरना इतना मुश्किल होता था कि वो वहां पे आपकी तोड़ फोड़, चाकू छुरे आपके उस पे से उठा लेते, और प्रिंसिपल्स को तो वो उठा करके भी ले गए कई तरीके से, लेकिन मैं उसके अंदर बहुत सफल रही और उनको मैंने अपना बना करके और बहुत अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे हमारे हमारे को इस वैल्यूज में क्यों रख दिया, हम इसकी हमारे को इसमें क्यों डाल दिया आपने, इसमें बहुत काम है, फैकल्टीज वगैरह जो हम उनको यूज करते हैं कई कई अपने कार्यक्रमों में, कि आपको ये संभालना है, आपको ये संभालना है, आपको, तो कई तरह की उनकी वो होती है व्याख्याताओं की भी, और स्टूडेंट्स की तो बहुत होती है, पानी नहीं है, ये नहीं है, फर्नीचर नहीं है, फलाना नहीं है, मतलब किसी भी बात को लेके वो उनको राजनीति मतलब वो करनी है तोड़फोड़ और हड़ताल, और राजनीति का यहीं से उनका पहली सीढ़ी चढ़ते हैं वो, तो वो बहुत जोर शोर से करते हैं, उसको सहन करना बड़ा मुश्किल होता है, और वो भी फिर एक लेडी को, वो भी बॉयज कॉलेज के अंदर, लेकिन मैं
0: जी
1: पढ़ी भी
0: हाँ,
1: बॉयज कॉलेज में हूँ और मैं उनको समझती भी हूँ, तो मैंने बड़ी अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक इसको चुनौती को स्वीकार किया, और उपलब्धियों की बात यह है कि वो जो बच्चे थे और जो अभी भी हमारे यहाँ के कई सारे जो राजनेता हैं अभी, जैसे बिड़ला जी हैं और चांदी धारीवाल हैं, और ये सब हमारे ऐसे ही पढ़े हुए हैं, तो ये लोग जो है इनकी जब वो देखती हूँ मैं उपलब्धियां, और कई लोग रिटायर हो रहे हैं प्रिंसिपल से और कई लोग किसी आरएएस आईएएस में जा रहे हैं, तो वो सब उपलब्धियां हैं मेरे लिए कि मैं उनके साथ में रह करके उनको संतुष्ट कर सके और अच्छी तरीके से प्रशासन संभाल सके। क्योंकि ये प्रशासनिक वो दिक्कतें हैं जो चुनौतियां और उपलब्धियां दोनों बन के सामने आती हैं। और डीन का जहां तक सवाल है, डीन में यूनिवर्सिटी में थी, कोटा यूनिवर्सिटी में, और पूरी फैकल्टी आर्ट्स फैकल्टी उसकी मैं डीन थी, तो किसी भी तरीके की कोई भी समस्या किसी भी सब्जेक्ट में होती तो मैं हर एक की बीओएस में मतलब बोर्ड ऑफ स्टडीज की उसमें बैठती थी बैठक में और उनको सॉल्व करती थी और फिर आती थी। और कितनी हजारों लाखों डिग्रियां आर्ट्स जो फैकल्टी है सबसे बड़ी है, लेकिन उसको भी मैंने बड़ी अच्छी तरीके से चुनौती ली और उसको फिर सब उसको स्वीकारा भी, और फिर उसके अंदर जो भी मेरे को उपलब्धि मिली वो भी मेरे सामने अभी भी खड़ी है, अभी भी लोग याद करते हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी हो कोई स्कूल कॉलेज हो या कुछ भी हो वो सब लोग मेरे से आज भी जुड़े हुए हैं। तो ये उपलब्धियां हैं।
0: बहुत सुंदरता से आपने बताया और आई कैन अंडरस्टैंड कि कोटा का नाम भी कई तरह से फेमस भी और कई तरह से इनफेमस भी है।
1: जब तक वहाँ पे ये हब नहीं बना था इसका कोचिंग वाला, उससे पहले सारे बदमाश ही थे, सारे इंडस्ट्री एरिया था वो।
0: वहाँ
1: पे तो चाकू चूरों से पहले बात ही नहीं होती, और जब भी इतने बड़े कॉलेज में कुछ होता तो मुझे बुलाते थे घर से क्योंकि वो मेरी बात मानते थे। तो ये सफलता उपलब्धि है।
0: जेके की फैक्ट्री बंद करवा दी थी,
1: बंद हुई उसके बाद में कोचिंग, बिल्कुल
0: वो मुझे आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको कितनी डिफिकल्टी। और ये शांतिलाल धारीवाल और ये जो वहीं के वहीं से
1: वहीं की पैदाइश है, बिल्कुल वहीं के ओम बिरला के हमारे कॉमर्स कॉलेज से निकले, और मैं लास्ट में जब रिटायर हुई तो कॉमर्स कॉलेज से ही हुई थी। तो बहुत सारे लोग निकले हैं, मैं नाम नहीं बता सकती, ये वो जो सेंट्रल मिनिस्टर वगैरह सब रहे, तो ये सारे कोटा के ही।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भी अपने स्कूल की पढ़ाई कोटा में की है, इसलिए कोटा से मेरे को काफी ही एफिनिटी है। आगे बढ़ते हैं।

0: आपके निर्देशन में कई शोधार्थियों ने पीएचडी पूरी की
1: जी,
0: तो एक गाइड के रूप में, शोध मार्गदर्शक के रूप में आपकी सबसे बड़ी क्या जिम्मेवारी लगती है?
1: एक्चुअली क्या है कि आजकल जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, शोधकर्ता है, बच्चे हैं, वो सिर्फ गूगल से लेकर के और इधर से उधर से लेकर के अपना काम करते हैं, वो कभी भी रिसर्च नहीं करते। मतलब जो चीज है उसी को हमने दोबारा सर्च करना है, तो वहां जाके आप ऑथेंटिक देखो तो सही, उसको समझो सही, पहली बात तो ये। लेकिन दूसरी बात ये है कि जब वो लिखते हैं तो उसको कॉपी भी एज इट इज करते हैं, मतलब जो गूगल पे लिखा हुआ है वही लैंग्वेज यूज करते हैं। तीसरी बात है कि अशुद्धियां करते हैं, हिंदी में भी अशुद्धियां करते हैं, तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उनको गाइड करें कि भाई आप मौके पे जाके देखो। जैसे मेरा भी फील्ड वर्क था, मैंने पूरा राजस्थान घूमा, एक एक जिला, गांव, ढाणी, मतलब सब पे, और एक एक हवेली उसकी, मतलब कितना वाइड मतलब काम था। फिर भी क्योंकि हमारे गाइड ऐसे थे कि वो कहते नहीं जाकर क्या हो, मुझे बताओ कितनी दूर था, क्या था। पर आजकल ऐसे स्टूडेंट्स नहीं है, वो उठाएंगे किसी भी किताब को और बस उससे लिख देंगे। आप अगर जाओगे वहां पे तो वो चीज मिलेगी भी नहीं वहां पे। बल्कि मेरे जो एग्जामिनर आए थे आरपीएससी में, उन्होंने एक मारवाड़ म्यूरल्स पे किताब लिखी थी, उसको लेके मैं घूमी, और बाद में जब वो मेरे एग्जामिनर बन के मतलब वहां पे आए उसमें आरपीएससी में, तो पहले मेरे घर आए, फिर उनको पता लगा कल मैं बैठी, तो वापिस गए, और जैसे ही मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ वो वापिस मेरे पास आए। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपकी किताब को लेके मैंने बहुत पैसा गवाया, घूमा, कहीं पे कुछ नहीं था। फिर उन्होंने डिलीट भी की, वो भी मेरे गूगल पे उसमें करी, तो मैंने उनसे भी कहा, तो उन्होंने कहा पैसे तो ऐसे ही नहीं होनी चाहिए। मेरा जो रिसर्च स्कॉलर है उनको मैं कहती हूँ पूरा अपना काम स्वयं जाकर के देखो, उसको समझो वो है भी कि नहीं है, तो कुछ भी लिख दोगे आप और कुछ भी मैं देख लूंगा ऐसा नहीं होगा। रिसर्च मतलब कि वो चीज होनी चाहिए उसको आप वापस सर्च कर रहे हो, देख रहे हो। दूसरा आपकी अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, आपको सेंटेंस फ्रेमिंग बना आनी चाहिए। आप खुद जब सर्च करोगे तो आपका जब एग्जाम वाइवा होगा तो आपको याद आएगा, अगर आपने कॉपी किया होगा तो आपको कुछ भी याद नहीं आने वाला। फिर वो टाइपिंग में मिस्टेक्स होती है, उसको भी वो लोग नहीं देख पाते, मतलब उसको भी उसमें भी जो गलतियां रह जाती है वैसी रह जाती है, तो फिर क्या रिसर्च करना है। तो मेरा बेसिक फंडा यही है कि आप पहले अपने आप सारा सर्च करो, उसके बाद अपने सेंटेंस को देखो, फ्रेमिंग्स को देखो, क्या कर रहा है, कैसी है, ठीक है कि नहीं है। फिर टंकण में जो मतलब टाइपिंग में जो होती है उसको भी आपको देखना पड़ता है एक बार कि भी सही है कि नहीं है। तो ये सारा मेरा फोकस उस पर रहता था और वो खुद से अपना काम करें इस बात पे, यही यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी लगती है मुझे।
0: सही बात है।

0: चलिए अब थोड़ा सा अपन रुख बदलते हैं। अब आम श्रोताओं के लिए अगर आप सरल भाषा में बताना चाहें कि स्केचिंग, ड्राइंग और पेंटिंग में क्या मूलभूत अंतर है, क्या फर्क है?
1: बिल्कुल, स्केचिंग जो है, एक्चुअली स्केचिंग हम तब करते हैं कि जब हम किसी जगह पर कुछ चीज बनाने जाते हैं वहां पे, तो उसका आप या तो फोटोग्राफ लेके, तो फोटोग्राफ लेना उतना आर्टिस्टिक भी नहीं होता है क्योंकि उसको वैसा के वैसा ट्रांसफर करना मुश्किल होता है। पर आपको अगर आपको अपने ऊपर कमांड है, आपने स्टडी किया है ह्यूमन बॉडी का या पर्सपेक्टिव का, किसी सीन का, मतलब सीस्केप, लैंडस्केप या कोई भी चीज का, तो आप रैपिड स्केच करते हैं। रैपिड मतलब बहुत जल्दी, क्योंकि आप जब जिस जगह चाहेंगे वहां घंटों तो बैठ नहीं सकते, और आपको वो दृश्य आपको अपनी स्केच फाइल में लाना है, उसके बाद डेवलप करना है, तो आप रैपिड स्केच करेंगे। और उसका एक तरीका होता है कि आप कभी भी रबर यूज नहीं करेंगे, और बार बार आप लाइन खींच सकते हो, उसमें से फाइनल लाइनें आप घर में से निकाल सकते हो। ये रैपिड स्केच इस काम में आता है कि आप अपनी जो पेंटिंग बना रहे हैं उससे पहले जिस जगह का आप दृश्य बनाना चाहते हैं उसके कुछ स्केचेस फास्ट एकदम जल्दी जल्दी करके और घर पे ले आए और फिर स्टूडियो में बैठ के उसको डेवलप करें, तो ये स्केचिंग है। पर स्केचिंग में आपको पहले बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है, हर चीज के लिए पर्सपेक्टिव आना चाहिए, नापना आना चाहिए, अगर ह्यूमन बॉडी बना रहे हो तो हर चीज की आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप रैपिड स्केच खींच पाते हो, डॉट डॉट करके नहीं। और ड्राइंग एंड पेंटिंग जो है वो आप घर पे ला करके उसकी ड्राइंग फाइन ड्राइंग्स बनाइए और फिर उसमें पेंटिंग कीजिए, ये है।
0: ओके, तो स्केचिंग में इसका मतलब है ह्यूमन एनाटॉमी, अगर मतलब किसी का पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो उसकी जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए,
1: थोड़ा सा तो जानकारी हो, तभी आप चार लाइनें खींचोगे तो भी आप बाद में उसमें से निकालोगे, जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप चार लाइन भी कैसे खींचोगे, फाइन लाइंस बाद में निकाल लो आप ड्राइंग करते टाइम, लेकिन थोड़ी सी आपको पहले अभ्यास करना पड़ेगा। और हमारे सबसे पहले स्केचिंग के लिए ही लेके जाते हैं बाहर,
0: अच्छा,
1: बच्चों को, जिससे कि आपकी आदत पड़े बार बार, क्योंकि सब्जी मंडी में जा रहे हैं तो आप वहाँ पे एकदम से कैच करते नहीं है, उनके जितने पोस्चर से बदलते रहते हैं, आप नृत्य में देखने जा रहे हैं तो उनके बदलते रहते हैं, कुछ भी बात अगर आप किसी को भी स्केच कर रहे हैं तो वो बदलेंगे, पर आपके लिए वो थोड़ी ना रुकेंगे स्टेज पर।
0: तो आप पेंटिंग की कई विधाएं होती है जो हम लोग लेमैन थोड़ा बहुत जानते हैं, वाटर कलर है, ऑयल पेंटिंग है, एक्रेलिक है, म्यूरल है, कुछ बताइए ये क्या क्या है और अलग अलग क्यों है और इनमें क्या समानता है, और आपको कौन सी विधा सबसे अधिक प्रिय है और क्यों है वो?
1: हाँ जी बिल्कुल, वाटर कलर के बारे में सबसे पहले आपने पूछा है, तो वाटर कलर एक बहुत डिफिकल्ट विधा है,

लोग बात सोचते हैं कि ये बहुत सरल है, क्योंकि वाटर कलर में हम लोग जब ट्रांसपेरेंट कलर को यूज करते हैं शीट पे या किसी पे भी, तो व्हाइट की जगह हम व्हाइट छोड़ते हैं, उसके बाद हम बहुत लाइट कलर से शुरू करके डार्क कलर की तरफ जाते हैं। और अगर आपने गलती से पहले गलत जगह पर डार्क लगा दिया तो फिर तो आप उसको ठीक कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट कलर है और उसको नीचे जो शेड है वो आपके ऊपर आएगा ही आएगा। तो आपको बहुत संभल के काम करना पड़ता है, पहले लाइट कलर लगाओ, फिर दूसरी टोन, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे करके आपको करना पड़ता है। और पहले से आपको ध्यान रखना पड़ता है हाईलाइट कहाँ छोड़नी है। ये तो वाटर कलर की बात, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है। ऑयल पेंटिंग थोड़ी इजी होती है, इजी इसलिए होती है कि ऑयल पेंटिंग सूखती देर में है, और आपने अगर गलत भी लगा दिया, वैसे तो इसको आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये डार्क टू लाइट होती है, वो लाइट टू डार्क होती है, ये डार्क टू लाइट होती है। क्योंकि अगर आपने डार्क के ऊपर थोड़े हल्का फिर हल्का फिर हल्का लगाया, कुछ नहीं होगा, ब्राइटनेस रहेगी, शेड्स भी बदलेंगे। लेकिन अगर आपने व्हाइट के ऊपर डार्क लगा दिया कोई कलर, ब्लू ब्लू भी तो भी चल जाएगा, जैसे ब्लैक लगा दिया, ब्राउन लगा दिया या मिक्स कलर लगा दिया, तो ब्राउन हो जाएंगे, चौकिश हो जाएंगे, उनमें कोई चमक नहीं रहेगी और वो बिल्कुल डार्क जैसे हो जाएंगे। तो उसका एक अलग तरीके का है, पर उसमें फायदा ये है कि अगर आपसे गलती लग गई तो आप तुरंत प्रभाव से उसको पोंछ सकते हो कपड़े से या किसी से भी, तो फिर वो सूख जाएगा, तो उसके ऊपर दोबारा आप कलर लगा सकते हो। तो थोड़ी इजी रहती है पोर्ट्रेट्स वगैरह में, इसमें उसमें जब अपन यूज करते हैं, तो ऑयल पेंटिंग को हम थोड़ा सा पोंछ भी सकते हैं, सुखा भी सकते हैं थोड़ा सा, अगर आपके पास टाइम है तो आप एक दो दिन बाद में वापस शुरू कर सकते हो। तो ये एक है ऑयल पेंटिंग का, ये बिल्कुल रिवर्स है वाटर कलर से, डार्क टू लाइट और वो लाइट टू डार्क। और इधर एक्रेलिक है, एक्रेलिक ओपेक कलर होते हैं, ओपेक मतलब थिक, जिसमें से नीचे ट्रांसपेरेंस नहीं होती, चीज नहीं होती, ट्रांसपेरेंट नहीं होते। तो वो एक्रेलिक कलर को आपको लगाने से पहले, वो सूखते बहुत जल्दी हैं और वैसे बहुत इजी होते हैं वो लगाने, लेकिन उसमें आपको फाइनली पहले एक लेआउट बना लेना चाहिए कि ये कलर मैं यहाँ लगाऊंगा, ये यहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा, फिर आप उसको बड़ा कर दो, उन कलर्स को आप फैला दो, क्योंकि उसमें भी आपको फ्रेशनेस तभी दिखेगी जब आपके फ्रेश कलर होंगे, मिक्स करोगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, वो मिक्स करने जैसे होते नहीं। बहुत कम जगह पे आप लेयर वगैरह करके यूज कर सकते हो या टेक्सचर दे सकते हो, लेकिन वो बहुत जल्दी सूखने वाले कलर हैं, तो आपको पहले से डिसाइड कर लेना है कौन से एरिया में क्या कलर लगाना है। म्यूरल का जहां तक सवाल है, म्यूरल पेंटिंग्स पे तो मेरी रिसर्च ही है, तो उसके लिए डिफिकल्ट बहुत है, क्योंकि पहले आपको वॉल बनाने को, दो तरह के होते हैं म्यूरल, एक सेको और एक ब्यूनो। तो जो ब्यूनो होते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, जिसमें दीवार को भी तैयार करना पड़ता है आपको, भूसा और ये सब चीजें लगा लगू करके, कई सारी चीजें उसमें अंदर डाल के, और फिर उसको गीले गीले के ऊपर ही एक खाका बनाना पड़ता है और उसके अंदर रंग भरने पड़ते हैं और वो सारा एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके बाद वो बाहर नहीं निकलते। तो उसमें भी आपको बहुत तरीके से काम करना पड़ेगा, ज्यादातर मिट्टी के खनिज रंग ये सब यूज होते हैं, या फिर कोई अपने धातु वातु से बने हुए, जैसे तांबे पे हरा रंग आ जाता है, अपन कुछ खटाई लगा दो ये सब, तो उस तरह के रंग इन पे यूज होते हैं। और उसके बाद इनको नारियल की पोटली से ऐसे टप टप टप टप करना पड़ता है, जिससे वो अंदर तक घुस जाए और चिकनी एक लेयर आ जाए तो वो निकले। तो ये डिफिकल्ट है, काफी लंबा प्रोसेस है। और दूसरा सेको जो है वो बिल्कुल आपके ओपेक कलर, जैसे एक्रेलिक है, ऐसे आप किसी भी वॉल के ऊपर सूखे कलर्स ऊपर से लगा सकते हो, पर वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, मतलब ज्यादा देर तक नहीं रहते, वो निकल जाते, लेकिन जो सेको है वो उसमें चले जाते हैं। और हमारे यहाँ जितने भी अजंता के और ये जो मिनिएचर बनाते हैं उसमें थोड़ा, उन्होंने कभी दीवारों पे भी बनाया, वो सारे ब्यूनो टेक्निक से बनाया, तो ब्यूनो टेक्निक ज्यादा अच्छी होती है और अंदर तक चली जाती है और पता ही नहीं लगता है, वो दीवार के अंदर ही एक अपना वो ले लेती है अस्तित्व। तो ये है इसकी ब्यूरल की बात। अब इसमें से मेरे को कौन सी शैली विशेष प्रिय है, तो मैंने ज्यादातर काम तो उसमें किया है ऑयल में, क्योंकि वो थोड़ा इजी रहता है और मैं पोर्ट्रेट्स और लाइफ ज्यादा बनाती हूँ, तो उसमें कई बार उसको बनाऊंगी तो थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, तो ऑयल में बड़े फ्रीली आप कर सकते हो काम, बस इतना ध्यान रखना है कि डार्क पे लाइट नहीं लगनी चाहिए। तो ज्यादा काम मैंने उस पर किया है, वैसे मैंने सब में किया है, वाटर कलर में भी किया है, एक्रेलिक में भी किया है, और मैंने कोलाज भी किए हैं। मैं किसी भी शैली को कभी छोड़ती नहीं, मेरे को सब सीखने का शौक है, पर मैं ज्यादा काम मैंने ऑयल पेंटिंग पे किया हुआ और एक्रेलिक में।

0: अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी ब्यूटीफुली आपने ये सब चीजें एक्सप्लेन की। हालांकि एज ए लेमैन ये बहुत कुछ चीजें मेरी आधी समझ में आई आधी नहीं आई, लेकिन सुन के बहुत अच्छा लगा और थोड़ा बहुत जानकारी भी हो गई इस आपके इस एक्सप्लेनेशन से। बहुत बहुत सुंदर, बहुत
1: अब
0: बढ़िया।
1: मेरा वो एक भाग्य कि मैं आपको थोड़ा कर बता सकी।
0: नहीं, ये बहुत ही टेक्निकल सा काम है।
1: जी
0: वैसे आप थोड़ा राजस्थान की लोक कला की तरफ आते हैं, कला की दृष्टि से
1: जी
0: राजस्थान की लोक कला और परंपरागत चित्र शैली जैसे
1: जी
0: किशनगढ़ फड़ पिचवाई, इसको आप कैसे देखती हैं?
1: एक्चुअली लोक कलाएं हैं वो तो मांडने भी हैं, और दूसरी जो करते हैं ये लोग फेस्टिवल पे वो भी सब वही हैं। लेकिन
0: अच्छा।
1: आपने पूछा है कि किशनगढ़, तो किशनगढ़ शैली जो है उसमें सबसे ज्यादा अगर पॉपुलर है तो एक बनी ठनी नाम की एक पेंटिंग है, जो कि वहाँ के राजा सावंत सिंह के टाइम में वो गायिका थी और कवित्री थी, वो बहुत सुंदर थी और उन्हीं को मॉडल रख करके और उन्होंने इस बनी ठनी को बनवाया था। तो उसका एक अलग ही अपना, अच्छा किशनगढ़ का जो काम है ना वो थोड़ा, जितने भी काम है बूंदी की शैली, किशनगढ़ की शैली, उदयपुर की, बीकानेर की, जोधपुर की, सब में थोड़ा सा फर्क है। तो जो किशनगढ़ का जो काम है उसमें तो थोड़ा येलोइश लेते हैं वो लोग स्किन के कलर में, और जो
0: अच्छा।
1: बूंदी का है उसमें थोड़ा रेडिश लेते हैं, ऐसे सबकी थोड़ी थोड़ी, ये जो होती है बहुत डेलिकेट होती है, आंखें इनकी बिल्कुल कान तक होती है, नाक बहुत छोटी जैसी होती है, बहुत खूबसूरत होती है। और वो
0: अच्छा।
1: जो बूंदी की है वो थोड़ी सी मतलब स्टाउट सी होती है, थोड़ी गुलाबी से रंग की होती है। वो सब वहाँ की जो मतलब वहाँ के जितने भी इंसान है ना क्षेत्र वाइज अलग अलग होते हैं। आप देखो जोधपुर के बहुत बड़े होंगे, बीकानेर के लंबे होंगे, मेवाड़ के ठीक होंगे, उसी के अनुसार उन्होंने अपनी ये पेंटिंग्स बनाई है। लेकिन इसमें किशनगढ़ की शैली पे जो बनी ठनी बनी है उसकी तो तुलना जो वो जो उन्होंने बनाया था, क्या नाम है, हमारे बहुत बड़े कौन से कलाकार हैं, वह उन्हें ये ध्यान नहीं आ रहा मुझे उनका नाम, बहुत
0: जहाँ
1: विंसी,
0: कोई बात नहीं,
1: लियोनार्डो
0: कोई बात
1: विंसी, विंसी से मिलती
0: नहीं।
1: जुलती है। तो और बाकी के ये जो आप फड़ और पिचवाई की बात कर रहे हैं, तो फड़ एक कपड़े पे बनाई जाती है, पिचवाई भी,
0: जी
1: तो ये ज्यादातर मंदिरों में मूर्तियों के पीछे लगाते हैं और इसमें कोई कथा या कहानी होती है अगर आप
0: जी
1: उसको देखो ध्यान से,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: वो उसी के लिए ही लगाई जाती है। उसमें पूरा चित्रण होता है उसके, जिसके भी बारे में वो बना रहे हैं, चाहे वो किसी राजा के हो, चाहे वो किसी देवता के हो, चाहे वो कोई किसी के भी हो, तो वो उसकी
0: कृष्ण भगवान के
1: कृष्ण
0: भी
1: के भी हो,
0: बहुत
1: और वो रामदेवरा में भी उनके पे भी कथाएं हैं बहुत सारी, कई सारी चीजें, वो सारी फड़ जो है वो कोई कहानी कहती है, मतलब उसमें कई सारे दृश्य होते हैं एक ही फड़ में, और वो पीछे लगाए लगाने का, दीवार पे लगाने का है उसका, तो वो भी बहुत अच्छी है। मतलब कलाएं तो सभी बहुत अच्छी है, मांडने भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप देखोगे ना पुराने मतलब इसके, चाहे हड़ौती के हों, चाहे उदयपुर के हों, चाहे कहीं के भी, मांडने भी इतने खूबसूरत हैं, और उन्होंने उसको भी एक अलग शैली, जो उनके दिमाग एक्चुअली जो दिख रहा है वो जरूरी नहीं है, जो आपको महसूस हो रहा है, जो आपकी मस्तिष्क पे आपके वो इम्प्रेशन छोड़ रहा है उसको लेकर के उन्होंने बनाए, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है, और आज की आधुनिक शैली से मिलते भी बहुत है। वो लोग तो
0: जी
1: जान के करते हैं, आज वो अपने आप करते थे स्वतः, तो ये है।
0: बहुत बहुत सुंदर।

0: तो अब थोड़ा सा बेसिक्स पे आते हैं। एक अच्छा चित्रकार बनने के लिए किन गुणों का या एट्रीब्यूट्स की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, इसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों।
1: एक अच्छा चित्रकार होने के लिए सबसे बड़ी बात तो उसकी दृष्टि, उसका
0: जी
1: परसेप्शन, वो क्या देख रहा है, अवलोकन। और उसके बाद में आपको उसको वो जो सृजन करता है उसकी सारी टेक्निक्स, वो सारी चीजें उसको बनानी आनी चाहिए। और तीसरी बात ये है कि वो एज इट इज कॉपी नहीं, उसके अंदर उसका अपना खुद का जो भाव और जो उसने ग्रहण किया है वो उसके अंदर आर्टिस्टिक रूप में आना चाहिए। मतलब नकल करने की जरूरत नहीं, जब भी आप अपने आप स्वतः काम करोगे दिल से तो आपका अपना एक शैली खुद ही डेवलप हो जाएगी। जैसे हम साइन करते हैं तो अपने आप ही शुरू हो जाते हैं वो अलग, आप कितना भी कोशिश करो तो सबकी अलग पहचान है, तो अपनी एक अलग पहचान और सृजन शक्ति और ये मतलब देखना गहरी दृष्टि से उसको देखना, उसकी चीजों को महसूस करना, ये चीजें। और फिर अपना मेहनत भी चाहिए उसके लिए, ये नहीं कि जल्दी जल्दी करा और निकल गया,
0: हाँ सही
1: बड़े
0: सही
1: पेशेंस चाहिए उसके लिए, धैर्य चाहिए उसके लिए। तो
0: धैर्य।
1: ये सब चित्रकार के गुणों का मैं वर्णन कर सकती हूँ कि ये होना जरूरी है। और ये एक तरीके से साधना है, तो ये एक मेडिटेशन भी है जो आपको खुश रखेगी, आप खुद से बनाओगे तब। जी
0: नहीं, आपने अभी बता ही दिया, ऑब्जर्वेशन अवलोकन बहुत जरूरी है। ऐसा कुछ अनुभव हमारे साथ साझा कर सकती है जब आपकी गहरी दृष्टि या आपकी ऑब्जर्वेशन ने एक बहुत ही ऑर्डनरी साधारण से दृश्य को एक अच्छी कलाकृति में बदल दिया, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ?
1: मेरा एक ब्लैक एंड व्हाइट का एक सीरीज थी पूरी, जिसको कि
0: अच्छा
1: बड़े बड़े चित्रकारों ने और कलाकारों ने भी सराहा है, और उसका काफी पेंटिंग का निकला भी है पेपर्स वगैरह में हर जगह से। तो वो
0: जी
1: मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को एक्चुअली, मैं बहुत फास्ट काम करने वाली हूँ, मुझसे धैर्य से धीरे धीरे वाले जो क्राफ्टमैनशिप है ना वो मुझे, वो एक अलग चीज होती है और फाइन आर्ट्स और अपना एक अलग आपका काम होता है। तो मैंने जब स्केचिंग करती थी तो मुझे बोरियत बहुत लगती थी, तो मैंने
0: अच्छा,
1: काजल उठाया जो कि काजल बनता है ये इसमें लघु
0: आंखों में
1: चित्रों
0: लगाने
1: में
0: वाला।
1: जिसमें लगाते
0: अच्छा
1: हैं, हाँ उसी कोई
0: अच्छा
1: उसी को
0: हाँ
1: उठा के पाउडर बना के बाजार में भी मिलता है। तो मैं अपनी स्केच फाइल ले जाती थी और जो भी मैं दृश्य देखती थी ना उसको मतलब वैसे नहीं करती थी जैसा कि आप फाइन लाइन से कर रहे हैं ये वो, एक एक आपकी दिमाग पे जो छाप पड़ती है उससे आप उसको फाइन फटाफट फटाफट, पूरी फाइल मेरी उसी से भरी हुई थी। और वो मुझे इतना अप्रिशिएशन मिला उसके अंदर, क्योंकि उसमें आपको एक फीलिंग आती है कि ये गांव की का दृश्य है, कि ये किसी हवेली का है, कि किसी गढ़ का है, कि ये क्या है। तो वो बहुत सबको बहुत अच्छा लगा और उतना उसके तारीफ हुई, और वो पूरी सीरीज बिक गई थी। कोरिया के कुछ लोग आए हुए थे तो वो पूरी ब्लैक एंड व्हाइट की सीरीज मेरी चली गई, क्योंकि उसके अंदर आभास था, उसके अंदर यहाँ का राजस्थान का एक वो जीवन तो करके दिखता था वो। लेकिन वो प्रॉपर ऐसे नहीं कि आपने इतनी ऐसे ऐसे करके बना रखा है लाइन ड्रेस, वो चला ही जाएगा। आप देखो राजस्थान में धूल बहुत होती है और गड़बड़ सब जो उससे ढके रहते हैं, तो आपको एक इम्प्रेशन आता है, और वो इम्प्रेशन अगर आपने ले लिया, खाली एक दीवार के ही मैंने खिड़कियां वगैरह बनाई है उसको भी उसी से ही किया। तो वो मैंने, मेरे को एक शो करना था और मेरी डेट फिक्स थी अहमदाबाद में, तो मैं उसको ले गई फाड़ करके, दो दो पैसे की तो शीट थी है उसकी, और तो फ्रेम करा के लगाई, वो इतनी पसंद की गई। और बाद में
0: अच्छा
1: जब मैं आईफेक्स में मेरा शो था तब मैंने लगाई थी, तो वहां पे सकरात का दिन था, तो उस समय सारे जो बड़े आर्टिस्ट हैं वो वहां आते हैं, उनका एक डिनर होता है तो सीनियर आर्टिस्ट, तो उन्होंने जब मेरी दोनों पेंटिंग्स देखी, दूसरी भी लगा रखी थी की, तो उन्होंने कहा अरे तुम ये क्यों कर रहे हो, ये काम तुम्हारा कितना अच्छा है। तो वो सहज काम मतलब जो मेरे स्केचिंग के तरीके से यूज हो रहा था उसको बहुत एप्रिसिएशन मिला, क्योंकि उसमें एक अलग झलक थी और उसके अंदर वो आभास भी था जो मैं बना रही थी। तो ये एक साधारण सी चीज को देख के, दीवार को देख के, उसकी जाली को देख करके, ऐसे मैंने बहुत सारे बनाए चीजें और उसकी बहुत तारीफ भी हुई। तो मैं समझती हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा रहा, और इसको आप मतलब मैं अनुभव ही कहूंगी अपना कि ये अनुभव मेरा बहुत अच्छा था। और गहरी दृष्टि तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को जो दिखाई

0: हाँ, एक प्रश्न मैं पूछता हूं कि जो युवा आज कला के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उन्हें कुछ आप सुझाव देना चाहेंगी, कोई गाइड करना चाहेंगी?
1: एक्चुअली क्या है कि अभी एआई के द्वारा इतनी चीजें बन रही हैं, मतलब एज इट इज जो जो चाहते हैं वो बना देते हैं, पर आप डिजिटल काम भी कर रहे हो तो भी उसमें उस अगर आपका कुछ का खुद का कुछ है तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो कैरियर में। लेकिन अगर आप एआई को रख करके और किसी भी चीज को वैसा के वैसा वो बना देना, एक किसी पर्टिकुलर उसको दबा के, ऐप को दबा के या किसी चीज को दबा के, तो फिर आपका क्या कैरियर बनेगा? सिर्फ आप कमा सकते हो, वो भी लोग बाग इतनी जल्दी बोर हो जाएंगे उससे, क्योंकि उसमें कोई नॉवल्टी इतनी ज्यादा नहीं रहेगी जब तक कि आप उसमें टेक्निक्स और दूसरी चीजों का प्रयोग नहीं करोगे। तो मैं तो यही कहती हूँ कि भाई डिजिटल आप करो, क्योंकि आज की परिवर्तन तो बिल्कुल ऐसा सत्य है कि जिसको आप नहीं हटा सकते, लेकिन उसमें थोड़ा अपना भी डालो तो हो सकता है कि आप कुछ, मतलब जो भाव और उसके जो अंदर जो भी आप खुद करते हो, उसमें जो कोमलता और वो क्रिएट करते हुए, तो वो अपना जो तुम्हारा उसमें जाता है वो ही आपको सक्सेस दिलाएगा, अदरवाइज कोई कैरियर नहीं।
0: अब थोड़ा सा आपके व्यक्तिगत जीवन तक आते हैं। कोई इस पूरी जीवन यात्रा में, कला की यात्रा में, व्यक्तिगत यात्रा में कोई ऐसा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट या कोई ऐसी घटना जो आज भी आपके स्मृति में जीवंत है, आप अगर हमसे शेयर करना चाहें तो बहुत अच्छा लगेगा।
1: नहीं, मैंने आपको एक तो कांति बाई का उदाहरण बताया, इतने बड़े आर्टिस्ट जिनके सामने मैं मतलब खड़ी भी नहीं हो सकती, तो उनसे मैंने दो तीन बातें पूछी और उन्होंने इतनी अच्छी बात बताई मुझे। एक्चुअली हम लोग क्या होता है, ईगो के कारण वही है हमारे में अहम होता है, हमको पता ही नहीं होता है, और हम जो है वो सोचने लग जाते हैं कि भी ऐसे कैसे, नहीं मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। तो उन्होंने मुझे बहुत शांति से, आनंदमयी माँ के वो भक्त थे, बनाते थे, उनको बना भी रहे थे और उनके वो भी थे, तो उन्होंने कहा कि अर्चना, मैंने उनको कहा कि भाई ये फलाना जो है ना वो ऐसे आ जाता है और ये करता है वो करता है और मैं उनको मना नहीं कर सकती। तो उन्होंने मुझे सिंपली कहा कि नहीं, तुम उनको मना इसलिए नहीं कर सकती कि तुम्हारी इमेज उनके उसमें खराब नहीं हो जाए। तो मैंने उनको कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, तो मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, एक तो ये है, दूसरा मैंने माँ के लिए भी बोला था कि मैं उनको इतना प्यार करती हूँ और फिर वो मेरे से रोती है करती है, तो उन्होंने कहा तुम्हारा मैं आ गया ना इसलिए, तुम बचपन में वो तुम्हें मारती, तुम पल्ला पकड़ती थी, मतलब दो तीन ऐसी गहरी बातें बताई उन्होंने जिन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। और मुझे समझ में आया कि सच बात है कि हम किसी को उसको बुरा लगे इसलिए नहीं, हमको कोई बुरा नहीं समझे इसलिए हम उससे ऐसी बात नहीं करते। तो एक तो ये मेरे कभी मेरे स्मृति पटल से जाएगा नहीं, गांधी भाई के दो तीन सवाल को। दूसरा, एक वशिष्ठ साहब हुआ करते थे हमारे जब मैं लेक्चरर थी भवानी मंडी में, तो वो उन्होंने बहुत कम वहां पे थे, तो मैंने दो ग्रुप्स बनाए थे, मैंने कहा कुछ लोग पहले काम करेंगे फिर वो छुट्टी पे से आ जाएंगे तो दूसरे करें, तो वो वशिष्ठ साहब बड़े अच्छे वर्कर थे, बहुत अच्छे, और मेरे स्टूडेंट्स भी जो अच्छे होते हैं उनको मैं अच्छा ही करती हूँ, चाहे उनका कुछ भी हो स्वभाव या कुछ भी करें। तो वशिष्ठ साहब कहने लगे मैं तो आऊंगा नहीं, मेरी बड़ी पहचान है और आप तो कर लो जो करना है, मैं तो घर में रहूंगा, आप दूसरे वाले कैसे जाएं। तो मैंने उनके खिलाफ एक्शन लिया, एक्सप्लेनेशन कॉल करा मतलब उनका, तो उन्होंने मेरे को बहुत, मैं ये हूं, मैं ये करा दूं वो करा दूं, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब उनकी एसीआर भरी गई, कुछ भी मैंने उनका आपको कर लो जो, तो उसमें मैंने उनको जो दिया ना एक्सीलेंट, तो वो इतने ज्यादा वो हो गए कि मैं तो सोचता था कि आप मेरी बहुत बुरी करोगे ये करोगे। तो मेरा कहना यही है कि हमेशा जो डिजर्विंग है व्यक्ति, वो चाहे कुछ भी करे व्यवहार आपके साथ, लेकिन आपको ऑनेस्टली जो डिजर्व कर रहा है वो बहुत अच्छे वर्क करते हैं, तो उनको मैंने एक्सीलेंट दिया। ऐसे ही मैंने एक और को दिया तो वो अभी प्रिंसिपल होकर रिटायर हुए। तो मैं हर एक से बस यही कहना चाहती हूँ कि मैंने ये जो सीखा है ये भी किसी से सीखा है कि आप अपनी पर्सनल लड़ाई के लिए किसी और का कैरियर या उसका कोई भविष्य नहीं बिगाड़े। और फिर वो तो बेचारे एक साल तक मेरे से यही कहते रहे, मैं तो सोचा नहीं था, मैंने तो आपको गलत समझ लिया। तो सब वो भी मुझे याद रहता है किस्सा, और स्टूडेंट्स के बारे में भी मैंने कभी ऐसा नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी मेरी स्मृति में चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि जिसने मेरे को थोड़ा सा शायद एक कदम ऊपर आना सिखाए, तो
0: बहुत
1: ये मेरे को
0: बहुत सुंदर। और एसीआर वाली बात तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो
1: नहीं, वो तो बिगाड़ के ही रखते हैं। मैंने मेरी एसीआर देखी है ना बाद में, तो चिढ़ जाते हैं तो बहुत बिगाड़ते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि नहीं, जो व्यक्ति जैसा है वो अलग बात है कि उसने क्या किया, वो व्यवहार अलग, पर उसने काम किया था बहुत अच्छा, तो उसको आपको सराहना ही पड़ेगा और जो डिजर्विंग है उसको देना चाहिए।
0: बहुत सुंदर। आप थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में, परिवार का कितना सहयोग रखा?
1: हाँ जी, एक्चुअली क्या था कि मैं जब 11th क्लास में थी तो मेरे फादर जो है उनकी का देहावसान हो गया, और उन्होंने मुझे कहा कि भाई तू बिना पढ़े लिखे इतना चल, जब टॉप टॉप करती सारे स्कूल स्कूल में तो तू पढ़ा कर, क्योंकि तेरे को ही संभालना है मेरे जाने के बाद। उन्हें पता था कि मैं चाहूंगा, उनको भी किडनी की प्रॉब्लम थी। तो मेरे परिवार में मेरे जो संघर्ष थे वो 11th क्लास के बाद से शुरू हो गए थे, और उन संघर्षों से लड़कर के ही मैं इतनी मजबूत बनी। जिसने कभी पानी नहीं पिया अपने घर में गिलास उठा के, वो सारे काम कर रहे थे, बर्तन माज रहे थे, झाड़ू पोछे कर रहे थे, निवाड़ की खाट बुन रहे थे, गद्दे भरवा के ला रहे थे, और किसी तरह की कोई शर्म नहीं थी। तो मुझे समझ में आया कि आदमी को मजबूत जब बनना होता है ना, तो उसको हर तरीके के संघर्ष से लड़ाई करनी आनी चाहिए। तो ये मेरे को ऐसा लगा कि मुझे मजबूती जो मिली आज, जो मैं इतनी सबसे लड़ सकती हूँ परिस्थितियों में, वो सिर्फ उसी के कारण है कि जब से वो गए तो मैंने ये सोचा कि भाई मेरे को तो अब करना ही है, क्योंकि मुझे वो सौंप के गए ये काम कि तुम्हें ये सब करना है, मम्मी को रखना है, अपने भाइयों का देखना है, सब कुछ करना है। तो उस संघर्ष में मैंने बहुत आनंद भी लिया और सीखा भी बहुत।
0: बहुत इसने मजबूत बना दिया आपको एक तरह से?
1: बिल्कुल मजबूत बनाया, बिल्कुल, हर परिस्थिति से लड़ना सिखा दिया।
0: तो कला यात्रा को अगर 3 शब्दों में व्यक्त करना चाहें तो कौन से वो 3 शब्द होंगे?
1: 3 शब्द मुझे तो वही लगता है कि अवलोकन, एक तो आपको देखना अच्छी तरह गहराई से आना चाहिए, आपको किसी भी चीज को परखना आना चाहिए। उसके बाद थोड़ा आपको कल्पना में भी उसको ले जा सकते हैं, एज इट इज ही बनाना, वो तो वैसे भी बहुत सुंदर बनाई हुई है, कैमरा भी दे देता है आपको, और लेकिन आप उसमें अपना थोड़ा सा अपने खुद का कुट डालते हैं कल्पना का और उसका
0: जी।
1: तो बहुत अच्छा लगता है। सृजन के लिए आपको सशक्त सारी जो सृजन की प्रक्रिया है उनको सीख करके और उनको अप्लाई करना चाहिए, ये 3 चीज है।
0: तो डॉक्टर अर्चना जी, आपने जिस आत्मीयता से अपने अनुभव, विचार और जीवन की झलकियां हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आपकी बातें साबित करती हैं कि कला सिर्फ रंगों और रेखाओं का संयोजन नहीं बल्कि जीवन का गहरा दर्शन है। हमारी शुभकामनाएं आपके सृजन और प्रेरणा की यह यात्रा यूं ही रंगों से भरी रहे। श्रोताओं, मुझे विश्वास है आज की बातचीत आपको भी अपनी रचनात्मकता को नया आयाम देने की प्रेरणा देगी। अर्चना जी, आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे कार्यक्रम में आप आए, इसके लिए तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं।
1: और मैं भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मैं अपनी कुछ बातें सब श्रोताओं को सुना सके, बता सकूं, जो कि मैं महसूस तो करती हूँ पर कहने का कहीं मौका इतना मिलता नहीं।
0: तो श्रोताओं, इसी सुंदर भावना के साथ मैं आलोक कुमार आपसे लेता हूं विदा। फिर मिलेंगे एक नए अतिथि, नई प्रेरणा और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं।
2: जिंदगी के रंग हजार। दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार हैं देव आनंद जी। हिंदी सिनेमा में तकरीबन 6 दशक तक दर्शकों को अपने हुनर, अदाकारी और रोमानियत का जादू बिखेरने वाले सदा बहार अभिनेता देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। देवानंद का असली नाम धर्मदेव किशोरीमल आनंद था। जी हां, है ना मजेदार बात। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक की शिक्षा 1942 में लाहौर में पूरी की। 1943 में अपने सपनों को साकार करने के लिए जब वो बॉम्बे पहुंचे तब उनके पास सिर्फ 30 रुपए थे और रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। चलिए सुनते हैं उनका ये नगमा।

गुडेवानंद ने मुंबई पहुंचकर रेलवे स्टेशन के समीप ही एक सस्ते से होटल में कमरा किराए पर लिया। उस कमरे में उनके पास तीन अन्य लोग भी रहते थे जो उनकी तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए कोशिशें कर रहे थे। देवानंद को पहला ब्रेक 1946 में प्रभात स्टूडियो की एक फिल्म हम एक हैं उसमें मिला। चलिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

हालांकि फिल्म फ्लॉप होने से दर्शकों के बीच वो अपनी पहचान नहीं बना सके। इस फिल्म के निर्माण के दौरान ही प्रभात स्टूडियो में उनकी मुलाकात गुरुदत्त से हुई, जो उस समय फिल्मों में कोरियोग्राफर के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। चलिए दोस्तों, देवानंद जी की फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

देवानंद को पहली नौकरी मिलिट्री सेंसर ऑफिस में एक लिपिक के तौर पर मिल गई, जहां उन्हें सैनिकों द्वारा लिखी गई चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़कर सुनाना पड़ता था।

फिर साल 1948 में जिद्दी उनकी पहली फिल्म थी जो हिट हुई। सन 1949 में उन्होंने नवकेतन बैनर्स नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस एस्टैब्लिश किया और वर्ष 1950 में अफसर नाम की फिल्म का निर्माण किया, जिसका निर्देशन उनके बड़े भाई चेतन आनंद ने किया था।

1951 में उनके बैनर की अगली फिल्म बाजी का निर्देशन उनके दोस्त गुरुदत्त ने किया, जिसने उनकी किस्मत बदल दी। आइए दोस्तों सुनते हैं देवानंद की फिल्म का एक और गीत।

जिया ओ जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है, तुम एक हसीन हो लाख में।

तुम भी तो इशारों में जलते हो, चेहरे से बयां हो जाता है, हर बात पे आहें भरते हो, हर बात पे दिल भर्राता है। तुम भी तो इशारों में जलते हो, चेहरे से बयां हो जाता है, हर बात पे आहें भरते हो, हर बात पे दिल भर्राता है। जब दिल पे चुड़ियां चलती है, जब चैन से कोई

0: किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया ओ जिया ओ जिया कुछ बोल दो।
1: दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि देवानंद साहब ने कुछ भूमिकाएं ऐसी भी निभाई जो कुछ नकारात्मक शेड लिए हुए थीं। जब राज कपूर की आवारा प्रदर्शित हुई, तभी देवानंद की राही और आंधियां भी प्रदर्शित हुई थी। इसके बाद आई टैक्सी ड्राइवर, जो हिट साबित हुई। देवानंद साहब की फिल्म का एक और गीत।

1948 के साल में जब देवानंद 25 साल के थे, उनकी दो फिल्में और रिलीज हुईं, फणी मजूमदार की हम भी इंसान हैं और गिरीश त्रिवेदी की विद्या। पहली फिल्म की नायिका रमोला थी, जो 1951 में निर्देशक विजय महात्रे की फिल्म स्टेज में उनकी नायिका बनी। इसमें विद्या फिल्म इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस फिल्म में सुरैया पहली बार देवानंद की नायिका बनी थी। चलिए सुनते हैं उनकी फिल्म का एक और गीत।

देवानंद जी ने सुरैया के साथ बहुत सारी फिल्में की। एक फिल्म थी जिसका नाम था जीत, जो 1949 में पर्दे पर आई थी। ये फिल्म बहुत हिट गई। लीजिए दोस्तों, देवानंद की फिल्म का एक और गीत।

सिनेमा जगत में सदाबहार माने जाने वाले देवानंद साहब ने कभी राजनीति में भी कदम रखा था। मौका था देश में इमरजेंसी का। जून 1975 में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लगाने का ऐलान किया तो देवानंद ने फिल्म जगत के अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उनका विरोध किया था। बाद में जब आपातकाल खत्म हुआ और देश में चुनाव की घोषणा हुई तो उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में भी हिस्सा लिया। लीजिए दोस्तों उनकी फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

0: जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
1: ओ, छोड़ दो आसन जमाना।

0: किसको ये होश है अपना बेगाना क्या कहेगा।
1: ओ, छोड़ दो आजकल जमाना क्या कहेगा।
0: हा हा हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
1: हा हा हा।

0: जियाना दिल में समाना, जियाना दिल में समाना, एक दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा।
1: छोड़ दो अचल, जमाना क्या कहेगा।
0: इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
1: जमाना क्या कहेगा,
0: दीवाना क्या कहेगा।
2: दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि देवरन साहब इतने सुंदर थे कि उनको सफेद कलर का सूट यानी कि कोट और पैंट पहनना मना था, क्योंकि महिलाएं उनको इस रूप में देखकर आत्महत्या करने पर उतारू हो जाती थीं। इस बात की सच्चाई को साबित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तो तय है उनके लटकते छटकते अंदाज बेहद खूबसूरत थे। लीजिए उनकी फिल्म का एक और गीत सुनते हैं।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

0: एक ऐसे अभिनेता थे जो एक ही बार में आपका सारा ध्यान अपनी ओर खींच सकते थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने हिंदी फिल्म बिरादरी में ग्लैमर को जोड़ा और देश के कोने कोने से प्रतिभाओं को बढ़ावा दिया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अशोक कुमार जी की। चलिए उनकी ही फिल्म का ये गीत सुनते हैं।
1: आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्ने तुम्हारा इंजन, डब्बू तुम्हें कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर सब पैसेंजर। रेडी एक

रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन।

मंगल की हार, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार, रेलगाड़ी रेलगाड़ी। बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक, धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर, मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर, मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा, रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर, तालेगांव मालेगांव मालेगांव तालेगांव, नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर, सोलापुर कोल्हापुर कोल्हापुर सोलापुर, कुक्कल डिंडिगल डिंडिगल कुक्कल, मछलीपट्टनम मछलीपट्टनम मछलीपट्टनम मछलीपट्टनम, ओंगोल नर्तिगोल नर्तिगोल ओंगोल, कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव, अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद, सोदनूर कोदनूर सोदनूर कोदनूर, झुक झुक झुक झुक झुक झुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक।

अशोक कुमार जी ने सिल्वर स्क्रीन पर राज किया और अपने करिश्माई स्क्रीन उपस्थिति से लाखों दिलों पर राज किया। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

पूछो ना कहो बेटा मदनी तरे तो नहीं दबा मगा मदे।

0: कैसे मैंने पूछो ना कैसे मैंने पूछो ना कैसे मैंने दर्द बिताए।
1: दोस्तों अशोक कुमार जी का असली नाम था कुमुदलाल गांगुली, जी हाँ, जो बाद में भारतीय सिनेमा के दादा मुनि बने। अशोक कुमार जी का जन्म 13 अक्टूबर 1911 को बिहार के भागलपुर में कुंजीलाल गांगुली और गौरी देवी जी के यहां हुआ था। चलिए उनकी ही फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

दोस्तों, चाहे भूमिका कैसी भी हो, नकारात्मक किरदार हो या हीरो का किरदार, अशोक कुमार जी ने सभी के साथ बड़ी सहजता से न्याय किया। चलिए पहले उन्हीं की फिल्म का ये गीत सुनते हैं, फिर मैं कुछ और जानकारियां आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए उनकी ही फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

आप हैं आरजे समीर के साथ दोस्तों, और आज के कलाकार प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं अशोक कुमार जी की। तो अशोक कुमार जी एक शानदार अभिनेता होने के साथ साथ होम्योपैथी की प्रैक्टिस भी करते थे, है ना मजेदार बात। और वो अक्सर उन बीमारियों का समाधान कर दिया करते थे जिनसे डॉक्टर निपट नहीं पाते थे। आइए इसी बात पे हो जाए उनकी फिल्म का एक और गीत।

हम बात कर रहे हैं अशोक कुमार जी की, जिनका असल नाम कुमुदलाल गांगुली था। आपको पता है दोस्तों, वो एक बेहद अच्छे चित्रकार भी थे।

फिल्मों में मौका मिलने से पहले अशोक कुमार जी बॉम्बे टॉकीज में लैब असिस्टेंट की तरह काम करते थे। फिल्मों से उनका परिचय पूरी तरह से एक संयोग था। उन्हें बॉम्बे टॉकीज प्रोडक्शन की फिल्म जीवन नैया, जो कि 1936 में बन रही थी, उसमें मुख्य भूमिका मिली। आइए इसी बात पर उनकी एक और फिल्म का सुरीला सा गीत हो जाए।

अशोक कुमार जी की सबसे पहली बड़ी हिट थी अछूत कन्या। इस फिल्म ने गांधी जी की बिना किसी वर्ग या जाति विभाजन की विचारधारा को प्रसारित किया था। तो हो जाए उनकी फिल्म का एक और गीत।

दोस्तों अशोक कुमार जी भारतीय सिनेमा के पहले एंटी हीरो थे, मतलब वो सबसे पहले अभिनेता थे जो हीरो के रोल्स करते करते एक बार विलन का रोल भी कर बैठे और उसमें भी उनकी एक्टिंग शानदार रही। मैं बताता हूं वो कौन सी फिल्म थी जिसमें उन्होंने एंटी हीरो का रोल किया। तब तक एक गीत हो जाए।

ज्ञान मुखर्जी जी 1943 में एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था किस्मत। अशोक कुमार जी ने उसमें एक जेब कतरे का रोल निभाया जो कि बाद में प्यार में पड़ जाता है। दोस्तों, ये पहली भारतीय फिल्म थी जिसने 1 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो टेक्निकली अशोक कुमार जी करोड़ क्लब स्थापित करने वाले पहले अभिनेता थे। तो लीजिए एक और गीत उनकी फिल्म का।

0: उसके बाद अशोक कुमार जी बॉम्बे टॉकीज में ही निर्माता बन गए। क्या दोस्तों आपको पता है, देव आनंद साहब को पहला ब्रेक जिद्दी फिल्म में 1948 में इन्होंने ही दिया था।
1: बाजू।

0: होते हैं प्यारे।
1: दोस्तों, अशोक कुमार जी ने 1949 में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था महल, और उस फिल्म में उन्होंने एक प्रतिभा को इंट्रोड्यूस किया जिसने 1950 के दशक में बॉलीवुड में तूफान ला दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मधु बालाजी की। तो मधु बालाजी को इंट्रोड्यूस करने में अशोक कुमार जी का ही हाथ था।

1988 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो भारत सरकार द्वारा किसी भी फिल्मी हस्ती को दिए जाने वाला सबसे ऊंचा सम्मान है। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें 1998 में पद्म भूषण अवार्ड भी मिला। तो दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: दोस्तों आप हैं आप ही के दोस्त समीर के साथ 90.8 FM रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज पर। तो दोस्तों लीजिए शुरू करते हैं गजलों का ये महकता हुआ प्रोग्राम आज शाम।
1: धीरे धीरे हर शम बुझी रफ्तार।
0: गजलों की शाम में आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे प्रोग्राम में जो शायर हमारे साथ हैं उनका नाम है ओम प्रकाश यति जी। बाकी की बातचीत हम ओम प्रकाश जी से ही करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके कलाम सुनेंगे, उनकी गजलें सुनेंगे। ओम प्रकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे प्रोग्राम में आए।
2: धन्यवाद आपका।
0: तो ओम प्रकाश जी प्रोग्राम को शुरू करते हुए बस छोटा सा ही एक सवाल पूछना चाहूंगा पहले कि आपका जन्म स्थान क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताइए, और अभी आप कहाँ रहते हैं थोड़ा उसके बारे में बताइए।
2: जी आपने पूछा जन्म स्थान के बारे में, तो मेरा जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का एक पूर्वी क्षेत्र में एक जिला है बलिया
0: जी,
2: वहाँ मेरा गांव है छिब्बी, तो वहाँ मेरा जन्म स्थान है। और अपनी सरकारी सेवा में रहा मैं उत्तर प्रदेश सरकार की, तो जगह जगह मेरे स्थानांतरण होते रहे, और रिटायरमेंट के बाद अब मैं यहाँ दिल्ली के पास ये ग्रेटर नोएडा एक जगह है वहाँ मैं रह रहा हूँ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ओम प्रकाश जी। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि आप अपनी गजल हमारे सुनने वालों के लिए सुनाएं।
2: जी जी जी बिल्कुल, एक गजल के कुछ शेर देखें।
0: जी इरशाद।
2: कि इस पे अब क्या सोचना, अच्छा बुरा जैसा भी है, इस पे अब क्या सोचना, अच्छा बुरा जैसा भी है, और वक्त कट ही जाएगा, अच्छा बुरा जैसा भी है।
0: वाह।
2: एक शेर है कि क्या जरूरत आ पड़े कब मत पड़ोसी से बिगाड़, क्या जरूरत आ पड़े कब मत पड़ोसी से बिगाड़, और बस वही काम आएगा, अच्छा बुरा जैसा भी है।
0: बहुत खूब।
2: बस वही काम आएगा, अच्छा बुरा जैसा भी है। और एक शेर है कि गांव तक जाना है तो चलना पड़ेगा इस पे ही, गांव तक जाना है तो चलना पड़ेगा इस पे ही, बस यही है रास्ता, अच्छा बुरा जैसा भी है, बस यही है रास्ता, अच्छा बुरा जैसा भी है।
0: बहुत खूब।
2: कि चाहता हूँ लिख के जाऊं पीढ़ियों के वास्ते, चाहता हूँ लिख के जाऊं पीढ़ियों के वास्ते, जिंदगी का तजुर्बा, अच्छा बुरा जैसा भी है।
0: जिंदगी

0: आपका तजुर्बा अच्छा बुरा, धन्यवाद आपका। और एक शेर है राजनीतिक संदर्भों का कि वोट पाने के लिए इसको निशाना मत बना, कि
1: जी
0: वोट पाने के लिए इसको निशाना मत बना, देश है आखिर तेरा अच्छा बुरा जैसा भी है, देश है आखिर तेरा अच्छा बुरा जैसा भी है। और आखिरी शेर है इस गजल का कि हंस के चाहे रोके अब स्वीकार करना है इसे, हंस के चाहे रोके अब स्वीकार करना है इसे, है नियति का फैसला, है नियति का फैसला अच्छा बुरा जैसा भी है। अच्छा एक शेर और रह गया था इसका, वो भी सुनाता हूँ।
1: जी जी इरशाद
0: कोशिशें कोशिशें करके निभाऊंगा मैं रिश्ता उसके साथ, कोशिशें करके निभाऊंगा मैं रिश्ता उसके साथ, और है तो भाई ही मेरा अच्छा बुरा जैसा भी है तो भाई ही मेरा अच्छा बुरा जैसा भी है, इस पे अब क्या सोचना अच्छा बुरा जैसा भी है, वक्त कट ही जाएगा अच्छा बुरा जैसा भी है।
1: बहुत खूब बहुत खूब बहुत ही प्यारी गजल साहब,
0: जी धन्यवाद
1: सुन
0: आप।
1: के मजा आ गया साहब। जैसा भी है तो मेरा ही, क्या बात है, बहुत
0: अच्छा
1: खूब
0: बुरा जैसा भी है जी।
1: बहुत खूब बहुत खूब। तो ओम जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल हमें बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवा सकें।
0: अच्छा ये तो ये गजल मुझे पसंद है, ये वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं,
1: जी
0: तो ये अब ये लता मंगेशकर जी की गाई हुई है, तो
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये अगर सुना दें तो फिर।
1: बहुत खूब बहुत ही खूब। आइए दोस्तों, सुनते हैं ओम प्रकाश जी के हुक्म पर ये प्यारी सी गजल लता मंगेशकर जी की गाई हुई।

0: बहुत खूब ओम जी, आगे बढ़ते हुए बस एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा जो काफी मासूम भी है। आप बचपन में क्या बनना चाहते थे ओम जी?
1: बचपन में तो मैं डॉक्टर बनना चाहता था
0: जी। ऐसा क्यों?
1: अब वो डॉक्टर हमारे चूंकि रिलेटिव वगैरह का एक आध लोग थे तो उनसे बात होती थी, तो वो बड़ा वही लोग वो किए हुए थे, हमको प्रेरित किए हुए थे कि मेडिकल प्रोफेशन अच्छा है, हालांकि मैं जा नहीं पाया उसमें
0: जी।
1: मेरी दिशा बाद में बदल गई तो फिर मैं इंजीनियरिंग की तरफ चला गया, फिर मैं साहित्य पढ़ने लगा चूंकि कविता से जुड़ गया, तो फिर तो वो बस जगह जगह भटकाव रहा और अंत में मैं इंजीनियर के रूप में ही काम करता रहा।
0: बहुत खूब। कई बार हो जाता है ऐसा कि बचपन में हम किसी को देखकर प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे ही तो होते हैं, अपनी कुछ ज्यादा समझ होती नहीं, लेकिन फिर किस्मत हमें घुमाकर किसी और ले जाती है और
1: ले जाती है, वहां फिर आदमी आता है
0: जी, वहां भी हम सक्सेसफुल होते हैं, सफल होते हैं, ऐसी बात नहीं है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है।
0: जी जी जी, बहुत खूब बहुत खूब। तो ओम प्रकाश सिर, मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए एक गजल सुना दें।
1: अच्छा, अच्छी बात है। एक गजल के कुछ शेर और मैं सुनाता हूँ आपको।
0: जी इरशाद।
1: कि तय करूंगा मैं सफर, उम्मीद मेरे साथ है, तय करूंगा मैं सफर, उम्मीद मेरे साथ है, और मुश्किलें तो हैं मगर उम्मीद मेरे साथ है। तय करूंगा मैं सफर, उम्मीद मेरे साथ है, मुश्किलें तो हैं मगर उम्मीद मेरे साथ है, और बात करता ही नहीं मुझसे निराशा की कोई, बात करता ही नहीं मुझसे निराशा की कोई, जानता है हर बशर उम्मीद मेरे साथ है।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
1: धन्यवाद जी। जानता है हर बशर उम्मीद मेरे साथ है, और राह भटकाने की कोशिश में अंधेरा है उधर, कि राह भटकाने की कोशिश में अंधेरा है उधर, रोशनी लेकर इधर उम्मीद मेरे साथ है।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
1: रोशनी लेकर इधर उम्मीद मेरे साथ है। और एक शेर देखें खास तौर पे, कि वो डरे जो हो अकेला जिंदगी की राह में, वो डरे जो हो अकेला जिंदगी की राह में, क्यों लगेगा मुझको डर उम्मीद मेरे साथ है।
0: उम्मीद मेरे साथ है।
1: कि वो डरे जो हो अकेला जिंदगी की राह में, क्यों लगेगा मुझको डर उम्मीद मेरे साथ है। और आखिरी शेर है, मक्ता बल्कि कहेंगे इसको, कि दूर से ही हो गई मायूसियां वापस यति, दूर से ही हो गई मायूसियां वापस यति, मिल गई उनको खबर उम्मीद मेरे साथ है, मिल गई उनको खबर उम्मीद मेरे साथ है, तय करूंगा मैं सफर उम्मीद मेरे साथ है, और मुश्किलें तो हैं मगर उम्मीद मेरे साथ है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब साहब, बहुत खूब। उम्मीद मेरे साथ है, और उम्मीदों के ही सहारे ये पूरी दुनिया चलती है। अगर उम्मीदें ना हो तो इंसान मोटिवेटेड ही नहीं रहता कि किस तरफ आगे बढ़े, किस तरफ काम करें।
1: जी, वो सकारात्मकता इसीलिए जरूरी है। जी जी
0: जी, उम्मीदें रखना बहुत जरूरी है साहब, सपने देखना बहुत जरूरी है साहब, क्योंकि तभी कुछ पाया भी जाता है, तभी कुछ आविष्कार भी होता है, तभी कुछ इजाद भी होता है। वरना अगर हम उम्मीद ही न रखें, सपने ही न देखें, तो सब बस यूं ही चलते ही रहेंगे, और क्या। बहुत खूब,
1: बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, धन्यवाद आपका।
0: तो सर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने किसी पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवाएं।
1: अच्छा, ये एक गजल है, ये हमें लगता है गुलाम अली साहब ने गाई है
0: जी।
1: आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने साहब, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही महकती हुई गजल है। आइए साहब, सुनते हैं गुलाम अली साहब की गाई हुई ये प्यारी सी गजल।

0: बहुत खूब ओम प्रकाश सर, आगे बढ़ते हुए बस एक छोटी सी चीज
1: जी,
0: अपने बचपन की कोई प्यारी सी याद के बारे में बताइए।
1: बचपन की प्यारी सी, बचपन की बहुत, बचपन की तो नहीं कहेंगे, मैं कब था, जब 10th 11th में जब था
0: जी,
1: तो वो मुझे याद आता है अपना समय जब एनसीसी का एक जूनियर डिवीजन में मैं वहां पे उसमें था, मैं मेंबर था उसका, सार्जेंट था बल्कि
0: जी।
1: तो वहां से हम लोग एक साइकिल एक्सपेडिशन एक हुआ था, तो बहुत लंबा था, 800 किलोमीटर का था।
0: अरे वाह।
1: हाँ, तो उसमें वो सब यादें बहुत जुड़ी हुई, क्योंकि हम लोग गए तो यहाँ से अपने बलिया से चले बक्सर और आरा, फिर वहां से बिहार शरीफ, दानापुर, पटना, नालंदा यूनिवर्सिटी देखे, फिर वहां से वो आपका कौन सी जगह है, वो नालंदा के पास ही एक जगह जहाँ गर्म पानी के झरने हैं,
0: रांची
1: गया, गए बोध गया, गए और औरंगाबाद, चौसा, बक्सर होते हुए फिर 6 दिन बाद हम लोग वहां से लौटे थे। तो एक कम्युनिटी लिविंग का सबके साथ, और हमारे सीनियर जो हम लोग तो उस समय 20, 18, 19 साल के रहे होंगे, लेकिन हमारे जो मेजर और वो लोग थे 52, 53 साल के, तो वो लोग इतना प्रेरणास्पद लगा उनका कि तहिए वो लोग हमको लीड कर रहे थे, और हम लोग तो अभी बहुत कम उम्र के थे, हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल नहीं थी, लेकिन वो सब कर रहे थे। और फिर मैंने उस पर एक बहुत बड़ा संस्मरण भी उन दिनों लिखा था, वो आज का अखबार एक बनारस का आता था तो उसमें छपा भी था वो, तो वो एक चीज मुझे बहुत याद आती है और मुझे बहुत आनंद आता है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा ही होता है ये सवाल पूछने का कि हम अपने बचपन की कुछ यादों को वापस से जिंदा करें, उनको वापस से महसूस करें, तो बस हम दोबारा से जवान हो जाते हैं और कोई बात नहीं।
1: सही सही सही कहा, मैं आपने कहा तो एकदम से याद आया कि वो चीज तो हमेशा जहन में रहती है।
0: जी
1: जी।
0: तो सर अब मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी अगली गजल हम लोगों को सुनाएं।
1: अच्छा जी जी जरूर। पिछले दिनों कुछ जो घटनाएं कुछ हुई तो उनसे प्रभावित हो करके एक शेर हुआ था, और फिर बाद में उसे कुछ और शेर जुड़ते गए तो ये पूरी गजल हो गई
0: जी,
1: और ये पूरे हिंदी के एकदम काफिये हैं, देखिए मैं आपके सामने रखता हूँ।
0: वाह हिरशाद।
1: निर्भया श्रद्धा नताशा अंकिता बन जाएगी, निर्भया श्रद्धा नताशा अंकिता बन जाएगी, क्या पता कब कौन लड़की पीड़िता बन जाएगी।
0: ओहो।
1: निर्भया श्रद्धा नताशा अंकिता बन जाएगी, क्या पता कब कौन लड़की पीड़िता बन जाएगी। और शेर है कि हम तमाशाई बने यूं ही अगर तकते रहे, कि हम तमाशाई बने यूं ही अगर तकते रहे, तो अपनी भी अपराध में सहभागिता बन जाएगी।
0: बन जाएगी, क्या बात,
1: अपनी भी अपराध में सहभागिता बन जाएगी। और शेर देखें कि सोच मत उस पर बहुत जो चीज वश में है नहीं, कि सोच मत उस पर बहुत जो चीज वश में है नहीं, एक दिन वरना यही चिंता चिता बन जाएगी
0: जी,
1: एक दिन वरना यही चिंता चिता बन जाएगी। और एक शेर खास तौर पे कि अपनी संतानों की खातिर कुछ भी कर सकती है ये, अपनी संतानों की खातिर कुछ भी कर सकती है ये, जब जरूरत आ पड़ेगी माँ पिता बन जाएगी।
0: ओह क्या बात है,
1: जब जरूरत आ पड़ेगी माँ पिता बन जाएगी। और एक शेर है कि आदतें अच्छी अगर हम डालते जाएंगे तो, कि आदतें अच्छी अगर हम डालते जाएंगे तो, एक दिन आदर्श जीवन संहिता बन जाएगी।
0: क्या बात है,
1: एक दिन आदर्श जीवन संहिता बन जाएगी। और एक शेर देखें कि दूसरों के पास जो है वो हमें क्यों चाहिए, कि दूसरों के पास जो है वो हमें क्यों चाहिए, इस तरह को जिंदगी प्रतियोगिता बन जाएगी।
0: वाह वाह क्या बात है,
1: कि दूसरों के पास जो है वो हमें क्यों चाहिए, इस तरह तो जिंदगी प्रतियोगिता बन जाएगी। और आखिरी शेर गजल का है कि जन सरोकारों से इसके तार जब जुड़ जाएंगे, जन सरोकारों से इसके तार जब जुड़ जाएंगे, सार्थक अपनी ये रचना धर्मिता बन जाएगी।
0: बहुत खूब।
1: जन सरोकारों से इसके तार जब जुड़ जाएंगे, सार्थक अपनी ये रचना धर्मिता बन जाएगी, निर्भया श्रद्धा नताशा अंकिता बन जाएगी, क्या पता कब कौन लड़की पीड़िता बन जाएगी।
0: ओहो क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत ही संवेदनशील गजल जो दिल को छू के जाए, और शब्दों का और लफ्जों का बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल, बहुत ही खूबसूरत गजल साहब।
1: जी जी धन्यवाद।
0: तो अगली कौन सी गजल सुनवा रहे हैं आप, आपके पसंदीदा गजल गायक की?
1: जी जी, एक गजल मुझे पसंद है, ये फिर छिड़ी रात बात फूलों की।
0: जी,
1: ये हमें लगता लता मंगेशकर और तलत अजीज की आवाज है।
0: जी जी जी,
1: तो ये सुनना चाहता हूँ।
0: बहुत खूब जी, जरूर। दोस्तों ये सुनते हैं, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, लता मंगेशकर और तलत अजीज साहब की आवाज में।

0: बहुत खूबसूरत। ओम प्रकाश साहब आगे बढ़ते हैं और एक बस यूं ही मजेदार सा सवाल, आपको खाने में क्या पसंद है और क्यों?
1: खाने में तो मैं शाकाहारी हूँ
0: जी,
1: शुद्ध शाकाहारी हूँ
0: जी।
1: तो खाने में तो बस क्या है, वही सिंपल अपना दाल रोटी वाले हम लोग हैं और हरी सब्जियां खाते हैं और बस दूध की चीजें, दूध दही पनीर ये सब खाते हैं और तो बस।
0: नहीं नहीं वो तो ठीक हुआ साहब, लेकिन फिर भी जैसे सब्जियों में, हरी सब्जियों में बहुत सारी सब्जियां होती हैं, उनमें से कोई एक सब्जी होगी जो शायद आपको बहुत पसंद हो।
1: हाँ वो आपने सही कहा, मुझे लौकी और ये तोरी, ये तोरी आती है वो पसंद है।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत ही सीधी सादी सिंपल सी तरकारियां, सिंपल सी सब्जियां जो शरीर के लिए हल्की भी हैं और फायदेमंद भी। बहुत खूब
1: अच्छा
0: जैसे मैं जस्ट बताना चाहूं तो सब्जियों में एक कमल डंडी आती है जिसको भिस भी कहते हैं।
1: बिल्कुल, वो उसको हम कहां गए थे, जम्मू में मेरी बेटी की शादी हुई है तो उनके यहाँ बहुत, वो तो हर डिश में वो जरूर रहता है उनके यहाँ, वो नदरू बोलते हैं लोग उसको
0: जी
1: कश्मीरी में
0: जी।
1: हाँ हमारे यहाँ का कमल ककड़ी ही बोलते हैं
0: जी जी जी जी।
1: अच्छी लगती है,
0: बहुत बहुत अच्छी लगती है, मतलब सब्जियों में अगर बात करें तो
1: बिल्कुल बिल्कुल, उसको कई तरह की डिश बनाते हैं
0: जी, वो गीली भी बनती है सूखी भी बनती है। बहुत बेहतरीन। तो ओम प्रकाश साहब आगे बढ़ते हुए आपसे गुजारिश करूंगा कि एक गजल और सुनाए।
1: अच्छा एक गजल और सुनाऊं जी?
0: जी
1: तो एक गजल के कुछ शेर देखिए।
0: इरशाद इरशाद,
1: ये गजल ये हमारे इसके यूनिवर्सिटी है वहाँ की जलगांव जो उत्तर महाराष्ट्र की
0: जी,
1: वहाँ के पाठ्यक्रम में पढ़ाई भी जा रही है, मेरी 20 गजलें हैं वहाँ एमए के सेकेंड ईयर में, तो उसमें भी ये गजल है कि हम भी खुश थे जब वो जीते, लेना एक न देना दो
0: जी,
1: और भाग रहे थे तुम भी पीछे, लेना एक न देना दो।
0: अरे वाह क्या बात है।
1: हम भी खुश थे जब वो जीते, लेना एक न देना दो, भाग रहे थे तुम भी पीछे, लेना एक न देना दो, और उनको तो मंदिर मस्जिद से वोट की खेती करनी थी।
0: ओहो
1: उनको तो मंदिर मस्जिद से वोट की खेती करनी थी, हम आपस में लड़ना सीखे, लेना एक न देना दो, हम आपस में लड़ना सीखे, लेना एक न देना दो। और शेर की भीड़ हजारों की जुटने पर नारों की भी होड़ लगी, भीड़ हजारों की जुटने पर नारों की भी होड़ लगी, तो ननकू और जुम्मन भी चीखे, लेना एक न देना दो। भीड़ हजारों की जुटने पर नारों की भी होड़ लगी, ननकू और जुम्मन भी चीखे, लेना एक न देना दो। और एक शेर है कि पश्चिम वाले जीना हमसे सीख रहे हैं लेकिन हम, पश्चिम वाले जीना हमसे सीख रहे हैं लेकिन हम सीखे उनके तौर तरीके, लेना एक न देना दो, सीखे उनके तौर तरीके, लेना एक न देना दो। और आखिरी शेर है, बेटा बोला राय सभी को क्यों देते रहते हैं आप, बेटा बोला राय सभी को क्यों देते रहते हैं आप, खाली पीली बैठे बैठे, लेना एक न देना दो, खाली पीली बैठे बैठे, लेना एक न देना दो। और हम भी खुश थे जब वो जीते, लेना एक न देना दो, भाग रहे थे तुम भी पीछे, लेना एक न देना दो।
0: बहुत खूब, बड़ी ही प्यारी गजल, बहुत ही हल्की फुल्की, लेकिन वही लेना एक न देना दो, और इंसान बस परेशान ही रहता है इस दुनिया में।
1: जी,
0: बहुत खूब,
1: छोटी छोटी बातें हैं।
0: हाँ हाँ बहुत खूब बहुत खूब भाई, बड़ी प्यारी सी गजल, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद आपका,
0: बहुत बहुत शुक्रिया साहब। तो अब कौन सी गजल सुनवाना चाहेंगे सर, अपने पसंदीदा गजल गायक की?
1: अच्छा ये मुझे पसंद है, मुकेश जी मुझे पसंद है
0: जी,
1: तो उनकी एक गजल है, वक्त करता जो वफा आप हमारे होते।
0: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आइए दोस्तों सुनते हैं मुकेश जी की गाई हुई ये प्यारी सी गजल।

हिंदुस्तानी संगीत में और बॉलीवुड की दुनिया में सबसे बेहतरीन कलाकार मन्ना डे जी, जिनकी क्लासिकल सिंगिंग और गजल सिंगिंग बेहद मशहूर थी। दोस्तों, इसमें थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस सुनाई दे सकता है, लेकिन उनकी सुरीली आवाज हमें दीवाना बना सकती है। आइए सुनते हैं।

0: प्रकाश साहब, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। आप हमारे मेहमान बनकर इस प्रोग्राम में आए, आपकी गजलें हमने सुनी, आपसे बातचीत हमने करी, आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस हमारे समाज के लिए, हमारे लिए काम आएगा। हम इस चीज का सख्त ख्याल रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी। समीर जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत सी चीजें आप इतनी सामान्य पूछी जो काफी कुछ मुझे पीछे अपने उसमें ले गई, और मुझे अच्छा लगा
0: जी।
1: ये बातें मुझे फिर याद करने का एक अवसर दिया, और मेरे पसंद के गीत आपने सुनवाए, ये जान करके और ये सुन करके भी मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। धन्यवाद, आभार आपका।
2: बरसों में मरासम बनते हैं, लम्हों में भला क्या टूटेंगे।
0: दोस्तों, आज शाम गजलों के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल नई गजलें लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें। नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और किसान साथियों कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे और तैयारी अब करने लगे होंगे कि आगामी फसल की तैयारी हम किस तरीके से कर सकते हैं। और बड़ी खुशी होती है जब हमारे कार्यक्रम को सुनकर हमारे किसान साथी हमसे बात करते हैं और हमें फ़ोन लगाते हैं। हम इसी कार्यक्रम को लेकर हम समय समय पर बातचीत करते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथियों की आय में वृद्धि हो सके, कैसे हो सकते, और इस पर हम विस्तृत चर्चा भी करते हैं। हमने वैज्ञानिकों से भी आपकी बात कराई है कि किस तरीके से हमारे किसान साथियों की आमदनी में वृद्धि हो सके। आज हम देख रहे हैं कि महंगाई इतनी बढ़ती चली जा रही है, लागत इतनी लगती चली जा रही है और हमारे किसान आज वहीं के वहीं हैं। हमें अब जागरूक होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यदि अपने आय में वृद्धि करना है, आपको समृद्ध रहना है, तो हमें इन छोटी छोटी बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर झाबुआ जिले की बात करें तो हमने डॉक्टर जो तोमर साहब हैं उनसे जब बात की है तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि यहाँ के किसान सिर्फ समस्या ये आती है कि किसान बहुत ज़्यादा परिश्रमी है, मेहनती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन समस्या ये है कि वो जागरूक यहाँ के किसान नहीं है। अब हमें जागरूक होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपको लगता है कि हमें खेती किसानी में समस्या आ रही है या फिर समस्या आपको अपनी जब आप बोनी करते हैं या फिर फसल लगाते हैं या फिर आपको नई किस्मों का चयन करना है तो भी समस्या आती है। बहुत सारे मन में सवाल चलते हैं लेकिन वो किससे पूछें, ये समस्या आती है। बड़ा अच्छा लगता है जब हम ये बताते हैं कि आपके शहर में झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM खुल गया है। आप इसके माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं। हमने बहुत सारे गांव में भ्रमण किया है, किसानों का यही कहना है कि हम झाबुआ में जो बीज लेने जाते हैं वो महंगा पड़ता है, अन्य जगह नहीं पड़ता है। तो इसकी भी हम आपको प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। जब हमने डॉक्टर तोमर साहब से बात की तो उनका ये कहना है कि किसान जागरूक नहीं है, हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। प्रमाणित बीज का अगर चयन करना है तो आप कृषि विस्तार जो अधिकारी रहते हैं या कृषि विश्वविद्यालय रहते हैं या फिर KBK है, रिसर्च सेंटर है या फिर कृषि विभाग है, वहाँ पर संबंधित अधिकारियों के पास जाकर हम अपनी बात को रख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि हमें बीजों का चयन करना है, हम किस तरीके से अपने बीजों का चयन कर सकते हैं। खासतौर पर अब अगर बात की जाए तो हम सोचते थे, समझते थे कि यहाँ पर सिर्फ तीन ये बीज लगाए जाते हैं, तीन प्रकार के, वो भी क्या होता है कि मूंगफली तो बहुत ही कम लोग लगाते हैं, हमारे किसान साथी सोयाबीन लगाते हैं, मक्का उगाते हैं और साथ साथ में कपास की खेती करते हैं। लेकिन जब हमने डॉक्टर तोमर साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर खेती बहुत सारे किसान करते हैं, चाहे वो धान की हो चाहे मूंगफली की हो, लगाते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में इसको बोया जाता है। क्यों बोया जाता है? क्योंकि उनको पता नहीं रहता है, उनको ये समझ नहीं आती हम किस तरीके से लगाए जाए। नई चीज़ हम कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं और आपको हर समय समय पर ये जानकारी उपलब्ध भी कराते हैं कि हमारे किसान साथी आगामी समय में किस तरीके से तैयारी करें। हमें बहुत ज़्यादा चिंता रहती है अपने किसान साथियों की, क्योंकि बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, परिश्रम यदि करते हैं तो उसका लाभ भी हमारे किसान साथियों को मिलना चाहिए। तो हम रेडियो के माध्यम से बता देना चाहते हैं, जिन किसान साथियों के पास पानी के संसाधन कम हैं वो कम पानी वाली फसलों का चयन कर सकता है। साथ साथ में आप बोइएगा, मिश्रित खेती करिएगा, जो उन्होंने बताया है कि आप मिश्रित खेती कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात आती है कि पानी का मौसम आने वाला है,
लगभग हमारे किसान साथी बीजों का चयन करके रख लें कि हमें बीज कौन सा अपने खेतों में लगाना है। जिन किसान साथियों ने बीज ले लिया है वो खाद बीज की सब व्यवस्था करके रख लें, अपने खेतों की जो गहरी जुताई है वो भी हमारे लगभग सभी किसानों ने कर ली है। जो किसान रह गए हैं वो अपने खेत की गहरी जुताई कर लें, साथ साथ में गोबर की खाद उसमें डाल दें। और दूसरी बात, यदि आपको लगता है कि हमारे खेत समतली नहीं है तो उसको समतली भी कर सकते हैं, और ये उपयुक्त समय है जब हमारे किसान साथी तैयारी करके रखें। हम आपके साथ हैं, हम समय समय पर सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे, वो छोटी छोटी बात आपको बताएंगे जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहती हैं। आज के हमारे कार्यक्रम खेतीबाड़ी में हमने सोचा कि नए खेती के बारे में, नई प्रजाति के बारे में हमारे किसान साथियों को जानकारी होनी चाहिए, और जिन किसान साथी जो इस तरीके की धान की खेती करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, कौन कौन से बीज हमें अपने खेतों में लगाना चाहिए, कौन किस बीजों की पैदावार अच्छी है, कितनी किस्में अपने धान की होती हैं, कैसे लगाई जाती है, इस पर भी हमें बात करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आज हम देख रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और हमारे किसान साथी भी सोचते हैं कि ऐसे में हमारे किसान साथी नई पद्धति और आधुनिक पद्धति और वैज्ञानिक पद्धति से खेती करके अपनी आय को बढ़ा सकें। हम डॉक्टर जो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं उनकी बातचीत हम सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे, और आज हम बेहद खास कार्यक्रम में आज आपको मौसम की भी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। ये जानकारी आपको झाबुआ जिले की होगी और इस जानकारी को उपलब्ध कराने में हमारा सहयोग कर रहे हैं क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र झाबुआ, और यह जानकारी राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय से आपको उपलब्ध कराई जा रही है। विगत 5 दिनों का अधिकतम व न्यूनतम तापमान 39.2 से 40.8 व 26.2 से 28.4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना बताई जा रही है। आसमान में मध्यम से मध्यम घने बादल रहने व पिछले 5 दिनों में वर्षा दर्ज नहीं हुई है एवं 1 जून से अब तक कुल वर्षा अभी तक दर्ज नहीं हुई है। आने वाले 5 दिनों के दौरान आसमान में मध्यम घने बादल छाए रहने की संभावना है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे किसान साथी क्या करें कि जो किसान साथी ग्रीष्मकालीन मूंग की पककर तैयार फसल की कटाई कर लें, खलियान में वर्षा के बचाव के उपाय सहित धूप से सुखाकर गहाई कर लें, यानी उगाई कर लें उसकी, आगामी दिनों वर्षा की संभावना को देखते हुए गोबर की खाद व बर्मी कंपोस्ट की खेत में अपने डाल दें। खेत में बचे फसल अवशेष यानी नरवाई को जलाएं नहीं, गहरी जुताई व खेत में कर लें, साथ साथ में मिट्टी भी मिलाएं। पककर तैयार ग्रीष्मकालीन फसलों की शीघ्रता से कटाई कर लेनी चाहिए और उसकी खेतों की साफ सफाई हमें कर लेनी चाहिए। खरीफ फसलों की तैयारी के लिए खेत तैयार करें, स्वयं के तैयार बीज की सफाई कर लें, उसके अंकुरण प्रतिशत की जांच भी कर लें, और अंकुरण प्रतिशत 27% से कम होने पर नए बीज की व्यवस्था भी कर लें हमारे किसान साथी। खरीफ फसलों की खेती हेतु आवश्यक बीजों की व्यवस्था भी अभी से करके रखें और साथ साथ में खाद की भी व्यवस्था करके रखें। अब कुछ जानकारी जो कृषि विभाग से दी जा रही है वो परामर्श है, जो पककर अपनी ग्रीष्मकालीन मूंग तैयार है उसको कटाई कर लें, खलियान में वर्षा से बचाव हेतु हमें धूप में सुखाकर गहाई इसकी करनी चाहिए, साथ साथ में जो फल वृक्ष हैं खासतौर पर आम में फलत बाग की सिंचाई 7 से 10 दिन के अंतराल में कर लेनी चाहिए, पूर्व में कलकायन हेतु काटे गए बेर के पुराने व देसी पेड़ से निकाली गई शाखाएं में से 3 से 4 शाखाओं को छोड़कर शेष शाखाओं को काटकर अलग कर दें, नया बगीचा लगाने हेतु आप उचित दूरी किए गए
गड्ढे शीघ्रता से खोद लें, उसमें बालू मिट्टी और गोबर या बर्मी कंपोस्ट की खाद उसमें भर दें। अब अगर सब्जियों की बात आती है तो सब्जी में जो कीट व्याधियां लगती हैं, खासतौर पर भिंडी आदि सब्जियों में रस चूसक कीट वायरस का प्रकोप देखा जाता है, उसके रोग के नियंत्रण के लिए हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, यानी परामर्श लेने चाहिए, हमारे कृषि विभाग के जो अधिकारी रहते हैं उनसे परामर्श लेनी चाहिए, उनसे परामर्श लेकर हमें दवा छिड़कनी चाहिए। खासतौर पर मिर्च टमाटर बैंगन आदि में जो प्रकोप देखा जा रहा है, फल छेदक प्रकोप इल्ली को प्रकोप देखा जा रहा है, उसमें एमाडेटेक्टिन और बेंजोएट दवा 10 मिलीलीटर पंप का छिड़काव करें। कद्दूबर की शब्दों में रेड पंपकिन बीटल के रोकथाम हेतु प्रोफेनोफस दवा 3.0 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करें। साथ साथ में ग्रीष्मकालीन सब्जियों में जैसे मिर्च टमाटर बैंगन भिंडी ग्वारफली पालक आदि की 7 से 10 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहें। सब्जियों में अनुशंसित उर्वरक की मात्रा उसमें देते रहें। ग्रीष्मकालीन सब्जियों में जैसे मिर्च टमाटर बैंगन पालक गोभी वर्गीय कद्दू वर्गीय खरबूज तरबूज आदि की समय पर तुड़ाई कर उसमें बाजार में बेचते। साथ साथ में प्याज की खुदाई कर लें, धूप में सुखाकर भंडारित इसको कर लें। अदरक व हल्दी की खेती हेतु प्रभंग की बुवाई कर लें और बुवाई पूर्व प्रभंग डाइथेन M45 या कार्बोडाइजिम की घोल बनाकर 20 से 30 मिनट डुबोकर उसको रख दें। बरसात की सब्जियों का रोपने के लिए इसकी तैयारी कर लें। पशुओं की अगर बात करें तो पशुओं एवं पक्षियों को तेज धूप व गर्म हवा से बचाव करें। साथ साथ में पशुओं को दिन में 3 बार ठंडा व स्वच्छ पानी पिलाएं एवं लू के लक्षण दिखने पर नमक व शक्कर का मिश्रित घोल भी पिलाएं। ग्रीष्मकाल हरे चारे हेतु ज्वार की जरी का समय पर कटाई करें, पशुओं को खिलाएं। दुधारू पशुओं को हरा चारा 25 किलोग्राम प्रति पशु प्रतिदिन व संतुलित आहार एवं मिनरल की आपूर्ति हेतु 50 ग्राम प्रति पशु प्रतिदिन मिनरल मिक्सचर की खुराक आवश्यक है। ये जानकारी मौसम विभाग द्वारा दी जा रही थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें जो जानकारी आप भेजते रहते हैं और समय समय पर बताते रहते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमने जैसे बताया था कि आज हम बात करने जा रहे हैं धान की उन्नत किस्मों के बारे में, बीजों का चयन किस तरीके से करना चाहिए, बीज हमें किस तरीके से लगाने चाहिए, सारी बातें होगी। लेकिन साथियों हम लेते हैं यहाँ पर संगीतमय विराम, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके आरजी मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टंटा व्हील 90.8 FM, आपका रेडियो अपनी बात है।

0: 93.8 FM આપણો રેડિયો આપણી વાતે.
1: किसान भाइयों बहनों, धान हमारे देश की प्रमुख खाद्य फसलों में से एक है. अगर इसकी खेती आप अपनाना चाहते हैं तो जरूरी है कि इसकी नर्सरी आप बेहतर तरीके से तैयार करें, तभी आपको इसका अच्छा उत्पादन हासिल हो पाएगा. और इसकी नर्सरी आप किस प्रकार तैयार कर सकते हैं, कौन कौन सी इसकी उन्नत किस्में हैं जिनका आप चुनाव कर सकते हैं, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वाई एस शिवे. डॉक्टर शिवे, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम खेत खलिहान में. आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे जो किसान धान की खेती से जुड़ना चाहते हैं और वो उन्हें धान की नर्सरी तैयार करनी है, तो सबसे पहले ये बता दें कि नर्सरी तैयार करने के लिए उचित समय क्या है, साथ ही साथ जगह का या फिर कहें कि मिट्टी का चुनाव वो किस प्रकार करें, बताएं इसके बारे में.
2: किसान भाई और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, धान जो है हमारे देश की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है और खरीफ के मौसम में सभी प्रदेशों में उगाई जाती है. इसका जो है क्षेत्रफल लगभग, जैसा आप जानते हैं, 80-85% धान की पैदावार जो है खरीफ के मौसम में की जाती है. और इस समय आपने जो है रबी की सारी फसलें काट ली हैं, उनकी थ्रेसिंग कर ली है और उनको अपने घर में भंडारित कर लिया है या बाजार में बेच दिया है. अब इसके बाद में बात आती है कि धान की नर्सरी किस तरीके से तैयार करें और कहाँ करनी चाहिए. तो सबसे पहले जो है धान की नर्सरी उगाने के लिए उसका खेत का चुनाव करना बहुत जरूरी है. खेत का चुनाव ऐसे स्थान पर करना चाहिए जहाँ पे पानी का स्रोत हो. तो सबसे पहले इस चीज का सुनिश्चित करना है, क्योंकि गर्मी के मौसम में धान की नर्सरी उगाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है. जहाँ पानी का स्रोत पास हो वहीं नर्सरी उगानी चाहिए. अब इसके बाद बात आती है कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए. मिट्टी के लिए ये जरूरी है कि मिट्टी अच्छी उर्वरता वाली मिट्टी होनी चाहिए और उसमें जो है हमारा ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट अच्छा होना चाहिए. यदि ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट अच्छा नहीं है तो उसमें जो है हम गोबर की गली सड़ी खाद जरूर डालें, जिससे कि उसमें जो है पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है और उसके साथ साथ जो है हमारी जो हमारे पोषक तत्व जो हैं वो भी अच्छे ढंग से नर्सरी को मिलते हैं, धान की नर्सरी को मिलते हैं. तो सबसे पहला जरूरी जो काम है वो स्थान का चुनाव करना है. और स्थान का चुनाव करने के बाद में अब बात आती है कि नर्सरी कब लगा सकते हैं, सही समय क्या है. देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तरी भारत में हमारे लगभग सभी प्रदेशों में धान को उगाया जाता है और देश के सभी भागों में लगभग खरीफ में उगाया जाता है. तो इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय है नर्सरी उगाने का. लेकिन ये बात ध्यान रखने की होती है कि नर्सरी की उम्र जो हम ट्रांसप्लांट करते हैं, मुख्य खेत के अंदर जो है रोपित करते हैं, तो उसकी जो है 20 से 25 दिन की नर्सरी होनी चाहिए. इससे ज़्यादा उम्र की नर्सरी नहीं होनी चाहिए ताकि हमको उससे अच्छे से अच्छा लाभ प्राप्त हो. जैसे कि कुछ किस्में कम अवधि वाली हैं तो उनके लिए उगाने का समय जो है थोड़ा लेट भी उगा सकते हैं, और मध्यम अवधि की किस्में हैं उनको थोड़ा लेट उगा सकते हैं. लेकिन जो लंबी अवधि की किस्में हैं उनको जो है मई के लास्ट में आप नर्सरी उगाने के लिए मई के आखिरी सप्ताह से लेकर 10-15 जून तक जो है आप नर्सरी लगा सकते हैं, ताकि आपकी नर्सरी की उम्र जो है 20 से 25 दिन के बाद में मुख्य खेत के अंदर जो है रोपित की जा सके. तो इस तरीके से जो है नर्सरी का लगाने का समय विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न दशाओं में अलग अलग होता है और किस्मों की अवधि के ऊपर भी निर्भर करता है.
1: जी बिल्कुल डॉक्टर शिवे, आपने बताया कि किस्मों का काफी महत्व होता है जब हम समय की बात करते हैं, तो कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जिनका चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं अगर उन्हें नर्सरी तैयार करनी है तो.
2: किसान बहनों और भाइयों, किसी भी फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए जरूरी होता है कि किस्मों का सही चुनाव किया जाए अपने क्षेत्र विशेष के लिए. तो धान के लिए भी ये जरूरी है कि आप अच्छी किस्मों का, जो अनुमोदित किस्में हैं आपके क्षेत्र के लिए, उन्हीं का चुनाव करें. और यदि आप धान की खेती जो है विभिन्न परिस्थितियों में करना चाहते हैं, कोई जल्दी लगाना चाहता है, कोई लेट से लगाना चाहता है, और कोई लंबी अवधि की किस्मों की कास्ट करना चाहता है, कोई जो है हाइब्रिड किस्म हाइब्रिड धान की खेती करना चाहता है, और बहुत से किसान भाई बहन जो हैं हमारे यहाँ जो बासमती की किस्में हैं उनको उगाना चाहते हैं, तो उन्हीं को जो है चुने जिनके लिए आप विशेषकर उसकी खेती करना चाहते हैं और किस उद्देश्य के लिए खेती कर रहे हैं. मुख्य रूप से जो है धान की किस्मों को तीन भागों में बांटा गया है, लंबी अवधि की किस्में और मध्यम अवधि की किस्में और कम अवधि की किस्में. कम अवधि की किस्में जो हैं वो लगभग हमारी 110 से 115 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं. जो मध्यम अवधि की किस्में हैं वो लगभग 120 से 125 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। जो लंबी अवधि की किस्में हैं वो लगभग 130 से 150 और 160 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। तो किस्मों का चुनाव जो है अपनी परिस्थितियों के अनुसार करना है, अपने क्षेत्र के लिए करना है। और इसके साथ साथ यदि आप कम अवधि की किस्मों का चुनाव करना चाहते हैं तो उनको इस प्रकार से चुनें, उनमें से प्रमुख किस्में इस प्रकार से हैं, जैसे कि आगेती किस्में 110 से 115 दिन में पक्कर तैयार हो जाती हैं, पीएनआर 381, पीएनआर 162, साकेत 4, नरेंद्र धान 97, सहभागी धान संपदा। ये कुछ किस्में हैं जो कम अवधि की हैं, लगभग 110 से 115 दिन में पक्के तैयार हो जाती हैं। लेकिन फिर मैं आपको दोहराना चाहूँगा कि आप अपने क्षेत्र के लिए जो अनुमोदित किस्में हैं उन्हीं को चुनें। इसके बाद आती है कि जो मध्यम अवधि की किस्में हैं जो लगभग 120 से 125 दिन में पक्के तैयार हो जाती हैं, उनमें कुछ प्रमुख किस्मों जो हैं वो इस प्रकार से हैं, सरजू 52, पनधान 10, पनधान 12, पनधान 16, पनधान 18, पनधान 19, आईआर 64, कोंट डोरा, सनालू, गोंत्रा, विधान वन, खांडागिरी, महामाया एवं नवीन। ये आदि किस्में ऐसी हैं जो लगभग 120 से 125 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। अब इसके बाद जो हैं जो लंबी अवधि की किस्में हैं वो इस प्रकार से हैं, उनमें से आप अपने अनुमोदित क्षेत्र के लिए चुनाव कर सकते हैं। जो लगभग 130 से 140 दिन में पक के तैयार होती हैं, पूसा 44 जो है लगभग पंजाब में काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में उगाई जाती है और बहुत ही अच्छी किस्म है। इसकी पैदावार जो है लगभग 7 से 8 टन प्रति हेक्टेयर है। पीआर 106, मालवीय 36, नरेंद्र 359, मैसूरी लहलाट, नरेंद्र 8002, पूजा, प्रतीक्षा, रानी धान, रंजीत, सांभा, मसूरी एवं स्वर्णा सबवन। स्वर्णा सबवन ऐसी किस्में हैं कि ये लंबी अवधि की है और जहाँ पर ज़्यादा पानी होता है, बाढ़ वगैरह आती है, वहाँ पे भी ये बहुत अच्छी पैदावार देती है। इसके साथ साथ जो है कुछ किसान भाई जो है संकर किस्मों की खेती करना चाहते हैं, तो जो संकर किस्में हैं उनकी विशेषता ये है कि आपको उनका बीज हमेशा साफ ही लेना पड़ेगा, हर साल बीज खरीदना पड़ेगा और किसी प्रमाणित संस्था से आपको बीज को लेना है, अपने घर का बीज उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो किसी प्रमाणित संस्था से बीज को लेकर चुनाव कर सकते हैं। जो संकर किस्में हैं धान की वो इस प्रकार से हैं, पंच संकर धान 1, पंच संकर धान 3, KRH2, PSD3, GK5003, प्रो एग्रो 64 44, प्रो एग्रो 62 01, प्रो एग्रो 62 19, DRH3, इंदिरा सोना, रुचि, नरेंद्र शंकर धान 2, PHB 71, PRH 10। PRH 10 जो है ये हमारी पूसा संस्थान से निकाली गई है और ये पहली ऐसी हाइब्रिड है जो सुगंधित भी है और अधिक पैदावार देती है। तो इन जो भी मैंने ये संकर किस्में बताई हैं अपने आप अनुमोदित क्षेत्र के लिए चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद आती है बहुत से किसान जो हैं बासमती धान की खेती करना चाहते हैं, तो बासमती की बहुत सारी किस्में हमारे पूसा संस्थान से निकाली गई हैं, उनका चुनाव कर सकते हैं। और ये किस्में इस प्रकार से हैं, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती नंबर 1, पूसा बासमती 6 जिसको हम पूसा 1401 के नाम से भी जानते हैं, पूसा बासमती 1121। इसका दाना जो है बहुत लंबा होता है और बहुत अच्छी किस्म है और इसका जो है बाजार में भाव भी अच्छा मिलता है। इसके साथ साथ जो है उन्नत पूसा बासमती 1 जिसको हम पूसा बासमती 1460 के नाम से भी जानते हैं, इसके साथ साथ जो है पूसा बासमती 1728, पूसा बासमती 1718, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1609। ये ऐसी किस्में हैं जो पूसा संस्थान से निकाली गई हैं, इनका चुनाव कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है हमारी जैसे हरियाणा बासमती नंबर 1 है और इसके साथ साथ से करनाल के यहाँ करनाल से भी निकाली गई है जो बासमती टाइप की हैं, उनका चुनाव कर सकते हैं
1: जी।
2: अब इसके बाद अब बात आती है कुछ ऐसी किस्में हैं जो सुगंधित हैं अधिक पैदावार देती हैं, लेकिन वो बासमती की कैटेगरी में नहीं आती हैं, तो उनमें से भी चुनाव कर सकते हैं। वे किस्में इस प्रकार से हैं, पूसा 1612, पूसा सुगंध 5, पूसा सुगंध 1, पूसा सुगंध 2, और इसके साथ साथ जो है पूसा 1592 और पूसा राइस हाइब्रिड 10, इसको भी सुगंध के उसमें चुन सकते हैं। अब बहुत से किसान भाई बहन जो हैं ऊसर भूमि में खेती करना चाहते हैं धान की, तो उसके लिए जो है सामान्य किस्मों को नहीं लगाना चाहिए, बल्कि जो ऊसर भूमि के लिए अनुमोदित की गई हैं उनमें से ही चुनना चाहिए। जैसे कि ऊसर धान 1, इसके बाद आता है नरेंद्र ऊसर धान 2, नरेंद्र ऊसर धान 3, IR8 झोना ऊसर धान 1, CSR 10 और CSR 30, ये दोनों किस्में जो हैं हमारे CSSRI करनाल से निकाली गई हैं और बड़ी अच्छी किस्में हैं जो लवणता के ऊपर ही काम करते हैं, तो इनमें से कोई भी किस्म को चुनाव कर सकते हैं आप। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा किसान भाई और बहनों, अपने क्षेत्र के लिए जो अच्छी अनुमोदित किस्में हैं उसकी जानकारी आप कृषि विज्ञान केंद्र से ले सकते हैं।

0: कृषि विभाग से ले सकते हैं, और इसके साथ जो साथ साथ जो कृषि विश्वविद्यालय आईसीआर का कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां से जानकारी ले सकते हैं। तो किस्मों का चुनाव जो है आप अपने अच्छे ढंग से करें, और उसके साथ साथ जो है बीज जो है किसी प्रमाणित संस्था से लें, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय बीज निगम है, या हमारा स्टेट सीड फार्म कॉरपोरेशन है, या हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है यहाँ से भी हमारा बीज मिलता है। तो यह कृषि विश्वविद्यालय जो भी आपके क्षेत्र में या आपके प्रदेश में है वहाँ से चुने और बीज जो है प्रमाणित संस्था से ही प्राप्त करें।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर शिवे। तो देखिए किसान भाइयों बहनों, ये थी कुछ धान की प्रमुख उन्नत किस्में जिनका चुनाव आप कर सकते हैं। लेकिन बार बार हमारे कृषि विशेषज्ञ ये भी सलाह दे रहे हैं कि अपने क्षेत्र के अनुसार ही जो अनुमोदित किस्में हैं उन्हीं का चुनाव करें, और उनके बीज आप कहां से ले सकते हैं इसके बारे में भी अभी आपको जानकारी मिल गई है। अब बारी आती है कि बीजोपचार किस प्रकार किया जाए, खेत की तैयारी किस प्रकार की जाए, इन सब के बारे में आपको जानकारी देंगे।
2: लेकिन इस छोटे से विराम के बाद आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडा भील 90.8 FM। अपना रेडियो अपनी बातें।

0: સ્ટેશન રેડિયો ટાંટિયા ભીલ 90.8 FM. આપણો રેડિયો આપણી વાતે.
1: आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं धान की नर्सरी की तैयारी के बारे में और साथ ही साथ कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जिनका चुनाव आप कर सकते हैं धान की खेती के लिए. तो आइए आज के हमारे कार्यक्रम की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. डॉक्टर श्रेया, अब बारी आती है बीजोपचार की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होता है खेती किसानी में. तो कैसे करें बीजोपचार धान के बीजों का, इसके बारे में बताएं.
2: बीज का उपचार जो है बहुत जरूरी होता है धान की नर्सरी लगाने के लिए. तो सबसे पहले बताना चाहूंगा, यदि आप अपने घर का धान यूज कर रहे हैं नर्सरी उगाने के लिए, उसका जो है आप नमक के घोल में 10% नमक के घोल में, अर्थात 10 लीटर पानी में 1 किलो नमक डालकर उससे उपचारित करें. उससे उपचारित करना यूं जरूरी हो जाता है, यदि आपके कुछ दाने खाली होते हैं तो जो खाली दाने होंगे नमक के घोल में ऊपर तैरने शुरू हो जाएंगे, जो भरे हुए दाने हैं वो नीचे बैठ जाएंगे. तो सबसे पहले जो है नमक के घोल से उपचारित करें, जो खाली दाने हैं उनको निकाल दें और जो साफ दाने हैं उनको जो है आप फिर 2-3 बार स्वच्छ पानी से धोएं नमक के घोल के उपचारण के बाद में. फिर उसके बाद जो है आप बीज को उपचारित करने के लिए प्रति किलोग्राम बीज के लिए धान का 2 ग्राम जो है हम किसी कवकनाशी दवा का इस्तेमाल करें, जैसे कि कार्बनडाइजाइम है या बावस्टीन है, तो इनमें से कोई सी भी मिल जाए. और इसके साथ साथ जो है 0.25 ग्राम हमारी जीवाणुनाशी, जैसे कि हमारा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है या एग्रोमाइसिन है, ऐसी दवा लें. तो प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इन दोनों दवाइयों को मिलाएं और मिलाने के बाद में पानी में घोल दें और जितना बीज की जरूरत होती है उस हिसाब से दवा को पानी के अंदर मिला दें और इसको जो है पूरी रात भिगो कर रखेंगे और सुबह फिर निकाल के इसको फर्श पे फैला देंगे और फर्श में फैलाने के बाद में तब थोड़ा सूख जाएगा. फिर इसको जो है किसी बोरे के अंदर भर के रख देंगे और हल्का हल्का पानी डालेंगे. तो इस तरीके से बीज का उपचार करना जरूरी है. इसके साथ साथ जो है हमको ये भी ध्यान रखना है, यदि हम किसी प्रमाणी संस्था से बीज ले रहे हैं तो वो भी जो है बीज के साथ साथ कभी कभी दवा अंदर डाल देते हैं. यदि वो दवा नहीं डाल रहे हैं तो अपने बाजार से दवा को खरीदना है और बीज को किसी भी कवकनाशी तथा जीवाणुनाशी से इस्तेमाल करके उसका बीजोपचार करना बहुत जरूरी है रोपाई से पहले.
1: जी बिल्कुल डॉक्टर श्रेय, बीजोपचार तो आपने बता दिया कि किस प्रकार कर सकते हैं हमारे किसान. अब आपसे जानना चाहेंगे कि बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए और अगर खेत में वो बीज डाल रहे हैं तो उसका तरीका क्या है.
2: हमारे उत्तरी भारत में जो है और दक्षिण भारत में भी 2-3 तरीके से नर्सरी उगाई जाती है, लेकिन उन सब में प्रमुख रूप से जो हमारी गीली क्यारी विधि है इससे जो अच्छी पैदावार लेने के लिए नर्सरी तैयार करते हैं तो अच्छी नर्सरी होती है, अच्छी नर्सरी हमको मिलती है. सूखी क्यारी विधि से भी उगा सकते हैं, डेपोक मेथड से भी उगा सकते हैं, लेकिन मैं विस्तार से चर्चा यहाँ भीगी क्यारी विधि जो है उसकी करना चाहूंगा. तो उसके लिए सबसे पहले जो है खेत को, जो भी आपने खेत चुना है पानी का जो स्रोत है उसके पास में 2-3 बार जुताई कर लें, समतल कर लें. उसके अंदर जो है हम ऐसा बताते हैं कि नर्सरी 1 हेक्टेयर की जो नर्सरी में हमें रोपित करने के लिए नर्सरी उगाते हैं उसके लिए लगभग 700-800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है. तो 700-800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 1 टन गली सड़ी गोबर की खाद डालें और इसके साथ साथ जो है हम 10-12 किलोग्राम यूरिया और 12-15 किलोग्राम सिंगल फॉस्फेट और 4-5 किलोग्राम जो है हम म्यूरेट ऑफ पोटास और 2-2.5 किलोग्राम जो है जिंक सल्फेट, इन सबको जो है हम खेत के अंदर डालें जहां पर नर्सरी उगा रहे हैं. अब इन सबको डालने के बाद में पानी भर के 2-3 बार जुताई कर दें. जुताई करने के बाद में हम पानी भर के जुताई करते हैं, पानी भर के जुताई करने के 2 फायदे हैं. एक तो क्योंकि हमारी लेव बन जाती है, लेव का मतलब पडल हो जाती है, तो हमारे जो हैं पानी जो नीचे बहने की क्षमता है वो कम हो जाती है क्योंकि हमारे जो क्ले पार्टिकल्स हैं वो कणों में भर जाते हैं सैंड सिल्ट में और पानी का निक्षालन कम होता है. तो इस तरीके से हम पानी भरने के बाद में फिर जब पानी थोड़ा सूख जाता है तो आवश्यकता अनुसार जो है हम 1.25 मीटर से 1.5 मीटर क्यारियाँ चौड़ी बनाते हैं, लंबाई जो है हम लगभग 10 मीटर रखते हैं, लेकिन इसको आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं लंबाई को. चौड़ाई जो है 1.25 मीटर से 1.5 मीटर के बीच में ही होनी चाहिए. अब जब आपने क्यारियां बना ली हैं, पानी कम हो गया है, तो जो हमारा जमा हुआ बीज है, जो आपने बीज उपचारित किया था, उसको जो है बीज को डालें, और बीज को इस तरीके से डालें, बीज की मात्रा जो लगभग हमारी डालने की जरूरत पड़ती है मोटे अनाज वाली किस्मों के लिए 25 किलोग्राम जो प्रति हेक्टर के हिसाब से बीज की जरूरत पड़ती है, जो हम 700 से 800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में उगाते हैं। और इसके साथ साथ जो महीन किस्में हैं, जैसे कि हमारी बासमती टाइप की है, उनकी 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से, और जो हाइब्रिड है उसकी लगभग जो है हम 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से बीज को डालते हैं। तो बीज को डालने के सही समय जो है शाम के वक्त, जब हमारा हवा वगैरह ना चल रही हो, तो उस समय डालना चाहिए खेत के अंदर जो उपचारित बीज है। और बीज को डालने के बाद में, अच्छे ढंग से डालने के बाद में, ऊपर से जो है आप किसी पुआल वगैरह, जैसे कि हमारा गेहूं का बचा हुआ पुआल है, या हमारा किसी और दूसरी फसल का बचा हुआ गन्ने की पत्तियां हैं, उनको डाल दें, ताकि हमारे जो चिड़ियां दानों को चुगती हैं उनको न चुगें, और उसके साथ साथ जो है हमारा ऊपर से जो है नमी का संरक्षण भी हो जाए। जब इस तरीके से हम बीज को डालते हैं तो हमारा बीज का जमाव अच्छा होता है और हमको अच्छी नर्सरी मिलती है।
1: जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई कि विधि क्या है हमारे जो बीज लगाने की। अब आपसे जानना चाहेंगे पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में, नर्सरी में पोषक तत्व प्रबंधन किस प्रकार करें ताकि जो पौध है वो स्वस्थ हासिल हो पाए।
2: जी, पोषक तत्व प्रबंधन धान की नर्सरी के अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ पौधावार हमको तभी मिलेगी जब हम अच्छे ढंग से पोषक तत्व प्रबंधन करेंगे। धान की नर्सरी उगाने के लिए वैसे तो हम बताते हैं मृदा परीक्षण के आधार पर पोषक तत्वों का प्रबंधन करना चाहिए। यदि आपने किसी कारणवश मृदा परीक्षण नहीं कराया है, तो जो हम खेत का चुनाव करते हैं 700 से 800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, उसमें जो है लगभग हमको 1000 किलोग्राम जो हमारी गोबर की गली छड़ी खाद है उसको डालते हैं, और इसके साथ साथ जो है 10 से 12 किलोग्राम जो है हम यूरिया डालते हैं, और 12 से 15 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, और 5 से 6 किलोग्राम जो है हम म्यूरेट ऑफ पोटास, और 2 से 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट डालनी चाहिए। इनको जो है जब हम आखिरी पडलिंग करते हैं, आखिरी जुताई करते हैं पानी भरने के खेत में, पानी भरे हुए खेत में, उस समय डालना चाहिए ताकि मिट्टी के अंदर अच्छे ढंग से मिल जाए, और उसके बाद में ही जो है हमको नर्सरी का बीज डालना चाहिए। तो इस तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन करना है। और कभी कभी जो है नर्सरी के अंदर लगाने के बाद में हरिमाहीनता की समस्या आ जाती है। हरिमाहीनता जो है नर्सरी के अंदर जो है वो लोह तत्व की कमी की वजह से आती है। तो यदि ऐसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, आपकी नर्सरी जो है 10 से 12 दिन की हो गई है, तो फेरस सल्फेट का 1% घोल जो है उसका पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं, और घोल की मात्रा जो है वो लगभग 60 लीटर की जरूरत पड़ती है, 60 से 65 लीटर प्रति हमको 700 से 800 मीटर वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए। तो इस तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन धान की नर्सरी में कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, तो देखिए किसान भाइयों बहनों, पोषक तत्व प्रबंधन बहुत ही जरूरी कदम होता है अगर आपको अपनी जो पौध है उसको स्वस्थ बनाए रखना है उसके लिए। डॉक्टर शिव, आपसे जानना चाहेंगे खरपतवार नियंत्रण के बारे में, अगर नर्सरी में खरपतवार हो जाती है तो उससे हमारी जो पौध है उसकी गुणवत्ता पर काफी असर पड़ता है, तो कैसे इनकी रोकथाम की जाए?
2: जहाँ पे हम धान की नर्सरी लगाते हैं वहाँ पे खरपतवार नियंत्रण का करना बहुत जरूरी होता है खेत के अंदर। तो जब हमारी 10 से 12 दिन की नर्सरी हो जाती है, तो खरपतवार हम हाथ से भी निकाल सकते हैं, खुरपी से भी निकाल सकते हैं। तो यदि किसी कारणवश जो है धान की नर्सरी के अंदर जो है आप बहुत ज़्यादा खरपतवार आते हैं,

0: नर्सरी उगाते हैं उस समय पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है धान की नर्सरी के अंदर, क्योंकि हमारा तापक्रम बहुत होता है और तापक्रम ज्यादा होने से वाष्पोत्सर्जन भी हमारा ज्यादा होता है। तो धान की नर्सरी हम जब लगाते हैं जब हल्का हल्का पानी होना चाहिए खेत के अंदर, और फिर बाद में जो है हमको उसमें खेत में पानी नहीं भरा होना चाहिए बल्कि नमी मेंटेन करनी है हमको जब तक उसका अच्छे ढंग से जमाव नहीं होता है। जब उसका जमाव हो जाता है तब हमको हल्का हल्का पानी रखना चाहिए और पानी की कमी नहीं आनी चाहिए। और इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं, यदि पानी की कम उपलब्धता है तो फव्वारे से भी हम पानी दे सकते हैं नर्सरी के जहाँ जिस क्षेत्र में हम नर्सरी उगा रहे हैं। लेकिन यदि आप पानी जो है किसी पानी के स्रोत से दे रहे हैं, जैसे कि हमारा हाइड्रेंट है या हमारा जो ट्यूबवेल है या हमारा पंप सेट है या हमारा कैनाल का वाटर है, तो इस बात का ध्यान रखें कि पानी लगाते समय नर्सरी पानी के अंदर डूबनी नहीं चाहिए बल्कि जो है हल्का हल्का पानी हो, तो इस तरीके से प्रबंधन रखना है। और पानी की कमी भी नहीं आनी चाहिए, इतना कम भी पानी लेने लगाना है तो पानी का प्रबंधन जो है गर्मी के दिनों में नर्सरी उगाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है अच्छी नर्सरी प्राप्त करने के लिए। विशेषकर यदि हमारी हरिमाहीनता की समस्या आती है, लौह तत्व की कमी आती है, तो वो आयरन तत्व की कमी की वजह एक ये भी होता है कि खेत के अंदर पानी न रहना, तो इस चीज का प्रबंधन आपको जरूरी करना है। पानी हल्का हल्का रखना है, समय समय पर पानी देते रहना है।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर श्रेय, आपने धान की नर्सरी तैयार करने के लिए और साथ ही साथ किस्मों के चुनाव के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां जो है हमारे दर्शकों के साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और ये जानकारी पाकर हमारे किसान साथियों की बात में बिल्कुल अब समझ गए होंगे कि अब हमें क्या करना है, कौन सा कदम अपनाना है। खासतौर पर हम कार्यक्रम के माध्यम से मित्रों बताते चले आ रहे हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। तो यही कारण है जो अपने किसान साथी अपने जीवन में अपनी खेती में अपना कर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। हमें एक फसल पर आश्रित नहीं रहना है, हमें मिश्रित फसल की ओर देखना होगा कि कौन से फसल हम अपने खेतों में लगा सकते हैं जिसमें लागत कम लगती है और मुनाफा अधिक होता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई सी भी फसल उगाते हैं या लगाते हैं, नई बीजों का चयन करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें घाटा खाएंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं कि यदि आपको लगता है कि हमें अब नई प्रजाति के नई किस्में अपने खेतों में लगाना है, तो आपको बता देना चाहते हैं कि आप झाबुआ के जो KVK है रिसर्च सेंटर है वहां पर जाकर संपर्क डॉक्टर तोमर साहब से भी कर सकते हैं और साथ साथ में हमारे जो भी वैज्ञानिक हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। त्रिपाठी जी भी हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। कृषि विभाग की अगर बात करें तो कृषि विभाग में जाकर संबंधित अधिकारी के पास आप बात कर सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। यदि आपको उन तक पहुंचने में दिक्कत होती है तो रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के माध्यम से आप अपनी बात को रख सकते हैं। यह आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। तो हमें आशा है कि हमने आज इस कार्यक्रम में जाना कि धान की खेती हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसमें बीजों का चयन हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसमें लगाने की विधि क्या क्या होती है, कैसे हम इसको लगा सकते हैं, कौन सा ऐसा समय है जिसको हम लगाने के उपयुक्त होता है, साथ साथ में कि हम किस तरीके से पौध को लगा सकते हैं, क्यारी बना सकते हैं अभी से, क्योंकि बहुत उपयुक्त समय है। अभी हमारे किसान साथी अपनी जो पौध रहती है नर्सरी है उसको तैयार कर सकते हैं जहाँ पर पानी की समस्या ना हो, वहाँ पर हमारे किसान साथी धान की खेती कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत उपयुक्त समय है। दूसरी बात ये आती है कि एक बार फिर से पुनः हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं जिन किसान साथियों के खेत ऊबड़ खाबड़ हैं या ऊंची नीची जमीन है, वहाँ पर किसान साथी समतलीकरण करा सकते हैं, मेड़बान धान कर सकते हैं, पानी को रोकने की उत्तम व्यवस्था कर सकते हैं। खासतौर पर जब हम देखते हैं कि तालाब हुआ करते थे, बावरी हुआ करती थी, कुआं हुआ करते थे, आज वो समाप्ति की ओर जा रहे हैं, तो ऐसे में हमें ध्यान देने की बातें हैं और मेड़बान धान करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पानी को रोकने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, तभी हमारे जो वाटर लेवल है वो बढ़ाया जा सकता है।

ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे किसान साथियों को समझनी होगी, सोचनी होगी और अपने जीवन में अपनानी होगी। अब हमें दूसरे शहरों में जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि झाबुआ जिले में इतनी सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, इतने सारे वैज्ञानिक हैं, कृषि विभाग है, अन्य समस्या जो आती है, आपको लगता है कि हमें समस्या बहुत ज्यादा होती है, तो आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, यहां पर आप आइएगा, अपनी बात को रखिएगा। हमें खुशी होती है कि बहुत सारे किसान चलकर यहां पर आते हैं, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कराते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है वास्तव में, वाह। तो साथियों, हम एक बार फिर से आग्रह करेंगे, ये आपका रेडियो स्टेशन है, आपके लिए ही खोला गया है और आपकी बात को रखने के लिए ये आपके लिए चलाया जा रहा है। तो हमें आशा है कि ये कार्यक्रम को सुनकर हमारे किसान साथी कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। हाँ, किसान साथियों की बात बिल्कुल अच्छी लगती है। अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर। नंबर है हमारा 94-25-41-36-03। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। साथियों, हमारा वक्त हो चुका है कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें। ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और किसान साथियों कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे और घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, ये आशा हम करते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आज रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के माध्यम से जन जागरूकता किया जा रहा है कार्यक्रम के माध्यम से। साथ साथ में हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे किसान जागरूक हों और अपनी खेती में बदलाव अवश्य करें, क्योंकि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है और किसानों की लागत की अगर बात करें साथियों, तो किसानों की लागत बढ़ती चली जा रही है और मुनाफे की बात करें तो मुनाफा कम होता चला जा रहा है। क्या कारण है ये बहुत सोचने का और चिंता का विषय बना हुआ है। खास तौर पर अगर झाबुआ जिले की बात करें तो यहाँ पर पथरीला इलाका है, मिट्टी मिश्रित मिट्टी है, कहीं पर दोमट मिट्टी है, कहीं पर लाल मिट्टी है, कहीं पर काली मिट्टी है, लेकिन किसान साथी वही परंपरागत खेती आज भी करते चले जा रहे हैं। उन लोगों को ये पता नहीं रहता है कि हमें कौन से बीजों का चयन करना चाहिए, कौन से ऐसे बीज हैं जिनमें पानी कम लगता है, कौन से ऐसे बीज हैं जिनमें लागत कम आती है और मुनाफा अधिक होता है। अब साथियों, बहुत सारे किसान साथी हमारे जो केबी के हैं यानी कृषि विज्ञान केंद्र जो है वहाँ पर जाकर संपर्क करते हैं। यदि वो संपर्क करते हैं और अपने खेती में बदलाव करते हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन किसान साथियों को ये भी पता नहीं है कि केबी के कहाँ हैं, किस तरीके से कार्य करता है, साथ साथ में जो कृषि विभाग है वो कहाँ पे है, किस तरीके से वैज्ञानिक और कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा कार्य किया जाता है, खास तौर पर खेती को लेकर कार्य जो किया जाता है, उनको मिट्टी से लेकर सारी बुवाई, किस तरीके से जुताई होना चाहिए, किस तरीके से बीज का उपचार करना चाहिए, कौन सी दवा अपने खेतों में डालना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमारे किसान साथियों को अब समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक इस तरीके की जानकारी किसान साथियों तक नहीं पहुंच पा रही थी। अब लेकिन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के माध्यम से हम जन जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगे और उन कार्यक्रमों में खेती किसान से जुड़ी बातचीत होगी, आपकी बातचीत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होगी, आपकी बातचीत आजीविका से लेकर जुड़ी होगी, आपकी बातचीत युवा साथियों को किस तरीके से रोजगार वो कर सकते हैं उससे जुड़ी होगी। तो तमाम प्रकार के जो विषय रहते हैं उन विषयों पर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आप सुनिएगा हमारे कार्यक्रमों को और अपने बहुमूल्य समय देकर अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, यानी आप अपने सुझाव जब तक हमें नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम अपने कार्यक्रमों को और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से नहीं बताएंगे। कल जैसे कि हमने कार्यक्रम के माध्यम से बताया भी था, हमारे किसान साथियों से हमने बात की थी और किसान साथियों से जब बात की थी तो वास्तव में बहुत दयनीय स्थिति है, खासतौर पर झाबुआ जिले की कुछ स्थानों पर बहुत दयनीय स्थिति बनी हुई है। किसान साथी चाहते हैं कि हम अपने फसलों में बदलाव करें, लेकिन उनको जानकारी का बहुत ज्यादा अभाव है, खासतौर पर उन किसानों को जो कई वर्षों से खेती करते चले आ रहे हैं लेकिन वही परंपरागत खेती करते चले जा रहे हैं और उनकी अगर मुनाफे की बात करें, उनकी खेती की लागत की बात करें तो खेती की लागत बढ़ रही है, आमदनी कम हो रही है। समस्या ये आती है कि किसान साथी क्या करें, लेकिन किसान साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि आपके सवाल जो थे हमने बहुत गहन शोध किया, बातचीत आपसे किसान साथियों से की, तो किसान साथियों ने हमें बताया कि हमें बीज जो उपलब्ध कराए जाते हैं, जो हम दुकानों से उपलब्ध कराते हैं, लेते हैं, अपने खेतों में बोते हैं, लेकिन प्रमाणित बीज नहीं रहते हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं रहती है। तो ऐसे किसान साथियों से हम कहना चाहेंगे कि आप जहां भी जिस दुकान से आप प्रमाणित बीज लेने के लिए जाते हैं तो उससे रसीद जरूर लीजिएगा। यदि आपको लगता है कि आपके बीज खराब हैं, तो आप शिकायत भी इसके लिए कर सकते हैं, आप केबी के जा सकते हैं, आप कृषि विभाग जा सकते हैं, उनसे शिकायत कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि आपके बीजों का चयन किस तरीके से होना चाहिए। तो आप जैसे कि हम और आप जानते हैं कि कृषि विभाग इसी के लिए बनाया गया है, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए बनाया गया है, तो आप वहाँ पर जरूर जाइएगा। हम जब उनसे किसान साथियों से बात की तो उन्होंने तीन प्रकार की फसलें अपने खेतों में लगाने के लिए जिक्र किया। सबसे पहली फसल उन्होंने बताई है कि हम अपने खेतों में मक्का, सोयाबीन और तीसरी कपास की खेती अधिकतर हम किसान साथी हमारे करते हैं। लेकिन किसान साथियों, इससे बढ़कर भी बहुत सारी ऐसी किस्में हैं, बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनको हमारे किसान साथी कर सकते हैं। अब लेकिन सवाल यहाँ पर आता है, कौन सी ऐसी किस्में हैं, कौन सी ऐसी वैरायटी है, कौन से ऐसे बीज हैं जिनको हम अपने खेतों में लगा सकते हैं। तो इस पूरे सवालों का समाधान हम आपको सीधा ले चलते हैं। हमने केवी के यानी कृषि विज्ञान केंद्र के जो अधिकारी हैं डॉक्टर तोमर साहब, उनसे बातचीत की है, उन्होंने बहुत अच्छा समाधान इसका निकाला है। तो आप जरूर गौर से इस कार्यक्रम को सुनिएगा और अपनी यदि आपको लगता है कि वास्तव में ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी अच्छी तरीके से जो आपके सवाल थे हमने कल कार्यक्रम के माध्यम से फील्ड के माध्यम से हमने लिए थे, उन सवालों का जिक्र हमने डॉक्टर तोमर साहब से किया, बड़े अच्छी तरीके से बड़ी सुंदरता के साथ उन्होंने जवाब दिया, उन जवाबों को आप सुनिएगा। लेकिन उन जवाबों को सुनने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर एक छोटा सा विराम लेते हैं, सुनते हैं प्यारे से वीली गीत को और इसके बाद डॉक्टर तोमर साहब के पास आपको ले चलते हैं। बड़ी अच्छी बातचीत वो बता रहे हैं, खासतौर पर उन किसानों के हम सवाल लेकर गए हैं, उन किसान साथियों के सवालों के उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से जवाब भी दिए हैं, साथ साथ में समाधान भी किया है और उन्होंने एक आश्वासन भी दिया है कि जिन किसान साथियों को लगता है कि हमें अच्छे बीजों का चयन करना चाहिए या अच्छे बीज कहां से उपलब्ध हो, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट केवीके में डॉक्टर तोमर साहब के पास जा सकते हैं और साथ साथ में बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं वहां पर उपस्थित रहते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और कृषि विभाग भी अपना उपस्थित रहता है वहीं पे, तो वहां पर भी आप बात कर सकते हैं उनसे। साथ साथ में मौसम आधारित खेती भी आप कर सकते हैं, मौसम किस तरीके से बनता है, किस तरीके से मौसम इस बार बारिश की संभावना है, ये सारी जानकारी हमारे किसान साथियों को होना चाहिए, तभी एक उन्नत किसान के नाम से आपको पहचानेंगे, एक सफल किसान के नाम से जानेंगे। और खासतौर पर अगर जागरूकता की बात करें तो आप सभी लोग जागरूक होने के लिए तैयार हो जाइएगा, क्योंकि रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के माध्यम से इन सारी जानकारियों को, इन सारी बातों को आपके समक्ष हम लेकर आएंगे। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से वीली गीत को।

0: एनिक।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
2: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटा भील 90.8 FM सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि हम साथियों कई बार हम कार्यक्रम के माध्यम से बताते रहते हैं और आपको जानकारी उपलब्ध कराते रहते हैं कि यदि आपको लगता है कि आपको खेती किसानी में कोई समस्या यदि आती है तो आप केबीके में जाकर संपर्क कर सकते हैं। वहां पर वैज्ञानिक हमारे उपस्थित रहते हैं, वहां पर संपर्क कर सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर तोमर साहब हैं, आइए इनसे जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी तैयारी कर सकते। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम।
3: देखिए किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, झाबुआ जिला एक आदिवासी बाहुल्य जिला है, साथ ही साथ यहाँ खेती करने वाले ज्यादातर लोग हैं और छोटी जोत है, मतलब जमीन भी कम है इनके पास
2: जी।
3: और अभी जैसे आज अपन बात कर रहे हैं, सामान्यतः यहाँ पर जो मानसून की आवक है वो 10 से 15 जून के आसपास या 20 जून तक मानसून आ जाता है, मतलब बारिश शुरू हो जाती है
2: जी।
3: तो किसान भाइयों को एक सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो ये है कि हर बार हम ये देखते हैं कि किसान भाई जब मौसम जैसी बारिश का आता है तो वो बीज के लिए बाजार की तरफ भागते हैं।
2: बिल्कुल सर।
3: और एक बड़ा एक नेटवर्क है जितने बीज वाले वो बहुत पैसे कमा रहे हैं।
2: बिल्कुल सर।
3: तो किसान भाइयों को मैं एक पहली सलाह ये देता हूँ कि पिछले साल उन्होंने जो भी बीज बोया है
2: जी सर,
3: खासकर सोयाबीन का, उड़द का, मूंग का, गेहूं का, चने का जो बोते हैं
2: जी सर,
3: यदि उनके यहाँ वो बीज अच्छी तरीके से पका है
2: जी
3: और उसकी उत्पादन अच्छा मिला है
2: जी,
3: तो ये मानते हुए कि ये बीज आपके इस क्षेत्र के लिए अनुकूल है
2: जी,
3: और यदि आप इस बीज को उपयोग करेंगे
2: जी,
3: तो भी आपके पास फसल उतनी ही पकेगी जितनी की आप अच्छी अपेक्षा करते हैं।
2: बिल्कुल सर।
3: मतलब कई बार ये होता है कि वो जो बाजार से बीज लेके आते हैं वो बीज उतना अच्छा नहीं मिलता।
2: बिल्कुल सर।
3: जिससे कि उनकी उपज अच्छी मिल पाए, क्योंकि अलग अलग प्रजातियां आती हैं।
2: बिल्कुल सर।
3: और इन प्रजातियों में कई क्षेत्र वाइज होता है कि जैसे क्षेत्र के लिए वो है कि नहीं
2: जी,
3: अधिसूचित है कि नहीं
2: जी,
3: तो इसमें क्या होता है कि कई बार ठगे जाते हैं।
2: बिल्कुल सर।
3: तो किसान भाई एक तो ये देख रहे हो, दूसरा जो बीज वो बोएंगे
2: जी,
3: उस बीज को यदि अंकुरण उनको देखना है।
2: बिल्कुल सर।
3: अंकुरण का मतलब होता है कि यदि हमने 100 दाने लेके और बोए हैं
2: जी,
3: तो उसमें से यदि 70-80 दाने उग रहे हैं।
2: बिल्कुल सर।
3: इसका मतलब ये है कि हमारा बीज बोने लायक है।
2: बिल्कुल सर।
3: इसको अंकुरण को देख लें
2: जी सर।
3: और दूसरा, जल्दी बिल्कुल भी बोने की में नहीं करें।
2: बिल्कुल।
3: क्योंकि सोयाबीन की खासकर जो फसल होती है वो थोड़ी सी संवेदनशील होती है
2: जी सर।
3: और कई बार क्या होता है कि थोड़ा भी पानी बरस गया और हमने बोनी कर दी, उसके बाद पानी नहीं आया
2: जी,
3: तो बीज खराब हो जाता है।
2: बिल्कुल सर।
3: तो ये सब चीज सोयाबीन में भी, मक्का में भी सब पर लागू होगी।
2: बिल्कुल।
3: तो बीज की व्यवस्था वो शीघ्र करके रख लें।
2: बिल्कुल।
3: खाद की व्यवस्था करके रख लें।
2: बिल्कुल सर।
3: मतलब आदान को लेके रखने का ये सबसे उचित समय है।
2: बिल्कुल सर।
3: और कम से कम 2 से 3 इंच बारिश
2: जी,
3: मतलब जमीन में 3 से 4 इंच गहराई तक उंगली, जो अपन हाथ से भी अपन देखें
2: जी,
3: 3-4 उंगलियों के बराबर गहराई जब तक हो जाए।
2: बिल्कुल सर।
3: और उसके बाद में आजकल एक बोनी की विधि होती है जिसको कहते हैं मेड़ कूड़ विधि
2: जी,
3: मतलब जिसमें थोड़ी सी मेड़ बन जाती है और बीच में नाली बन जाती है।
2: बिल्कुल सर।
3: वो इसलिए किया जाता है कि यदि हम ऐसी फसल बो रहे हैं जिसको मान लो पानी कम पड़ा
2: जी,
3: तो वो जो नाली में पानी भरा रहेगा
2: जी सर,
3: और पानी ज्यादा आता है तो उसी नाली से पानी बाहर निकल जाता है।
2: बिल्कुल सर।
3: तो ये इसका अटैचमेंट ट्रैक्टरों में आसानी से हो सकता है
2: जी,
3: यदि कोई किसान भाई जो हमारे आसपास के क्षेत्र में है वो चाहे तो कृषि विज्ञान केंद्र में आकर यहाँ पर देख भी सकते हैं।
2: बिल्कुल सर।
3: और यहाँ से हमसे सलाह लेके वो हम बता देंगे किसी भी लोहार को
2: जी,
3: तो जो उनके पास सीड ड्रिल है
2: जी जी,
3: बोनिंग मशीन
2: जी,
3: उसमें वो व्यवस्था हो सकती है।
2: बिल्कुल सर।
3: दूसरी बात ये है कि खाद बोने में हमको ध्यान रखना चाहिए कि जितनी भी अनाज वाली फसलें
2: जी सर,
3: उन फसलों को हम बोते समय एनपीके से साथ बोएं
2: जी,
3: मतलब उसमें खाद आगे और पीछे भी इस तरह की व्यवस्था होती है सीड ड्रिल में
2: जी सर।
3: और जितनी भी दाल वाली फसलें
2: जी,
3: और खासकर सोयाबीन है या दाल वाली उड़द मूंग है, इस फसलों में इसमें डीएपी डाल सकते हैं।
2: बिल्कुल सर।
3: और यूरिया का प्रयोग खड़ी फसल में 20 दिन के बाद ही करें
2: जी,
3: मतलब अभी बोने के समय यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए
2: जी।
3: कई किसान भाई नहीं समझते हैं तो वो यदि खाद डालते हैं तो उसका प्रभाव फसल को नहीं मिल पाता।
2: बिल्कुल सर।
3: तो ये 2-3 चीजें हैं वो जो अभी यदि करेंगे
2: जी,
3: तो किसानों के लिए उत्तम होगा। और कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ में स्थित है
2: जी,
3: और ये एक तरह से किसानों की विद्यालय है, पढ़ने की जगह है
2: जी।
3: और किसी भी किसान को जब भी कोई इस तरह की समस्या आती है
2: जी,
3: कि उसे क्या करना है
2: जी सर,
3: कौन सा बीज अच्छा हो सकता है, या उनके पास कोई समस्या आती है, कीड़े बीमारी आते हैं
2: जी,
3: तो वो आकर यहाँ पर हमके संपर्क कर सकते हैं
0: जी।
3: हमारा दायित्व तो उन सब की समझाना है
0: जी,
3: बताना है और आवश्यकता पड़ने पर किसान के खेत में जाके भी हम उसको तकनीकी ज्ञान देते हैं।
0: बिल्कुल,
3: तो ये यदि आप करेंगे तो मतलब आपकी फसल भी अच्छी होगी और मतलब ज्यादा लाभ होगा, तो आप केवीके से संपर्क में बने रहें।
2: सर यहाँ पर एक सवाल आता है, चूंकि हमने गांव पे भ्रमण किया है और बहुत सारे किसानों का ये कहना है कि हमें उचित बीज की व्यवस्था यहाँ पर नहीं होती, हम दूसरी जगह जाते हैं वहां पर कम पैसों में हमें बीज उपलब्ध हो जाता है, तो सर क्या कारण है? और हमारे किसान साथी, हमारा दूसरा सवाल कि हमारे किसान साथी और कौन सा बीजों का चयन करें जिससे उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सके। सर
3: अब जैसे इसमें क्या होता है कि यहाँ पर खरीफ में कई सारी फसलें बोई जाती हैं
0: जी सर,
3: मुख्य रूप से मक्का है
0: जी,
3: कपास है
0: जी,
3: सोयाबीन
0: जी,
3: जो कि तीन बड़े क्षेत्रों में बोई जाती हैं
0: जी।
3: अब इसमें से क्या होता है कि कपास का जो बीज है वो संकर बीज आता है।
0: बिल्कुल सर,
3: और संकर बीज में भी यहाँ पर डीसेल 32 के नाम से एक बीज आता है जो कि लंबे समय तक रहता है और उसकी रेशे की लंबाई भी काफी रहती है
0: जी।
3: वो बीज अच्छा होता है और मतलब उसको बोने से इनको फायदा यूं मिलता है कि बाजार में जो सामान्य कपास है उससे इसका भाव करीब 2 से 3 हजार रूपये ज्यादा रहता है।
0: बिल्कुल सर,
3: क्योंकि ये ट्राइबल क्षेत्र है
0: जी,
3: मतलब हमारे बनवासी भाई हैं सब लोग हैं
0: जी,
3: तो इनके पास श्रम शक्ति बहुत है।
0: बिल्कुल सर,
3: तो ये लोग कपास पैदा करके इससे अच्छा फायदा ले रहे हैं,
0: ले रहे हैं,
3: तो इनको ये ले सकते हैं। परंतु ये चूंकि संकर बीज है और इस बीज को हमको बार बार बदलना पड़ेगा।
0: बिल्कुल सर,
3: और ये दो देखिए बीज मिलने के 2 स्रोत हैं
0: जी,
3: एक तो सरकारी बीज गोदाम होते हैं और एक प्राइवेट है।
0: बिल्कुल सर,
3: हमको पिछले कई सालों से जब हम खेती करते आ रहे हैं तो हमें पता है कि कौन सा बीज हमारे कौन सी कंपनियों के बीज हमारे लिए ज्यादा अधिक उपयुक्त है। अब मैं चूंकि कंपनियों का इसलिए नहीं नाम लूंगा क्योंकि कंपनियों का नाम लेना मेरे लिए वर्जित है।
0: बिल्कुल सर,
3: तो वो हम कपास का बीज ले सकते हैं
0: जी।
3: इसके अलावा मक्का के बीज भी क्या होता है, 2 तरह के होते हैं, संकर भी होते हैं और एक कंपोजिट वेरायटी भी होती है। तो यदि हमसे संपर्क करेंगे तो हम उनको बता देंगे कि कंपोजिट वेरायटी में कुछ वेरायटी है जो कि उपलब्ध हो सकती है
0: जी सर।
3: और अब आपको जब भी बीज हम खरीदते हैं जहां से भी लेते हैं
0: जी सर,
3: चाहे सोयाबीन का हो या कोई भी हो,
0: बिल्कुल
3: उस व्यक्ति से रसीद लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि होता ये कि यदि हमारे पास बीज खराब निकल गया
0: जी सर,
3: तो बीज के हम उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तब कुछ नहीं कर पाते यदि आपको रसीद
0: नहीं है। बिल्कुल सर,
3: तो दूसरा ये है कि हमारा जो बहुत भरोसे का आदमी है,
0: बिल्कुल सर,
3: जो व्यक्ति हमारे भरोसे पे खड़ा उतरता है, हमको पता है कि ये व्यक्ति काफी समय से काम कर रहा है
0: जी,
3: उससे लें। दूसरा, यदि उनको ऐसा लगता है कि कोई जानकारी इस संबंध में चाहिए
0: जी सर,
3: तो आपके कृषि विज्ञान केंद्र में हम लोग यहाँ पर 2400 घंटे उपलब्ध हैं।
0: बिल्कुल सर,
3: छुट्टी के दिन भी यदि कोई आएगा तो हमारे यहाँ केंद्र खुला रहता है
0: जी सर,
3: सब लोग यहीं रहते हैं
0: जी सर,
3: तो हम उनको अपनी उनकी जानकारी के हिसाब से बता देंगे कि कौन कौन सी वैरायटी, जैसे अभी सोयाबीन की वैरायटी 335 है
0: जी सर,
3: जवाहर 335 है
0: जी,
3: एक GS 2098 है
0: जी सर,
3: या अभी एक राज सोया 18 आई है
0: जी सर,
3: जो नई नई जातियां आती रहती है
0: जी सर,
3: तो वो हमारे क्षेत्र के लिए कौन सी उपयुक्त है उसके बारे में हम जानकारी उनको दे देंगे।
0: बिल्कुल सर,
3: और वो यहाँ से बीज ले जा सकते हैं। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि यदि भारत के सभी किसान एक छोटी सी बात समझ जाएं
0: जी सर,
3: कि उन्हें यदि इस साल 40 किलो कोई बीज मिल गया है
0: जी सर,
3: वो जिसका उत्पादन यदि उन्होंने 4-5 क्विंटल कर लिया है, 10 क्विंटल कर लिया है
0: जी सर,
3: और उसमें थोड़ी सी सावधानी ये रखना पड़ती है कि बीज बोने के बाद में फसल में निरंतर निगरानी रखें।
0: बिल्कुल सर,
3: वो निगरानी रखने के बाद ये देख लें कि उसमें जो दूसरे प्रजाति के पौधे हैं वो देखने से पता चल जाता है।
0: बिल्कुल सर,
3: तो उन पौधों को निकाल के अलग कर दें और उस बीज को यदि आपके अच्छा पका है तो ऐसे बीज को आप 3 से 4 साल तक कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सर,
3: तो झाबुआ जिले के यदि सभी गांव के लोग यदि अपनाने लगे इन सब चीजों को
0: जी सर,
3: तो 1 साल में ही करोड़ों रुपए का पैसे को बचाया जा सकता है।
0: बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने सर।
3: किसान को ये एक गलत फहमी है कि वो जो दुकान पे मिल रहा है या चमकने वाली पन्नी में जो बीज मिल रहा है
0: जी,
3: वो अच्छा है
0: जी,
3: जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है
0: जी।
3: किसान अपने यहाँ स्वयं का बीज पैदा कर सकता है।
0: बिल्कुल सर,
3: या फिर कम मात्रा में बीज लाए
0: जी,
3: और उस बीज को अच्छा है तो उसको पैदा करके बढ़ाए और उस बीज का उपयोग वो लगातार आने वाले 3-4 साल तक कर सकता है।
0: बिल्कुल सर,
3: उसका उत्पादन भी कम होगा, तो हम लोग यहाँ केंद्र में बैठे हैं कि हमारी जवाबदारी है कि इसी हम जानकारी उनको दें
0: जी।
3: तो मुझे लगता है कि ये आपका जो रेडियो है इसके थ्रू यदि इसी जीत पहुंचेगी
0: जी सर,
3: और हमसे संपर्क करेंगे तो उनको निश्चित ही लाभ होगा।
0: बिल्कुल,
3: ये काम करना।
2: सर एक और सवाल है, यहाँ की हमने मिट्टी को देखा है, परखा है, जांचा है कि यहाँ पर दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी और काली मिट्टी का मिश्रण है यहाँ पर, और यहाँ पर जो समस्या आती है कि सिर्फ 3 ही फसलें वो बोते हैं, चाहे वो सोयाबीन हो, मक्का हो या कपास हो, अन्य फसलों को वो क्यों नहीं बोते हैं? सर आपका क्या कहना है इस बारे में? सर
3: देखिए क्या है कि ये तो अभी जैसे हम पूरे जब जिले की बात करते हैं
0: जी सर,
3: तो हमारे जिले में करीब 6 विकास खंड है।
0: बिल्कुल सर।
3: और यदि अलियापुर को जोड़ लिया जाए तो 12 विकास
0: खंड,
3: ऑलमोस्ट एक जैसी स्थिति है सभी जगह।
0: बिल्कुल सर।
3: अब इनमें जो पेटावत का क्षेत्र है या पॉकेट्स में काली देवी है, मेघनगर के आसपास है, थानला के आसपास है
0: जी सर,
3: तो जो लोग सब्जियों की खेती कर रहे हैं
0: जी,
3: तो वो लोग क्योंकि थोड़े समझदार लोग हैं, मतलब उन्होंने वो सब चीज समझ ली है
0: जी।
3: अब आधे से ज्यादा किसानों के हम बात करते हैं, पूछते हैं तो आप मक्का क्यों बो रहे हो, तो उनका एक सोच होती है कि हम मक्का खाने के लिए बो रहे हैं
0: जी।
3: जबकि हमारी जो मिट्टी है, जैसा अभी आपने कहा
0: जी,
3: कि हल्की है, दुमट है, और कई तरह की मिट्टी है, मिक्सचर है
0: जी।
3: मक्का इन सभी फसलों में सबसे ज्यादा भोजन लेने वाली फसल है।
0: बिल्कुल सर।
3: और हमारी जमीन सबसे कमजोर है।
0: बिल्कुल सर।
3: तो यदि हम कमजोर जमीन में ज्यादा न्यूट्रिएंट लेने वाली फसल बोएंगे
0: जी सर,
3: तो निश्चित ही उसमें उत्पादन कम होगा।
0: बिल्कुल सर, क्या सर।
3: तो यदि इनको ये चुनाव करके कि हमको क्या चीज बाजार में पैदा करके हम बेचें जिससे हमको ज्यादा पैसा मिले
0: जी, जी, जी।
3: और मक्का हम बाजार से खरीद भी सकते हैं।
0: बिल्कुल सर।
3: तो इस तरह की यदि इनकी मानसिकता बन जाएगी, और अभी क्या हो रहा है कि सब्जियों में अभी क्या हो रहा है, सिचुएशन की स्थिति तो नहीं है
0: जी,
3: अभी आप लगा सकते हैं।
0: बिल्कुल सर।
3: और शुरुआत में भी क्या होता है, अभी जैसे आपने देखा होगा टमाटर का भाव समय 100 रुपए के आसपास है।
0: बिल्कुल सर।
3: और बीच में 2 रुपए होगा कभी, तब आप फिर न्यूज आएगी
0: जी। जी सर।
3: तो मतलब ये है कि जिनके पास संसाधन है
0: जी, जी, जी,
3: या जिन्होंने पॉली हाउस बनाए
0: जी,
3: ये सब चीजें उनके लिए हैं कि आप ऐसे मौसम में, साल में 365 दिन होते हैं।
0: बिल्कुल सर।
3: तो 365 दिन में से हमको ये पता होना चाहिए कि कब किस किस की चीज की मांग बढ़ती है।
0: बिल्कुल सर।
3: और किसकी कब उत्पादन होने से ज्यादा नुकसान होता है।
0: बिल्कुल सर।
3: तो आप उसको समय को परिवर्तित करके
0: जी
3: उसको ज्यादा पैसा कमा सकते हैं।
0: बिल्कुल।
3: तो हमारे मिट्टी की उतनी वो नहीं है दिक्कत है, लोगों में समझ के अभी उतनी नहीं है। अभी झाबुआ के आसपास भी लोग अभी खेती करने लगे
0: जी।
3: कुछ किसानों को मैं जानता हूँ जो कि यहाँ पे हाट में आते हैं
0: जी,
3: तो यदि आप सब्जियों की तरफ जाएंगे
0: जी
3: और 4-5-6 तरह की सब्जियां लगाना शुरू कर दें
0: जी,
3: और चूंकि हमारे पास श्रम शक्ति भी ज्यादा है।
0: बिल्कुल सर।
3: तो वो लोग आके हाट में खुद बैठ के बेच दें,
0: बेच सकते हैं।
3: तो मंडी में बेचने और हाट के बेचने में आपको दुगने से ज्यादा अंतर फर्क पड़ जाता है।
0: बिल्कुल सर।
3: तो यदि वो बेचना शुरू करें तो मुझे लगता है कि उनकी माली हालत में सुधार हो सकता है। यदि वो 7 दिन में से 4-5 यदि 3-4 हाट भी बेच चुके
0: जी
3: सब्जी को मौसम के अनुसार, तो उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है। तो मिट्टी नहीं, यदि वो खेती करना चाहेंगे तो किसी भी मिट्टी में या कोई भी खेती हो सकती है।
0: बिल्कुल।
2: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम एक यहाँ पर विराम लेते हैं, सुनते हैं इस गीत को। इसके बाद डॉक्टर साहब से बहुत सारे हमारे सवाल हैं, उनसे भी हमें जानना है, उन सवालों के जवाब भी हमें जानना है। तो कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बातें। आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपनो रेडियो अपनी बातें।

0: सर आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, हमारा बस आखिरी सवाल है कि यहाँ पर हमारे किसान साथी चूंकि उबड़ खाबड़ जमीन है, पानी का संसाधन बहुत ही कम है, ऐसे में कम पानी वाली फसलें वो कौन सी हैं जिसको वो कर अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं? सर
1: देखिए क्या है कि पानी तो ऐसी चीज है कि उसके बिना कोई खेती हो नहीं सकती
0: जी।
1: अब चूंकि हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है जमीन की वो ढालू है,
0: बिल्कुल सर,
1: मतलब ऊंची नीची है, और इसमें किसान भाई हमारे बहुत समझदार हैं
0: जी।
1: यदि हम जाके कई बार खेतों में देखते हैं तो पता लगता है कि नीचे हमारे यहाँ देखिए धान भी बोया जाता है,
0: बिल्कुल सर,
1: मक्का भी बोई जाती है
0: जी,
1: और मूंग बोया जाता है,
0: बिल्कुल सर।
1: तो जैसे ये उड़द है, मूंग है
0: जी,
1: है ना, ये दोनों जो फसलें हैं ये करीब 65-70 दिन में पक के तैयार हो जाती है
0: जी,
1: और इनमें पानी की आवश्यकता बहुत कम
0: होती है, बिल्कुल सर।
1: तो यदि किसी के पास पानी की कमी है
0: जी
1: तो उड़द मूंग लगा सकता है,
0: बिल्कुल सर।
1: दूसरा ये है कि पानी के लिए हमको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि दो तरह का पानी होता है, एक तो भूमिगत जल,
0: बिल्कुल सर,
1: और एक सतही जल,
0: बिल्कुल सर।
1: तो जो भूमिगत जल है उसको यदि बढ़ाना है तो हमको पानी जगह जगह रोकना पड़ेगा, तो नीचे का जल बढ़ेगा
0: जी सर।
1: तो बार बार हम कई जगह देखते हैं, सब जगह कहा जाता है कि जितना वर्षा जल आ रहा है
0: जी सर,
1: उसमें से अधिक जल को कैसे भूमि के नीचे उतारा जाए,
0: बिल्कुल सर।
1: तो वो यदि आपके तालाब है, नदी नाले हैं, उन सबको जिसमें कि पूर्व पानी को तो नहीं रोका जा सकता,
0: बिल्कुल सर,
1: परंतु हमको ये व्यवस्था करनी चाहिए कि आने वाले जो समय रहेगा बरसात के बाद उस साल भर हमारे पास पानी मिलता रहे,
0: बिल्कुल बिल्कुल सर।
1: तो वो एक तो काम करना है अपने को, जितने पुराने कुएं हैं उन कुओं को रिचार्ज करने के लिए, रिचार्ज का मतलब ये होता है कि आप उसमें पानी को डाइवर्ट करके ले जाएं
0: जी सर,
1: और उस पानी उसमें भरे,
0: बिल्कुल,
1: तो वो जो कभी पानी निकालने के लिए काम में आ रहा था वो जमीन में जल स्तर बढ़ाने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं
0: जी सर, जी सर,
1: ये हो सकते हैं। दूसरा जो फसलों की आपने बात की थी उसमें होता क्या है कि यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि इस तरह की स्थिति है
0: जी,
1: उसमें एक चीज होती है कि यदि पानी कभी कम ज्यादा होता है तो हम दो तरह की फसलों को लगाते हैं
0: जी,
1: जैसे मक्का के साथ सोयाबीन है
0: जी, जी जी,
1: मक्का के साथ कपास है
0: जी,
1: ये जो इसको कहते हैं हम लोग इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग मतलब होता है अंतर्वर्ती फसल
0: पद्धति,
1: ये इसलिए चुनाव किया जाता है कि जिसमें से एक फसल की पानी की मांग अधिक होती है, एक की कम होती है
0: जी सर,
1: एक की जड़ों की गहराई ज्यादा होती है, एक की जड़ों की गहराई कम होती है
0: जी।
1: ये इसलिए चुनाव किया जाता है कि मान लीजिए किन्हीं परिस्थितियों में पानी बहुत कम बरसता है
0: जी,
1: तो एक फसल पक जाए,
0: पक जाए,
1: और यदि पानी ठीक बरसता है या ज्यादा बरसता है तो दोनों फसल पक जाए,
0: बिल्कुल।
1: तो ये जो इंटरक्रॉपिंग होती है ना वो करना चाहिए, और झाबुआ जिले में चूंकि अभी बेलों से खेती हो रही
0: जी,
1: बहुत सारे किसान अभी करते हैं
0: जी,
1: तो उनको ये सलाह दी जाती है कि आप जितनी अंतर्वर्ती फसलों की खेती करेंगे उतनी आपकी मतलब पानी की जो परेशानी
0: जी,
1: कम पानी ज्यादा पानी की जो स्थिति बनती है
0: जी सर,
1: उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं,
0: बिल्कुल सर,
1: तो ये कर सकते हैं
0: जी।
1: साथ ही साथ अब एक ये देखिए कि आजकल तो बड़ी कई किसान क्या करते हैं, पूरे खेत में ड्रिप लगा देते हैं,
0: ड्रिप सिंचाई,
1: और आवश्यकता पड़ने पर वो ड्रिप पर चालू कर देते हैं,
0: बिल्कुल सर।
1: यदि मान लीजिए बहुत परिस्थिति खराब हुई, अब जैसे कपास की फसल है
0: जी सर,
1: आपने उसको यदि 4-5 बीघा में लगा रखा है
0: जी सर,
1: और यदि पानी की स्थिति खराब हुई
0: जी
1: तो फसल खराब हो जाएगी,
0: बिल्कुल सर।
1: तो आप एक बार ड्रिप ले लें और ड्रिप को खेत में जब आवश्यकता पड़े चला दें
0: जी सर,
1: तो आपकी फसल बच सकती है,
0: बहुत बढ़िया।
1: और झाबुआ के जितने भी हमारे किसान भाई हैं उन सबके लिए तो सब्सिडी पर उपलब्ध है,
0: उपलब्ध है, बहुत
1: बढ़िया। वो ये रहा है कि लोगों में अभी तक ये जागरूकता ये कम है
0: जी सर,
1: कि जब हम किसी किसान कभी कार्यक्रम में जाते हैं और पूछते हैं
0: जी
1: कि आपके पास ड्रिप है या नहीं, तो कई सारे लोग कहते नहीं
0: जी जी,
1: और जब मुझे पूछते हैं कि तुमको पता है कैसे मिलती है,
0: पता है,
1: तो वो 99% लोगों को पता नहीं है कैसे,
0: बिल्कुल सर,
1: उनको भी बताया जाए कि ऑनलाइन लेना है तो ऑनलाइन का मतलब वो समझते नहीं,
0: बिल्कुल।
1: तो उनको हम लोग कई बार यहाँ पर जो आते हैं उनको तो प्रयास कर रहे हैं कि आप संबंधित विभाग है, जैसे कृषि विभाग है या हॉर्टिकल्चर विभाग है
0: जी,
1: यहाँ पर जाके अपना कागज सब ले जाएं और उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें, वो जिस स्कीम में आप चाहते हो उस स्कीम आपका नाम लिख जाएगा,
0: बिल्कुल सर।
1: और यदि पहले आए पहले पाए में आपका नंबर आ गया इस साल तो आपको वो मिल जाएगी, नहीं तो आप घर पे बैठे रहोगे तो सॉरी कोई भी आके आपको कुछ देगा नहीं,
0: बिल्कुल सर।
1: तो ये जानकारी उनको पहुंचाना बहुत जरूरी है, जो कि उनके लिए हितकर रहेगी और पानी का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं।
0: सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।
1: जी जी जी बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और जब भी आपको ऐसा लगता है कृषि विज्ञान केंद्र में आप आ सकते हैं
0: जी,
1: साथ ही किसानों को भी प्रेरित करें कि वो यहाँ पर आए
0: जी, जी, जी,
1: और हम लोगों का काम उनको यहाँ ज्ञान देना ही,
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी बातें।
0: रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे डॉक्टर तोमर साहब ने दी है और उनसे जाना कि किस तरीके से हमारे किसान साथी इस महीने में, चूंकि गर्मी का मौसम है, इस महीने में कौन से बीज अपने खेतों में लगा सकते हैं, यानी चयन कर सकते हैं, कौन से ऐसे बीज हैं जो अच्छे उत्पादन हमें दे सकते हैं, और खास तौर पर मिट्टी और सारी जलवायु के बारे में उन्होंने चर्चा की है। और उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात को बताया है कि किस तरीके से हमारे किसान साथी केबीके में आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात को बताई है कि यहाँ के जो किसान हैं, जो जानना नहीं चाहते हैं, जागरूक होना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसे किसान साथी जो वास्तव में खेती किसानी में रुचि रखते हैं और वो अपनी खेती किसानी को एक आय के स्रोत के रूप में वो देखना चाहते हैं, तो जरूर यहाँ पर केबीके में जाकर संपर्क हमारे किसान साथी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हमारे संपर्क हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम के ऑफिस में आप आइएगा, आप अपने सवाल बताइएगा, हम उन सवालों को लेकर डॉक्टर के पास जाएंगे, यानी वैज्ञानिकों के पास जाएंगे, उस सवालों का आपके जवाब लेंगे। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है कि जो किसान साथी हमसे जुड़े हुए हैं, यानी केबीके से जुड़े हुए हैं, वो किसान साथी लाभ ले रहे हैं। कैसे लाभ ले रहे हैं वो जानते हैं कि सबसे पहले जो हम अपनी खेती को बोते हैं, सबसे पहले जरूरत रहती है, जरूरी बात जो रहती है वो रहती है अपनी मृदा का परीक्षण कराना, यानी मिट्टी का परीक्षण कराना एक महत्वपूर्ण बात रहती है, क्योंकि जब तक हम अपने मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच नहीं कराएंगे, तब तक हमें पता नहीं चल सकता है कि हमारे मिट्टी में कौन से तत्वों की कमी है और उसकी भरपाई किस तरीके से कर सकते हैं। जब आपके पास सैंपल आ जाएगा, रिपोर्ट तैयार होकर आ जाएगी, तब आप उस रिपोर्ट को वैज्ञानिकों के पास ले जाइएगा। यही एक सरल और सही तरीका रहता है जब हम एक अच्छी तरीके से खेती करना चाहते हैं, उसको एक वैज्ञानिक ढंग से खेती करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा सरल तरीका रहता है।

और जागरूकता की कमी देखने को यहाँ पर मिलती है। तब हमने पूछा उनसे कि कैसी जागरूकता और कैसी कमी, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि जिन किसान साथी जागरूक हैं वो किसान साथी मिश्रित खेती कर रहे हैं, क्रॉपिंग कर रहे हैं। वो मिश्रित खेती का मतलब होता है सभी प्रकार की खेती हमें करके देखना चाहिए, मिट्टी की जांच करवाना चाहिए और अपनी खेतों को अच्छी तरीके से, यदि आपको अच्छी फसल पैदा करना है तो इन खास बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। दूसरी बात आती है कि मिश्रित खेती कैसे करें। यहाँ पर डॉक्टर साहब ने यह भी बताया कि धान की खेती भी हमारे किसान साथी करते हैं, धान उगाते हैं, लेकिन कहीं कहीं उगाते हैं, कहीं कहीं नहीं उगाते हैं। इंटरक्रॉपिंग की अगर बात की उन्होंने, मिश्रित खेती की अगर बात की, तो ये ध्यान देने वाली बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि वैज्ञानिक जो सलाह देते हैं वो किसान साथियों के हित में रहती है। वो समय समय पर जानकारी उपलब्ध कराते रहते हैं कि आप इस पद्धति से आप खेती करिएगा। एक बात और बताई है उन्होंने कि बहुत सारी शासन की योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन शासन की योजना के लिए आपको लाभ लेने के लिए आपको आना पड़ेगा, आपको यहां पर बात करनी होगी, कृषि विभाग में जाना होगा, वैज्ञानिकों से पूछना होगा, तब जाकर आप उसका लाभ ले सकते हैं। दूसरी बात आती है कि खेती तो आप करिएगा अच्छी तरीके से, वैज्ञानिक पद्धति से आप करिएगा। दूसरी बात आती है कि आपको पानी के संरक्षण के लिए भी काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। खासतौर पर उन्होंने एक बात पर बड़ा जोर दिया है कि यहाँ पर जो ढलान खेती है, यानी ढालू ऊपर नीचे खेती है, वहां पर किसान साथी समतलीकरण करा सकते हैं, और इसके साथ साथ जो तालाब आज बंद हो गए हैं, यानी मिट्टी से पूरे भराव हो गया है उनका, तो उनका हमें जीवोच्चारण करना चाहिए, यानी उनको जीवित करना चाहिए, उनको संरक्षित करना चाहिए। जो कुआ मिट्टी से भर गए हैं उनको हमें सही और अच्छी तरीके से साफ सफाई उनकी करनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में हम बरसात के पानी को रोक सकें। दूसरी बात आती है कि आप अपने खेतों का मेड़ बंधान करना बहुत ज्यादा आवश्यक रहता है, कि आप चारों ओर अपने खेतों की मेड़ जरूर अवश्य मेड़ बंधान अवश्य करें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे किसान साथियों को सोचने की बहुत ज्यादा इसमें आवश्यकता है और जागरूक होने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। आपको लगता है, डर लगता है कि हम वहां पर जाएंगे, वैज्ञानिक हमारे क्या करेंगे, क्या कहेंगे, तो डराने की कोई बात नहीं है। आपको यदि लगता है तो आप रेडियो स्टेशन आइएगा, अपनी बात को जरूर रखिएगा। हमने काफी बातचीत बताई है, ड्रिप इरिगेशन की भी स्कीम है और काफी भारी छूट पर ये आपको ड्रिप उपलब्ध किए जाते हैं, स्प्रिंकलर उपलब्ध कराए जाते हैं भारी छूटों पर। आप जाइएगा, ऑनलाइन फॉर्म कराइएगा और इसका लाभ लीजिएगा। तो ये नहीं है, जैसा कहा जाता है कि कुआं के पास हमें यदि प्यास लगी है तो कुआं के पास जाना चाहिए, ना कि कुआं आपके पास नहीं आएगा। यही सब बातें हैं जो हमारे किसान साथियों को जागरूक होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, सोचने समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। चूंकि हमने बहुत बातचीत कर ली है, हमारा वक्त भी हो रहा है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का, तो हमें आशा है कि हमारे किसान साथी जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त, वो हमारे किसान साथी सोचेंगे, समझेंगे और अपने खेती में बदलाव अवश्य करेंगे। जैसे कि सरकार ने योजनाएं बनाई हैं कि आने वाले समय में हम अपने किसानों की आय को दोगुनी करेंगे, तो यही सब विधियां हैं, यही सब कारण हैं जिससे हमारे किसान साथी अपनी आय को दुगनी कर सकते हैं। बागवानी आप करिएगा, बागवानी आप लगा सकते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छी फायदा है। आप व्यवसाय भी कर सकते हैं, जैसे कड़कनाथ का यहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यवसाय होता है, उसको भी कर सकते हैं। साथ साथ में SHG के साथ जुड़कर अपनी आजीविका को चलाने के लिए छोटे छोटे कुटीर उद्योग भी हमारे किसान साथी कर सकते हैं। हमें आशा है कि महत्वपूर्ण जानकारी पाकर हमारे किसान साथी जरूर सोचेंगे, समझेंगे और इस पर विचार करेंगे। अब आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सचते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें।

0: आज के कलाकार का एक और एपिसोड लेकर दोस्तों हम रेडियो टांटिया भील और रेडियो एसएन से आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही प्यारी, बहुत ही टैलेंटेड टैलेंट हमारे साथ हैं, पापोरी जी। बाकी हम पापोरी जी से ही बात करेंगे तो आप लोग चकित रह जाएंगे कि वो कहां से हैं, कहां रहती हैं, क्या करती हैं। सो लेट मी वेलकम पापोरी मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो प्लीज हमारे सुनने वालों के लिए प्लीज हमें बताइए ना, आप कहां हैं, क्या करती हैं।
1: थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बुलाया है तो यहाँ पे आई एम सो एक्साइटेड। एक्चुअली आई एम फ्रॉम असम गुवाहाटी बट सेटल्ड इन हैदराबाद। मैं एक्चुअली बहुत छोटे से मैं गान मतलब म्यूजिक पे जोड़ी हुई हूँ, तो क्या कहूँ मैं आपको, आप बताइए मैं क्या कहूँ।
0: दोस्तों पापोरी मैम इतनी मासूम है, इतनी डेम्योर है, इतनी सीधी सादी है कि अब उससे ज्यादा तो वो अपने बारे में क्या कहें। बस वो इतना कह कर चुप हो गई कि मैं गाने गाने में इंटरेस्टेड हूँ। हाउ क्यूट इज दैट। तो वैसे बस यूं ही आपसे पूछना चाहता हूँ मैम कि आप क्या करते हैं, आई मीन डू यू वर्क समवेयर और यू आर अ ग्रेट ग्रेट होम मेकर, क्या आई मीन व्हाट डू यू डू?
1: आई एम ग्रेट ग्रेट होम मेकर, आई एम नॉट वर्किंग। ऑलराइट, या सो आई यूज्ड टू सिंग इन ऑल इंडिया रेडियो गुवाहाटी। एक्चुअली मैं यूथ से जुड़ी हुई हूँ। व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई थिंक स्कूल हाँ या 11-12, तभी से मैं यूथ में जुड़ी हुई हूँ ऑल इंडिया रेडियो गुवाहाटी पे। वहां पे एक कंपटीशन हुआ था तो मैंने जीत गई, तो मुझे बस ऑडिशन देने की भी जरूरत नहीं पड़ी। आफ्टर दैट मैं जब मैं जनरल में मैम आई तो तभी मैं ऑडिशन देना पड़ा, तो एक ही बार ऑडिशन में मैं सिलेक्ट हो गई थी। आई यूज टू परफॉर्म देयर असमीज सॉन्ग, असमीज मॉडर्न सॉन्ग।
0: ऑलराइट तो दोस्तों अला आज लेकिन हमें पापोरी मैम के कुछ ऐसे प्यारे प्यारे गीत सुनने को मिलेंगे, यू विल बी अमेज्ड। तो चलिए शुरू करें उनका ये प्रोग्राम उनके इसी गीत से जो उन्होंने हमारे लिए प्रिपेयर किया।

0: बहुत सुंदर गायकी और बहुत ही प्यारी स्टार्ट। तो सबसे पहले पापुरी मैम मुझे ये बताओ कि आपकी जो गायकी है, आपका जो संगीत है, आपका जो म्यूजिक है, आपका जो टैलेंट है, वो किस ने मोटिवेट किया और आप किससे मोटिवेटेड होके, किससे इंस्पायर्ड होकर इस तरफ आई? सो आपके सबसे बड़े संगीत प्रेरणा सोर्स कौन है?
1: मेरी संगीत प्रेरणा एक्चुअली मेरी फैमिली है, मेरी मम्मी पापा सब लोग ही। मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे पापा ने मुझे इंस्पायर्ड किया, मेरे मम्मी ने, ऐसा नहीं है। तो सब लोगों ने, घर के सभी लोगों ने मुझे इंस्पायर्ड किया। तो मेरा पापा भी एक्चुअली ही वॉज नॉट ए वेरी गुड सिंगर, बट उसको बहुत ही शौक था कि गाना, मतलब गाने के लिए, ठीक है। तो उनके पास हम लोग शादी से पहले से, मतलब मेरे पापा की शादी से पहले ही बॉट ए हारमोनियम, दैट वाज अ सेकंड हैंड हारमोनियम। और इस टाइप की हारमोनियम अभी शायद मिलना बहुत मुश्किल है। अभी भी वो हारमोनियम इतनी सॉलिड है, अभी भी उसका आवाज जो है, तो पापा का वो पहले से था। तो इसलिए मैं शायद छोटे में इसे, मम्मी मुझे बोला करती थी कि तुम्हारी आवाज मीठी मीठी है तो गाना सीखोगी। मुझे याद भी नहीं है कब मैं गाना सीखी एक्चुअली। तो इससे मेरे घर के, मेरे मम्मी पापा, मेरे भैया सबने मुझे इंस्पायर किया है। मतलब किसी ने रोका नहीं है कि तुम ये मत करो, वो मत करो, बस गाना सीखने के लिए मुझे दे दिया। मुझे घर पे मेरे गुरुजी आए थे, तो मतलब मुझे याद भी नहीं है मैं कब से शायद मैंने म्यूजिक में, मतलब मैं क्लासिकल म्यूजिक में सीखना शुरू किया। लेकिन मुझे ये याद है, साल भर तक मुझे ना मेरे गुरुजी ने मुझे सारा ग्राम का जो वेरिएशन है वो सब मुझे सिखाते रहे। आई वॉज वेरी, मुझे लगा क्या है ये सब, भाई क्या सीखना है, मम्मी मम्मी मम्मी मुझे, मतलब क्या है, नहीं नहीं नहीं तुम गाओ गाओ, तुम अच्छे मतलब गाती हो तो गाओ गाओ। तो ऐसे है, तो हर घर पे, मतलब हम लोग जब धीरे धीरे हम लोग बड़े होने लगे तो घर पे हम लोग का माहौल रहते हैं, एवरी वीकेंड में जैसे कि लोग आते हैं, एक जलसा टाइप होते थे। तो मेरे भैया भी तबला बजाते थे, फिर मैंडोलिन बजाते थे वो, वी यूज टू प्रैक्टिस टूगेदर। तो लोग आते हैं, तो हमारे घर में ढेर सारे म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे पहले। तो इसलिए घर के सभी लोग कैसे मैं इंस्पायर्ड एक्चुअली, सबने मुझे एनकरेज किया है कि ये करो, वो करो, ये करो। तो इसलिए ऐसा है, ऐसा नहीं पर्टिकुलर मेरे पापा ने, मम्मी ने, ऐसा नहीं है, सपना है।
0: ओके, ऑलराइट। सो बहुत बहुत सारे लोगों से इंस्पिरेशन लेकर, मोटिवेशन लेकर पापुरी मैम,
1: बाद में मेरे हस्बैंड का उसने भी मुझे बहुत साथ दिया है। ही इज आल्सो अ गुड सिंगर, माने वो मतलब उसको गाने में बहुत इंटरेस्ट है। वो ही इज नॉट ए क्लासिकल ट्रेन सिंगर और कुछ भी नहीं है, लेकिन वो भी अच्छा गाते हैं। तो मुझे उसने भी मुझे बहुत प्रेरणा दिया है।
0: ओके, सो दोस्तों बहुत सारे लोगों से प्रेरणा लेकर पापुरी मैम ने गाना शुरू किया है। आइए उनका एक गीत सुनते हैं, बहुत ही प्यारा सा, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पापुरी मैम प्लीज मुझे ये बताइए, आप इतने समय से गीत गा रही हैं, संगीत में इन्वॉल्व्ड है, आपके परिवार वालों ने भी आपको इतना इंस्पिरेशन दिया, सो यू हैड बीन प्रैक्टिसिंग, बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आप आपकी आवाज का ख्याल कैसे रखते हैं? हाउ डू यू मेंटेन योर वॉइस? बिकॉज गाना गाने में तो सबसे इंपॉर्टेंट वॉइस ही होती है ना, तो आप अपने आवाज का ख्याल रखने के लिए क्या करती हैं?
1: मैं आवाज के लिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ आजकल। एक्चुअली मैं रेगुलरली, मैं जब से स्मूएल पे गाने लगी हूँ, मैं रेगुलर मैं गाती रहती हूँ, तो वो मैं मेरा एक प्रैक्टिस हो जाते हैं। और मैं जब क्लासिकल में सीखी थी, तब क्लासिकल विशारद खत्म होने के बाद मैंने क्लासिकल टच नहीं किया और मैं प्रैक्टिस भी नहीं की क्लासिकल सारागमा, मैंने उसमें उसके बाद मैंने हाथ भी नहीं लगाई। लेकिन मैं हर रोज घर पे मैं गुनगुनाती थी, पहले भी थी, अभी भी हूँ, बस मैं करती थी, वही मेरा एक है। और ऐसा मैंने कोई रेगुलरली मैं उस प्रैक्टिस वगैरह ऐसे मैं नहीं करती थी, सच बताऊं।
0: ओके, नहीं जस्ट इन केस कोई गर्म पानी के गरारे करना या मुलाटी या कोई स्पेसिफिक चाय पीना, बिकॉज आप तो आसाम से हैं तो आसाम की तो चाय इतनी फेमस है, सो कुछ ऐसा कोई दवाई, कोई आयुर्वेदा कुछ ऐसा, इसलिए पूछ रहा था मैं।
1: नहीं, मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ, मैं सब कुछ खाती हूँ, सब जैसे कि गर्मी है तो दही भी खाती हूँ, सब कुछ मैं लेती हूँ, आइसक्रीम भी खाती हूँ, सब कुछ मैं लेती हूँ। लेकिन आवाज के लिए हाँ प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है, लेकिन मैं रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करती हूँ सच बताऊं तो।
0: ओके।
1: और मैं कोई बुलाती वो बुलाती आपने जो बोला है वो मैं कभी कभी लिया ही नहीं।
0: ऑलराइट
1: मैं कभी नहीं ले
0: मुलाटी,
1: कोई भी मेडिसिन में नहीं लेती हूँ। हाँ मुलाटी जो है मैं कभी नहीं लिया। और जैसे कि कभी गला खराब होते हैं तभी, हाँ चाय तो हम लोग पीते हैं असम के लोग हैं, लेकिन तभी मैं जो जैसे कि अदरक वाली चाय जो है वो पी लेती हूँ, कोई ऐसा पर्टिकुलर ऐसा मैं कुछ करती नहीं हूँ एक्चुअली सच बताऊं तो।
0: ओके ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मैम इसी बात पर मुझे कोई भी अपनी पसंद का एक गीत थोड़ा सा गुनगुना के बताइए।
1: हाल ही में एक्चुअली आशा भोसले जी का जो देहांत हो गया है, तो मैं उनके ही एक छोटा सा एक मैं गुनगुना देती हूँ।

वाह, अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल। दोस्तों, आपने सुना, ओरिजिनल सिंगिंग की बात ही अलग होती है, अनप्लग्ड में रियल टैलेंट बाहर निकल कर आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: बहुत खूब अमेजिंग अमेजिंग सिंगिंग। बापुरी मैम, इतना वक्त गुजरा आपको अपने म्यूजिक के साथ एंजॉय करते हुए, दूसरे लोग भी आपको सुनते रहे, तो क्या कभी स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका मिला? और अगर किया आपने तो अपने पहले एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताइए, हाउ डिड यू फील?
1: मैं स्टेज में तो काफी परफॉर्मेंस की थी पहले, जब मैं कॉलेज में थी। एक्चुअली स्कूल से मैंने शुरू किया स्टेज परफॉर्मेंस। मैं इतना एंजॉय नहीं करती थी जब मैं स्टेज में परफॉर्म करती थी। मुझे पता नहीं क्यों, मुझे एक फियर, एक डर, मतलब डर सा मुझे रहते थे हर टाइम में। मैं इसलिए मुझे स्टेज परफॉर्म में करती थी, लेकिन बाद में मैंने छोड़ दिया। मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे पता नहीं क्यों। जैसे जैसे कि रेडियो में गाती हूँ तो वही सब मुझे अच्छा लगते थे।
0: ओह अच्छा।
1: हाँ, लेकिन आजकल मैं करती हूँ स्टेज परफॉर्म। यहाँ पे जैसे कि मैं जहाँ पे रहती हूँ, हमारी एक सरगम ग्रुप है, वहाँ पे परफॉर्म करती हूँ। फिर जैसे कि यहाँ पे कुछ है तो, और कम्युनिटी, हम लोग का जो असमीज कम्युनिटी का कुछ प्रोग्राम होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम, वो सब में मैं परफॉर्म करती हूँ और करके भी आई हूँ। अब हाल ही में मैंने हमारे यहाँ पे जो बैठक करके, मैं रिसेंटली में एक बैठक में हम लोग ने, बैठक मतलब इंडिपेंडेंट सोशल एक ये प्लेटफॉर्म है, उसमें भी परफॉर्म किया मैंने। तो थोड़ा सेमी क्लासिकल सॉन्ग, फिर ऐसे बीच बीच में छोटा मोटा मैं करती रहती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं एकदम रेगुलरली करती हूँ, ऐसा नहीं।
0: ओके तो दोस्तों, आपने जाना कि पापुरी मैम बहुत ज्यादा रेगुलर स्टेज परफॉर्मेंस नहीं करते हैं। उनको एस म्यूल पे या फिर आकाशवाणी में या इस तरह की जगहों पर परफॉर्म करना ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना मैम?
1: जी, मुझे और एक बोलना है, क्योंकि मैं जब स्मूल पे गाने लगी तो, क्योंकि वहां पे सरगम और संगीत करके एक पेज है, वहां पे 2022 में एक कंपटीशन हुआ था खामाज मेडली करके, तो वहां पे दो सॉन्ग दिया था, उसमें से एक सॉन्ग मैंने गाया है, ओ सजना बरखा बहार। और सेकंड सॉन्ग था खामाज का, ये कुछ तो लोग कहेंगे, तो दोनों बैक टू बैक था। और तभी मुझे नहीं पता था कि स्मूल पे कैसे गाना है, डायरेक्टली गाना है बस। मुझे जैसे कि हम लोग रेडियो में गाते हैं डायरेक्टली, मैं डायरेक्टली गाई थी और मैं विनर भी, मतलब मैं लेडी फीमेल की मैं विनर थी। तो तब से मुझे, मैं और खुद ही खुद में इंस्पायर्ड हो गई कि मैं इस उम्र में भी मैं गा के मैं कुछ जीत सकती हूँ, तो मैं कुछ गा सकती हूँ शायद।
0: ऑलराइट, तो आपने जाना किस तरीके से काकुरी मैम, पापुरी मैम, आई एम सॉरी, पापुरी मैम इज इन्वॉल्व्ड इन सो मेनी सिंगिंग ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अभी इस प्यारे से गीत का आनंद उठाते हैं।

0: बहुत सुंदर, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। मैम मुझे ये बताइए, जब आप छोटे बच्चे थे बचपन में, तो कुछ तो सपने होंगे, कुछ तो ड्रीम्स होंगे, आप पढ़ाई कर रहे थे, तो आप क्या बनना चाहते थे बड़े होकर कि मैं कुछ क्या करूंगी?
1: सच बताऊं तो मैं एक्चुअली म्यूजिक पे मुझे मेरा इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मैं मुझे डांस सीखने का बड़ी मन मतलब बहुत ही मन था, लेकिन मम्मी लोगों ने जब म्यूजिक में दे दिया तो मैं म्यूजिक में भी अच्छी थी, तो मैं म्यूजिक ही बस, डांस मुझे नहीं हुआ, मतलब मैं नहीं सीख पाई।
0: ओके
1: हाँ, बाद में मुझे थोड़ा जब कॉलेज में थी तो मुझे मॉडलिंग का मतलब बहुत ही शौक था, तो कि मुझे लगा मैं बॉम्बे जाऊं कुछ करूं, या इधर सिंगिंग का या मॉडलिंग का कुछ ऐसे मुझे मन था। लेकिन तभी गुवाहाटी से मैं बॉम्बे कैसे जाऊं, किसके साथ जाऊं, ये सब सोच के वो भी नहीं हुआ सच बताऊं।
0: ओके ओके, फिर आगे क्या हुआ?
1: आगे कुछ भी नहीं हुआ, बस मैं बस रेडियो में मैं रह गई थी। उसके बाद हाँ, मैंने जब स्कूल और कॉलेज में मैं ढेर सारे में कंपटीशन में मैं जीती थी। नेशनल लेवल तक मैंने गाई थी, लेकिन मैंने जीती नहीं, नेशनल लेवल तक मैंने नहीं जीती, लेकिन स्टेट लेवल ये सब में मैंने काफी कंपटीशन मैंने जीती थी। तो बस
0: ऑलराइट, सो इस तरीके से पापुरी मैम के बारे में आप, हम और आप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बचपन में वो कैसी थी, किस तरीके से उन्होंने सोचा, आगे बढ़ी, फिर इवेंचुअली आज हम उनके प्यारे से गीतों का आनंद उठा पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं पापुरी मैम का ही।

0: बहुत सुंदर, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। जैसे आपने बताया कि आप एसम्यूल पर गाना शुरू किया, तो बहुत बहुत सारे पेजेस और उन सब में आप सबसे आप मिलना शुरू हो गए। एसम्यूल पर गाते हुए कितना वक्त गुजर गया मैम?
1: पे मैंने एक्चुअली 2020 में शायद मैं आई एंटर्ड 2020-21 मोस्टली एक्चुअली।
0: तो एसम्यूल, तो एसम्यूल पर जाते हुए वहां पर कुछ लेवल्स होते होंगे, माइलस्टोन्स होते होंगे, कुछ पादान होते होंगे कि उस लेवल पर आप पहुंच गए, फिर उस लेवल पर आप पहुंच गए, कुछ ऐसा होता होगा ना। तो वहां पर आप किस स्टेटस पर हैं एसम्यूल में अभी?
1: मैंने वेरीफाइड सिंगर हूं बस।
0: अच्छा, मुझे मालूम नहीं है उनका क्या क्राइट।
1: काफी पेजेस पे मुझे गाने के लिए मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि गाओ, और लोग तारीफ करते हैं, तो बस अच्छा लगता है।
0: चलिए फिर इसी बात पर एक गीत हमें गुनगुना के बताइए।
1: आपको मैंने हिंदी गाना ही सुनाना है?
0: नहीं, आप इंग्लिश भी सुना सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज में सुना सकते हैं।
1: मैं एक असमी गाना सुनाना चाहती हूँ आपको।
0: सुना दीजिए, सुना दीजिए।
1: तो ये थी एक्चुअली भूपेन हजारिका, हम लोग को बहुत आपको पता है भूपेन हजारिका, डॉक्टर भूपेन हजारिका। तो वो हम सभी असमीज के लिए एक क्या है कि उसका गाना बिना, मतलब गाने बिना हम लोग नहीं रह सकते। यू नो दैट डॉक्टर भूपेन हजारिका, राइट?
0: जी
1: जी। तो उनका एक गाना है जो आशा भोसले ने गाया था, गाए थे, तो एक मूवी पे, काफी ओल्ड सॉन्ग है। ए दुनिया गोथुलि लगान हम जम ही न सरन हम आज

0: に気をどゆどゆてもごちょ、ちょたさ、どーらんめにすなり。
1: बहुत बढ़िया, amazing, that is so beautiful. तो चलिए दोस्तों, ये तो था असमीज सॉन्ग. जी कुछ कह रही हैं मैम आप?
0: नहीं, इस मतलब असमीज में तो ढेर सारे हैं, जैसे कि लता मंगेशकर ने भी गाए थे, सुमन दिलनपुर ये सब ने भी गाए थे. लता मंगेशकर का भी एक है छोटा सा असमीज सॉन्ग,
1: वो भी सुना दीजिए, सुनाइए.
0: जो ना कोरे राती ओहो मेरे माती,

Baby.

0: फूल फूरे फूरे, ये भी भूपेन हजारिका का लिरिक्स जो सुर सभी की थी, लता मंगेशकर जी ने गाए थे ये।
1: बहुत बढ़िया सिंगिंग, बहुत बहुत प्यारी सिंगिंग। तो पहले हम लोगों ने आशा भोसले जी की आवाज में एसमी सॉन्ग सुना, फिर हम लोगों ने लता मंगेशकर जी की आवाज में भी एसमी सॉन्ग सुना। तो मुझे भूपेंद्र हजारिका जी क्या ही उन्होंने गाया जो कोई गीत हो वो सुनाइए ना।
0: ओके। बुकु हम हम करे, डू यू नो दैट दिल हुम हुम करे सॉन्ग?
1: Yeah, this is the most popular song of the world.
0: Original jo hai wo to Assamese mein Bhupen Hazarika ji ne gaye the.
1: Mm-hmm.
0: To

0: ये भी अवार्ड कुछ नेशनल ये में सॉन्ग बुकू हम करे जो सॉन्ग है उसमें अवार्ड भी मिला था।
1: जी जी एब्सोल्युटली आपने बिल्कुल सही कहा।
0: मैंने एक और एक सॉन्ग दिया है झूठी मूठी मिटुआ, वो भी भूपेन हजारिका का ओरिजिनल असमी सॉन्ग है लेकिन वो हिंदी में जो लता मंगेशकर ने गाया है मैंने वो भी सॉन्ग गाया है।
1: ओके ओके तो उसे भी सुनाइए एक बार असमीज में।
0: झूठी मूठी मिटुआ लिरिक्स थोड़ा सा मुझे याद नहीं है। उस टाइप की कुछ थी तो सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट द लिरिक्स।
1: ओके
0: ओके
1: तो आगे बढ़े मैम।
0: जी
1: ओके तो चलिए दोस्तों आइए एक प्यारा सा गीत सुनते हैं अभी पापुरी मैम ने जो हमारे लिए रिकॉर्ड किया।

0: बहुत सुंदर, अमेजिंगली ब्यूटिफुल. आपसे ये चीज पूछना चाहूंगा मैम, आपके सबसे पसंदीदा गायक, सिंगर, मेल सिंगर और फीमेल सिंगर कौन है और क्यों?
1: फीमेल सिंगर ऑब्वियसली लता मंगेशकर जी, क्योंकि उनकी सॉन्ग हम लोग मतलब सुन के ही बड़े हुए हैं. क्योंकि जो विविध भारती ये सब में जब हम लोग रेगुलरली सुना करते थे तो ऑब्वियसली लता मंगेशकर जी. और मेल सिंगर एक्चुअली मुझे किशोर कुमार जी ढेर सारे हैं एक्चुअली, मोहम्मद रफी, फिर यशोदास जी, फिर सुरेश वाडकर.
0: ओके, ऑलराइट.
1: आशा भोसले का सॉन्ग भी बहुत पसंद है. कोई कोई सॉन्ग तो बहुत ही मतलब उनकी तो मतलब शी वाज अ फर्सटाइल सिंगर.
0: तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं पापोरी मैम का ही रिकॉर्ड किया हुआ हमारे लिए.

0: कोई भी, चाहे वो है अभी संसार में या नहीं है, तो आप किसको बुलाना चाहेंगे?
1: मतलब किस टाइप की को, मतलब मैंने किस सिंगर आप बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं।
0: ओके आपको किसी,
1: मतलब बॉलीवुड का, मैंने किसी को बॉलीवुड का किसी को बुलाना है तो आप ऐसे बोल रहे हो?
0: आप किसी को भी बुला सकते हैं, चाहे वो बॉलीवुड के हों चाहे वो बॉलीवुड के ना हों, किसी को भी आप बुला सकते हैं स्टेज पर अपने साथ परफॉर्म करने के लिए। मैं इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ड्रीम्स में जाने के लिए बोल रहा हूँ। तो किसको बुलाना चाहेंगे आप?
1: मेरे हस्बैंड।
0: आई सी, ओके ओके ओके।
1: ही इज अ वेरी अमेजिंग सिंगर, कोई कोई सॉन्ग तो बहुत अच्छा गा लेते हैं।
0: ओके उनका कोई गाया हुआ कोई गीत आप बताइए हमें।
1: वो ऐसे ऐसे नहीं गाते, वो बस वो ज्यादातर असमी सॉन्ग ही गाते हैं, जैसे कि भूपेन हजरिका का और उसके ब्रदर था जयंत हजरिका, वो ऐसे ही गाते हैं। तो और क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मैंने अभी पहले भी बोला था, एक ग्रुप है सरगम म्यूजिकल ग्रुप करके हमारी सोसाइटी में, तो हम लोग यहाँ पे जब परफॉर्म करते हैं ईयरली, हम लोग 3 times हम लोग रखते हैं प्रोग्राम, तो उसमें कोई भी सिंगर के साथ आपको ये मतलब को गाना पड़ता है। सभी लोग, सभी अच्छे सिंगर है यहाँ पे हम लोग के ग्रुप में, सभी अच्छे सिंगर है, तो ऐसा नहीं कि कभी, लेकिन मैं आई एम कंफर्टेबल विद माय हस्बैंड।
0: ऑलराइट ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों फिर बापूरी मैम तो सर के साथ गाएंगे, तब तक हम लोग एक प्यारा सा गीत सुनते हैं बापूरी मैम की ही आवाज में जो उन्होंने हमारे लिए रिकॉर्ड किया है।

बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू सो वेरी मच। अब इतने समय से आप गा रही हैं, ऑल इंडिया रेडियो पर भी आपने परफॉर्म किया और इतनी जगहों पर आपकी सोसाइटी में भी गा रही हैं, तो बहुत बहुत सारे लोग

0: आपके फैंस भी होंगे, आपके प्रशंसक भी होंगे, तो किसी प्रशंसक ने कभी आपको बहुत ही अच्छा सा कमेंट दिया हो, थोड़ा उसके बारे में बताइए।
1: मेरा गाना जब सुनते हैं सब लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं, बोलते मैं अच्छा गाती हूँ, पता नहीं मैं कैसी गाती हूँ, लेकिन लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लोग उसको मैंने शायद गाया होगा तो इसलिए वो लोग ऐसे बोलते हैं।
0: मतलब कोई पर्टिकुलर कमेंट आपको ऐसा याद नहीं है कि जो आपको बहुत अच्छा लगा हो?
1: मैं कैसे बोलूं, मुझे क्या वो लोग ऐसे बोलते हैं, तो वो बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता।
0: ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको पुश नहीं करूंगा, इट्स ऑल राइट। दोस्तों आपने सुना कि पापोरी मैम इज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद अपने बारे में,
1: जब आपके बारे में बहुत अच्छे कुछ बोलते, मैं इसे लोगों के सामने मुझे वो अच्छा नहीं लगता कि बोलने के लिए।
0: No problem.
1: तो अभी मेरा गाना जब ब्रॉडकास्ट होंगे, लोग सुनेंगे, जो कमेंट देंगे, तभी वो मेरे लिए मतलब ब्लेसिंग्स, कॉम्प्लीमेंट जो भी।
0: ओके ओके ओके ओके ओके, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हुए हमें अपनी प्यारी सी आवाज में एक गाना गुनगुना के बताइए। इससे पहले कि हम आपका गाना प्ले करें, आप गुनगुना दीजिए।
1: ओके, एक्चुअली मैंने तेलुगु सॉन्ग भी मैंने गाया।
0: हाँ, बहुत बढ़िया।
1: एक है इन बिटवीन, मैंने और एक बात बोलना चाहती हूँ, मेरी बेटी भी सी इज अ सिंगर, इंडिपेंडेंट सिंगर, सिंगर कम सॉन्ग राइटर। मेरा बेटा भी पहले गाते थे, लेकिन ही इज नाउ टू बिजी विथ हिज वर्क। माय डॉटर इन लॉ इज आल्सो ए क्लासिकल, सी इज अ डॉक्टर बट क्लासिकली ट्रेन सिंगर, लेकिन अब गाती नहीं है।
0: ओके,
1: लेकिन माय डॉटर सी परफॉर्म, सी इज अ स्टेज परफॉर्म करती है, प्रोग्राम करती है, वैसा है। तो मैंने एक जो तेलुगु सॉन्ग है उसका थोड़ा गुनगुना दूं?
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
1: तेलुगु, हाँ मैं हैदराबाद में, तेलंगाना में मैं रहती हूँ, तो तेलुगु सॉन्ग तो बनता है ना।
0: हाँ बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है।
1: ये एसपी बालासुब्रमण्यम जी और जानकी जी का सॉन्ग है, तो इसमें एक्चुअली जानकी जी का मतलब फीमेल पार्ट ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने मेल पार्ट ही दो लाइन गुनगुना देती हूँ
0: जी।
1: నిను చూడక నేనుండలేను.

0: सॉरी प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत हुआ है तो.
1: मुझे तो पता ही नहीं, तेलुगु मुझे आता ही नहीं है. मैं
0: मैंने प्रोनाउंसिएशन मैंने इसमें निनुचूडा का ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसे होना चाहिए शायद, पता नहीं मैंने कैसे किया. लेकिन मैंने जब ये स्मूल पे मैंने जब रिकॉर्ड किया था तो लोगों ने मुझे काफी तारीफ की थी, अच्छा अपने तेलुगु सॉन्ग भी गाते हो. तो एक मैंने मलयाली सॉन्ग भी गाई थी, थोड़ा दो लाइन ही गाई थी.
1: हाँ, सुनाइए सुनाइए सुनाइए.
0: मुझे याद नहीं है वो एक्चुअली.
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा.
0: वो सॉन्ग एक्चुअली क्या है, सलील चौधरी जी का सॉन्ग है. तो उस सलील चौधरी ही इज ऑल्सो फ्रॉम असम. तो पहले वो असमीज में वो सॉन्ग किया था, वो दैट सॉन्ग इज अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग. तो मैंने उस सॉन्ग का किसी से सुना, मलयाली एक किसी ने गाया था सुना था, तो मैंने उसको मलयाली ट्रैक निकाल के मैंने असमीज पार्ट गाया और मलयाली बाकी लोगों ने मुझे ज्वाइन किया था. तो दो लाइन ही में मुझे इतना याद नहीं है मलयाली, काफी टफ लगा मुझे.
1: ओके ओके ओके.
0: वो याद नहीं है अभी मलयाली.
1: बट तेलुगु सॉन्ग आपने गाया हुआ है?
0: हाँ गाया, क्योंकि राजभवन में हम लोग लास्ट टू इयर्स राजभवन में असम फाउंडेशन डे है तो वहाँ पे प्रोग्राम किया. तो फर्स्ट टाइम जब प्रोग्राम किया तो वहाँ पे बाकी जो लोग हैं तो तेलुगु है वो लोग, उन लोगों ने कहा हमारे लिए भी तो कुछ करो, हम असमीज तो समझ में नहीं आते. तो इसलिए लास्ट ईयर जब किया था दिसंबर में तो हमने इसलिए तेलुगु में और मेरे हस्बैंड दोनों ने गाया ये सॉन्ग. वहाँ पे ढेर सारे सुंदर सुंदर अलाप है तो हम दोनों ने ये सॉन्ग मिलके गाए थे. तो उन लोग बहुत खुश हो गए थे, अच्छा तेलुगु हमारे लिए भी कुछ किया है. तो
1: राजभवन मतलब
0: यहाँ पे जो राजभवन है जो तो वहाँ पे असम फाउंडेशन डे हर एवरी ईयर होते हैं.
1: ओके.
0: मतलब गवर्नर जो है ना, गवर्नर के घर पे.
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा. वहाँ पर
0: सभी स्टेट का नॉर्थ ईस्ट का सभी मतलब ये होते हैं वहाँ पे.
1: Okay.
0: तो हम लोग असम फाउंडेशन डे के दिन हम लोग ये सॉन्ग भी गाए थे.
1: बहुत बढ़िया, अमेजिंग, ब्यूटीफुल. तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए एक और प्यारे से गीत का अभी आनंद उठाते हैं और फिर वापस लौटते हैं.

0: much for joining.
1: पापुरी मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आज के नए सिंगर्स हैं, जो लोग गा रहे हैं, उनके लिए क्या फीडबैक है आपका, उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगी आप, और हमारे जो आज के कलाकार फैमिली है उनके मेंबर्स के लिए क्या कहना चाहेंगी आप प्लीज.
2: आजकल की एक्चुअली जो सॉन्ग्स आए हुए हैं वो सब थोड़ा सा इतना हार्ट टचिंग सॉन्ग नहीं है जो अभी जो बॉलीवुड में हो, जो भी है सॉन्ग्स. पहले का आप देखिए मेलोडी, इतनी मेलोडी है कि अभी भी इतने हम लोग मतलब 50s का सॉन्ग भी हम लोग गाते हैं तो कितना अच्छा लगता है अभी भी, मतलब टच करते हैं वो उसका वर्ड लिरिक्स हो जो भी हो. और कोई भी सॉन्ग आप जब गाते हो ना तब इसको दिल पे मतलब एकदम से आप अंदर से आप गाओगे ना कि अच्छा ये सॉन्ग मेरे लिए है तो मैं ही गाती हूँ, मतलब बस ये सॉन्ग जो है मेरे है, किसी ने गाया है तो वो भूल जाइए. बस आप जब गाते हो तो आप अपने हिसाब से आपके आप जैसे गाए हो करके गा लो तो सॉन्ग डेफिनेटली अच्छा ही होगा. और हाँ, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है लोगों को. एक्चुअली आजकल कोई कोई बच्चे ऐसे है कि सिंगर्स गा लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस वगैरह नहीं करते, तो वॉइस का उन लोगों का थोड़ा सा ये होते हैं प्रैक्टिस, मतलब क्लासिकल सीख. हाँ मैं क्या कहूँ कि क्योंकि किशोर कुमार ने भी तो क्लासिकल नहीं सीखा था लेकिन उसका जो वॉइस है, लेकिन वो प्रैक्टिस करते थे ना सॉन्ग को. कोई भी सॉन्ग जब गाते, कोई भी आप गाए तो मतलब उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके गाएंगे तो डेफिनेटली वो अच्छा ही होगा. मैंने एक स्मूल पे मैं गा रही थी तो एक ट्रैक में लिखा हुआ था आप मतलब आप उसमें आप अंदर में घुस जाओ गाने में, तभी आप वो गाने का आप जो क्या बोलते हैं भाव है वो निकल के आते हैं, मतलब कोई भी सॉन्ग.
1: ओके,
2: पता नहीं मैं बोल पाई कि नहीं, ठीक से आपकी आंसर दे पाई कि
1: नहीं. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मैम, दैट्स एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट. तो दोस्तों बहुत सिंपल सी मेथड है, सिंपल सी बातें हैं, किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है वही पापुरी मैम कह रही हैं. मैम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो आप हमारे प्रोग्राम में आए. आपके अनप्लग्ड ओरिजिनल सॉन्ग्स भी हमने डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में सुने और आपके बाकी के गीतों का भी हमने बहुत लुत्फ उठाया. बहुत बहुत आभार मैम, थैंक यू सो मच.
2: थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर

दोस्तों, आज के कलाकार के इस सुरीले से सफर में बस यहीं तक। मुझे उम्मीद है आज की ये महफिल आपके दिल में एक मीठी याद छोड़ गई होगी। दोस्तों, कुछ गीत खत्म नहीं होते, बस दिलों में बस जाते हैं और जब भी याद आते हैं तो फिर से मुस्कुराहट बिखेर जाते हैं। तो हम फिर आएंगे नए सुरों और नए कलाकारों के साथ। तब तक अपने दिल को बस यूं ही गुनगुनाने दीजिए। नमस्कार।